0: करें, आओ सभी मिलकर योग करें। जी हाँ, जिसमें आपको सभी प्राणायामों की समुचित जानकारी व योग अभ्यास के साथ साथ करते हुए सभी आसनों को भी कराया जाता है और साथ में अष्टांग योग को भी विस्तार रूप से बताया जाता है। तो सुनना ना भूले रोजाना सुबह 6 से 7 अपनी आरजे समता के साथ। जी हाँ, योगशाला।
1: सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि गर्मियां बहुत प्रचंड रूप अपना ले चुकी हैं। बारिश भी है लेकिन गर्मियों ने अपना पूरा प्रारूप दिखाई दिया है। तो आइए गर्मियों में कुछ ऐसे प्रिकॉशंस जो कि हम हमेशा से आपके लिए लेते आए हैं और आपको बताते आए हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कि गर्मियों में हम अपने आप को कैसे हाइड्रेट रखें, हम अपनी बॉडी को हाइड्रेट कैसे रखें, हम अपने मूड को किस तरीके से अच्छा रखें। तो सबसे पहले तो जितना हम सर्दियों में खा लेते हैं, पी लेते हैं, वही उसका जो असर है ना, वो गर्मियों में निकलता है। मैं बताऊं कैसे। सर्दियों में हम जितना गर्म चीजों का सेवन करते हैं उसी का असर उतनी ही स्वेटिंग हमें गर्मियों में होती है। लेकिन गर्मियों में हमने जितना पानी पी लिया होता है, सर्दियों में अगर हम पानी नहीं भी पीते हैं तो काम चल जाता है। आपने एक उदाहरण के रूप में आपको समझाने जा रही हूँ। जैसे आपने ऊंट के बारे में सुना होगा, ऊंट को कहा जाता है कि वो 1 महीना लगातार पानी पीने के बाद में वो 3 महीने पानी नहीं पीता है, यानी उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो 3 महीने तक उस पानी को स्टोर करके अपने अंदर रह सकता है। इसीलिए उसे रेगिस्तान का राजा कहा जाता है। ठीक ऐसे ही हम मनुष्यों में भी ये चीज पाई गई है। सर्दियों में अधिकतर लोगों को प्यास कम लगती है सर्दी के कारण से या फिर ज्यादा ऑयली खाने से, लेकिन गर्मियों में जस्ट इसका अपोजिट होता है। पानी की प्यास बहुत लगती है, पसीना हमारे बॉडी से निकलता है। इसका मतलब होता है कि हमें पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है। तो जो हमने खाया होता है गर्मियों में गर्म चीजें, वो पसीने के रूप में निकलती हैं। लेकिन जो हमने पानी पिया होता है, वही पानी स्टोर हो करके हमें सर्दियों में हाइड्रेट रहने के लिए काम में आता है। इसीलिए गर्मियां हैं तो पानी का महत्व आज हम आपके लिए बताने आए हैं। गर्मियों के मौसम में हमारे शरीर में पसीने के रूप में बहुत सारा पानी और खनिज तत्व जैसे मिनरल बाहर निकल आते हैं। ऐसे समय में पानी केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं होता है, बल्कि शरीर को स्वस्थ रखने का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन जाता है। योग और सही मात्रा में पानी का सेवन मिलकर शरीर को अंदर से संतुलित रखते हैं। जैसे शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखने के लिए ये सबसे ज्यादा मदद करता है। जिन लोगों को हमेशा से थकान, कमजोरी एंड डिहाइड्रेशन होता रहता है, उसके लिए पानी पीना अति आवश्यक हो जाता है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि जरा सा कुछ हैवी खा लिया, जरा सा कुछ ऑयली खा लिया तो पेट खराब हो जाता है। ये अधिकतर उन लोगों को होता है जो गर्मियों में पानी कम और खाना ज्यादा खाते हैं। पाचन तंत्र को हमेशा से बेहतर बनाने के लिए भी पानी का सेवन हमें जरूर करना चाहिए। जिन लोगों को लगता है हमारी स्किन हमेशा से जवा रहे, हम 45, 46, 47 की एज में भी 25 की लगे, तो उन महिलाओं को भी पानी की मात्रा को अपने जीवन में बढ़ा देना चाहिए, जिससे हमारी स्किन में निखार और ताजगी हमेशा बनाए रखता है। मांसपेशियों और जोड़ों के सही कार्य में ये सहायक होता है। अब आते हैं योग के दौरान शरीर में ऊर्जा बनाने रखने के लिए भी पानी का महत्व। योग को करते करते यदि हमें प्यास लग जा रही है, योगा को करते करते अगर हमें बीच में पानी की प्यास लग जा रही है, तो थोड़ा सा विश्राम करके हम पानी ले सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण की बात यह है कि योग के साथ साथ पानी को भी हमें अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। योग करने से लगभग 20 से 30 मिनट पहले थोड़ा सा पानी पी सकते हैं एंड योग के तुरंत बीच में पानी बिल्कुल न पिए, थोड़ा सा बचे। योग समाप्त करने के बाद धीरे धीरे पानी पिए। बहुत ठंडा पानी तुरंत पीने के बजाय सामान्य तापमान का पानी बेहतर रहता है। गर्मियों में हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए एक छोटे से योगासन है, जिसको करने से साथ ही साथ हमें पानी को पीने से बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे पहले सूर्य नमस्कार। पूरे शरीर का व्यायाम एक सूर्य नमस्कार के माध्यम से हो जाता है, शरीर में ऊर्जा और लचीलापन बढ़ाता है। दूसरा आता है ताड़ासन। शरीर का संतुलन सुधारता है और रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है। फिर उसके बाद आता है भुजंगासन, पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में सहायक होता है। और उसके बाद आता है वज्रासन, भोजन करने के बाद किया जाने वाला सबसे आसान यह आसन होता है, जो पाचन में मदद करता है। उसके बाद आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसे हमने आपको कई बार बता के रखा है कि मन को शांत करता है, श्वसन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करता है। शीतली प्राणायाम, जो बिल्कुल भी, ये मैं आपको बता दूं कि इतना ज्यादा आवश्यक होता है गर्मियों में, जिसको करने से गर्मी में शरीर को ठंडक और मानसिक शांति देने वाला यह प्राणायाम माना जाता है। सुबह उठकर सामान्यता से पानी पिएं, फिर हल्का योग और प्राणायाम करें, ये एक स्वस्थ दिनचर्या होती है। दिन भर थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी लेते रहें और अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज ना करें, प्यास, थकान, कमजोरी। यदि आपको याद न रहे तो थोड़ा सा अपने लिए सचेत हो जाएं, यानी कि टाइमर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी शरीर की जरूरत है और योग शरीर व मन का संतुलन, दोनों का साथ गर्मियों में हमें स्वस्थ, ऊर्जावान और प्रसन्न बनाए रखता है। ऐसे ही बहुत सारी जानकारियों के लिए हम फिर से मिलेंगे एक नए योग सीरीज में। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, योगशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। योग जो मस्तिष्क को लेकर के हमारे पूरे शरीर की देखभाल करता है, योग का अर्थ यही होता है कि शरीर को मस्तिष्क से जोड़ना, और उसके लिए जरूरी है हम अपने मस्तिष्क को सर्वप्रथम एकाग्र रख सके। और मस्तिष्क को एकाग्र रखने के लिए ध्यान योग बहुत जरूरी है। तो आइए योग की शुरुआत एक उच्चारण से करते हैं।

और इसमें जो भी लोग नित नियम योगा करते हैं उनके लिए थोड़े से प्रिकॉशन करना जरूरी है, क्योंकि जब हम योगा करते हैं तो हमारी बॉडी ऑलरेडी फिर से हीट होने लगती है, जिसके कारण से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसीलिए गर्मी में किए जाने वाले योग भी कुछ अलग हैं और उनसे कुछ सावधानियां भी, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले है, सुबह जल्दी उठ करके ही योग कर लेना चाहिए। जैसे सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच योग करना सबसे अच्छा समय माना गया है। इस समय मौसम ठंडा होता है और हमारा शरीर भी फ्रेश रहता है। शरीर को हाइड्रेट रखें, योग से पहले और बाद में पर्याप्त पानी पिएं। नींबू पानी, नारियल पानी या छाछ भी फायदेमंद होता है, लेकिन ध्यान रखें, योग करने के तुरंत बाद नहीं, थोड़ा सा समय का अंतराल 20 मिनट 25 मिनट के बाद में आप नींबू पानी, नारियल पानी या छाछ ले सकते हैं। दिन में, सुबह, रात में हल्का ही भोजन करें। योग से पहले भारी या तला भुना खाना न खाएं। फल, सलाद और हल्का भोजन ही लें। कूलिंग योगा करें। जैसा कि बहुत सारी सीरीज में हमने आपको बताया है, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, बालासन, शवासन, ताड़ासन, ये सारे वो प्राणायाम और आसन हैं जो गर्मी में हमारे पूरे शरीर को ठंडक पहुंचा करके फायदा करते हैं। साथ ही साथ कॉटन के हल्के कपड़े और शरीर को ठंडा रखते हैं और पसीना जल्दी सूखता है, इसीलिए गर्मी के दिनों में जब हम योग करते हैं तो ढीले और सूती कपड़े ही पहनने चाहिए। खुली और ठंडी जगह ही चुनें योग करने के लिए। हवादार कमरे या फिर पेड़ पौधों वाली शांत जगह पर ही बैठ करके योग करें। ज्यादा कठिन योगासन से बचें। तेज धूप या बहुत ज्यादा मेहनत वाले आसन गर्मी में थकान, चक्कर ला सकते हैं। जैसे सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, ये थोड़े से हैवी आसन होते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं और पूर्ण रूप से इसे कर रहे हैं और इसको करने के बाद में कोई भारीपन या चक्कर नहीं आ रहा है, तो ही आप नियमित रूप से इसको अपनी दिनचर्या में ला सकते हैं, वरना आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। योग के बाद तुरंत तेज धूप में न जाएं, कुछ देर आराम करें ताकि शरीर का तापमान सामान्य हो जाए। गर्मी में कुछ ऐसे प्राणायाम हैं जो और फायदेमंद होते हैं, जैसे अनुलोम विलोम, भ्रामरी, शीतली, जो मन को शांत करने के साथ साथ शरीर को भी ठंडा रखने में मदद करते हैं। गर्मी में योग करें शांत मन, ठंडे वातावरण में, जिससे शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। योग से पहले चेहरा, हाथ पैर को धो लेना चाहिए, जिससे शरीर को ठंडक मिलती है और आराम जल्दी मिलता है और साथ ही साथ आलस भी कम होता है। ज्यादा देर खाली पेट ना रहें। पूरी तरह भूखे रहकर योग करने में कमजोरी महसूस हो सकती है। जरूरत हो तो आप सुबह एक केला या कुछ भीगे बादाम खा सकते हैं। नींद पूरी लें। कम नींद होने पर भी गर्मी में जल्दी थकान और चिड़चिड़ापन होता है। बहुत सबसे महत्वपूर्ण बात, योग करने से पहले मेडिटेशन जरूर करें। ध्यान 5 से 10 मिनट ध्यान करने से मन शांत रहता है और स्ट्रेस कम होता है। सांसों पर ध्यान धीरे धीरे लगाएं, जैसे धीरे धीरे और गहरी सांस लेने से शरीर में ठंडक और ऊर्जा बनी रहती है। योग के तुरंत बाद ठंडा पानी बिल्कुल ना पिएं। सामान्य या हल्का ठंडा पानी शरीर के लिए बेहतर होता है। योग के बाद थोड़ा वॉक करना जरूरी होता है। यदि आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं तो अपने ही घर में, छत पर या आगे कहीं पे भी आप अपने घर के आसपास थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं, जिससे आपकी हल्की वॉक शरीर को रिलैक्स करती है और फ्रेशनेस भी देती है। गर्मी में ये चीजें आप ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, खीरा, तरबूज, पुदीना, दही और नारियल पानी। तरबूज के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि आप मार्केट से लेकर के आ रहे हैं तो तुरंत ही तरबूज को काट करके ना खाएं। उसे कुछ देर के लिए ठंडे पानी में या फिर किसी पानी, नॉर्मल पानी में भी आप रख सकते हैं और उसके बाद ही आप उसका सेवन करें। ज्यादा चाय, कॉफी, जंक फूड, धूप में तुरंत एक्सरसाइज, बहुत टाइट कपड़े, इन सब चीजों से गर्मी में आप बच सकते हैं। 5 मिनट के लिए आप जो आपका समर योगा रूटीन होगा वो होने वाला है 5 मिनट डीप ब्रीथिंग, 10 मिनट हल्के आसन।

5 मिनट प्राणायाम, 5 मिनट मेडिटेशन और अंत में शवासन। योग केवल शरीर को नहीं मन को भी ठंडक देता है। इसीलिए इस दिनचर्या को हम पूरी गर्मी भर अपना करके अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई जानकारी, एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए करें योग, रहे निरोग। स्वास्थ्य को बनाने के लिए और अच्छा, उत्तम और अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए हम रोज सवेरे करते हैं प्राणायाम और आसन। प्राणायाम और आसन नित सवेरे करने से हम स्वस्थ तो रहते हैं, जबकि हमारी मन की सारी क्रियाओं को एक ताकत मिलती है, एक सुकून मिलता है और हमें जीवन को जीने की नई कला मिलती है। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना प्राणायाम। नमस्कार दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि योग पाठशाला में सवेरे नित प्रतिदिन आकर के आप हमेशा की तरह योग प्राणायाम करते होंगे। तो आइए दोस्तों आज हम ले चलते हैं आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास की ओर और साथ में हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि नाड़ी शोधन प्राणायाम है क्या। यहाँ नाड़ी शोधन का तात्पर्य नाड़ियों के शुद्धिकरण से है। शरीर की तंत्रिका प्रणाली में किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न होने से तरह तरह के शारीरिक व्यवधान उत्पन्न होते हैं। योग से संबंधित हमारे कई ग्रंथों में नाड़ियों में शुद्धिकरण हेतु प्राणायाम का वर्णन किया गया है, जैसे शिव संहिता, हठ प्रदीपिका, घेरण संगीता आदि। वैसे तो प्राणायाम की पूरी क्रिया का सफलता पूर्वक करने से ही हमें उसका लाभ मिलता है, परंतु नाड़ी शोधन प्राणायाम का विशेष ख्याल रखा जाए तो बाकी के प्राणायामों से ज्यादा लाभ उठाया जा सकता है। प्राणायाम का लाभ तो हमें शुरू से ही मिलने लगता है, तब भी इसमें दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है। इसकी ऊर्जाओं को संवेदनशीलता, एकाग्रता और सूक्ष्मता के साथ श्वास प्रश्वास को स्थिरता प्रदान करने का अनुशासित करने के लिए प्रभावित करना होता है, ताकि श्वास, प्राण और मस्तिष्क को आध्यात्मिक बनाया जा सके। आत्मा के शुद्धिकरण की यह छोटी परंतु महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। सभी प्राणायामों में नाड़ी शोधन प्राणायाम सबसे अधिक संवेदनशील, जटिल और सूक्ष्म है। जब नाड़ी को सूक्ष्म स्तर पर किया जाता है तो यह आत्मभूपति की तरह ले जाता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए पहले आप अपनी उंगलियों की दक्षता बढ़ाएं और दूसरा नासिका झिल्लियों में संवेदनशीलता का विकास करें। तो आइए दोस्तों नाड़ी शोधन में सबसे पहला प्राणायाम जो है वह है अनुलोम विलोम। नाड़ी शोधन प्राणायाम में अनुलोम विलोम अभ्यास एक। आइए हम विधि में चलते हैं और सबसे पहले हम बताएंगे कि आपको यह प्राणायाम कैसे करना है। सुखासन के किसी भी एक आसन में बैठ जाएं, जैसे पद्मासन, सिद्धासन और ध्यान योग की मुद्रा में, जिसमें कम से कम कुछ देर आराम से बैठ सके। मेरुदंड, गर्दन व सिर एक सीध में रखें। प्राणायाम के लिए तैयार रहें। बायां हाथ घुटने पर रखिए। दाएं हाथ की उंगलियों को दोनों भवों यानी मस्तक के बीचों बीच रखें। दोनों कंधे समांतर होने चाहिए। अब दाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा के बीच यानी कि मस्तिष्क के बीच में रखें एवं नासिका के दाहिनी तरफ अंगूठे व बाएं तरफ के नासिका रंध्र के बाहरी भाग पर अनामिका उंगली को रखें। दाएं नासिका छिद्र को अंगूठे के दबाव से डालकर बंद करें। बाएं नासिका छिद्र से श्वास पूरक लीजिए और उसी नासिका छिद्र से रेचक करें यानी कि श्वास को छोड़ें। पूरा ध्यान श्वास की तरफ रखें। पूरक एवं रेचक मिलाकर एक चक्र पूरा हुआ यानी कि
श्वास को लेना है और श्वास को छोड़ना है। इस प्रकार 10 से 15 बार यह चक्र आपको करना है। अब अनामिका उंगली से बाईं नासिका छिद्र बंद करें और दाहिनी तरफ से उपरोक्त जो की क्रिया अभी हमने बताई वह 10 से 12 बार आपको करनी है। आइए दोस्तों, अब हम सावधानियां बता देते हैं। श्वास क्रिया ध्वनि रहित होनी चाहिए, यानी कि आवाज जो है नहीं होनी चाहिए। जब हम श्वास लेते हैं तब भी, श्वास छोड़ते हैं तब भी आपको आवाज नहीं आनी चाहिए। श्वास लेते समय आवाज नहीं होनी चाहिए। दोनों नासिका छिद्रों से बराबर लय बनाते हुए ही श्वास लें। सीना कम ज्यादा न फैलाएं, सीधे बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, गर्दन बिल्कुल सीधे, हाथ और नासिका के मध्य 80 सेंटीमीटर का आपको बनाना है एक वर्गाकार। समय 10 से 15 मिनट तक रोजाना दोहराएं। थकान महसूस होने पर श्वासन कर लें, यानी कि विश्राम कर लें। इस प्राणायाम से उंगलियां और नासिका नलिका का अभ्यास हो जाता है, ताकि वे अधिक से अधिक लाभ प्राप्ति कर सकें। तो ये था नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास, यानी पहला अभ्यास अनुलोम विलोम। द्वितीय अभ्यास भी हम करेंगे जो कि है कपालभाति। कपालभाति दोस्तों वैसे तो बहुत ही सरल और बहुत ही एक उपयुक्त प्राणायाम है। नाड़ी शोधन का यह दूसरा प्राणायाम कपालभाति। आइए दोस्तों हम विधि जान लेते हैं। कपालभाति करने से पहले सबसे पहले आप सुखासन या फिर किसी भी एक आसन में, यानी पद्मासन, सिद्धासन या फिर ध्यान योग की मुद्रा में बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेगी, गर्दन बिल्कुल सीधी। जब आप सिंहासन पर बैठ जाएंगे आंखें बंद, तत्पश्चात आपको श्वास जो है वो ले करके अंदर की तरफ लेते हुए बाहर की तरफ नौसिका से श्वास को बार बार लगातार छोड़ना है। उसके लिए हम आपको एक उदाहरण बताते हैं। जैसे यदि हम किसी मोमबत्ती को बुझाते हैं तो हम सामान्यतः फूंक मारकर मोमबत्ती को बुझाते हैं। आप ये सोचें कि यह मोमबत्ती को नाक से, यानी नौसिका की श्वास से आपको बुझानी है, तो स्वतः ही श्वास बाहर निकलेगी। बस वही प्रक्रिया कपालभाति की प्रक्रिया होती है, यानी एक मोमबत्ती को नौसिका की श्वास से बुझाना है। आप यह अभ्यास करके देखें, यह उदाहरण अपना के देखें। कपालभाति जो लोग नहीं कर पाते हैं स्वतः ही करने लगेंगे। इस प्रक्रिया को आराम से करना है। कंधे अपने स्थान पर ही रहेंगे, यानी कंधों को हमें गोल गोल घुमाना नहीं है, ना ही हिलाना डुलाना है। एक स्थिति में बैठ करके कंधे बिल्कुल सामान्य रहेंगे, आंखें बंद और हाथों की मुद्रा पर बैठ करके, सुखासन में बैठ करके आंखें बंद, और हम इस प्रक्रिया को करेंगे। सांस को लेंगे, श्वास को नौसिका की तरफ से बाहर छोड़ना है, फिर लेना है, फिर हमें छोड़ना है, जिससे आपको लगेगा कि पेट हमारा अंदर बाहर स्वतः ही चल रहा है, जिसको कपालभाति कहते हैं। यह नाड़ी शोधन का दूसरा अभ्यास है दोस्तों, जिसको हम कपालभाति के रूप में जानते हैं। कपालभाति की सावधानियां जो हैं, वह यह हैं कि सबसे पहले तो श्वास क्रिया जो रहेगी ध्वनि रहित होनी चाहिए, जिसमें दोनों नासिकाओं के छिद्रों से जो लय आएगी, श्वास की लय आएगी वह बराबर आएगी। यानी कि ये नहीं होगा कि एक नासिका से श्वास हम लेंगे और हम जब छोड़ेंगे तो पेट से पीछे की तरफ धक्का देने के बाद में एक ही नासिका से श्वास निकले, नहीं, श्वास की लय बराबर होनी चाहिए। सीना कम या ज्यादा न फैलाए, बिल्कुल सीधे एक ही सीट पर बैठना है। समय 5 से 10 बार आपको दिन प्रतिदिन यह करना है। अगर आपको थकान महसूस हो रही है तो एक बार शवासन में बैठ जाएं
और आराम से श्वास को लेते हुए मध्यम गति से श्वास लें और मध्यम गति से श्वास को छोड़ना है। तत्पश्चात आप देखेंगे कि यह प्राणायाम, यह आसन यानी नाड़ी शोधन आसन किस तरीके से आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होता है। जो साधक ब्रह्मचर्य को धारण कर प्राणायाम की क्रियाएं करता है, उसकी कुंडली जागरण की क्रिया स्वतः होने लगती है। इसलिए दोस्तों, करें योग, रहें निरोग। नमस्कार दोस्तों, मैं योग की योग पाठशाला में समता आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज दोस्तों, हम ऐसी एक्सरसाइज के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि आम तौर पर सभी को ये प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे आप सबसे पहले आप उनका नाम जान लें। नाम सुनने में तो आपको लगेगा कि ये कोई सांप से जुड़ा हुआ है, यानी कि कोबरा आसन, और इसका जो रियल नेम है वो है भुजंग आसन। भुजंग आसन को ही कोबरा आसन कहा जाता है, और देखा जाए तो यह बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है हमारी रीढ़ की हड्डी के लिए, हमारी और सारी मांसपेशियों के लिए, और खासकर जहाँ पर हमारे धड़ से नीचे का हिस्सा होता है वहाँ पे। तो आइए हम आज की जो कि एक्सरसाइज की सीजन में हम करवाने जा रहे हैं आपको कोबरा आसन। भुजंग आसन दो शब्द यानी कि भुजंग और आसन से मिलकर बना हुआ है, और इंग्लिश में इस आसन को कोबरा पोज भी कहते हैं। इस योग में सांप की तरह अपने धड़ को आगे की दिशा में उठाकर रखना होता है। अगर आपको पेट संबंधी कोई भी समस्या है तो आप इसे रोज कर सकते हैं। आइए हम आपको बताएंगे कि कोबरा पोज कैसे किया जाता है। कोबरा पोज करने की शुरुआत करें, अपने दोनों हाथों को कंधों के पास रखें, आपकी कोहनी मुड़ी हुई होनी चाहिए, पेट के नीचे का हिस्सा जमीन पर लगा होना चाहिए, और हाथों को शरीर के ऊपरी हिस्से को ऊपर की तरफ उठाएं और ऊपर की ओर देखने की कोशिश करें। यह हो गया कोबरा यानी भुजंग आसन। अब हम जान लेते हैं कि भुजंग आसन को करने से क्या लाभ मिलता है। इस आसन के अभ्यास से पेट से संबंधित सभी समस्याएं तो दूर होती ही हैं। साथ में यदि आपको गैस की समस्या होती है, आपको एसिड बनता है, तो भी यह बहुत आवश्यक होता है और बहुत ही लाभप्रद होता है। भुजंग आसन या कोबरा पोज का अभ्यास करने से स्पाइन, ग्लूटियंस, मसल्स, आर्म्स, कंधे और जांघें मजबूत होती हैं। यह शारीरिक संतुलन बनाता है। भुजंग आसन करने से कमर के दर्द को भी ठीक करने में काफी राहत और मदद मिलती है। तो ये था दोस्तों भुजंग आसन करने के आपको लाभ बताए और इसको करने के क्या फायदे होते हैं वो। आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि भुजंग आसन को करने से कौन सा रोग ठीक होता है। भुजंग आसन यानी कि कोबरा आसन करने से पित्ताशय की पथरी, यानी आपकी अगर पित्ताशय में पथरी है और जिसके कारण से सूजन होती रहती है, दर्द बना रहता है, तो यह आसन लगातार नियमित रूप से करने से यह सारी समस्याएं दूर होती हैं और दर्द को काफी आराम मिलता है यह व्यायाम करने से। इसमें पेट पर गहरा खिंचाव पड़ता है और आपके कमर और ऊपरी हिस्से को मजबूती प्राप्त होती है। पेट के बल लेट फिर कंधों के बल और हाथों को जमीन पे रखें, जिसकी वजह से जब हमारे कंधों पर बल पड़ता है, हमारे पेट के निचले हिस्से पर बल पड़ता है, तो यह आसन हमारे लिए महत्वपूर्ण आसनों में से एक बन जाता है। कोबरा आसन वैसे तो सुनने में आपको ये लग रहा होगा कि यह एक सांप का नाम है, जी हाँ, लेकिन जब हम इसे करेंगे तो भी इसका जो देखने में साफ आपको लगेगा कि वाकई में यह एक

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: नमस्कार श्रोताओं, सुबह की भोरी भोरी की पहली किरण के साथ मैं आपकी अपनी आरजी आकांक्षा हाजिर हूं आपके आध्यात्मिक कार्यक्रम यानी पहली किरण में। आज का दिन बहुत ही पवित्र और पावन है, कारण आज है सीता नवमी, यानी वो दिन जिस दिन माता सीता का इस धरती पर अवतरण हुआ था। सीता हिंदू धर्म की एक प्रमुख देवी और महाकाव्य रामायण की नायिका है, जिन्हें लक्ष्मी का अवतार और राम की पत्नी माना जाता है। राजा जनक की पुत्री सीता साहस, पवित्रता और समर्पण का प्रतीक है। उनके जीवन में 14 वर्ष का वनवास, रावण द्वारा अपहरण और अग्नि परीक्षा जैसी चीजें शामिल हैं। तो बहुत कुछ है जो हम इनके जीवन से शिक्षा के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम इन्हीं के जीवन और जीवन शैली पर चर्चा करेंगे आपके सुबह के कार्यक्रम यानी पहली किरण में। फिलहाल चलते हैं एक प्यारी सी देवी गीत की ओर।

जानकी, मैथिली और वैदेही, इन सभी नामों से जानी जाती हैं माता सीता। उन्हें पृथ्वी की संतान माना जाता है, जिन्हें राजा जनक ने एक हल्की नली में पाया था। ये एक आदर्श पत्नी और सद्गुणों की प्रतीक हैं, जिन्हें देवी रूप में पूजा जाता है, जो अपार कठिनाइयों को धैर्यपूर्वक सहन करती हैं। और चूंकि कहीं ना कहीं ये पृथ्वी की पुत्री यानी धरा धरती माता की गोद से उत्पन्न हुई, तो जिस तरह से जो सहन शक्ति हम माता धरती में देखते हैं, उसी तरह से इनके भीतर भी इनके पूरे जीवन काल में सहन शक्ति देखी जाती है, जो कि महाकाव्य यानी कि रामचरित के कई सारे दृश्यों में पढ़े जा सकते हैं। अब बात करेंगे रामायण की, जिसमें माता सीता के उस गुण की व्याख्या की गई है जिसे बोला गया है पवित्रता। यानी कि रामचरितमानस में माता सीता के सहन के गुण को ऊपर रखा गया, केंद्र बिंदु कहीं ना कहीं बनाया गया है। और वहीं जो कि ऋषि वाल्मीकि द्वारा रचित मानी जाती है, उसमें केंद्र बिंदु माता की पवित्रता को बनाया गया है। रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित है। कुछ कथाओं में माता सीता को माया सीता कहते हैं, यानी छाया या फिर भ्रमित सीता, ऐसे भी उल्लेख पाए जाते हैं, जिनका अपहरण कर लिया गया था, जबकि वास्तविकता में सीता सुरक्षित रही। ये सारी चीजें किंवदंतियों में पाई जाती हैं, ऐसा कहा जाता है। और सीता नवमी और विवाह पंचमी जैसे त्योहारों के साथ इन्हें विशेष रूप से रामानंदी संप्रदाय के भीतर सुंदरता और भक्ति की देवी के रूप में पूजा जाता है और ये दिवस मनाया जाता है। और अगर माता सीता की बात करें तो विपरीत परिस्थितियों में भी स्वाभिमान नहीं छोड़ा इन्होंने। और इनसे लेने वाली शिक्षा की अगर बात करूं तो EQ यानी कि इमोशनल क्वांटिटी जो इनमें है, इमोशनल इंटेलिजेंस की अगर बात करें, तो हमें अपनी भावनाएं समझने और संभालने की कला सिखाती हैं माता सीता। जैसे कि टॉक्सिक रिश्तों परिस्थितियों में सीमाएं तय कर पाना, हम इनके जीवन की अगर चीजों को देखेंगे, पढ़ेंगे, इनकी चीजों को समझेंगे, तो वहां से हमें ये सीख प्राप्त होगी। आत्मविश्वास कैसे बढ़ाना है और निर्णय स्पष्ट किस प्रकार से रखना है, ये हम रामचरितमानस के माता सीता के पात्र से या फिर रामायण के माता सीता के पात्र से बखूबी सीख सकते हैं। चलिए चलते हैं माता सीता की ध्यान की ओर, एक प्यारी सी देवी गीत की ओर।

श्रोताओं, आपने वो कथा तो सुनी ही होगी जो कि पूरे के पूरे 14 वर्षों के वनवास की है। श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं जानकी, भूमिपुत्री, जनकात्मजा, रामवल्लभा, भूसुता, मैथिली, सिया आदि नाम वाली माँ सीता की, जिन्हें माना जाता है लक्ष्मी का अवतार। रामायण और रामचरितमानस जैसे महाकाव्यों में इनका उल्लेख पाया जाता है। इसलिए आज के आध्यात्मिक शो यानी कि पहली किरण में आज मैं लेके आई हूँ माता सीता की जीवन शैली और उनसे जुड़ी हुई कुछ कलाओं को, उनके कुछ गुणों को, जिसको हम अपने जीवन में उतार कर आत्मसात करके अपने जीवन को और सरल और सुगम बना सकते हैं।

अगर इनके जीवन साथी की बात की जाए तो वो थे प्रभु श्री राम। इनके दो संतान थी लव और कुश। माता पिता की बात करें तो जनक जी इनके पिताजी थे और सुनैना इनकी माता थी। जैसा आप सभी जानते हैं कि सीता रामायण के अनुसार मिथिला के नरेश जनक की ज्येष्ठ पुत्री व अयोध्या के नरेश दशरथ की ज्येष्ठ पुत्र यानी राम की भार्या थी, जिन्हें त्रेता में लक्ष्मी का अवतार कहा गया है। रामायण के अनुसार राजा जनक के खेतों में हल जोतते समय एक कलश से अटक गया था उनका हल। इन्हें उस कलश में पाया गया था। राजा जनक और रानी सुनैना ने गर्भ में इनके कलाओं एवं आत्मा की दिव्यता को महर्षि याज्ञवल्क्य द्वारा स्थापित किया। उसके बाद सुनैना ने अपनी मातृत्व को स्वीकार किया और पालन किया। उर्मिला इनकी छोटी बहन थी। और त्रेता युग में जब बहुत ही विकट समस्या सामने आई तो माना जाता है कि राक्षस लोग इस तरह उत्पात मचा रहे थे कि सभी देवताओं का वो मर्दन करते जा रहे थे और उससे उनके जो रक्त होते थे उसको भर भर के उन्होंने जनक की भूमि पर गिराया था, जिसकी वजह से सूखा पड़ गया था। उस वक्त जरूरत थी कुछ ऐसे चमत्कार की जिससे भूमि फिर से हरी भरी हो सके। तो फिर राजा जनक और उनकी पत्नी सुनैना ने हल चलाया और वहां से उत्पत्ति हुई माता सीता की, जो कि साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। और उसके बाद हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली। राजा जनक की पुत्री होने के कारण इन्हें जानकी, जनकात्मजा और जनक सुता भी कहते हैं। मिथिला की राजकुमारी होने के कारण ये मैथिली नाम से भी प्रसिद्ध है। भूमि में पाए जाने के कारण इन्हें भूमि पुत्री या भूसुता भी कहा जाता है। सीता जी का जन्म वैशाख शुक्ल नवमी को मिथिला में हुआ।

श्रोताओं, शो चल रहा है आपका भोरी भोरी का पहली किरण। जी हाँ, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा, और आज हम बात कर रहे हैं माता सीता की। अभी हमने कुछ बातें की और अब बात करेंगे माता सीता के विवाह की। महाराज जनक ने सीता स्वयंवर की घोषणा की, जिसमें राम और लक्ष्मण भी उपस्थित थे। महाराज जनक ने स्वयंवर के लिए शिव धनुष उठाने के नियम की घोषणा की। सभा में उपस्थित राजकुमार, राजा व महाराजा धनुष उठाने में विफल रहे। श्री राम जी ने धनुष को उठाकर भंग किया। इस तरह माता सीता और प्रभु श्री राम का विवाह होना निश्चित हुआ। इसी के साथ उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से, और मांडवी जो कि माता सीता की बहन थी का विवाह भरत से। साथ ही साथ श्रुतकृति का विवाह शत्रुघ्न से होना निश्चय हुआ। विवाह उपरांत सीता अयोध्या आई व उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय बीतने लगा। सीता की रीति से अगर कुछ सीखने की बात करें तो कर्तव्य निष्ठा इन्होंने बखूबी निभाया है अपनी लाइफ में। परिवार और कर्तव्य के प्रति निष्ठा, प्रोफेशनल एथिक्स, अकाउंटेबिलिटी यानी भरोसेमंद व्यक्तित्व, टीम में सम्मान और दीर्घकालिक सफलता और स्थिरता, ऐसे गुण अगर आपको सीखना है तो माता सीता के जीवन से बखूबी आप सीख सकते हैं।

श्रोताओं, अभी आपने जाना माता सीता के बारे में, उनके जन्म के बारे में, उनके विवाह के बारे में। अब बारी आती है उस पल की जब 14 वर्ष का वनवास आया। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, कौशल्या 14 वर्ष का वनवास आया। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। राजा दशरथ द्वारा पत्नी कैकेयी को दिए गए वचन के कारण

श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ। इस प्रकार राम व लक्ष्मण के साथ माता सीता चित्रकूट पर्वत स्थित मंदाकिनी तट पर वनवास के लिए गईं। इसके बाद गोदावरी नदी के तट पर पंचवटी में इन्होंने वास किया। पंचवटी में लक्ष्मण से अपमानित शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से अपनी व्यथा सुनाई। रावण ने मारीच के साथ मिलकर सीता अपहरण की योजना रची। इसके अनुसार मारीची सोने के हिरण का रूप धर राम व लक्ष्मण को वन में ले गया और उनकी अनुपस्थिति में रावण ने सीता का अपहरण किया। आकाश मार्ग से जाते समय पक्षीराज जटायु के रोकने पर रावण ने उनके पंख काट दिए। जब कोई सहायता नहीं मिली तो माता सीता ने अपने पल्लू से एक भाग निकालकर उसमें अपने आभूषणों को बांधकर नीचे डाल दिया। नीचे वन में कुछ वानर इसे अपने साथ ले गए। रावण ने सीता को लंका के अशोक वाटिका में रखा और त्रिजटा के नेतृत्व में कुछ राक्षसियों की उपस्थिति में इनकी देखरेख की गई।

यहाँ पर अगर मैं आपसे माता सीता के जीवन से कुछ गुण सीखने की बात करूंगी तो वो है धैर्य। आजकल के लाइफ में स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो यहाँ से हम सीख सकते हैं। अशोक वाटिका में अटूट धैर्य की आवश्यकता थी जो माता सीता ने दिखाई। माइंडफुलनेस स्ट्रेस मैनेजमेंट तकनीक माता सीता के जीवन से हम सीख सकते हैं। दबाव में भी शांति और केंद्रित कैसे रहते हैं ये हम माता सीता के जीवन से सीखते हैं। पढ़ाई काम में निरंतरता और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए माता सीता का अनुसरण करें। चलिए फिर चलते हैं एक प्यारे से देवी गीत की ओर।

जी हाँ श्रोताओं, अभी हम चलेंगे उस ओर जब एंट्री होती है हमारे महाबली की यानी कि हनुमान जी की। जी हाँ, हमने जाना कि माता सीता का जन्म कैसे हुआ, उनका पालन पोषण कैसे रहा, फिर उनका विवाह, फिर 14 वर्षों का वनवास, उसके बाद में रावण द्वारा इनका अपहरण, और अब बारी आती है हनुमान जी से इनके भेंट की। जैसा कि रामचरितमानस में और रामायण में पढ़ने पे प्राप्त होता है कि सीता जी की वन वन खोज करते राम जटायु तक पहुंचे। जटायु ने उन्हें सीता जी को रावण द्वारा दक्षिण दिशा की ओर लिए जाने की सूचना दी। राम लक्ष्मण सहित दक्षिण दिशा में चले। आगे चलकर वे हनुमान जी से मिले जो उन्हें ऋष्यमुख पर्वत पर स्थित अपने राजा सुग्रीव के पास ले गए। राम जी संग मैत्री के बाद में सुग्रीव ने सीता जी के खोज में चारों ओर वानर सेना की टुकड़ियां भेजी। वानर राजकुमार अंगद के नेतृत्व में दक्षिण की ओर गई टुकड़ी में हनुमान, नील, जामवंत प्रमुख थे और वे दक्षिण स्थित सागर तट पहुंचे। तट पर उन्हें जटायु का भाई संपाति मिला जिसने उन्हें सूचना दी कि सीता माता लंका स्थित एक वाटिका में है।

श्रोताओं, इस प्रकार हनुमान जी को जामुन जी द्वारा उनकी शक्ति का भान कराया गया। हनुमान जी समुद्र लांघ कर लंका पहुंचे। लंकनी को परास्त कर नगर में प्रवेश किया। वहां सभी भवन और अंतःपुर में सीता माता को ना पाकर वे अत्यंत दुखी हुए। अपने प्रभु श्री राम जी को स्मरण व नमन कर अशोक वाटिका पहुंचे। वहां धुएं के बीच चिंगारियों की तरह राक्षसियों के बीच एक तेजस्विनी स्वरूपा को देख सीता जी को पहचाना और हर्षित हुए। उसी समय रावण वहां पहुंचा और सीता से विवाह का प्रस्ताव किया। सीता ने घास के एक टुकड़े को अपने और रावण के बीच रखा और कहा, हे रावण, सूरज और किरण की तरह राम सीता अभिन्न हैं। राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में मेरा अपहरण कर तुमने अपनी कायरता का परिचय दिया है। राक्षस जाति के विनाश को आमंत्रण दिया है। रघुवंशियों की वीरता से अपरिचित होकर तुमने ऐसा दुस्साहस किया है। तुम्हारे श्री राम जी की शरण में जाना इस विनाश से बचने का एकमात्र उपाय है, अन्यथा लंका का विनाश निश्चित है। इस घटना से निराश रावण ने राम को लंका आकर माता सीता को मुक्त कराने के लिए 2 माह की अवधि दी और साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर श्री राम 2 माह की अवधि तक नहीं आए तो उसके उपरांत रावण व सीता का विवाह होना निश्चय है। रावण के लौटने पर सीता जी बहुत दुखी हुई। त्रिजटा राक्षसी ने अपने सपने के बारे में बताते हुए धीरज धराया माता सीता को और कहा, श्री राम जी रावण पर विजय पाकर उन्हें अवश्य मुक्त कराएंगे। चलिए फिलहाल हम सुन लेते हैं एक प्यारा सा भजन जो कि श्री राम जी को अर्पित है।

त्रिजटा राक्षसी के धीरज धराने के उपरांत हनुमान जी ने सीता जी का दर्शन किया और अपने लंका आने के कारण को बताया। सीता जी राम व लक्ष्मण की कुशलता पर विचार करने लगी। श्री राम जी की मुद्रिका देकर हनुमान जी कहते हैं कि वे माता सीता को अपने साथ श्री राम जी के पास लिए चलते हैं। सीता जी हनुमान को समझाती हैं कि नहीं, ये अनुचित है, क्योंकि जब तक मेरे प्रभु नहीं आएंगे तब तक मेरा जाना उचित नहीं होगा। मैं तुम्हें भले ही पुत्र मानती हूँ पुत्र, पर समाज की नजरों के लिए ये उचित नहीं है। रावण ने मेरा हरण कर रघुकुल का अपमान किया है, अतः लंका से अगर कोई मुझे मुक्त कराएगा तो वो मेरे प्रभु श्री राम ही होंगे, और ये उनका कर्तव्य भी है। विशेषता रावण के 2 माह की अवधि का श्री राम जी को स्मरण कराने की विनती करते हुए माता सीता ने हनुमान को आदेश दिया। हनुमान ने रावण को उसके दुस्साहस के परिणाम की चेतावनी दी और लंका को जलाया। माता सीता से चूड़ामणि व अपनी यात्रा की अनुमति ले महाबली अपने यात्रा की ओर अग्रसर हुए। इस प्रकार हनुमान जी सागर तट स्थित अंगद व वानर सेना को अपने साथ लेकर हनुमान जी श्री राम जी के पास पहुंचे, माता सीता की चूड़ामणि दी और अपनी लंका यात्रा की सारी कहानी सुनाई। इसके बाद राम व लक्ष्मण सहित सारी वानर सेना युद्ध के लिए तैयार हुई। तो श्रोताओं, ये थी रामचरितमानस और रामायण में उल्लेखित वो कथा जो कि माता सीता के जीवन पर आधारित थी। इसके अलावा अगर आज की लाइफस्टाइल और उस समय की यानी कि त्रेता युग की बात करें, तो अगर हम माता सीता से सीखने की बात करें तो हर परिस्थिति में करुणा और संवेदनशीलता कैसे सीखनी है, ये हम इनके जीवन से जान सकते हैं। रिश्तों में मजबूती और कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए नेतृत्व क्षमता यानी कि लीडरशिप में वृद्धि के लिए भी हम माता सीता के जीवन से कुछ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर बात करें स्वाभिमान, अन्याय के सामने झुकने से इनकार करना, समानता, अधिकार और न्याय की समझ, इन सभी को भी हम माता सीता के जीवन से प्राप्त कर सकते हैं। सम्मानजनक समाज का निर्माण किस प्रकार किया जा सकता है, लड़कियों में आत्मविश्वास और लड़कों में संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है, तो माता सीता से ये हम सीख सकते हैं। इसके अलावा प्रकृति से जुड़ाव, प्रकृति से गहरा संबंध, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी, संतुलित और स्वस्थ जीवन शैली किस प्रकार हम निर्वहित कर सकते हैं, ये भी हम माता सीता के जीवन से सीख सकते हैं। संस्कार और वैल्यू एजुकेशन, ये सीखना हो तो हमें लवकुश के श्रेष्ठ संस्कारों की ओर चलना चाहिए। कहा जाता है लवकुश बहुत ही छोटे थे उम्र में, तभी से इन्होंने अपने जीवन को ऐसे जिया था, सारी कठोरताओं को सीखते हुए ये बड़े हुए थे। और कहीं ना कहीं अगर आप इसे माने तो कम वर्ष में राजा बनना था उन्हें, इसलिए कहीं ना कहीं प्रकृति उन्हें सिखा रही थी, प्रकृति यानी माता सीता स्वयं। और जब हम बच्चों को संस्कार देने की बात करते हैं तो हम उनके साथ कठोरता नहीं करते हैं, हम उनको उनके उज्जवल भविष्य के लिए तैयार कर रहे होते हैं। अगली पीढ़ी में नैतिकता और अनुशासन डालना बेहद जरूरी है, परिवार और समाज दोनों मजबूत होते हैं इससे, इसलिए न्यू अगर डालनी है तो हमें संस्कार डालने होंगे बच्चों में। और ये भी अगर हम सीखने की बात करें तो हम माता सीता के जीवन से बखूबी सीख सकते हैं।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह, नई बात। थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

89.6 FM, अब गुना सुनेगा अपना FM। अब कैसा भी हो मूड, हर सॉन्ग जूट को करेगा सूट। ज्ञानस्थली बीट्स नॉनस्टॉप, जहां गाने बजेंगे बैक टू बैक। मंडे टू सैटरडे शाम 4 से 5 सुनना ना भूले। ओनली ऑन गुंडा FM, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। 89.6 FM।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान, पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व केनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: रामपुर मेरठ और इटावा से संगीत है सोहेल सेन का, बोल है डॉक्टर इरशाद कामिल के। पेश करते हैं हर आशिक के दिल को कुरेदने वाला गाना, कैसा ये इश्क है।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।

बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाई ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

क्या बात है, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और आज का दिन यादगार होने वाला है, क्यों भाई? संडे है आज और तारीख भी हो गई है 26 जुलाई। सो आज का दिन तो वैसे भी आपके लिए काफ़ी ख़ास है, संडे बना ही देता है। संडे की ख़ासियत ही ये है कि अगर बहुत कुछ भी ना मिले और बस ये पता हो कि आज संडे है, तो एक अजब सा सुकून रहता है, एक अजब सी खुशी होती है। फिलहाल आइए इस गाने को पूरी तरह सुन लेते हैं, वापस से आते हैं और आने के बाद बताते हैं कि आज आपका संडे स्पेशल थॉट क्या है।

0: क्या बात है भाई, सॉन्ग जबरदस्त, हलचल पैदा कर देने वाला सॉन्ग आज के मॉर्निंग शो का। फिलहाल आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो 89.6 एफएम। ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। सो भाई, संडे को और भी ज्यादा स्पेशल हो जाता है और इसके पीछे आपको कई सारी वजह पते हैं। सो इतनी सारी वजह जब होती है तो जाहिर है स्पेशल होने से आखिर कौन रोक सकता है। तो चलिए, इसको तो खैर हम स्पेशल बनाने ही वाले हैं एक साथ मिल करके, लेकिन इसके साथ ही साथ जो इसको और भी ज़्यादा बेहतरीन बनाने वाला है वो है आज का संडे स्पेशल थॉट ऑफ द डे, जिसका इंतज़ार आपको भी है और आप भी सोच रहे हैं कि हाँ बात तो सही है, लेकिन आज का थॉट क्या है। क्योंकि भाई कहीं ना कहीं अपने काम की चीज़ पर पहले निगाह पड़ती है और ये बहुत अच्छी बात है। अगर हमें ये पसंद है तो हम कुछ अच्छा और बेहतरीन पसंद कर रहे हैं और ये बात बहुत अच्छी है हमारे बारे में, आपके बारे में। सो चलिए फिलहाल आपको बता देते हैं कि आज का संडे स्पेशल थॉट ऑफ द डे क्या है जो आपके दिन को और आपके संडे को बनाने वाला है सुपर स्पेशल आज के थॉट के जरिए। क्या है? Let's go.
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite Ajay Khan.

हाँ जी, तो भाई आज का थॉट ऑफ द डे क्या कह रहा है, चलिए जान लेते हैं आज के थॉट ऑफ द डे की तरफ चल करके। आज का जो संडे स्पेशल थॉट है वो कहता है कि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको आपके अपने विचारों जितना परेशान कर सके। जी हाँ, सच में देखा जाए तो ये खुशखबरी है, एक ऐसी खुशखबरी जिसके बारे में हम शायद अवेयर होना चाहते हैं, जिसके बारे में हमें बहुत थोड़ा पता होता है, जिसको लेकर हम और ज्यादा कर सकते हैं। क्योंकि ये खुशखबरी है, कैसी खुशखबरी, ऐसी कि भाई ये जो थॉट आते हैं इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कि इनसे ज्यादा हमारी दुनिया में कोई भी इनके जितना परेशान हमको नहीं कर सकता है। तो आप सोचेंगे अरे ये तो भाई बहुत अच्छी बात तो है नहीं, देखा जाए तो इसी में इसकी स्ट्रेंथ है, इसी में इसकी ताकत है कि भाई इतना ताकतवर होता है कि इसके जितना कोई परेशान ना कर सके। तो ठीक इसके अगर हम उलट करते हैं तो इसके जितना कोई पावरफुल भी नहीं होता इस दुनिया में हमारी लिए, यानी हमारे ही लिए इसी दुनिया में हमारे विचार जितना स्ट्रांग और कुछ नहीं हो सकता है जो हमें दुनिया को ही चेंज कर दे। एंड दूसरी बात, विचारों को मैनेज किया जा सकता है, विचारों में बदलाव लाया जा सकता है, विचारों को फैक्ट चेक उसका किया जा सकता है, ये बहुत अच्छी बात है। सो विचार कभी भी ऐसे नहीं हो सकते हैं कि आपके हाथ में ना हो। जनरली शुरुआत होती है अपने आप आने वाले विचारों से, और वो शुरुआत भी ऐसी होती है कि आसपास का जो माहौल होता है, जिस तरह से चीज़ें चल रही होती है, कहीं ना कहीं उस टाइप के हम हो जाते हैं या उन चीज़ों से ड्राइव होने लगते हैं। लेकिन विचारों में जब बदलाव लाने की बात होती है तो हमारे अपने ही जरिए संभव हो सकता है। जी हाँ, और अगर हम इस बात को मानते हैं तो सबसे पहला काम जो मुझे पर्सनली लगता है कि हमको अपने पे ही गौर करना पड़ेगा कि आज सुबह से लेकर के शाम तक मैंने ज्यादातर किन चीजों के बारे में सोचा, क्योंकि यही बात बताती है कि आप क्या सोचते हैं और आप क्या बनने वाले हैं और आप क्या बनेंगे। तो इसलिए अपने रोज के थॉट को समझना काफी ज्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर ये समझ में आने लग गया तो शायद हम अपने विचारों में बदलाव ला सकते हैं, और जब विचारों में बदलाव आता है तो डेफिनेटली लाइफ, जिंदगी और ये दुनिया सब चेंज हो जाती है। सो ये बहुत अच्छी बात है कि चलिए हम इस बात को समझ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये बात अपने आप में बहुत अलग है, और इसलिए क्योंकि विचार हमारे अपने हैं, विचार हमारी अपनी खेती है, विचार हमारे अपने अच्छे फ्रेंड्स हैं, लेकिन वही विचार बहुत बड़े दुश्मन भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें तो लगता है कि भाई हम जो कुछ सोच रहे हैं वो मुझे लगता है, और हम करने भी लग जाएं, और अगर वही विचार जा करके हमारे जीवन में भूचाल ला दे, वही विचार हमारे जीवन की बहुत सारी चीज़ों को तहस नहस कर दे, वही विचार लोगों से, अपनों से या किसी खास से दूर कर दे, कैसा है फिर ये विचार? सोचने की जरूरत है, इस विचार पर विचार करने की जरूरत है, बस इतना ही कह रहे हैं। तो इसलिए आप परेशान ना होइए, कोई भी परेशानी आपके विचारों से बड़ी नहीं है, और अच्छी बात यह कि अपने विचार आप बदल सकते हैं, बस इतनी सी बात है। लेकिन ये संडे स्पेशल थॉट कैसा आपको लगा ये आप अपने अंदाज में जरा सोचिए, अपने ही जहन में सोचिए, अपने कुछ विचारों को लेकर के सोचिए, क्योंकि आज के थॉट ने बता दिया इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको आपके अपने विचारों जितना परेशान कर सके। ऐसी कोई चीज नहीं दुनिया में जितना कि आपके थॉट ही आपको पसंद करते हैं और जितना आपके थॉट ही आपको परेशान कर सकते हैं। ये सोचिएगा, और जब सोचेंगे इस बात को तो ऐसी कई सारी बातें आपको निकल करके सामने आती हुई नजर आएगी जिसको शायद आप बहुत वक्त से समझने की और जानने की कोशिश कर रहे थे। तो ये एक बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन थॉट है, और मुझे लगता है कि अगर ये हम और आप समझ रहे हैं तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं उस विचार को अब बदलने वाले हैं
जो हमें सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। सो कैसा लगा आज का थॉट ऑफ द डे, हमको कमेंट करके आप बता सकते हैं। और फिलहाल आइए अब चलते हैं अपने अगले सॉन्ग की तरफ और देखते हैं कि भाई इस मॉर्निंग शो में नेक्स्ट सॉन्ग आखिर कौन सा आ रहा है विद योर मॉर्निंग चॉक आरजे अदनान।

0: मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे, जिंदा हूं यार काफी है। क्या बात है, कुछ बातें ऐसी ये जो गीत होते हैं ना कह देते हैं, वो बातें शायद हम जिंदगी भर समझने में लगा देते हैं, लेकिन जब इनमें सुन लेते हैं हम गौर से तो समझ में आ जाता है फलसफा जिंदगी का। कितनी खूबसूरत बात कही है इस सॉन्ग ने, हवाओं से जो मांगा हिस्सा मेरा तो बदले में हवा ने सांस दी, अकेलेपन से छेड़ी जब गुफ्तगु मेरे दिल ने आवाज दी, मेरे हाथों हुआ जो किस्सा शुरू उसे पूरा तो करना है मुझे, कब्र पर मेरे सर उठा के खड़ी हो जिंदगी, ऐसे मरना है मुझे। क्या बात है, मतलब जिंदा दिली से उस शख्स को सलाम जो ऐसी बातों को कह पाता है सॉन्ग के ज़रिए, जो लिख पाता है, और ये बहुत बड़ी बात है ना। जी हाँ, दरअसल ये जो सॉन्ग है ये लुटेरा मूवी का है, और इस सॉन्ग का जो नाम है, टाइटल है, वो है जिंदा। एंड यस, किस तरह का जिंदा, ये तो खैर आप समझ ही गए हैं। फिलहाल थैंक यू सो मच टू एवरीवन, आपका साथ निभाने के लिए, आपका साथ होने के लिए। संडे स्पेशल है, सो हम आ गए हैं फिलहाल चैट बॉक्स की तरफ, क्योंकि उससे पहले हम बता दें कि आप हमको सुन रहे हैं फ्रिक्वेंसी से, रेडियो गार्डन से, और दुनिया के कोने कोने से जुड़ने के साथ ही साथ लाइव शोज में अपनी बात कह पाने के लिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से, जो कि आप डाउनलोड करते हैं एंड्रॉयड यूजर्स प्ले स्टोर से एंड आईफोन यूजर्स ऐप स्टोर से। सो फिलहाल इसी ऐप पर चैट में आपने क्या कुछ लिखा है ये बताने का वक्त, आप सभी तक पहुंचाने का वक्त आ गया है। तो आइए बताते हैं किसने क्या कुछ लिख भेजा है।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan.

जी तो भाई सबसे पहले सविता जी लिखती हैं गुड मॉर्निंग और बाकायदा उबासी लेते हुए, क्या बात है। ये तो हम लोग बचपन में करते थे। अभी भी जब बचपन में मुझे याद है कोई कहता था सो के उठने वाली एक्टिंग करना, तो एक्टिंग में बिला वजह मुंह पे ऐसी हाथ लगा गया उबासी है ना। प्रीति जी बहराइच से मौजूद हैं। सर जी वेरी लवली मॉर्निंग टू यू, आपका भी स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल शो में। अनोखी मौजूद हैं, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी स्वागत करते हैं अनोखी। एंड यस पूर्णिमा भी आ गई हैं गोंडा से और लिखती हैं संडे वाला गुड मॉर्निंग आरजेड नान सर, कैसे हैं आप। वैसे ही स्मार्ट, वैसे ही क्यूट, वैसे ही हैंडसम, सब कुछ तो वैसे ही चल रहा है। थैंक यू। नहीं बहुत बढ़िया है, बहुत मस्त है, काफ़ी खुश हैं। एंड यस प्रीति जी लिखती है आज के थॉट ऑफ द डे पर, बहुत ही प्यारा थॉट, सबके विचार अलग अलग होते हैं बट ये नहीं कि सबके विचार अच्छे ही हों। किसी के विचार सार्थक होते हैं तो किसी के बहुत ही निरर्थक। किसी के विचारों को बदलना बहुत ही मुश्किल होता है। मुझे लगता है किसी को कह करके अगर यहाँ पे खुद का ही रखा जाए तो ज़्यादा थोड़ा सा और बेहतर हो सकता है। अपने ही कई विचार अपने लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं और अपने ही लिए मुश्किल खड़ी कर देने वाले होते हैं। तो इसलिए अच्छी बात भी यही है कि अगर आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो आपके अपने हाथ में, उसको आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। कभी भी जब आप उस पर मेहनत करना शुरू करेंगे या थोड़े से भी एफर्ट्स डालेंगे तो वो चेंज होने लग जाएगा, डेफिनेटली होगा। ये आपके हद में है, ये आपके हाथ में है, अच्छी बात ये है। और इसके बाद जो है वो रूबी विश्वकर्मा जी आ गई हैं, आप लिखा है गुड मॉर्निंग, आज मैं नई जुड़ी हूँ। ओके सो रूबी जी सबसे पहले तो आपका स्वागत है गोंडा FM 89.6 FM पर, और ये परिवार आपको संडे में कुछ ज़्यादा ही स्पेशल फील होने वाला है क्योंकि पूरे हफ्ते में मैं अगर अपने शो की बात करूँ गुड मॉर्निंग गोंडा में तो यही एक ऐसा दिन होता है जब सुबह 10 से 11 बजे के बीच में कॉल इन प्रोग्राम में लाइव आपसे बातचीत होती है कुछ बातों के दरमियां पर, और एक गाना अगर आप खूबसूरत सा खुद भी सुनाना चाहते हैं तो चलिए आपका स्वागत है। एंड आई होप कि ये फैमिली आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। पूर्णिमा ने लिखा है थॉट बहुत ही प्यारा है, थैंक यू सो मच कि आपको थॉट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। एंड यस थॉट को बदलने का थॉट अगर आ रहा है तो इसको ले चलेंगे आगे तक, और कहीं ना कहीं ये जो है हमको सच में ये फील करा देगा कि देखो सबसे ज़्यादा पेन कोई दे सकता है तो वो आपको ही, आपके ही विचार हैं, और अच्छी बात यह है कि हम उनको बदल सकते हैं। इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या ही होगी। फिलहाल आइए चलते हैं, सुबह हो चुकी है तो इस बात का एहसास होते रहना चाहिए। अब प्ले हो रहे हैं सॉन्ग से, सुनते हैं मिल करके, आते हैं और बहुत सारी बातें भी लाते हैं।

0: और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

हमका एक कप चाय मिल जा रहा राजा, उसके बाद देखो हमारा दिन कैसे जाता है। ऐसी बहुत सारी बातें आपने आते जाते या मूवीज में सुनी होगी, या इवन कई लोग आपस में बातचीत करते हुए इस बात को कहते हैं। लेकिन साइंस और मेडिकल रिसर्च के हिसाब से ये क्या, ये बात कितनी सच है और क्या है, ये हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, इंसान का जो दिमाग है वो सुबह उठने के कुछ घंटे पहले सबसे ज़्यादा क्रिएटिव और एक्टिव मोड में होता है। बाप सोचेंगे तो क्या मतलब सोते सोते ही कुछ काम शुरू कर दिया जाए? अरे ना जी ना, पहले बात तो सुनिए। जब हम गहरी नींद से जागते हैं तो हमारे ब्रेन में अल्फा वेव्स का फ्लो बहुत बेहतरीन होता है, और यही वो मैजिकल टाइम होता है जब बड़े बड़े आइडियाज, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन और क्रिएटिव थॉट्स हमारे दिमाग में खुद ही यानी नेचुरली स्ट्राइक करते हैं। इसलिए दुनिया के जितने भी दिग्गज और ऐसे लोग हैं जिनको आप मानते हैं कि वो अपने अपने एरिया में अपनी अपनी चीज़ों में सक्सेसफुल हैं, वो सुबह के पहले एक दो घंटे बिना किसी शोर शराबे के अपने सबसे ज़रूरी और क्रिएटिव कामों को देना पसंद करते हैं। जी हाँ, सो मेरे प्यारे, अगर आज सुबह आपके दिमाग में भी ऐसी कोई खुराफात या ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया आया है तो उसे इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि आज की सुबह आपका दिमाग सबसे ज़्यादा शार्प काम कर रहा है। सो ये बात जो है ये कहीं ना कहीं न्यूरोसाइंस और स्लीप रिसर्च में बात सामने आई है, और ये बात बिल्कुल सही है कि नींद से जागने के फौरन बाद का वक्त जो है उसको वैज्ञानिक रूप से अगर हम बताएं सो ये ह्यूमन माइंड की जो क्रिएटिविटी है और कॉग्निटिव क्लैरिटी है इसका सबसे चरम वक्त माना गया है। यानी कहीं ना कहीं ये जान लीजिए कि उठने के बाद सुबह सुबह जो कुछ भी आप थॉट सोच रहे हैं, जो भी आइडियाज़ आ रही है, जो आपकी प्रॉब्लम का सलूशन मिल रहा है, वो नंबर एक चीज़ है। सो कहते हैं ना कि ऊपर ऊपर की मलाई, तो भाई यही तो इम्पॉर्टेंट है। सो ऊपर ऊपर की मलाई सुबह सुबह जागने के बाद आ रहे आइडियाज़ में होती है, सो इसको लेना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, जहाँ तक बात रही चाय की, ठीक है, चाय को इग्नोर कौन कर सकता है यार, चाय तो चाय है। और चाय का तो क्या होता है, मंजूर खुदा नहीं होता है, चाय का चस्का होता है।

मस्का। तो चलिए भाई, चस्का लगना बुरा भी है और चस्का लगना अच्छा भी है, बस फर्क ये है कि किस बात का लगा है। इस बात का ज्ञान थोड़ा सा अगर आपके अंदर है तो डेफिनेटली आप बेहतर कर लेंगे। फिलहाल कुछ नए मैसेजेस आए हैं, आइए फटाफट से आपके मैसेजेस पढ़ लेते हैं। हमारे साथ में शिवा पटेल आ गए हैं। गुड मॉर्निंग टू यू, वेलकम करते हैं शिवा आपका आपके मॉर्निंग वाले शो में। हमारे धर्मेंद्र मोहन जी आ गए हैं और आपने लिखा भी है कि अदनान सर जी गुड मॉर्निंग, संडे छुट्टी स्पेशल, थैंक यू। जब मनुष्य का मन अशांत होता है तो सही गलत का अंतर भूल जाता है, विपरीत परिस्थितियों में भी वो व्यक्ति अपने मन को शांत रखता है, वही व्यक्ति सही फैसला ले पाता है। बेशक सही फरमाया आपने। एंड धर्मेश त्रिपाठी आपका भी स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। एंड यस, इसके बाद अगर हम बताएं तो सोनिया तिवारी आप भी आ गई हैं, आपने लिखा हाय गुड मॉर्निंग टू यू। सो भाई चलिए, इतनी सारी बातों के बीच में एक बात जो है वो हमको थोड़ा सा जो परेशान कर रही है वो हम आपसे अभी साझा कर देते हैं। लेकिन उससे पहले लवली सिंह आ गए हैं, अदनान सर जी गुड मॉर्निंग। ज़्यादा देने वाला हमेशा ठगा गया है, फिर चाहे वो विश्वास हो या साथ हो। ओए होए होए होए होए, अच्छा ये भी बात है। वैसे अगर मैं बताऊँ तो कहीं ना कहीं वही ज़्यादा कोई भी चीज़ दे सकता है जिसके पास जो चीज़ ज़्यादा है। अब कोई अगर धोखा दे रहा है तो इसका मतलब उसके पास धोखा ज़्यादा है। अगर कोई प्यार दे रहा है, बाकी तो आप समझदार हैं, तो चलिए ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात जो थोड़ा सा परेशान कर रही है वो WHO की है। जी हाँ, सो WHO की एक रिपोर्ट आई है जिसने कहीं ना कहीं सबको डरा दिया है, लेकिन सच में ये बात थोड़ा सा सीरियस है। सो चलिए इस गाने को सुन लेते हैं, वापस से आते हैं, देन बताते हैं कि आखिर क्या बताया WHO ने।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज गोंडा।
2: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
3: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
3: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
3: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
4: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
5: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
4: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
5: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
4: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
5: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराल रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
2: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: मैं ममता पांडे, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: फिलहाल जो हमने WHO के बारे में बताया कि भाई कुछ ऐसा सामने आया है जो सच में काफी परेशान करने वाला है, जिसको लेकर के हमको चौकन्ना रहना ही होगा। उसको लेकर के क्या है अलर्ट, आइए बताते हैं आपको आपकी मॉर्निंग वाले शो में।
2: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan.

सो WHO की रिपोर्ट जो है उसने फिलहाल चौंकाया हुआ है सबको, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी जिसे हम WHO कह रहे हैं, बताता है क्या कैंसर जो है हमें भी होने वाला है, ये एक सवाल आता है। दरअसल रिपोर्ट क्या कहती है, रिपोर्ट कहती है कि दुनिया के 92% लोग कैंसर से अफेक्टेड होंगे। जी हाँ, जो WHO की रिपोर्ट है वो कहती है कि दुनिया के 92% जो पीपल हैं वो कैंसर से प्रभावित होंगे और हर 5 में से एक इंसान शिकार बनेगा इसका। सो, मौत का दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो यही होता है, कैंसर। हर साल 1 करोड़ लगभग जाने जाती है, रोज़ 26,000 से ज़्यादा जाने जाती हैं, और ये बीमारी दिल के बाद सबसे ज़्यादा घातक बीमारी मानी जाती है। एक तो हार्ट का 1 पर और 2 पर ये कैंसर होता है। सो, इलाज में बड़ा फ़र्क हो जाता है। अमीर देशों में बेहतर इलाज की फैसिलिटी मिल जाती है, जबकि गरीब देशों में ज़रूरी दवाएं भी नहीं मिल पाती है। इसलिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करने वाला है और ये बात हमको समझना पड़ेगा। फिलहाल आपको पता ही है कि भाई ऐसी छोटी छोटी जो लाइफस्टाइल की चीज़ें हैं उसको लेकर के भी हम लगातार अवेयर करते रहते हैं, जैसे कि चाय पीते वक्त आप कोशिश करें कि कुल्हड़ का हो ग्लास या चीनी मिट्टी का हो या स्टील का हो या शीशे का चलता है, लेकिन डिस्पोजेबल जो होता है वो बहुत नुकसानदायक होता है। उसी तरह से गर्म खाना, अगर मान लीजिए कोई गर्म रोटी है, पूड़ी है, कुछ भी ऐसा है, पॉलीथिन में है लगातार, वो भी कैंसर कॉज बनता है। इसके अलावा जो बहुत बार आया है, जिसको बहुत रिस्की माना जाता है, वो अखबार में लपेटना होता है। जी हाँ, अखबार में सूखी और नॉर्मल टेम्परेचर की चीज़ों को तो आप लपेट सकते हैं, लेकिन अगर कोई मान लीजिए गर्म है, कुछ भी ऐसा है, जैसे कोई अक्सर देखा जाता है कि पकौड़ा वगैरह या गर्मा गर्म पूड़ी छान करके लोग उस पर रख देते हैं और टिफ़िन में दे देते हैं, सो, जो अखबार की इंक होती है वो दरअसल कैंसर कॉज भी बनती है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिनको अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थोड़ा सा बदलाव ले आएंगे, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, तो शायद हमारे लिए चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ही तय करती है कि हमको कितनी बीमारियां हो सकती हैं और कितनी बीमारियों को हम सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल से ही दूर रख देते हैं, आने तक नहीं देते। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है। सो आई होप कि आप भी आज से ही, अभी से ही, इसी संडे से छोटे छोटे ये जो बदलाव हैं जो मुमकिन बहुत आराम से हो जाते हैं वो आप ज़रूर करने वाले हैं, यानी उन हैबिट्स में चेंजेस, उन आदतों में बदलाव जिनको करने से आप एक हेल्दी लाइफ की तरफ बढ़ेंगे। हम सब मिलकर ये कोशिश करने वाले हैं और कहते भी हैं कि भाई मिलकर करो तो सब कुछ मुमकिन हो जाता है, और इसके दुनिया में एक नहीं हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं। फिलहाल कुछ ऐसा भी है जो आपको हैरान सच में और भी ज़्यादा करने वाला है, और वो ये है कि हम कहते हैं हमेशा से इंसान और जानवर अलग हैं, राइट? बस हम कहते हैं कि हाँ, इंसानों में भी जान होती है और जानवरों में तो जान होती ही होती है, पौधों में भी होती है, लेकिन फ़िलहाल अगर हम इंसान और जानवरों की बात करें तो जान होना तो सही है, ये कॉमन सी बात है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि आदतें भी जानवरों वाली हम इंसानों में अलग अलग तरह से होती है, और वो किस तरह से होती है ये तो अभी आपको हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको अंदाज़ा है कि किसी जानवर से आपकी कोई आदत मिलती है तो आप ज़रूर हमको कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि अब हम जब लौटने वाले हैं तो आपको बताने वाले हैं कि भाई आखिर कौन कौन सी ऐसी आदतें हैं जानवरों की जो हम इंसानों में भी पाई जाती है, हम इंसान भी उसको अपनाते हैं और कहीं ना कहीं उस पर अमल करते हुए नज़र आ रहे होते हैं, और यह बात बिल्कुल फैक्ट है, यानी आप इस बात को सच में समझने वाले हैं एंड मानने वाले कि हाँ लिटरली ऐसा होता है। सो ऑफ कोर्स ऐसा होता है, लेकिन उससे पहले अगर आपको आइडिया है कि आपके पास भी ऐसी कोई आदत है जो किसी जानवर से मिलती जुलती है, अरे इतना शर्माने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी कोई आदत नहीं है, मतलब वो हम लोग में से कुछ ना कुछ होता ज़रूर है। जी हाँ, तभी तो हम कहते हैं कि हम में भी तो एक जानवर है, और कई लोग तो जानवर को जानवर तक बोल देते हैं। खैर, बोलना क्या है वो तो बात का विषय है, लेकिन आदत कौन सी है ये बता सकते हैं आप।

0: जब्बू ए जब्बू चलो आठ का पहाड़ा सुनाओ।
1: दीपन जी
2: आठ कम आठ आठ दूनी सोलह आठिया चौबीस आठ
0: का कर रहे हो
1: बहन जी? पहाड़ा भूल गया मगर धुन तो याद है।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: कोई तो जानवर रहता है मेरे सामने वाली खिड़की में, नहीं बल्कि अपने अंदर ही रहता है। जी हाँ, सो जानवरों वाली कई आदतें जो होती है वो हम में होती है, और इसीलिए शायद हम में एक जानवर जो है वो कभी कभी बाहर आ जाता है। सो फिलहाल मैंने पूछा था आपसे और कहा था कि ना हो तो आप भी बताइए कि भाई आपके अंदर कौन सा जानवर है। सो फिलहाल इसको लेकर रिस्पॉन्ड किया हमारी सविता जी ने, क्या लिखा ये बताते हैं आपको आपके मॉर्निंग वाले शो में।
1: Now you're listening, Good Morning Koda, with your favorite, RJ Khan.

तो भाई हमने पूछा कि आपके अंदर कौन से जानवरों वाली आदत है, तो हमारी सविता जी ने कहा हमारे घर में बंदर वाली आदत है। अरे वाह। वैसे बंदरों को देख करके बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगता है, काफ़ी अच्छे होते हैं, कॉमेडियन हंसाते भी हैं, लेकिन कौन सी आदत बंदरों की ये आपने नहीं मेंशन किया, आप मेंशन करके बता सकती हैं। फिलहाल हम आपको सभी लोगों को बताते हैं कि हम इंसानों में कौन कौन सी जानवरों वाली आदत होती है। देखिए बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है यही आज का विषय बन जाए, और आपसे आपकी आदतों के बारे में और साथ ही इंसानों की आवाज़ में एक सॉन्ग सुन लिया जाए, जानवरों की आवाज़ में नहीं। नहीं सोचे कैसे गाएंगे, वो अच्छा नहीं लगेगा। सो भीड़ से अलग भागना या अकेले रहना पसंद होता है। मान लीजिए कोई ऐसा शख्स है जिसको भीड़ से अलग भागना या अकेले रहना पसंद होता है। सो ये किन जानवरों में पाया जाता है? ये होता है बिल्लियों में और तेंदुओं में, यानी कैट्स में और लेपर्ड्स में। सो इंसानों में आदत होती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पार्टी, शोर शराबा या भीड़ भाड़ बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। वो चुपचाप अपने कमरे में या अकेले में वक्त बिताना पसंद करते हैं। ये इंसानों की आदत है कई। यही चीज़ जो इसका कारण है वो एनिमल बिहेवियर में सॉलिटरी नेचर कहलाता है, यानी इस बिहेवियर को, इस नेचर को सॉलिटरी नेचर कहते हैं। बिल्लियों की जो प्रजाति है उसका इतिहास ये रहा है कि अकेले शिकार करती हैं बिल्लियाँ और अपनी टेरिटरी में किसी का दखल पसंद नहीं करती, यानी अपनी रियासत में जहाँ उनका जो एरिया है उसमें किसी का भी दखल पसंद नहीं करती हैं। इंसानों में जिन लोगों को डोपामाइन सिस्टम सोशल इंटरेक्शन से ज़्यादा खुद की कंपनी में एक्टिव होते हैं, वो भी बायोलॉजिकल रूप से ऐसे ही अकेले रहने के शौकीन होते हैं। अगर आपके अंदर भी अकेले रहना, भीड़ से अलग हटना है पसंद, तो कहीं ना कहीं आपकी बिल्लियों और तेंदुए से मिलती जुलती आदत है, क्योंकि ये लोग भी ऐसा ही करते हैं। अजी मुबारक हो जी, जोरदार तालियां आपके लिए। अच्छा, बिना बात के चीज़ों को इकट्ठा करने की आदत कई लोगों की है, मेरी भी है। किताबें पढ़ नहीं पाते लेकिन इकट्ठा कर लेते हैं। फिलहाल इंसानों में आदत देखी जाती है, कई लोगों की आदत होती है कि वो पुरानी टिकटें, खाली डिब्बे के पेन, पुराने कपड़े, यहाँ तक कि घर में ज़रूरत ना होने पर भी बहुत सारा सामान ये सोच कर जमा करते रहते हैं कि कभी ना कभी तो काम आएगा। भाई हमारे पिताजी की भी आदत है कि इसको फेंको मत, कहीं ना कहीं तो ये यूटिलाइज हो जाएगा। इसके पीछे का कारण अगर बताएं तो इसे इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कहा जाता है, और ये आदतें होती हैं गिलहरियों में। गिलहरियों को अगर आप देखेंगे तो सर्दियों के लिए अपने खाने को छिपा कर रखती हैं ताकि बुरे वक्त में भूखा ना रहना पड़े। इंसानों के दिमाग का एक हिस्सा जो है वो भी अनजाने में आने वाले भविष्य की असुरक्षा के डर से चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए प्रेरित करता है। यानी हमारे जहन में एक ऐसा भी हिस्सा होता है जो कहीं ना कहीं गिलहरी के जैसा वर्क करता है कि भविष्य में हो सकता है कि ये चीज़ें ना अवेलेबल हो या इसकी ज़रूरत पड़ जाए, तो इसलिए हम लोग इकट्ठा करने लग जाते हैं, और ये आदत जो मिलती है वो गिलहरी से मिलती है। सो मुबारक हुआ आप गिलहरी भी हैं। अब ऐसे लोग भी हैं जो बात बात पर तनाव में आ जाते हैं या चौंक जाते हैं, जिनको हम हाइपर विजिलेंस बोलते हैं, और ये होता है हिरन में और खरगोश में। आप ये दो जानवर अगर देखेंगे तो ये बहुत जल्दी चौंक जाते हैं, बहुत जल्दी डर जाते हैं। इंसानों में कुछ लोग ज़रा सी आवाज़, अचानक हुए कोई बदलाव या किसी भी अनहोनी के डर से तुरंत पैनिक हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं। अरे ये क्या हो गया, अरे कैसे होगा, मतलब बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, सांसें बहुत तेज़ चलती है, अजीब सा डर उनके चेहरे पे नज़र आता है। इसके पीछे का अगर हम कारण बताएं तो इसे साइंस में फ्लाइट या फाइट रिस्पॉन्स कहा जाता है। जी हाँ, सो शाकाहारी जानवर जैसे अगर हमने बताया आपको हिरन है, ये हमेशा जंगलों में शिकारियों के डर से हाई अलर्ट पर ही जीता है, पूरी ज़िंदगी खाली अलर्ट पर ही रहता है, क्योंकि इसको पता है कि भाई कहीं से भी हमला हुआ और हम चले जाएंगे। सो जिन इंसानों का नर्वस सिस्टम बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, उनका ब्रेन भी खतरे को भांपते हुए बॉडी में एड्रेनलाइन हार्मोन का बहाव तेज़ कर देता है, जिससे वो फौरन ही चौंक जाते हैं। चौंकने की जो आदत होती है, डर होता है कहीं ना कहीं,
और ये जैसा कि बताया ये खरगोश में और ये हिरन में बहुत पाया जाता है। सो अगर आप में से भी या आपके घर में या आपके कोई आस पड़ोस में ऐसा कोई है जो चौंक जाता है तो उनकी आदत हिरन और खरगोश से मिलती जुलती है। इसके अलावा वो लोग आते हैं जो हर बात पर अपनी टांग अड़ाना या दूसरों की चुगली गपशप करते हैं फेवरेट वाले हैं सो ये आदतें होती हैं किन में बहुत अच्छे से जानते हैं आप। इंसानों की अगर हम बात करें कुछ लोगों को अपने अड़ोस पड़ोस या ऑफिस या दोस्तों के बीच क्या चल रहा है ये जानने का चस्का या गपशप करने की भयंकर आदत होती है। सो ये बताया गया है इंसानों में आदत होती है और ये अगर आप देखेंगे तो ये जानवरों में बंदर और चिंपैंजी में होती है। सो प्राइमेट्स जो हैं यानी बंदरों और इस पर हुई रिसर्च बताती है कि झुंड में अपनी सोशल पोजीशन मजबूत करने के लिए एक दूसरे पर ये लोग नज़र रखते हैं और ग्रूमिंग को छूकर या पास बैठ करके बातचीत करते हैं। सो इंसानों में भी ये जो आदत है ये सोशल बॉन्डिंग और ग्रुप में ख़ुद को सेफ रखने की बहुत पुरानी आदतों से बहुत पुराने विशेष से जुड़ी हुई है। इसलिए कहीं ना कहीं ये आदत जो है ये बंदरों और चिंपैंजी से मिली हुई हम इंसानों में आदतें हैं और हर इंसान बैठता है बतियाता है और चुगली भी करने लग जाता है पता ही नहीं चल पाता है ना अगली आदत आ रही है। एक और कैटेगरी के लोग होते हैं जो कि मौसम बदलते ही मूड स्विंग होना या उनके सुस्ती छा जाती है। इन जानवरों में तो लगता है मैं भी आ रहा हूँ सो जानवरों में भालू आता है यानी भालू ऐसा जानवर है जिसमें ये आदत होती है। सो इंसानों की अगर हम आदत की बात करें तो सर्दियों के दिनों में या बारिश के मौसम में जैसा भी चल रहा है मॉनसून सीजन इसमें अचानक से काम करने का मन नहीं करना बस रजाई में लेटे रहना और बहुत ज़्यादा खाना खाना और सोने का मन करना। हालांकि बहुत ज़्यादा मुझे खाना खाने का मन नहीं करता है पर हाँ लेटने का ज़रूर कर जाता है ये बात तो है। इसके पीछे का अगर रीज़न बताएं तो सीजनल अफेक्टिव टेंडेंसी कहा जाता है इसे। सो सूरज की रोशनी कम मिलने पर बॉडी में मेटालटोनिन यानी नींद का जो हार्मोन है वो बढ़ जाता है। जिस तरह भालू सर्दियों में अपनी एनर्जी को बचाने के लिए हाइबरनेशन में चले जाते हैं इंसानों की बॉडी भी कम धूप मिलने पर सुस्त हो जाती है ताकि अपनी एनर्जी बचाई जा सके। सो आइंदा से धूप में खड़े होने के बारे मत सोचिए लेकिन ये है कि हाँ उठते रहेंगे और थोड़ी सी धूप मिलती रहेगी तो कहीं ना कहीं आप एक्टिव ज़रूर रहेंगे। तो आप तय करिए कि आपके अंदर भालू है या बंदर चिंपैंजी है या हिरन खरगोश है या गिलहरी है या फिर बिल्लियां और तेंदुए हैं और या फिर कोई और ही जानवर मतलब जानवर है ये ज़रूर आप देख लीजिएगा और उसके बाद आप हमको कॉमेंट करके बता सकते हैं कि भाई आपको जब आपने खुद को टटोला तो आपको अपने अंदर आखिर कौन सा ऐसा जानवर नज़र आया। और साथ ही साथ आज यही विषय आ रहा है कॉलिन में यानी 10 से 11 बजे के बीच में हम इसी पर बात करने वाले हैं कि आपकी ऐसी कौन सी आदत है जो किसी जानवर से मिलती है। हमने फ़िलहाल 5 तरह की कैटेगरी बता दी लेकिन इससे अलग भी हो सकती है कि किसी अलग जानवर से कुछ मिलता जुलता आपके अंदर हो है ना तो बता सकते हैं अपने बारे में बात करनी है और इंटरेस्टिंग वे में जो भी आपको लगता है वो आप बता सकते हैं। फिलहाल एक गाना भी आप सुना सकते हैं क्योंकि इसका नाम ही है गाएगा गुंडा विद आरजे अदनान। सो आरजे अदनान तो सुनना चाहते ही चाहते हैं और आपको भी मौका मिलता है कि संडे संडे आप भी गाएं इसलिए नहीं कि आपकी आवाज़ अच्छी है इसलिए भी नहीं कि लोग आपकी तारीफ करें इसलिए कि गाना आपको अच्छा लगता है और हम सुनने के लिए तैयार हैं इवन हम झेलने के लिए भी तैयार हैं डोंट वरी। सो आप बस सुनाने के लिए तैयार हो जाइएगा। फिलहाल आइए इस गाने को सुनते हैं इस गाने को उस पार फौरन से आपके कॉल इन प्रोग्राम में हम शामिल हो जाएंगे और आपकी कॉल्स लेने लग जाएंगे 10 से 11 गागा गुंडा विद आरजे अदनान नंबर है 6393 3164 ये नंबर है इस पर कॉल करिए हम बातचीत करते हैं 10 से 11 के बीच।

0: जी, सो कौन सा मतलब जानवर है आपके अंदर, ये मुझे जानना था। और ठीक 10 बज गए हैं। सबसे पहले तो आपका वेलकम करते हैं एक बार वापस से आपके गागा गुंडा विद आरजे अदनान वाले स्पेशल शो के सेगमेंट में। और आइए आपसे, चूंकि हमने सवाल पूछा है कि आपके अंदर आखिर ऐसी कौन सी आदत है जो किसी जानवर से मिलती जुलती है, वो जानवर जो हमने बताए हैं उन आदतों के साथ या कुछ अलग है जो आपको लगता है कि ये मिलता जुलता है, चलिए आपको बताते हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Koda. With your favorite, Aajya Khan. Aajya Khan.

0: तो चलिए पहले कॉलर की तरफ चलते हैं और देखते हैं पहली कॉल पर आज कौन है और उनकी कौन सी आदत जो है वो किसी जानवर से मिलती जुलती है। हाँ जी हेलो,
1: गुड मॉर्निंग सर।
0: गुड मॉर्निंग टू यू। अपना नाम बता दी हमारे लिसनर्स को। हाँ हाय सृष्टि, कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। हम तो थोड़ा थोड़ा गिलहरी जैसे हैं, भालू जैसे हैं और कई बार बिल्लियों जैसे हैं। आप कैसी हैं? अच्छा, सो सृष्टि आप बताइए ना कि आपकी कौन सी ऐसी आदत है जो किसी जानवर से मिलती जुलती है।
1: तोता।
0: ओ वाओ, इंटरेस्टिंग। कैसे, क्या आदत है आपकी? अच्छा, सो सुनते हैं पहाड़ी जो तोते होते हैं वो मिमिक्री ज्यादा कर लेते हैं, नकल करना।
1: तोते की बात कर रहे हैं।
0: अच्छा, तो तोते की तरह आप बहुत बोलते हो। कभी किसी ने कहा ऐसा कॉम्प्लीमेंट दिया कि आप तो तोते की तरह बोलते ही जा रहे हो, ऐसा कुछ कभी सुनने को आया है?
1: मम्मी ने बोला है, मेरे पहले तोता था ना। हाँ। तो कोई भी आता हाँ। तो उसको सीटी कोई भी सीटी बजा दे तो बोलता ये मुझे छेड़ रहा है।
0: ओ अच्छा। हाँ। कंप्लेन करने वाला तोता।
1: अच्छा। और सुबह सुबह उसके बोलता सीताराम सीताराम, तो भूख लगी कुछ दो खाने को। फिर अगर कोई सीटी बजा दे तो बोलता कि मुझे छेड़ रहा है, या फिर कोई आ गया तो भागो भागो, कोई भी चाय पी लेता तुरंत बोलता फुर फुर।
0: अरे वाह, मतलब उसने ये सब रट लिया था, ये ऐसा कुछ भी होने पे इसी तरह बोलता था।
1: हाँ मम्मी ने सिखाया था तो रट लिया था।
0: वाह, फिर क्या हुआ उस तोते का?
1: फिर कुछ दिन बाद, मतलब एक दो साल बाद वो उड़ गया। मम्मी ने कहा कि पंछी को पिंजरे में नहीं कैद करते। मम्मी ने छोड़ दिया मेरे।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। याद आती है उस तोते की?
1: बिल्कुल आती है, पर वो दूसरे जिले में था, दूसरे जिले में है अब। पहले तो आता था कभी कभी, अब तो गोंडा रहने लगे तो इस वजह से मुश्किल है उसका आना।
0: अच्छा, तो एक बात तो क्लियर है कि सृष्टि के अंदर जो पटर पटर बोलने की आदत है वो उनको लगता है कि तोते वाली है। और भी कोई जानवर से मिलती जुलती और कोई आदत है आपके अंदर?
1: जानवर से मिलती जुलती तो नहीं, लेकिन बर्तन को जरूर जानवर बना दिया है।
0: बर्तन को जानवर बना दिया, कैसे?
1: एक दिन मम्मी ने बोला कुकर दो, तो मैंने कहा रुको दे रहे कुकुर।
0: क्या? कुकुर? जानबूझ के बोला था कि सच में निकल गए?
1: गलती से निकल गया।
0: मम्मी को बड़ा बढ़िया वाला फील आया होगा जब कोई इतनी सीरियस थी। जब कोई कॉमेडी ना करो और कॉमेडी हो जाए तब ज्यादा मजा आता है। जानबूझ करके तो पता होता कि हम ये बोलने जा रहे हैं, लेकिन जब सीरियसली बोलो हाँ दे रहे हैं कुकुर है ना, नहीं। वाह क्या बात है, मतलब बहुत बढ़िया। बर्तन को आपने कुकुर बना, मतलब कुकर को आपने कुकुर बना दिया, ये बहुत बढ़िया था ये तो। ऐसा कई बार हम लोग के साथ भी होता है कि कोई पूछता कुछ है और गलती से सीरियसनेस के साथ जब निकलता तो हंसी और भी तेज आती कि यार ये सामने वाला तो इतना सीरियसली बोल रहा था। तो अभी हो सकता है एक दो लोगों की बात भी मुझे अपनी दोस्तों की याद है, इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहते हैं इवन। क्या बात है। सो चलिए आपको तोता मुबारक और आप ऐसे ही टाएं टाएं बोलती रहिए और बिल्कुल तोते की तरह आज़ाद रहिए। आपके लिए पूरा आसमान है उड़ने के लिए, देखने के लिए सारा जहां है। सो डेफिनेटली आप उसको एक्सप्लोर करिए बिल्कुल। एंड थैंक यू सो मच कॉल करके आपने बताया। सो भाई ये तो थी सृष्टि जिन्होंने बताया कि इनकी जो आदत है वो तोते वाली है। तोते वाली कैसे? क्योंकि पटर पटर बोलती रहती हैं। अब देखते हैं कि भाई अगले जो कॉलर आ रहे हैं उनकी कौन सी आदत कौन से जानवर वाली है। हाँ जी हेलो।
2: हेलो, मैं पहले सीटी बजाऊंगी।
0: ओहो हो, चलिए मैं सुन रहा हूँ सीटी आपकी। ये लो भाई, एक तोता गया था, मैना आ गई। हाँ जी, नाम बताइए अपना।
2: मेरा नाम सविता दुबे और मुझ में तितली वाला भी आदत है, खरगोश वाला भी आदत है और मधुमक्खी वाला भी आदत है, बंदर वाला भी है।
0: अब चारों जानवरों की आदतों के बारे में जरा बताएं कि आपकी कौन सी ऐसी आदत है जो उस जानवर से मिलती है।
2: तितली वाला आदत है जैसे कि अपने मन मर्जी से जहाँ मर्जी तहाँ चली जाती हूँ, अपने मन मर्जी से हाँ मेरे पंख को कोई रोके ना,
0: वाह
2: सही सही दिशा में उड़ती हूँ वो हुआ। और मधुमक्खी वाली आदत है जो कि मैं, जो इंसान अच्छा है मेरे से अच्छी बात करी ठीक है और मेरे को इग्नोर किया तो मैं उसको दिल से उठा के फेंक देती हूँ। बाद में मैं, हाँ और मैं मेहनत करती हूँ।
0: नहीं लेकिन मधुमक्खी
2: मेहनत करना बहुत अच्छा लगता
0: है। मधुमक्खी तो डंक भी मारती है ना।
2: नहीं अगर कोई मुझे छेड़ने का कोशिश करे तब मारती हूँ, डंक भी मारती हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है।
0: वाह।
2: और हमारे घर में ज्यादातर शैतानीपन ज्यादा है। मेरा दादी का भी अंदर था बचपना, मेरा मम्मी पापा के, मेरा जो ससुराल था यहाँ भी। यहाँ की बात बोल रही हूँ, चार पांच दिन पहले की बात है। साइकिल से जा रही थी, बारिश भी हो रहा था। तो मेरे को इनका पापा, राधा के पापा, सही रास्ता से नहीं लेके जा रहा है, उबड़ खाबड़ रास्ता से लेके जा रहा है।
0: अच्छा।
2: जब तक इनको दो तीन मुक्का ना दी तब तक ये सही रास्ता नहीं होता। ऐसा ही तो है हमारे घर में, ऐसा ही है।
0: दो तीन मुक्के ने दिशा ही बदल दी।
2: सीधा रास्ता पकड़ लिया। हमारे घर में ऐसा ही है, कभी तो मैं बर्तन मांजूंगी आके कीचड़ लगा देगा।
0: क्या बात है।
2: दूसरा बार कोशिश करेगा तो तब तो गुस्सा आता है कि नहीं, तब एक दिन कढ़ाई उठा के फेंक दी तो कढ़ाई इधर उधर चला गया, उधर भाग के चला गया, ऐसा हमेशा रहता है। जब तक दिन भर में दो तीन बार झगड़ा ना हो जाए तब तक ये घर घर नहीं रहता है, हजम नहीं होता पेट खाना।
0: नहीं ये बात तो बिल्कुल सही बात है, जब तक लड़ाई ना हो जाए तब तक लगता फील ही नहीं आता है कि घर में है अपने। सही बात है।
2: हाँ सही है।
0: और गिलहरी वाली कौन सी आदत है आपकी?
2: गिलहरी वाली सब कुछ आदत, तो जो पुराना चीज अपने पास रखने का। एक मेरे पास था पहले बचपन में 1952 का एक पेपर का टुकड़ा।
0: ओह 1952 की पेपर।
2: 1952 का, हाँ एक पेपर का टुकड़ा, उसमें चित्र भी था, उसमें तब का महिला का जूड़ा जो बड़ा सा होता ना, वो इस टाइप का जूड़ा सब, पता नहीं उसके बाद कहाँ चला गया वो, कहाँ चला गया मतलब बहुत दिन पहले का पेपर मैंने एक किताब के उस पन्ने में रख दी थी।
0: अच्छा।
2: पुराने चीजें जो अच्छा लगता है उसको मैं संभाल संभाल के रख देती हूँ।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपके अंदर भी आदत है कि पुरानी चीजों को आप संभाल करके रखने लग जाती हैं, क्या सोच करके कि पुरानी चीजों को देख करके पुरानी बातें याद करने के लिए, या आपके काम आएगा इसलिए?
2: नहीं नहीं काम के काम नहीं आएगा, मतलब पुराना पेपर फटा हुआ एक टुकड़ा था 1952 का, उसको मैं संभाल के रखी थी ताकि पुराने दिनों का चीज है, मतलब अच्छा लगता है कि पुराने दिनों का सामान हमारे पास है। उसके बाद शादी के बाद मैं चली गई थी, पता नहीं मायके में इधर उधर पता नहीं कहाँ चला गया वो चीज।
0: कोई बात नहीं। वैसे ये जो आते ही सीटी मारा था वो किस जानवर, किस परिंदे की तरह मारा था आपने?
2: पता नहीं फिर से मार लो।
0: हाँ हाँ फिर से मारिए, थोड़ा सा इस बार देखे क्या है।
2: अच्छा। ठंडी में ज्यादा बचता है, ठंडी में जो है ना, मेरे को भी पता नहीं था कि मेरे को, मैं इस तरह से सीटी बजा सकती। ठंडी में, ठंडी का टाइम था, मैं डुबकी लगाने गई थी कहाँ गंगा की घाट पे, तो ठंडी लग रहा था, मैंने अपना सांस अंदर को खींची थी तो ऐसा बज गया। दो तीन औरत लोग भी थी, वो लोग इधर उधर देख रहा, उसने सोचा कि कोई लड़का लोग सीटी मार रहा है और मेरा मुंह से आवाज निकला ऐसा।
0: गलती से निकल आया, मारे ठंड के निकल आया।
2: जी ठंडी से ही, मार्च का महीना था, कुछ अमावस की कुछ पड़ा था, चली गई थी ना आने, ठंडी में मैंने सांस अंदर की तरफ खींची तो ऐसा सीटी बस बच गया। अब इधर उधर वो लोग देख रहा है कि सोच रहा कि कोई लड़का तो नहीं मारा सीटी, तो मैंने बोला कि मैं, मेरा आवाज निकला तो तब जाकर शांत हुई।
0: और अगर मान लीजिए आपको कुकर की तरह सीटी मारनी हो तो कैसे मारेंगे आप?
2: अरे कुकर के टायर हम नहीं मारेंगे।
0: अरे एक बार कोशिश तो करिए।
2: कोशिश नहीं करते हम, छोटा बच्चे ही, हम कोशिश नहीं कर सकते।
0: छोटे बच्चे ही तो सारी कोशिशें करते हैं।
2: अरे कुकर का सीटी हमें बजाना नहीं आता, आप बजा दीजिए, आपको तो बहुत तरह का आवाज है, तो धर्मेंद्र के आवाज में कुछ बोल दीजिए हमें।
0: नहीं धर्मेंद्र तो, अरे हम जानवरों की बात कर रहे हैं, आप धर्मेंद्र में कहाँ ले आए
2: हम। अरे धर्मेंद्र जी का भी बहुत सारे आदत अच्छा वाला था।
0: हाँ आदत वाले तो अच्छी थी, लेकिन हम ऐसी आदतों को पूछ रहे हैं जो आपके अंदर हो और वो किसी जानवर से मिलती जुलती हो।
2: बता दिया हूँ, चारों आदत बताई हूँ।
0: चारों आदत बता दिया है, कुकर की सीटी नहीं मारा अभी आपने।
2: हम नहीं बजा सकेंगे, ये वाली सीटी बजा सकेंगे बस।
0: अच्छा, और मान लिए किसी को प्यार से बुलाना हो तो कैसे सीटी मारेंगे?
2: प्यार से सीटी नहीं बोलेंगे प्यार से, अरे ले ले ले मेरे छोना बच्चा, मेरे बाबू छोना, मेरा मिर्ची छिले।
0: नहीं वो तो अच्छा था, लेकिन अगर मान लिए किसी को बोलना है ए पलट, कैसे मारेंगे सीटी पर?
2: सीटी बजाएंगे
0: कैसे? कैसे
2: सीटी में कोई
0: सीटियां भी अलग अलग होती हैं? हाँ
2: नहीं सीटी में अलग अलग चेंज नहीं कर सकती हूँ मैं, एक ही सीटी बजाने आया, वो भी पता भी नहीं था मेरे को कि मेरा मैं सीटी बजा सकती हूँ।
0: वाह
2: बस इतना ही।
0: आपको पता नहीं था, आपके साथ अचानक हो गया। मैं बचपन से कोशिश कर रहा हूँ, अभी तक मैं सफल नहीं हो पाया हूँ। खैर बहुत अच्छा
2: लगा। मैं सिखा दूंगी, जिस दिन ज्ञान स्थली आऊंगी आप सीख जाइए। खाली सांस से अंदर खींचती हूँ बस, मुंह को गोल बना देते, होंठ घुमा, सीटी बजा भी सो जाए।
0: खाली सांस अंदर खींचेंगे तो अंदर ही हम खींच जाएंगे। खैर ठीक है, आप आइएगा बताइएगा मुझे। बट ये जान करके अच्छा लगा कि आप भी कई तरह के जानवरों की आदतों को अपने अंदर समा चुके हैं। थैंक यू सो मच।
2: सभी का शुक्रिया, आपको ढेर सारा आशीर्वाद
0: बहुत
2: खुश करने के लिए, हम लोग दिमाग का जो सब कुछ एकदम खत्म करने के लिए,
0: दिमाग का सब कुछ
2: करने के लिए बहुत कुछ, आपको बहुत सारा आशीर्वाद।
0: अरे थैंक यू सो मच, ये आपकी जरा नवाजी है, दुआएं हैं और ये हमको लगे हम ऐसी दुआ करते हैं
2: जी।
0: बेशक थैंक यू सो मच। सो भाई ये हमारी सविता दुबे जी थी हरखापुर गोंडा से, और जैसा कि बताया खुल करके, और हम सभी लोगों में जानवरों की कोई ना कोई आदतें ज़रूर है जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं। इसी कड़ी में चलते हैं अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं भाई अगली कॉल पर आखिर कौन है और उनके अंदर जानवर की ऐसी कौन सी आदत है। हाँ जी हेलो।
3: हाँ

0: हूँ।
1: अच्छा तोता है,
0: लेकिन लोग मुझको कोयल बोलते हैं।
1: किसने ऐसा बोल दिया, गलत फहमी किसको हो गई?
0: पता नहीं क्यों लोग मुझको कोयल बोलते हैं।
1: अरे वो कौन लोग हैं जरा मिलाइए हमको। हाँ तो वो हम उनको समझा देंगे कि शायद समझ नहीं पाए। अच्छा तोते से कौन सी ऐसी आदत है जो मिलती हुई है आपकी?
0: तोते से?
1: हाँ
0: मिर्ची खाना।
1: मिर्ची खाना? अच्छा ज्यादा बोलना। हाँ
0: और
1: तो है।
0: यहाँ वहाँ उड़कर जाना।
1: उड़कर जाना? आंधियों में आप उड़ते हैं क्या? कैसे उड़ते हैं? अच्छा तो ये तो तोते वाली। हाँ
0: मतलब की कुछ चीजें जो आसानी से जल्दी से सीख लेना।
1: जो आपको लगता है कि जो तोते होते हैं वो फास्ट लर्नर होते हैं, वो जल्दी चीजों को सीख जाते हैं?
0: हाँ।
1: जैसे कोई एग्जांपल देके बताइए, क्या ऐसी कौन सी चीज थी जो आपने जल्दी सीखा?
0: मैंने ना बहुत सारी चीजें सीखी है। मुझको मतलब इसे पार्लर का मैंने कोर्स नहीं किया है, तो मेरी दीदी थी गाँव की, तो वो कर लेती थी सब कुछ पार्लर का काम। तो हमको भी करना है, हम कैसे करेंगे? प्रो बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? तो हम उनसे पूछे, हमको नहीं बताई तो हम अपने आप ही सीखे। अब हम खुद का सबका करते हैं खुद, तो कहते हैं कितना अच्छा कर लेते, कैसे सीखा है? वो मतलब शादी हो गई ससुराल रह रही है, दवादी तो कहती कैसे सीखा है आपके नहीं।
1: तो जैसे मान लीजिए कि हाँ हाँ हाँ बोलिए।
0: वो कढ़ाई भी करती थी तो छुपा के करती थी, जब उनको लगा कि हम मतलब ध्यान दे रहे हैं तो छुपाने लगी, फिर भी हम सीख गए।
1: फिर भी आप सीख गए?
0: और हमने ना
1: हाँ
0: हमने कढ़ाई करके और फिर सिखाया, तो वो भी इतना अच्छा कैसे कर लिया, हमने बस कर लिया, आपने नहीं बताया तो आपको क्या लगता था हम नहीं कर पाएंगे?
1: आपको क्या लगा हम नहीं सीख पाएंगे का? ये भी बहुत बहुत सही था, बहुत बढ़िया, बहुत मस्त। अच्छा और कौन सा जानवर है, जानवर निकल आता है मुंह से? हाँ बताइए कौन सा जानवर है आपके अंदर?
0: सर गिलहरी है, क्योंकि गिलहरी की तरह उसको सीधे संभाल के रखना बहुत अच्छा लगता है।
1: ओके
0: मैं एग्जांपल दूँ, मैं सन 2009 में क्रिकेट की किताब छपी थी, उसको मिल गई थी, मैंने अभी तक संभाल के रखी है। और सन 2011 के वर्ल्ड कप का पेपर भी रखा है।
1: कब का पेपर रखा है?
0: सन 2011 वर्ल्ड कप का।
1: अच्छा सन 2011 वर्ल्ड कप का, ओके ठीक है।
0: और जब पीरे ने आईपीएल में संन्यास लिया था तो मैंने वो भी पेपर मंगा के रखा।
1: अच्छा बहुत बढ़िया, मतलब आपको भी गिलहरी की तरह कुछ चीजों को समेटने की और जमा करने वाली आदत है।
0: हाँ, असल में ना पैसे भी रखती हूँ जमा करके, मेरे पास 2007-08 का गुल्लक होगा,
1: मतलब 15-20 लाख आपके खाली गुल्लक में जमा होंगे, राइट?
0: अरे वो छोटा सा है तो उसमें ज्यादा पैसे कहाँ होंगे।
1: अच्छा नहीं, हमें लगा बहुत पहले से आप कई और लोगों के हिस्से लेकर के जमा कर लेते हैं। अच्छा
0: ऐसे करती हूँ, गुल्लक भर जाता है उसको खर्चा कर देती हूँ, सारे पैसे निकाल लेती हूँ फिर से उसको भर देती हूँ।
1: गुल्लक को फोड़ते कैसे? जैसे नारियल किसी शुभ काम में आगे आगे आके फोड़ते हैं, वैसे ही गुल्लक फोड़ते हैं या कोई और तरीका होता है?
0: वैसे ही फोड़ते तो है, लेकिन मैंने कभी फोड़ा नहीं है, अभी तो इतना पुराना
1: नहीं है। गुल्लक ही नहीं फूटी आज तक?
0: वही 2007-08 में ली थी, वही गुल्लक अभी मेरे पास है और बहुत मजबूत, बहुत अच्छी है।
1: तो जैसे आपने देखा वो हांडी फोड़ने का प्रतियोगिता होता ना, एक ऊपर एक, एक ऊपर एक चढ़ के कंधे पर बैठ करके, ऐसी आप अपनी गुल्लक लटकवा दीजिएगा उसमें, उसको पाने के लिए हर आदमी बहुत बेताब रहेगा, इतनी पुरानी गुल्लक, इतने सारे पैसे, न जाने कितना कुछ मिल जाएगा उसको। सही बात।
0: एक राज की बात बता दूँ ना, बहुत पुराना सिक्का है, जैसे अभी 10 का सिक्का नहीं आता जितना बड़ा, इतना बड़ा पहले 2 का सिक्का होता था, मैंने उसको डाला
1: आपके कांधे जितना।
0: हाँ, कह सकते हैं।
1: अच्छा आपके कांधे जितना, ओके ठीक। फिर
0: लेकिन सर 4 फुट का नहीं है तो छोटा सा है।
1: अच्छा 4 फुट का, तो आप कितने फुट के? 5 के हैं, 4.5 के?
0: नहीं 5 से थोड़े ज्यादा है।
1: 5 से थोड़े ज्यादा, ओके। तो मतलब आपके पास एक क्वाइन भी है जो काफी ज्यादा पुराना आपने बताया। That's
0: great. हाँ, बहुत पुराना सर और बहुत अच्छा लगता है, मैंने इसको गुल्लक में छुपा के रखा है।
1: बहुत बढ़िया। अच्छा आपने सारी चीजों में बताया था कोयल जैसी आवाज भी है, तो जरा निकाल के बताइए।
0: हम कोयल जैसी आवाज थोड़ी ना बोले थे, ये बोले थे लोग उसको कोयल बोलते हैं।
1: नहीं वो तो गलत फहमी।

0: बोलते हैं। खैर, कोई जानवर की आवाज जो आपको पसंद है निकालना खुद से, वो कौन सा ऐसा है?
1: अभी जानवर की आवाज निकालू मैं?
0: जिस भी जानवर की आवाज आपको लगता है कि अच्छा लगता है आपको बोलना उस तरह से। हाँ, अच्छा, अब समझ में ये नहीं आया कि कोयल को आप चिढ़ाते हैं, कोयल आपको चिढ़ाती है। खैर, ये तो देखने वाला विषय होगा।
1: लेकिन
0: अच्छा, बढ़िया रहा। चलिए, तीन चार जानवरों के बारे में आपने भी बताया और बहुत अच्छे से बताया कि आखिर आपके अंदर कौन कौन सा जानवर है। और मैं यही दुआ करता हूँ कि ये जो इस तरह के जानवर है वो आपके अंदर हमेशा रहने चाहिए। थैंक यू सो मच।
1: आपके लिए अभी मैं एक गाना भी गाना चाहूंगी थोड़ा सा।
0: ओके,
1: आज आपने गाना गाने के लिए भी बोला था।

0: वाह, थैंक यू सो मच अनु की आपने गाना मैंने लास्ट वीक कहा था और आपने गाया भी।
1: और सर एक बात, ये गाना ना मैंने अपनी किरण के लिए गाया है और किरण को पता चल गया।
0: अच्छा ठीक है, तो किरण जी अगर आप सुन रही हैं तो चलिए आप तक ये गाना पहुंच गया है अनु की तरफ से, एंड थैंक यू सो मच अनु कॉल करने के लिए और बताने के लिए।
1: ओके सर, किरण सुन रही है, ऐसा नहीं कि सुन रही होंगी।
0: ओके
1: पक्का यकीन है कि मेरी किरण सुन रही है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच अनु, थैंक यू सो मच।
1: ओके सर,
0: बाय बाय, टेक केयर। सो भाई ये तो थी अनु, और इन्होंने गाया भी और सुनाया भी और बताया भी। फिलहाल कुछ और जानवर हैं जो आपके अंदर हैं और कुलबुला रहे हैं आपके बाहर आने के लिए, क्योंकि आने भी चाहिए, जानवर तो होते ही बाहर आने के लिए। फिलहाल चलते हैं अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं इनके अंदर आखिर कौन सा जीव पाया जाता है। हाँ जी हेलो।
2: वाओ, वाओ।
0: अरे क्या बात है, क्या बात है, एंट्री ही जानवर से हो गई यार। भाई हमारे श्रोताओं को आप अपना नाम बता दे।
2: जी सर जी नमस्कार, ये जानवर त्रिपुरा से पहुंचा है।
0: नमस्कार नमस्कार, त्रिपुरा से हमारे अविनाश जी है, और आपने आते ही बता दिया कि भाई आपके अंदर भी एक ऐसा जानवर है जिसकी आदतें आपके अंदर है, तो जरा आप खुद से अब बता दीजिए सारी बातें।
2: जी जी, तो देखिए कुत्ते और बिल्लियां पालने का मुझे शौक है, और जो काऊ होते हैं जो उसको भी मैं पालता हूँ, तो बहुत ही मतलब कि इन सभी जानवरों को पालने के बाद मतलब कि बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए इनसे जो प्यार मिलता है, मोहब्बत मिलता है, अच्छा लगता है। क्योंकि देखिए इंसान जो क्या बोलते हैं कभी कभार बदल जाते हैं, मतलब कि उनको मतलब खत्म हो जाता है, लेकिन जानवर देखिए वो ऐसे होते हैं कि आप जितने उनको उनको प्यार देंगे वो कभी भी आपको भूलते नहीं
0: है।
2: अब आप उनको उनको बड़े ही मार उनको दो चार बार मार देंगे फिर भी वो जब भी बुलाएंगे तुरंत ही दौड़ के आएंगे आपके पास। लेकिन इंसान ऐसे होते हैं जो आप जब तक उनको खिलाएंगे पिलाएंगे तब तक सही रहेंगे, जैसे ही उनका कुछ आघात पड़ता है मन में तो वो तो आपके आपके जाके उधर किसी के पास आपके बारे में बोलेंगे, इधर उधर की बातें जो उनको आप अपने दोस्त समझ के बोला था सब कुछ उधर जाके उगल देंगे। इसलिए मतलब ये जानवर बहुत अच्छे होते हैं।
0: तो मतलब आपका कहना है कि आपके अंदर इस जानवर जैसी एक आदत है कि आप जल्दी गुस्सा नहीं होते और आप चीजों को भूल जाते हैं और आप फिर से आगे बढ़ जाते हैं।
2: जी जी बिल्कुल,
0: क्या बात है।
2: जी जी, और इसमें क्या बोलते हैं इसी संदर्भ में एक गीत मैं सुनाना चाहता हूँ।
0: हाँ जी प्लीज सुनाइए।
2: जी, बुजुर्गों ने फरमाया कि अपने पैरों पे खड़े होके दिखलाओ, फिर ये जमाना तुम्हारा है।
0: बाबा,
2: जमाने के सुर के ताल से चलते चले जाओ, फिर हर फसाना तुम्हारा है। लो भैया फिर हम अपनी पैरों के ऊपर खड़े हो गए, मिला ली है ताल, दबा ले दांतों तले उंगलियां लिया, ए जहां देख कर अपनी चाल के पग घुंघरू,
0: क्या बात,
2: पग घुंघरू बाध मीरा नाची थी, और हम नाचे बिन घुंघरू के पग घुंघरू बाध मीरा नाची थी। ओ तीर भला किस काम का है, जो तीर निशाने से चूके चूके चूके रे के पग घुंघरू बाध मीरा नाची थी। आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं, वाखुदा शक्ल से तो चोर नजर आते हैं, और गुजरी है चोरी में सुख चैन बंद जुर्म की तिजोरी में, आपका तो लगता है बस ये सपना, राम राम जपना पराया माल अपना, पराई माल और पराई नार पे नजर मत डालो, ये आदत बुरी है ये आदत अभी बदल डालो, क्योंकि ये आदत तो आग है जो एक दिन अपना घर फूके फूके फूके रे के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी
3: जी। धन्यवाद। और आज कारगिल विजय दिवस के लिए आप हम सभी देशवासियों को पूरे हमारे भारतीय सेना को दिल से शुक्रिया, क्योंकि भारतीय सेना की वजह से आज हम सुरक्षित हैं, अपने घर में महसूस कर रहे हैं, देखिए इंजॉय कर रहे हैं और आपसे बातें भी कर रहे हैं, तो हमारे इन वीर सेना के लिए मेरी तरफ से सब सब नमन है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ बेशक हम सभी भारतवासियों को कारगिल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही जो जानवरों से आपने इंट्रोड्यूस कराया वो तो बहुत अच्छा था, लेकिन हमारे एक लिसनर हैं नगेश्वर, वो चैट बॉक्स पर आपसे पूछते हैं कि आवाज़ जो आपने आते ही बोली थी वो डॉग की थी या किसी शेर की थी?
3: नहीं, वो शेर की थी। जब देखिए एक दो बिल्ली जब लड़ते हैं तो जो आवाज़ निकालते हैं वो उसकी आवाज़ थी।
0: अच्छा, नहीं थोड़ा सा बहुत बढ़िया भयानक वाली भी थी, मतलब उसको लगा तो ऐसा लगा जैसे शेर की भी हो सकती है, इसीलिए शायद इनको कंफ्यूजन
3: नहीं, नहीं, नहीं, वो शेर की नहीं थी, मतलब कि जो दो बिल्ली एक साथ लड़ते हैं तो जिस वक्त आवाज निकालते हैं वो आवाज मैंने निकाली थी आते ही।
0: अच्छा अच्छा, चलिए हमें लगा कि छोटे शेर की है, खैर कोई बात नहीं। बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया अविनाश जी, बहुत उम्दा लगा।
3: और असल में बिल्ली को शेर का मौसी भी बोला जाता है ना।
0: हाँ जी, हाँ जी,
3: तो वो मान लीजिए कि वो उसका मौसी की थी।
0: हाँ, तो यहाँ भी मौसी ही बोला जाता है, यहाँ मामी नहीं बोला जाता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
3: धन्यवाद।
0: क्या बात है, ये हमारे जबरदस्त पर्सनालिटी अविनाश जी थे, त्रिपुरा से सुनते हैं, नॉर्थ ईस्ट से प्यार देते हैं गोंडा एफएम को। सो इतनी दूर से इतना सारा प्यार देने के लिए सबसे पहले तो एक बार वापस से शुक्रिया आपका। एंड हमारे कुछ लिसनर्स और जुड़ गए हैं, चैट बॉक्स पर आ गए, हम उनकी तरफ भी चलेंगे, कुछ और कॉल्स भी आ रही हैं उनको भी हम लेने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सुनेंगे ये एक सॉन्ग। वापस से आते हैं, आने के बाद आप ज़रूर बताइए कि आपके अंदर का कौन सा जानवर है जो आपके अंदर आदतें दे रखा है और कुलबुला रहा है बाहर आने को। सो ले आइए ना।

0: हाँ जी सुभाई, फिलहाल हम आज बड़े ही इंटरेस्टिंग सवाल पे आ गए हैं कि भाई आपके अंदर ऐसे कौन सी किसी जानवर जैसी आदत है। सो इसको भी आपको बताना है ऑफ कोर्स कॉल करके। और वो आदतें बड़ी इंटरेस्टिंग है, पांच तरह की एक कैटेगरी हमने बताई भी और उस तरह के जो जानवर होते हैं वो भी हमने बताए। और लगातार आपकी कॉल्स आ रही है और आप बताते भी जा रहे हैं। फिलहाल वक्त है चैट बॉक्स पर आए कुछ नए लिसनर्स को मैसेज जिन्होंने किया है उनके बारे में बताने का, और उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि किसकी कॉल आई है और उनका क्या है कहना।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

0: सो इसी बीच में ऑफकोर्स सबलू सावन जी हैं सांता क्रूज मुंबई से। गुड मॉर्निंग अर्जदनाथ जी, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका स्वागत है, वेलकम है सबलू सावन जी। एंड साथ में लिखा है कि दूध को देखकर बिल्ली तेल में कॉकरोच सबसे ज़्यादा, इंसान ब्लड पीने में मच्छर हम ज़्यादा परेशान। अच्छा आशुमिश जी हैं लखनऊ से, आपका स्वागत करते हैं मॉर्निंग स्पेशल शो में। प्रीति जी ने बहराइच से गिलहरी बताया है, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा, कॉल करना पड़ेगा आपको। एंड इरफान शाह का स्वागत है, वेलकम है। और इरफान ने भी कारगिल विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। हम सभी को कारगिल विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नगेश्वर मौजूद हैं, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग स्पेशल शो में। और रेखा कुशवाहा जी हमारे साथ में हैं, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी वेलकम करते हैं। कैलाश नाथ जी मोतिहारी बिहार से हैं, आपका भी गोंडा FM पर कैलाश नाथ जी बहुत बहुत स्वागत है, कुंकू आवाज़ बेशक सही बात है। नायला अंसारी मौजूद है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू, स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आ रही है, चलते हैं अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं अगली कॉल पर आखिर कौन है मौजूद। हाँ जी हेलो, वालेकुम अस्सलाम। सो भाई हमारे साथ में जो है हमारी नई लिसनर जुड़ गई हैं, जो अपना नाम और अपने अंदर का जानवर दोनों ही बताने वाली हैं।
1: मेरा नाम मुस्लिम अंसारी है और जानवर मुझे, मैं कह सकती हूँ गिलहरी वाली आदत है मेरे अंदर।
0: गिलहरी वाली आदत क्या है ऐसी बात?
1: सबसे पहले जैसा आपने कहा था किताबों का शौक, मुझे पुरानी बुक जो है वो, फिर स्टोरी की हो या फिर अपने पढ़ने लिखने वाली हो, वो सारी मुझे कलेक्ट करने की बहुत सारी आदत है।
0: अरे वाह।
1: और वैसे भी सामान को जैसा आपने कहा कि कभी ना कभी काम आ ही जाती है, तो ये कहीं ना कहीं सच है, अगर आप चीजों को स्टोर करके रखते हैं तो कभी ना कभी काम आ ही जाते हैं, तो ये आदत मेरे अंदर है।
0: कभी कभी ये नहीं लगता है कि काम तो आ सकती है, लेकिन समटाइम्स इतनी ज्यादा चीजें हम जमा कर लेते हैं कि उन्हीं चीजों को कभी इधर से उठा के उधर शिफ्ट करना पड़ता है।
1: सफाई करने के टाइम
0: हम कहने जा रहे थे क्योंकि ये घर पे हमारे मसला रह चुका है काफी ज्यादा। करेक्ट करेक्ट। तो ये गिलहरी वाली आदत है कि फ्यूचर में कोई चीज काम आ सकती है, इसलिए आप उसको जमा करते हो। आपके अंदर इसके अलावा कौन से जानवर की आदत है?
1: शरारत करना बंदरों के जैसे।
0: अरे वाह।
1: हैप्पी होना मंकी।
0: हाँ हाँ जी। अच्छा
1: तो ये सर मैंने उन लोगों को कभी उदास रहते हुए नहीं देखा, उछल कूद ही करते रहते हैं, और जो इंसान गुस्सा कम करता है मुझे ऐसा लगता है कि वो भी हैप्पी हैप्पी ही रहता है। गुस्सा करने से चेहरे पे एक अजीब सा तनाव आ जाता है और चिड़चिड़ापन आ जाता है, अपने अंदर खुद से ही लड़ाई करने को दिल चाहता है, ऐसा होता है। लेकिन जब से मैंने अपने आदत को बदला है तब से मैं बहुत खुश रहती हूँ।
0: ऐसा क्या आपने अपने अंदर बदलाव लेके आई है?
1: मैंने कहा ना, मैंने आपकी बार बताया था कि गुस्सा करने की आदत को छोड़ा है और इग्नोर करना सीख लिया है, वो आदत अपनाई है बस, इससे मैं खुश।
0: तो जब से आपने गुस्सा छोड़ करके इग्नोर करने की आदत को अपना लिया, तब से आपकी जिंदगी आपको थोड़ा सा आसान नजर आ रही है। क्या बात है, और ये तो बहुत अच्छी बात है अगर आपके अंदर ये आदत आ गई है तो।
1: और मुझे किताबें कलेक्ट करने का बहुत ही शौक है, आपको आप भी देख भी सकते हैं, मेरे पास बहुत सारे कलेक्शन है बुक की।
0: अभी दिखाई तो नहीं दे।
1: बुक होते हैं मतलब स्टोरी बुक, जब फिलहाल मोबाइल नहीं था आज 10-15 साल पहले, तो मेरी बड़ी अपनी थी वो किताबें पढ़ा करती थी स्टोरी की, मैंने अभी तक उनको कलेक्ट करके रखा है अपने पास, लगभग 100-150 बुक्स होंगी।
0: क्या बात है, जो बुक्स पढ़ता है उसके पास बुक्स अगर हो 100-150 उसके लिए खजाने से कम नहीं है।
1: जी, तो मुझे बुक कलेक्ट करने का बहुत ही शौक है, कहीं से लो अगर वो आपके सिलेबस का भी हो, मतलब स्कूल में स्कूल टाइम कॉलेज टाइम का, तो वो सारी मेरे घर पे हैं, लेकिन जो स्टोरीज बुक है वो मैं अपने साथ ले आई थी यहाँ पे।
0: वाओ, बहुत प्यारी बात बताई है आपने कि आपको कलेक्ट करने का शौक है, और जैसा कि हमने बताया था ये गिलहरियों में आदत होती है, सो आपके अंदर गिलहरी की एक आदत है। और किसी जानवर की आदत है आपके अंदर गपशप करने की या चौंक जाने की?
1: नहीं, चौंकने की तो नहीं है, लेकिन मैंने अभी बताया ना शरारत करना, बंदरों की तरह उछल कूद, हैप्पी मूड में रहना।
0: सविता जी जितना या उससे कम थोड़ा सा?
1: नहीं, उनसे थोड़ा सा कम, क्योंकि हम लोग की जो जान है वो तो सविता दीदी ही है, और मैं उनसे जैसा होना भी नहीं चाहती, क्योंकि वो कोई एक ही पर्सनैलिटी होती है जिसको आप कहीं भी कभी भी याद कर सकते हैं। और वैसे भी हम लोग की सोच है ना कि किसी को देख के उनकी आदतों को अपनाना नहीं चाहिए। आप जो है वो आपकी खासियत है, और जो सामने वाला है उसकी पर्सनैलिटी है वो उसकी खासियत है।
0: सही बात है, क्या बात है। तो इसमें इसमें तो सरताज जो है वो हमारी सविता दुबे जी हैं, उसमें कोई शक की बात नहीं।
1: और सर कमल नयन भाई भी हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत
0: क्यूट
1: आपके मुताबिक हैं, लेकिन वो एक्चुअली है, क्योंकि जब उनसे आप बात करते हैं तो आप ही नहीं, आप सब जो सुनते हैं इतने लिसनर्स होते हैं, कहीं ना कहीं वो भी हंस रहे होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं।
0: करेक्ट, बहुत क्यूट है, सच में बहुत क्यूट है।
1: और कुछ बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है, जिनसे बात करते हैं आप तो हाँ ऐसा लगता है कि बातें हो रही हैं तो सुनते जाएं, जैसे पूर्णिमा दीदी है, शैलेंद्र भाई है, ये लोग।
0: चलिए पूर्णिमा दीदी, आपको याद कर लिया है इन्होंने, और आप जल्दी से कॉल आप भी कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच मोहसिना कि आपने इतने अच्छे से अपनी आदतों के बारे में बताया। आप भी जब बताती हैं तो पूरे इमोशन में डूब जाती हैं, और हम लोगों को सुनते रहना फिर अच्छा लगता है आपके बारे में।
1: थैंक यू सर, मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है।
0: नहीं, लिटरली बहुत अच्छा आपने बताया है, और ऐसे ही कलेक्शन आप करते रहिए, ऐसे ही आप बुक्स पढ़ते रहिए, बहुत सारे विशेज आपको। थैंक यू सो मच। एंड ये थी हमारे साथ में मोहसिना अंसारी फ्रॉम मोरबी गुजरात। अब देखिए भाई कहां कहां से लगातार कॉल आ रही है, किसके किसके अंदर का जानवर जो है वो जाग रहा है फिलहाल। अब देखते हैं कहां वाला और किसके अंदर वाला जाग गया। हाँ जी, हेलो,
2: सलाम वालेकुम।
0: जी वालेकुम सलाम, अपना नाम हमारे श्रोताओं को बता दिए। बेशक मैं जान गया था, बस थोड़ा सा अपना स्पीकर स्लो कर देते। हाँ जी, थैंक यू, थैंक यू। सो आपने मेरा सवाल सुना क्या मैं पूछ रहा हूँ?
2: जी जी, आपने पूछा है कि मतलब हर अपने लिसनर से पूछ रहे हैं कि आपके अंदर कौन सा जानवर है।
0: हाँ, मतलब कौन सी ऐसी आदत है जो किसी जानवर से मिलती जुलती है।
2: जी सर,
0: तो मैं आपसे भी सेम सवाल ही जानना चाहूंगा।
2: नहीं, मैं सर मेरे अंदर तो कोई जानवर वाली आदत तो है नहीं साहब।
0: ऐसे कैसे हो सकता है?
2: नहीं, इंसान में कोई जानवर वाली आदत कोई नहीं हुई है।
0: नहीं, हो सकता हो शेर वाली हो, अपना मानते ही नहीं होंगे ये हमारे अंदर कुछ है ही नहीं, दिक्कत ही नहीं।
2: नहीं नहीं, शेर वाली तो नहीं है, शेर तो बहुत
0: देखिए मैंने कुछ जानवरों के बारे में बताया था, जैसे हमने कहा था बिल्लियां और तेंदुए होते हैं, ये लोग अलग रहना पसंद करते हैं। फिर मैंने बताया था गिलहरी के बारे में, जिसको जमा करना ज़्यादा पसंद आता है। फिर खरगोश हिरण के बारे में, ये लोग चौंक बहुत जल्दी जाते हैं। चिंपैंजी बंदर जो होते हैं वो गपशप बहुत करते हैं, चुगली करते हैं एक दूसरे की। और जो भालू, जी
2: जी जी जी बताइए।
0: और भालू जो होते हैं वो थोड़ा सा आराम पसंद करने वाले होते हैं। तो क्या कोई और जानवर ऐसा है जिससे कोई आदत आपकी मिलती जुलती हो? मैं भाई पूछ रहा हूँ।
2: आदत तो कोई नहीं मिलती साहब, लेकिन मुझे ऊँट बहुत पसंद है।
0: ऊँट बहुत पसंद है
2: जी।
0: तो कभी आपने सोचा नहीं कि लाओ आज ऊँट की तरह चल के दुकान जाते हैं अपनी?
2: उसकी टांग बहुत बड़ी होती है भैया, अपनी तो टांग छोटी छोटी, चल नहीं पाएंगे ना।
0: वो लॉन्ग बूट पहनने के बाद हो सकता है आपको एहसास हो कि बहुत लंबी टांगे होगी।
2: इसका इमेजिन आपने करवा दिया, मतलब उस तरह से सिचुएशन को महसूस करने का है ना? एक आभास करवा दिया आपने, है ना?
0: वाह, क्या बात है। वैसे क्या क्या रीजन है, ऊंट क्यों इतना ज्यादा पसंद है आपको?
2: दरअसल ऊंट का जो चेहरा है मुझे ना, मतलब जानवर तो सभी प्यारे हैं, लेकिन ऊंट का फेस है ना वो मुझे पता नहीं कि बहुत मासूम दिखता है।
0: अरे वाह, सही बात है, बहुत सटीक बात आपने कही। ये चीज अगर कोई सोचे तो सच में ऊंट बहुत मासूम दिखते हैं, बात तो बिल्कुल सच है। चलिए बहुत अच्छी बात है। और लेकिन आपकी जो भी आदतें हैं उसमें से एक आदत मैं जानता हूँ, बहुत खुश रहने की आदत है आपकी।
2: जी साहब।
0: और अगर मैं कहूँ कि ये किस जानवर से, तो शायद मंकी ऐसे होते हैं जो बहुत खुश रहते हैं, और ये आदत शायद मुझ में भी काफी हद तक है, तो मुझे ये आपकी आदत बहुत अच्छी लगती है।
2: जी साहब। और एक आपसे बात पूछनी थी।
0: जी पूछिए।
2: अभी कुछ दिन से आप दिखाई नहीं पड़ रहे साहब, क्या हो गया?
0: दिखाई नहीं पड़ रहे मतलब? हम तो सुनाई पड़ेंगे ना। जी जी,
2: आप इधर दिखाई नहीं पड़ रहे निकलते समय, क्या हो गया?
0: अच्छा, निकलते समय नहीं तो आप ऐसे समय आप निगाहें उठा के देखते ही नहीं होंगे, आप कहीं काम में बिजी रहते
2: हैं। अरे नहीं साहब, मैं तो बहुत दिन से अपने महबूब को देखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ रहा है मुझको।
0: मेरे महबूब देख लिया तो कयामत होगी। नहीं नहीं, इधर ही से जाते हैं, बीच में बस ये था पानी आपकी तरफ ज्यादा भर जाता है जब बारिश होती, तो इसलिए वो रास्ता हमने कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया था, और कोई बात नहीं।
2: बस वही तो वजह है कि आपकी ज़ियारत नहीं हो रही थी भैया।
0: मैंने क्या कहा, कयामत होगी यानी गिर जाएंगे तो बिल्कुल चोट लग जाएगी।
2: नहीं नहीं, आप नहीं गिरेंगे साहब, अगर आप गिरेंगे तो आपको उठाने वाले बहुत हैं।
0: अरे बहुत शुक्रिया, ये बहुत बड़ी बात है, एंड बहुत अच्छा सच में लगता है आपसे बातचीत करके। आपकी जिंदा दिली आपके अंदर आपकी पहचान है, और यही सबसे बड़ी आदत है आपकी।
2: बहुत बहुत शुक्रिया
0: साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। और आज या जब भी आपके पास आपको लगे कि आप कुछ सुना सकते हैं दो लाइन, तो हम आपसे सुनना भी चाहेंगे।
2: चलिए चलिए आपके लिए सुना देता हूँ, आपके लिए, आपको डेडिकेटेड है।
0: जी प्लीज प्लीज।
2: मेरे महबूब कयामत होगी, अगर सुहा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। बस इतना ही साहब।
0: क्या बात है, क्या बात है, जो गाना मैंने मजाक में गाया था उसको आपने प्यार से मुझे डेडिकेट कर दिया, ये अदा बहुत अच्छी लगी, एंड थैंक यू सो मच कि आपने हमको कॉल किया।
2: शुक्रिया,
0: बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे हमारे साथ में हमारे रईस जी, जो कि गोंडा से ही सुनते हैं और काफ़ी बेहतरीन बिहेवियर के मालिक हैं, यानी कहीं ना कहीं बात करने का लहजा आपका और अपने को प्रकट करने का, ये बहुत बड़ी बात होती है, एंड थैंक यू सो मच। फिलहाल चलते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं कि अगली कॉल पर आखिर कौन है मौजूद। सो अगली कॉल तो हम लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर का भी जानवर जो है वो जगना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ये जानवर जगने का। क्यों? क्योंकि हर किसी के अंदर एक जानवर है और वो आदत है। यूँ तो हमें अजीब लगता है कि यार कोई जानवर कह रहा है, लेकिन ज़रा सोचिए कैसी कैसी आदतें होती हैं जो हम खुद चाहते हैं कि हमारे अंदर हो, और इतनी प्रीमियम आदतें होती हैं तो हम इंसान भी जानवरों की आदत लेकर के बहुत अलग ही नज़र आने लग जाते हैं। तो जानवरों को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। फिलहाल आइए चलते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं अगली कॉल पर आखिर कौन है मौजूद। हाँ जी, हेलो हेलो, ओके, मे बी कोई टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे हैं। सो एक बात तो पक्की है कि ये जो भी आदतें हमारे अंदर है ये बहुत ज़्यादा हमको अलग बनाती है, राइट? एंड अगर आपके अंदर भी ऐसी कोई आदतें हैं तो प्लीज़ बताइए। फिलहाल आइए देखते हैं अगले कॉलर जुड़ गए हमसे। हाँ जी हेलो,
3: गुड मॉर्निंग
0: जी, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? सुबही, हम बता दें हमारी आशु मिश्र जी लखनऊ से जुड़ चुकी हैं और साथ ही साथ बताने वाली कि ऐसी कौन सी आदत है जो किसी जानवर से मिलती जुलती है। जी बताइए।
3: सर ऐसी तो कोई आदत ही नहीं है जो जानवरों से मिले।
0: क्या बात कर रही हैं, मैं फोन कट कर रहा हूँ फिर।
3: सर जी
0: आज तो बताना ही पड़ेगा, आज तो छिपा नहीं सकते।
3: बिल्कुल सर जी, बहुत जब छोटे थे सर जी तो बकरी की आवाज बहुत अच्छे निकालते थे, पता नहीं भगवान जाने हम निकाल पाएंगे ना निकाल पाए।
0: कोई बात नहीं, कोशिश तो करने ही वाली बात है।
3: खेलते थे बहुत जाके सबके दरवाजे, जिसके यहाँ बकरियाँ होती थी।
0: अच्छा।
3: वहाँ जाके दरवाजे पे खतर में बोल के चले आते थे, सब कहे कहाँ रह गई मेरी ये बकरी।
0: और अक्सर कपड़ों को या दफ्ती को या कागज को चबाने की भी आदत हो जाती बच्चों की।
3: बिल्कुल सर, हमारे यहाँ तो गिलहरियाँ आती हैं।
0: अरे वाह, आज भी आती हैं?
3: बिल्कुल आज भी आती है सर जी, उनके लिए मैं मूंगफली और ये चने और ये सब रख देती हूँ, आती हैं और बहुत अच्छा लगता है जब वो दोनों हाथों से ऐसे खाती हैं, बच्चे देख के बहुत खुश होते हैं। बहुत देखते हैं, वीडियो भी बना रखी है हमने।
0: क्या बात है,
3: कई गिलहरियाँ आती हैं सर जी।
0: नहीं बहुत अच्छा लगता है, ये आपने सही कहा कि जब वो उठा करके दोनों हाथों से खाती है ना,
3: बहुत अच्छा लगता है,
0: बहुत ही अच्छा नजारा होता है सच में, लिटरली।
3: पहले तो वो सर जी हम लोग को देख के डरती थी, जैसे लगता है अब तो जान गए कि हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, तब तो आप नहीं डरती।
0: सही बात है
3: जी सर।
0: तो ये गिलहरी को तो आपने देखा है, लेकिन आपने आदत नहीं बताई, एक तो बकरी वाली बताई, ये तो समझ में आया।
3: बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और कोयल बोलती है तो उसकी नकल जरूर उतारती। बच्चे कहते हैं क्या है मम्मा?
0: ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी आदत है, तो चलिए एक बार सुनाइए एक बार।
3: और जब सर जी वो बोलती है तो जितना बोले उतना ही उधर से रिप्लाई आता।
0: अरे वाह, मतलब कहीं ना कहीं आप उनको ये एहसास दिला देते हैं कि उनकी आप अपने हैं कोई।
3: बिल्कुल सर जी, तो मैं सर जी बकरी की आवाज निकालने की कोशिश करूंगी।
0: प्लीज प्लीज
3: सर जी।
0: नहीं निकाली अभी, प्रॉपर सुना नहीं हम लोगों ने। ऐसा कुछ निकाली। एक बार और, बहुत स्लो आ रही है। आ तो बहुत अच्छी रही लेकिन बहुत स्लो आ रही है, थोड़ा सा तेज। ओह माय गॉड, एकदम डिट्टो, मतलब कोई फर्क ही नहीं है। वाह क्या बात है, मान गया आपको। ओ माय गॉड, बहुत बहुत उम्दा, मतलब जितनी तारीफ की जाए कम है, क्या बात है।
3: अब कोयल की तरह कोशिश करती हूँ सीटी बजा के।
0: प्लीज प्लीज। वाओ, मतलब आपको पता नहीं, पता हो या नहीं पता हो, लेकिन आपका ऑब्जर्वेशन जो स्किल है, आप जो ऑब्जर्व करती हैं वो इतना परफेक्ट करती हैं, क्या बताएं। एकदम बिल्कुल डिट्टो वैसे ही है, मतलब मजा आ गया, लिटरली बता रहे मजा आ गया।
3: सर जी हम इसी में बहुत मशहूर है कि हम सबकी नकल उतार, सब लोग कहते हैं इसके सामने मत कुछ कहा करो, सबकी नकल उतारती है बहुत अच्छा।
0: और मान ली अगर भैंस को देख लिया तो कैसे करती
3: है? अरे सर जी नहीं नहीं
0: नहीं, जैसे अभी आपने कहा ना कि जिसको देख लेते हैं बच्चे कहते हैं अरे इनको मत दिखाओ नहीं तो शुरू हो जाएंगे। तो
3: कोई जैसे हम लोग में कोई भी बात कर रहे हैं जैसे उनकी इंसानों में कह रहे हैं सर जी,
0: इंसानों में
3: तो जी सर जी बहुत अच्छा नकल उतारती है।
0: कमल नयन जी की आप नकल उतार सकती हैं?
3: अरे सर जी उनसे नहीं उतार सकते, कमल नयन जी तो बहुत महान है।
0: वो शख्स नहीं है, शख्सियत है, वो व्यक्ति नहीं है, व्यक्तित्व है।
3: बहुत बहुत सही बात है, बढ़िया इंसान,
0: बिल्कुल
3: सच्चे दिल इंसान।
0: बिल्कुल बिल्कुल। एंड अगली बार मैं कोशिश करूंगा कि अगर आपने भैंस देख ली इसी एक हफ्ते में तो अगले संडे तक हम उस भैंस को भी लॉन्च कर देंगे आपकी आवाज में। नहीं नहीं, कीमत की बात ही नहीं, यहाँ बिना कीमत के ही करना पड़ेगा क्योंकि बहुत कम बजट रहता है अपना, लेकिन ये की कोशिश जरूर करिएगा आप। एंड थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए।
3: थैंक यू सो मच।
0: वाह क्या बात है, ये हमारी आशु मिश्र जी थे, देख कितनी प्यारी और कितनी जबरदस्त ऑब्जर्वेशन स्किल है, मतलब इस तरह से अगर आप देखते हैं ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि मतलब कोई शख्स इतना क्लियर बोल ले और इस तरह से आवाज़ निकाल लें, अपने आप में सच में बहुत बड़ी बात है। सो चलिए, आपके अंदर कोयल जो थी वो हमने सुना और बहुत ही प्यारी कोयल थी, इवन दो बकरी भी बहुत ज़बरदस्त, मतलब बकरी का तो एकदम लिटरली ऐसा लगा जैसे बस यही है एकदम, है ना। चलिए फिलहाल चलते हैं अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं अगली कॉल पर आखिर कौन है मौजूद। हाँ जी हेलो।
4: हेलो
0: जी, क्या नाम है आपका?
4: गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग।
4: मेरा नाम है अनूप कुमार भट्टाचार्य, मेरा गांव का नाम है राम कृष्ण नगर, डिस्ट्रिक्ट श्री भूमि, असम से तालुका थे, है ना।
0: अरे वाह क्या बात है अनूप जी, सबसे पहले तो नमस्कार, स्वागत है आपका गोंडा एफएम पर।
4: जी जी जी, बहुत अच्छा लगा आपका आवाज तो, बेस्ट कुमार, बहुत गजब की आवाज है आपका।
0: आपकी भी कम नहीं है, बहुत अच्छी है। और सवाल
4: अच्छा लगा।
0: जी बहुत शुक्रिया, सवाल आपने सुना, हम क्या पूछ रहे हैं सबसे?
4: जी तो आज मेरा छोटे भाई अविनाश जी मतलब फोन करके बोला, ये जो रेडियो क्या बोले, ज्ञान शक्ति ना क्या,
0: ज्ञान स्थली, ज्ञान स्थली,
4: ज्ञान स्थली है। जी जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी, जी। इसमें थोड़ा बहुत क्या होता है मतलब बाकायदा इस प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत इधर उधर होता है,
0: वो समझते बिल्कुल
4: तो, जी। और बहुत अच्छा लगा आपने मेरा कल उठा लिया और इसमें क्या होता है, आपका कोई टॉक शो और नहीं तो गाना गाना बना सब होता है ना, क्या होता है? हाँ, ये तो जानकारी पूरा नहीं है मेरा।
0: हम समझ रहे हैं, अभी आपको जस्ट जोड़ा होगा। दरअसल ये बिल्कुल वैसी एफएम है जैसे आप रेडियो सुनते हैं, लेकिन संडे को इस मॉर्निंग शो में जो हमारा 8 से 11 आता है गुड मॉर्निंग गोंडा, तो हर रविवार को एक घंटा हम बात करते हैं सभी लोगों से जो सुनने वाले हैं 10 से 11, जिसमें आपकी भी कॉल आई है और इसीलिए हमारी आपकी बात हो रही है।
4: जी जी जी। अच्छा सर, आपका नाम क्या है? बहुत अच्छा लग रहा है आपका, और जैसे लग रहा है कोई आकाशवाणी का कोई अनाउंसर कोई उद्घोषक ऐसा लग रहा है।
0: बहुत शुक्रिया। मेरा मुझे आरजे अदनान कहते हैं।
4: और क्या बात
0: जी, बहुत शुक्रिया।
4: क्या होता है, एक बात है, जीत किसके लिए, जीत किसके लिए, हार किसके लिए, जिंदगी भर ये तकरार किसके लिए, जो भी आया है वो जाएगा एक दिन, फिर ये अहंकार किसके लिए, है ना?
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत कविता की कुछ लाइन आपने बताई।
4: जी जी जी। और क्या होता है, देखिए ये जो ऑनलाइन इंटरेक्ट कार्यक्रम होता है कभी क्या बोले आकाशवाणी के, और दूसरी जो क्या बोले ये जो आपका जो रेडियो में होता है ये प्राइवेट जो है,
0: बिल्कुल,
4: वो क्या नाम हो, क्या नाम होते हैं, मैं तो भूल ही गया।
0: रेड एफएम है, रेडियो मिर्ची है, बिग एफएम है, फीवर एफएम
4: है। जी जी जी जी, ऐसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मनोरंजन का ये जो जरिया है इसमें क्या होता है, हमारे दिनचर्या एकदम गजब के स्टाइल पे स्टाइल में चलता है, क्योंकि जब हम बातें करते हैं आप जैसे आर जैसे, ऐसा मानो मतलब हमारे दिल में एक के सुकून भर उठते हैं, आज दिन तो एकदम अच्छे जाएंगे, ऐसा ही सुकून मिलता है ना?
0: बिल्कुल सही बात, बिल्कुल।
4: और आपका जो ये अविनाश जी है, और एक के मेरा सिस्टर है जिसका नाम है अनु अनु पांडे जी।
0: अच्छा,
4: वो
0: अच्छा,
4: भी अच्छा। वो भी आप आपके प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं
0: जी,
4: और बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आज मैंने सुन लिया आपका आवाज, और आवाज के जरिए इस प्रोग्राम का जो क्या होता है हैवीपन, और इस प्रोग्राम का जो वेट होता है ये तो क्या बेशुमार होता है, क्या कहूँ, मतलब ये 24 कैरेट्स का मानो होता है, है ना? जी।
0: बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है।
4: जी जी जी। क्या होता है, देखिए हमारे एक के रेडियो चैनल ये जो आपका गुड़गांव के,
0: जी
4: गुड़गांव के आवाज में पहले मैं फोन करता था, तो एक दिन क्या हुआ, मैंने फोन किया और थोड़ा बहुत शायरी मैं अनाउंस किया, लेकिन जब रिपीट प्रोग्राम में मेरा शायरी वो क्या कर एग्जेम्प्ट कर दिया, तो मैंने बोला इतना सुंदर इतना अच्छे करके शायरी मैंने पेश किया, मतलब आपने ये जो रिपीट प्रोग्राम में ये क्या कर दिया, तो जो अनाउंसर होते हैं ना वो बोल रहे हमारा तो हाथ में नहीं है और कोई ऐसा कर दिया, मैंने बोला ऐसा आप तकरार करते हैं बर्ताव करते हैं तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कभी आपका इस गुड़गांव की चैनल पे फोन नहीं करूँगा, ये मेरा वादा है। तो आज से मैं फोन नहीं किया, अविनाश जी जानते हैं सुनते हैं मेरा कॉल नहीं आते हैं, और आज अविनाश जी अनु जी ने फोन किया, बोला जे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कीजिए और बहुत अच्छा लगेगा।
0: नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा, और स्पेशल शुक्रिया अनु पांडे का और हमारे अविनाश जी का,
4: अविनाश जी का जी,
0: बिल्कुल, जिन्होंने आपको बताया इस बारे में और आप जुड़े, और हम उम्मीद करते हैं कि अगले हफ्ते से संडे संडे में आप जब भी मौका मिलेगा।
4: आप जैसे अनाउंसर बहुत क्या मतलब बहुत क्या बोलते हैं खुश मिजाज एकदम डाउन टू अर्थ क्या बोले ऐसे ऐसे जो है आप वैसे ही है, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू,
0: थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच
4: सो मच सो मच।
0: सो ये हमारे साथ में अनूप जी देखिए आए और असम से इतना सारा प्यार देने के लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और कहीं ना कहीं देखिए ये बात सच है कि जबान हो या फिर आप मान के चले कि कोई लैंग्वेज है या कोई जगह है, ये बैरियर बन ही नहीं सकता, क्योंकि जहाँ पे कुछ इमोशन है, कुछ रिस्पेक्ट है, कुछ प्यार है, तो वो सारी सीमाओं को तोड़ देता है। फिलहाल हम चलते हैं अगले लिसनर बोले या जानवर बोले, खैर जो भी आप समझ लें। सो फिलहाल अगले लिसनर की तरफ चलते हैं और देखते हैं जानवर की कौन सी आदत इनमें है। हाँ जी, हेलो हेलो
5: हेलो, संडे वाला गुड मॉर्निंग
0: आर्जेदान
5: सर।
0: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप?
5: बहुत बढ़िया, तमी केम छो?
0: मोजा मचे और स्टूडियो के अंदर बैठा छे।
5: स्टूडियो में बैठे थे।
0: स्टूडियो के चेयर पे बैठे थे।
5: जी।
0: तो अपना हालचाल तो आपने बता दी, अब कौन सा जानवर है ये भी जरा बता दीजिए आपके अंदर।
5: जानवर नहीं, मुझे पंछी पसंद है।
0: नहीं, पसंद तो एक अलग बात है, मैंने पूछा ऐसे कौन सी आदतें हैं जो किसी जानवर जैसी आपके अंदर है।
5: ये तो नहीं बता सकती, इन
0: पर
5: बताना नहीं चाहती
0: हूँ।
5: बिल्ली डर भी बहुत लगता है, क्यूट भी बहुत लगती है।
0: तो कैसे लगे, कौन सी ऐसी आदत है डर भी बहुत लगता है?
5: तो बिल्लियों की सबसे ज्यादा आदत है कि मतलब कितना भी उसको डांटो कुछ भी को फर्क नहीं पड़ता उसको, अगर जिसको कुछ करना है वो करके रहेगी।
0: वाह क्या बात है।
5: मतलब अगर उसको किसी के घर में जाके दूध गिराना है, दूध पीना है, दही खाना है, मीठा खाना है, तो वो खा लेगी।
0: हाँ ये तो बात सही है।
5: चूहों के पीछे पड़ जाए सर, तो जब तक चूहों को पकड़ नहीं लगती, मतलब कसम खा के जैसे आती कि एक चूहे का शिकार तो मैं करके रहूंगी।
0: वाह।
5: तो मुझे लगता है बिल्लियों के रखने का फायदा भी होता है।
0: किसका शिकार
5: सारे चूहे ढूंढ के लाती है।
0: आपने किस चूहे रूपी मनुष्य का शिकार किया है?
5: तो मैंने किसी चूहे रूपी मनुष्य का शिकार नहीं किया है। लेकिन मुझे अच्छी लगती है, लेकिन मैं डरती भी बहुत, तो खासकर जब रात में बाथरूम के साइड अगर उसको देखूं तो बहुत डर लगता है।
0: बात नहीं। लेकिन ये काफी मजेदार रहा। और आपके अंदर का ये जो क्या बोला, चूहा नहीं बिल्ली आपके अंदर की बरकरार रहे।
5: क्यूट सी होती है ना सर, बहुत मासूम सी होती है, और डरती तो बिल्कुल भी नहीं है।
0: बिल्कुल सही बात है, ये बात बिल्कुल परफेक्ट बताई आपने कि जो करना वो तो करके ही ये लोग आते हैं,
5: करके
0: और झगड़ा भी नहीं करते हैं,
5: तो बड़ी बखूबी तरीके से करती है।
0: करेक्ट। एंड और कोई जानवर आपके अंदर जो पिंजरा खोल के बाहर आना चाह रहा है, कोई है बताना चाहेंगे आप?
5: मुझे जानवर कम ही पसंद आते हैं, और जो भी पसंद आते हैं मैं डरती भी बहुत हूँ, चाहे वो बंदर हो, चाहे वो डॉगी हो, मतलब कोई भी जानवर। तो इसलिए बिल्ली मारने में थोड़ा इजी रहता है, अगर किचन में हो और बेलन उठा के देखो तो मतलब थोड़ा सा डर भी जाती है, चली भी जाती है फिर के लिए।
0: बढ़िया।
5: बाकी मुझे सर वो बहुत पसंद है, पक्षी में
0: पसंद तो जाहिर सी बात होगा, आपको चूहा भी बहुत पसंद है, विलायती वाला, वो एक अलग की बात है। हम तो बस आदतों के बारे में आज पूछ रहे थे।
5: बट मुझे बिल्ली थोड़ी सी ज्यादा, मतलब उसका निशाना बड़ा खूबसूरत होता है।
0: वाह बहुत बढ़िया। चलिए बिल्ली, अगर कोई भी बिल्ली से मैं निवेदन करता हूँ, अगर आप इस शो को सुन रही है, सो प्लीज जाके पूर्णिमा जी से मिल लीजिए आज।
5: मैं ना छोटी थी, तो मेरी फर्स्ट स्टैंडर्ड में जब मैं थी, तो मेरे मतलब उसने एक राइम सीन दी की, जिसमें था कि मैं मम्मी को बहुत चिढ़ाती थी क्योंकि मेरी मासी नहीं है, तो मैं पापा के सामने हमेशा कहती थी कि बिल्ली मासी, बिल्ली मासी, म्याऊ म्याऊ तू करती है क्या, सचमुच ही तू मम्मी की सगी बहन लगती है। मम्मी बड़ा गुस्सा करती थी, कहती थी मेरी बहन को बिल्ली से कंपेयर कर रही, मुझे कंपेयर कर रही बिल्ली से।
0: मतलब हमसे ही मजे है।
5: तो मैं पापा बड़े हंसते थे इस बात से, कहती थी और और और थोड़ा और थोड़ा और।
0: पापा भी मजे ले जाते थे।
5: ये हाँ, ये कविता मुझे आज तक घटी, इनफैक्ट अभी भी कभी कभी कहती हूँ, जब मैं बिल्ली को देखती हूँ तब मैं उसको भगाने के बजाय मैं कहती हूँ बिल्ली मस्ती म्याऊ म्याऊ तो कहती है क्या सचमुच ही तो मम्मी की सगी बहन लगती है।
0: वेरी नाइस। बहुत खूब, बहुत खूब। एंड बहुत सारी दुआएं हैं कि आप ऐसे ही खुश रहिए और आपके अंदर की बिल्ली ऐसे ही आपके अंदर सलामत रहे।
5: जी सर, मैं एक सॉन्ग सुनाना चाहती हूँ,
0: प्लीज।
5: जी तो सुना सकती हूँ?
0: जी जी बिल्कुल, बट बिल्ली की आवाज में नहीं, अपनी आवाज में प्लीज।
5: सर अपनी आवाज में जो भी है
0: तब ठीक है, तब ठीक है।
5: जी

जितना कहोगे उतना तुमसे प्यार करेंगे, जो भी कहोगे पूरा ऐतबार करेंगे। थोड़ी सी शरारतें थोड़ी सी शिकायतें होंगी भी तो रुठेंगे ना हम।

0: थैंक यू।
1: क्या बात है, क्या बात है, वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चूहा भी दे दिया है, दूध की पतीली खुली छोड़ देंगे, जितना पी के जाना हो तुम जाओ। बिल्ली के लिए ये हमने डेडिकेट किया है।
0: सर मैंने दरअसल ये सॉन्ग इसलिए सुना
1: जी,
0: सुनाया, पसंद भी बहुत है, और इसका कारण ये है कि जब मेरी दीदी और जीजू की एनिवर्सरी थी तो सभी ने जीजू को गिफ्ट दिए थे, जो जीजू के फ्रेंड्स आए थे दीदी की भी तरफ से कुछ खास थे, लेकिन मैंने ना उनको ये सॉन्ग गिफ्ट किया था, मतलब गिफ्ट तो दिया ही था लेकिन सॉन्ग भी साथ में गिफ्ट किया था।
1: वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। लेकिन बहुत मजा आया आपसे बात करके और इस बात को स्पेशली सुन करके, थैंक यू सो मच।
0: आज मैं सॉन्ग आपको सुनाती हूँ।
1: बेशक बेशक, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपको डिमांड, थैंक यू सो मच कि आपने आपको कॉल भी किया।
0: जी सर, थैंक यू, इनफैक्ट बहुत टाइम बाद आपसे बात हो रही है।
1: करेक्ट, थैंक यू, थैंक यू।
0: ओके सर, बाय
1: बाय, बाय बाय, टेक केयर। सुबह ये तो थी हमारे साथ में ऑफकोर्स पूर्णिमा, और कहीं ना कहीं इतनी सारी बातों में एक बात तो समझ में आई कि भाई हर एक में कोई ना कोई एक जानवर की आदत सच में है, और वो बड़ा खूबसूरत है। फिलहाल आज के लास्ट कॉलर की तरफ, और देखते हैं लास्ट कॉल पर कौन है। हाँ जी, हेलो।
2: हेलो
1: जी, क्या नाम है आपका?
2: गुड मॉर्निंग सर, दीपांशी तिवारी।
1: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दीपांशी, कैसी हैं आप?
2: बहुत अच्छी, आप कैसे हो?
1: बहुत बढ़िया। आज कौन से जानवर आपके अंदर है? बहुत सुस्त लग रहा है, भालू वालू है क्या?
2: आपको क्या लगता है?
1: हमको भी यही लगता है, तभी हमने कहा। भैया ये हंसने वाला कोई जानवर नहीं देखा मैंने, मैंने सारी चीजें देखी, कोई जानवर हंसने वाला नहीं देखा। तो कौन कौन सा जानवर है आपके अंदर ये बता दीजिए। अच्छा, तो कोई डायनासोर और तो नहीं निकल रहा अंदर से, बहुत ही पुराना था अब निकल रहा हूँ? अरे नहीं, मतलब खिकी खिकी करना तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है।
2: वैसे मुझे हर जानवर अच्छे लगते हैं, और इंसान
1: अरे तो प्लीज, एक मतलब लगभग 4.5 पेग लगाने के बाद कैसी आवाज निकलती है? अच्छा वो तो सही था, लेकिन कौन सा ऐसा जानवर है जो ड्रिंक करता है? कोई नहीं है ना, तो ये चलेगा नहीं, लेकिन आज इतना चल बे। कुछ और बताना पड़ेगा आपको। आपको
2: रोते हैं?
1: नहीं, आपको ये समझ में आया ना कि आज हम बात किस विषय में कर रहे हैं?
2: वही तो मैं सोच रही हूँ, जानवर आज यहाँ कहाँ से आ गए, कहाँ से टिपक पड़े, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
1: हाँ, तो असल में हुआ ये कि हमने बताया कि कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो इंसानों में जानवरों जैसी होती है। जैसे हमने बताया था बिल्लियां और तेंदुए में क्या है, वो भीड़ से अलग रहते हैं, कुछ इंसान भी अलग रहते हैं, अकेले रूम में अपना वक्त गुजारते हैं। गिलहरी का काम होता है इकट्ठा करना, कुछ लोगों की भी आदत होती है, सामान इकट्ठा करते रहते हैं। और हिरन और खरगोश होता है, ये चौंक जाते हैं कोई भी आने से, कुछ नया होने से। ऐसे कई इंसान भी होते हैं जो थोड़ा जल्दी डर जाते हैं, चौंक जाते हैं। चुगली करना जो है बंदरों और चिंपैंजीज का काम है, और इंसानों में जानते हैं आप कितनी चुगली होती है एक दूसरे के लिए। और भालू जो है वो थोड़ा सा सुस्त रहता है, उसको थोड़ा आराम करना ज्यादा पसंद होता है। तो कौन सा जानवर है आपके अंदर, मैं यही जानना चाह रहा था।
2: गिलहरी का ज्यादा है।
1: किसका?
2: गिलहरी का।
1: गिलहरी का ज्यादा है
2: मुझे जी, क्योंकि इंसान हो या कोई सामान हो या फिर कोई रिश्ते हो, मुझे जोड़ने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है।
1: तो मतलब किससे जोड़ते हैं आप, फेविक्विक से किससे जोड़ते हैं आप?
2: जिस चीज से जुड़ाने की उम्मीद होती है उसी से हम जोड़ देते हैं।
1: अरे कितनी इमोशनल बात कर रहे हैं आप। नहीं मतलब कितनी इमोशनल बात कर रहे हैं आप।
2: नहीं इमोशनल की बात नहीं है उसी में, क्योंकि रिश्ते अगर टूटते हैं तो धागों में बांधा जाता है।
0: दोस्ती टूटती है तो सच्चाई बताकर जोड़ा जाता है।
1: सही बात है।
0: और कोई सामान लाना है तो एकता बनाकर समझौता कर कर लाना है।
1: है ना। और कोई इंसान अगर कूदता है और टांग टूटती है तो कैसे जोड़ा जाता है?
0: वो डॉक्टर के यहाँ ले जाया जाता है।
1: हमें लगा इसको भी कह रहे धागे से जोड़ लिया जाता है, वही मैंने कहा कुछ ज्यादा ही धागा काम आ रहा है।
0: उसमें उसमें भी धागे का भी काम लगता है। मैं फिर वो काम किसी और का होता
1: है। आ गया धागा आ गया, हमें लग ही रहा था आएगा। थैंक यू धागा लाने के लिए, थैंक यू आपका। बहुत बढ़िया।
0: आप बताइए आप में कौन से जानवर है?
1: ये क्या सवाल था? मैं सवाल कर रहा हूँ, आपने मुझसे सवाल कर लिया।
0: ये बहुत अच्छा सवाल, क्योंकि सबसे आपने पूछा होगा लेकिन आपसे किसी ने सवाल नहीं किया होगा, तो आखिरी कॉल मेरी होगी शायद।
1: ठीक है। सो मुझ में थोड़ा सा गिलहरी है कुछ किताबों को लेकर के, जमा करना अच्छा लगता है, हालांकि पढ़ नहीं पाते लेकिन जमा करना बड़ा अच्छा लगता है। दूसरा है कि जी दूसरा है बंदर और चिंपैंजी वाला, यानी थोड़ा सा एक्टिव ज़्यादा रहते हैं, दोस्तों के बीच होंगे तो बिल्कुल नहीं सोचते हैं क्या है, बस फुल टाइम मस्ती हो रही होती है। एंड तीसरा अगर मैं बताऊँ तो हाँ कुछ तो भालू जैसा भी है कि थोड़ा सा काहली आ जाती है समटाइम्स ज़्यादातर, और हम जो है वो कहीं ना कहीं अपने ही कामों में ज़्यादा रहते हैं। तो हमारे अंदर लगभग ये तीन जानवर तो हैं ही, इसके अलावा अगर आपको चौथा कोई जानवर मुझ में नजर आता है तो आप बता सकते हैं। आता है
0: जानवर तो कई मिले, बट कुछ खूबियां आपसे मिली, एक नहीं मिली भालू वाली, क्योंकि भालू वाली खूबियां हम में नहीं है।
1: अच्छा, आप में नहीं है भालू वाली, खैर आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। बट ये है कि आपके अंदर का जो जानवर है उसको जान करके मुझे बहुत खुशी हुई, तो थैंक यू सो मच दीपांशी कि आपने अपने अंदर के जानवर को बाहर जगाया, और ना सिर्फ जगाया बल्कि यहां तक आप लेके भी आई। सो भाई फिलहाल बातचीत करते करते वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले चैट बॉक्स पे कुछ मैसेजेस आ चुके हैं, और आज तो चैट बैक्स जो है वो एकदम गुलजार है पूरी तरह से। सो अमित सिंह फ्रॉम मुंबई मौजूद हैं, हाय हेलो, आपका भी स्वागत है, वेलकम है। एंड यस, इसके अलावा आप लोगों ने काफ़ी मज़े किए हैं, धर्मेश त्रिपाठी आपका भी स्वागत करते हैं, गुड मॉर्निंग धर्मेश, स्वागत है गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। एंड यस थैंक यू सो मच टू एवरीवन जो इस शो से जुड़े हुए रहे और लगातार जिनसे हमारी बातचीत भी हुई, काफ़ी अच्छा भी लगा। लेकिन फ़िलहाल अब चूंकि वक्त आपसे विदा लेने का आ चुका है, सो चलिए फ़िलहाल चलते हैं और इस गाने को सुन लेते हैं, और उसके बाद आपसे मिलते हैं अगले ही प्रोग्राम हम्टी डम्टी विद गीता दीदी के उस स्टोरी में जो गीता दीदी आपको सुनाती हैं, और साथ ही साथ फिर आपको मिलते हैं एक से दो आपके अपने टैलेंट शो, अपना टैलेंट अपना FM यानी कि ओपन माइक में। Stay tuned.

0: हम अतुल कुमार कश्यप, आप सुनत हो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: हां जी, एक बार वापस से आपका स्वागत करते हैं आपके संडे स्पेशल, बच्चा स्पेशल, पार्टी स्पेशल शो हम्टी डम्टी विद गीता दीदी में। और अच्छी बात यह कि इसी प्रोग्राम में, इसी शो की होस्ट हम सभी की अपनी प्रिय गीता दीदी मौजूद हैं।
2: हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से मेरे सारे प्यारे प्यारे लिस्नर्स बच्चे आ चुके होंगे और मेरे ख्याल से बड़े भी बैठ गए होंगे, ऐसा मैंने अनुमान लगाया है।
1: बिल्कुल सही लगा।

0: आया अपने अनुमान कि सब बैठे हैं, पता है क्यों बैठे हैं?
1: जी,
0: एक स्टोरी सुनने के लिए।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन दिक्कत पता है क्या है?
1: क्या?
0: कभी कभी आप दो भी सुना दिया करिए, मन करता है, जैसा आज कर रहा है।
1: अच्छा, आज दो कहानियां सुनने का मन कर रहा है।
0: आप कहेंगे हम तो एक ही लेके आए।
1: चलिए, नहीं ऐसा नहीं, ये तो मतलब पूरा जो है लबालब स्टोरियों से भरा हुआ मेरा खजाना है।
0: अरे वाह, यानी आज दो मिलेंगी?
1: बिल्कुल मिल सकती हैं, और आप कभी भी कहेंगे तो मेरी कहानियां हमेशा रेडी रहती है और बहुत ही मजेदार कहानियां होती है। सो सभी को मेरा सुप्रभात, सत श्री अकाल, नमस्कार।
0: बिल्कुल, एंड अनोखी ने भी बोला है गुड मॉर्निंग मैम एंड सर।
1: वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू।
0: जी हाँ, बेशक, आपको भी गुड मॉर्निंग। सो गीता दीदी, आज तो हम दो दो स्टोरी सुनने वाले हैं।
1: बिल्कुल, मैं सुना दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, कोई परेशानी नहीं है मुझे।
0: तो चले स्टोरी की
1: बिल्कुल स्टोरी की तरफ चलते हैं। और आज बहुत मालूम है क्या हुआ अतनान?
0: नहीं बताएंगे तो पता चलेगा।
1: बिल्कुल, मैं बताने वाली हूँ ना। कल मुझे बहुत डांट पड़ रही थी घर पे।
0: क्या, आपको कौन डांट रहा था?
1: अरे अब घर वाले, मम्मी पापा सभी तो हैं डांटने के लिए।
0: तो मम्मी पापा तो
1: मालूम है क्यों डांट पड़ रही थी? क्योंकि मैं बहुत फिजूल खर्ची करती हूँ।
0: फिजूल खर्ची तो आपका
1: कभी नहीं देखा। इसको लेकर के इतने लेक्चर मुझे सुनने पड़े जितने मैं अपने कॉलेज में गर्ल्स को नहीं देती।
0: अरे हमें लगता मम्मी पापा होते ही इसलिए अच्छे से सुनाते हैं।
1: हाँ, बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे सुनाया कि तू ऐसी है, तू वैसी है, तू इतना खर्च करती है, तू पहले से विचार नहीं करती, कोई प्लानिंग नहीं करती, बस यूं ही पैसे लुटाने में आगे है।
0: अच्छा।
1: तो थोड़ा सा मूड तो ऑफ हो ही जाता है ना।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: लेकिन फिर उसको बैठ के जब सोचते हैं, मनन करते हैं, तो लगता है कि वो अपने अनुभव से बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो आज मैंने जब डांट खाई तो मैंने ऐसी ही कहानी एक निकाल के रखी है कि अपने प्यारे प्यारे लिसनर्स को मैं वो कहानी सुनाऊंगी कि बड़ों की सीख हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि उससे हमें हमारे जीवन मतलब बेटर हो सकता है, अच्छा हो सकता है।
0: बिल्कुल।
1: तो बड़ों की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, जैसे कि मैं मान गई थी लेकिन बाद में रियलाइज़ किया। तो चलो, बातें तो होती रहेंगी, पर इस समय टाइम है स्टोरी का, तो हम चलते हैं स्टोरी की ओर।
0: बिल्कुल।
1: तो बहुत समय पहले एक बहुत ही समृद्धशाली नगर में एक गरीब चंद नाम का प्रसिद्ध सेठ रहा करता था। नाम भले ही उसका गरीब चंद था, पर धन दौलत की उसके पास कोई कमी नहीं थी। पूरे नगर में उससे बड़ा कोई व्यापारी था ही नहीं। इतना संपन्न होने के बाद भी उसे अपने धन का कभी भी कोई भी घमंड अभिमान नहीं था, और इसके बाद भी वह बहुत दयालु और उदार स्वभाव का था। नगर में जब भी किसी गरीब असहाय को पैसे की ज़रूरत पड़ती या कोई भी धर्मार्थ कार्य करने की सहायता की ज़रूरत होती तो वो खुले दिल से दान देता, किंतु अपने घर के खर्चों में वह अत्यंत सावधान रहता था। वह परिवार नौकरों को अनावश्यक खर्च से बचने की सीख देता। इसी कारण घर के लोग उससे नाराज रहते थे, जैसे आज मैं नाराज हो गई थी, जबकि नगर के लोग उसका बहुत ही सम्मान करते थे, बहुत ही इज्जत करते थे और बहुत उसको प्यार करते थे। गरीब चंद का एक बेटा भी था जिसका नाम था लल्ला। यानी लल्ला नाम तो नहीं था, पर माता पिता प्यार से उसको लल्ला कह के ही लाड प्यार में बुलाते थे और उसको बड़े ही नाजों से पाला था। तो वो लल्ला जो था बहुत आलसी था, फिजूल खर्ची भी था और अनुभवहीन भी था। कभी भी पिता की चिंता उसने नहीं की थी, और उसके बाद भी इतना बड़ा वह व्यापार कैसे संभालेगा, तो हर माँ बाप को चिंता हो ही जाती है। धीरे धीरे समय जो है बीतता चला गया, और एक दिन सेठ को बहुत बड़ी बीमारी हो गई, यानी गंभीर रूप से वो बीमार पड़ गए। तब उन्हें लगा कि शायद उनका अंतिम समय या जीवन की अंतिम घड़ी आ पहुंची है। तब उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, बैठिए, मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। बोले, बेटा, यदि जीवन में सफल होना चाहते हो तो मेरी 5 सीख कभी मत भूलना। पहली, बिना परखे किसी पर विश्वास मत करना। दूसरी पुराने और ईमानदार लोगों को छोड़कर नए लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा कभी मत करना। तीसरी बात, अपना रहस्य किसी से मत कहना। चौथी बात, सोच समझ कर निर्णय लेना। और पांचवी, सदा सत्य और ईमानदारी का साथ देना। इतना कहकर सेठ कुछ समय बाद इस संसार को अलविदा कहकर स्वर्गलोक चले गए। शोक के दिन बीतने के बाद जो उनके प्यारे लल्ला ने व्यापार को संभाल तो लिया, उसने पिता की पहली सीख को परखने का निश्चय किया। उसने देखा कि जो लोग पहले उसके पिता से दूरी बनाए हुए रखे हुए थे, उनके मृत्यु के पश्चात वही सब उसके सबसे बड़े हितैषी बनकर करने का दिखावा करने लगे थे। दूसरी ओर पुराने जो सेवक थे वो चुपचाप अपने काम में लगे रहते थे। लल्ला ने नए हितैषियों और असंतुष्ट सेवकों को बुलाया और उन्हें बड़े सम्मान के साथ ऐसे कार्य सौंप दिए जिसमें प्रतिष्ठा तो थी ही पर धन का कोई लेन देन नहीं था। कुछ दिनों बाद उसने देखा, उन्हें लगा कि अलग अलग बुलाकर इनसे बात करनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक गुप्त बात बता रहा हूँ और ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। फिर उसने हर व्यक्ति को अलग अलग तरीके से मनगढ़ंत बातें बता दी। दूसरे दिन उसने पुराने और शांत स्वभाव वाले अपने पिता के सेवकों को बुलाया और अलग अलग बुलाकर कुछ काल्पनिक बातें उनको भी बताई और उन्हें भी सावधान कर दिया कि ये अत्यंत गोपनीय चीज़ें हैं, बातें हैं, इसको किसी से मत कहिएगा। कुछ ही दिनों में नगर में तरह तरह की चर्चाएं फैलने लगी। वही बातें लोगों की जुबान पर थीं जो उसने नए लोगों को बताई थी, कही थी कि ये किसी से मत कहना। लेकिन जो बातें पिता के पुराने सेवकों को बताई गई थी उनका कहीं कोई उल्लेख ही नहीं था। अब लल्ला स्पष्ट रूप से समझ गया था कि कौन विश्वास के योग्य है और कौन नहीं। इस प्रकार उसने पिता की पहली और दूसरी सीख की सच्चाई बखूबी जान ली थी। अब बारी तीसरी सीख की थी, सो उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, व्यापार में भारी घाटा हो गया है, लेकिन यह बात किसी से मत कहना। अपने भाई से कहा कि मेरे मित्र ने मुझे धोखा दे दिया, यह बात किसी को ना बताना। फिर अपने मित्र से कहा, मैं नया व्यापार शुरू करने वाला हूँ, इसे गुप्त ही रखना। कुछ दिनों बाद उसके ससुर का एक संदेश आया कि यदि आर्थिक सहायता चाहिए तो निसंकोच बताइए। उसी रात पत्नी ने उसे मित्र से सावधान रहने की सलाह दी। अगले दिन भाई ने नए व्यापार के जोखिम से बचने की बात कही। अब लल्ला समझ गया कि उसके बताए हुए सभी रहस्य किसी ना किसी रूप से बाहर तक पहुंच चुके थे। अब उसे अपने पिता की हर सीख का महत्व अच्छी तरीके से समझ में आ चुका था। उसने पुराने ईमानदार और निष्ठावान सेवकों को व्यापार की मुख्य जिम्मेदारियां सौंप दी। उनकी निष्ठा, अपनी बुद्धिमानी और पिता की सीखों के सहारे उसका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करने लगा। जब भी कोई उसकी सफलता का रहस्य पूछता तो लल्ला मुस्कुरा कर केवल इतना ही कहता कि जीवन में सबसे बड़ी पूंजी धन नहीं बल्कि सयानों की सीख होती है, उसे समझकर अपनाना चाहिए और जो अपनाता है वही सच्ची सफलता को प्राप्त करता है। तो देखा, अनुभवों की सीख जीवन का सबसे बड़ा धन होता है। बिना परखे किसी पर विश्वास कभी नहीं करना चाहिए और अपने रहस्यों को कभी किसी से शेयर नहीं करना चाहिए।
0: बेशक सही कहा आपने और कहानी बहुत अच्छी लगी। इवन अनोखी ने कहा है, सुपर से भी ऊपर कहानी मैम।
1: थैंक यू।
0: और सोनिया तिवारी जी को भी बहुत पसंद आ रही है कहानी। और सविता दुबे जी ने लिखा है, गीता दीदी नमस्ते।
1: नमस्कार सविता जी।
0: और लिखा है, छोटे बच्चे अदनान सर को भी नमस्ते।
1: सच में मेरे साथ ये छोटा नन्ना बच्चा बैठ जाता है
0: माहौल बन जाता है
1: बिल्कुल।
0: सो दीदी, वादा याद है कि भूल गई आप कहानी में?
1: मैंने तो इतनी लंबी कहानी यूं ही सुना दी, लेकिन चलिए एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, बहुत मजा आने वाला है।
0: ये हुई ना बात, चलिए सुनते।
1: तो एक गांव में एक पति पत्नी रहा करते थे। और दोनों बड़े प्रेम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनका स्वभाव बहुत ही मिलनसार और अतिथि सत्कार करने वाला था। घर में कोई मेहमान आ जाता तो वे उसकी सेवा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते थे। एक दिन उनके घर में खास मेहमान आए और बहुत दिनों बाद उन्हें देखकर पति पत्नी दोनों ही बेहद खुश हो गए। उन्होंने बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया, जलपान कराया, दिन भर हंसी मजाक और पुरानी बातें होती रहीं। शाम होने लगी तो मेहमान ने घर जाने की इच्छा जताई। पति पत्नी ने कहा, अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे भाई साहब, आप बहुत दिनों बाद हमारे घर आए हैं और मैं बिना भोजन कराए आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगी। मेहमान भी उनके आग्रह को टाल नहीं सके और भोजन करने के लिए रुक गए। मेहमान बहुत खास थे इसलिए उनके लिए तरह तरह के पकवान बनाए गए, भजिया, पूरी, खीर, सब्जी, काजू बर्फी, लड्डू, सब कुछ तैयार किया गया। मेहमान को खाने पीने की चीज़ों में सबसे अधिक पापड़ पसंद थे, भोजन के साथ पापड़। अच्छा हाँ, पापड़ तो मुझे भी बेहद पसंद है, आपको?
0: बेशक।
1: बिना पापड़ के भोजन जो है अधूरा सा लगता है।
0: और क्या।
1: और मैं तो यूं ही चट कर जाती हूँ, पापड़ पहले बाकी चीज़ें बाद में। तो ये पापड़ का महत्व तब भी था और आज भी है। तो बड़े मतलब अगर उसको पापड़ मिल जाते, उस खाने में दिख जाते तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। पति पत्नी को भी ये बात बहुत अच्छी तरह से मालूम थी, इसीलिए उन्होंने खास तौर पर मेहमान के लिए ढेर सारे पापड़ सेक कर रखे हुए थे। भोजन का समय हुआ, मेहमान हाथ मुंह धोकर खाने बैठ गए और उनके सामने स्वादिष्ट पकवानों से भरी थाली परोसी गई। मेहमान ने थाली की ओर देखा लेकिन उसमें पापड़ नहीं थे। उन्होंने सोचा शायद बाद में परोसे जाएंगे। पति ने हाथ जोड़कर कहा, भैया अब जल्दी से भोजन शुरू कीजिए। मेहमान ने भोजन करना शुरू कर दिया लेकिन उनका सारा ध्यान पापड़ों पर था। चूल्हे के पास एक थाली में ढेर सारे फूले फूले कुरकुरे पापड़ उन्हें साफ दिखाई दे रहे थे। वे कभी पूरी खाते, कभी खीर, कभी भजिया, लेकिन नज़र बार बार पापड़ों की थाली पे चली जाती। दरअसल पति पत्नी दोनों ही पापड़ परोसना ही भूल गए थे। पति भोजन परोसने में व्यस्त था और पत्नी गर्मा गर्म पूरियां तलने में लगी हुई थी। मेहमान मन ही मन सोच रहे थे, इतने स्वादिष्ट पापड़ सामने रखे हैं, काश इन दोनों को याद आ जाए कि पापड़ भी परोसने हैं। वे जानबूझकर धीरे धीरे भोजन करने लगे। उन्हें उम्मीद थी कि किसी न किसी को पापड़ की याद ज़रूर आएगी, मगर काफ़ी समय बीत गया और किसी को याद नहीं आई। अब मेहमान परेशान, सीधे पापड़ मांगने के में उन्हें संकोच हो रहा था। सो आखिर एक उन्होंने जुगत लगाई कि पापड़ भी मिल जाए और मांगने भी ना पड़े। अचानक उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, अरे भैया एक बहुत ज़रूरी बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया। पति पत्नी ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, क्या बात भैया? मेहमान बोले, कल तो भगवान ने ही मेरी जान बचाई, अगर भगवान मेरी रक्षा नहीं करते तो आज मैं यहाँ बैठकर इतना स्वादिष्ट आपके हाथ का बनाया हुआ भोजन खा नहीं रहा होता। अब दोनों घबराकर बोले, अरे ऐसा क्या हो गया था? मेहमान बोले, कल मैं रास्ते से जा रहा था, अचानक सर से एक बड़ा सा काला नाग मेरे सामने आ गया। अब भैया मैं क्या ही बताऊँ, इतना लंबा सांप मैंने जीवन में कभी नहीं देखा था। पति पत्नी आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगे। मेहमान ने हाथ से इशारा करते हुए कहा, वह सांप यहाँ से लेकर वहाँ वो पापड़ों वाली थाली तक इतना लंबा था वो सांप। जैसे ही उन्होंने पापड़ों की ओर इशारा किया, पति पत्नी दोनों एक साथ बोल पड़े, अरे हम तो पापड़ परोसना ही भूल गए। मेहमान ने बनावटी संकोच करते हुए कहा, अरे अब रहने भी दीजिए, कोई बात नहीं। पति पत्नी बोले, ऐसे कैसे रहने दें, पापड़ तो आपके लिए ही बनाए हैं, आपको खाने तो पड़ेंगे ही। यह सुनते ही मेहमान के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने तुरंत कहा, अच्छा जब तुम लोग इतना आग्रह कर ही रहे हो तो फिर पूरी थाली यहीं ले आओ। दोनों हंस पड़े और पापड़ों की थाली मेहमान के सामने रख दी गई। मेहमान ने बड़े आनंद से खूब कुरकुरे पापड़ का आनंद लिया। इस तरह मेहमान ने बिना सीधे मांगे अपनी चतुराई से मनपसंद पापड़ों को पा भी लिया और सबको हंसने का एक मजेदार किस्सा भी दिया। जैसे आप मुस्कुरा रहे हैं और हमारे लिसनर भी
0: मुस्कुरा रहे हैं, बिल्कुल।
1: तो कभी कभी अपनी बात सीधे कहने के बजाय बुद्धि और हास्य से कही जाए तो काम बन जाता है,
0: बन जाता
1: और
0: है।
1: किसी को बुरा भी नहीं लगता है।
0: तो इसी को कहते हैं जुगाड़।
1: तो कैसी लगी कहानी आप लोग चैट बॉक्स में आकर के हमको तुरंत बताइए, मैं इंतजार करूंगी आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का।
0: फिलहाल सविता दुबे जी ने बता दिया, बहुत सुंदर कहानी लगी और अनोखी लिखती हैं, दोनों ही कहानी बहुत अच्छी लगी मैम, थैंक यू सो मच।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और अमित सिंह मुंबई से नमस्ते बोलते हैं आपको।
1: नमस्कार।
0: नमस्ते अमित सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो भी लिसनर्स हमारे लिख नहीं पाए हैं और सुन रहे हैं कहानियों को, वो अपना जुगाड़ सोच जरूर लें। सो दीदी, अब चलती हैं आप बच्चों को लेकर आने के लिए।
1: जी बिल्कुल।
0: तो चलिए हम भी अपने श्रोताओं को जरा प्यारी प्यारी सी राइम्स सुना दें और उसके बाद जब वापस आएंगे तो बच्चों के साथ मुलाकात करवाएंगे।
1: तब तक आप सुनते रहिए 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।

0: भारत पोलियो मुक्त है, लेकिन कुछ देशों में पोलियो अभी भी है। इसीलिए 28 जून 2026 को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक जरूर दें। सुनिए सीएमओ गुंडा की अपील।
1: सभी अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि 28 जून 2026 को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत 0 से 5 वर्ष तक के अपने सभी बच्चों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर पल्स पोलियो की 2 खुराक अवश्य पिलाएं। स्वस्थ बचपन की यही पहचान, पोलियो मुक्त हो हिंदुस्तान।

0: भी तावे के
1: नानी माँ जो खीर बनाई है सरदा से खाए के
0: नानी माँ जो खीर बनाई है सरदा से खाए के
1: खीर खा के सब ही बोली वाह वाह।

0: ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
3: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
4: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
5: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
6: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रन

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
2: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
1: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस अकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं।

0: पंक गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल टू क्लास 12 स्पेसिफिकेशंस हैं 10 प्लस 2 इन ऑल स्ट्रीम्स साइंस कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड कन्वीनियंस फैसिलिटीज स्काउट गाइड इवेंट्स प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर
1: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस अकेडमी नियर दुखरन नाथ मंदिर पटेल नगर गोंडा संपर्क करें 94 50 944 999
2: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा क्या करें
3: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो
1: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल गुर्दे दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज
4: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO INO वेंटिलेटर फोटोथेरेपी डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है
1: विजिट करें अल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ संपर्क करें 0522 2711 827

0: क्या सुना रही हो सानिध्या?
1: दीदी कविता।
0: कविता तो चलो भाई, अब हम सानिध्या की कविता की ओर चलते हैं और सानिध्या बहुत प्यारी सी कविता सुनाने वाली है।
1: सूरज सिठलाता है हम तो बड़े सवेरे उठना, सिठलाती है हवा सुबहती लय में चलते रहना, चांद हमें सिठलाता देना जद तो नया उजाला, तारे तहते दीत सुनाओ झिल में मस्ती वाला, पेड़ हमें सितलाता सारे दिन मेहनत में टपना, तो ही चोट अदर दे तो भी फल से झोरी भरना, नदी बताती तल तल स्वर बहना मेरे भाई, झरना बोले पल पल झरते सब तीर्थरो भलाई।
0: बिल्कुल, तो इतनी प्यारी पोयम सानिध्या ने सुनाई है, क्योंकि सूरज और चांद और तारे और पेड़ और पौधे और नदियाँ ये हमको कुछ ना कुछ सिखाती हैं, है ना बच्चों?
2: जी दीदी।
3: जी दीदी।
0: तो सूरज क्या सिखाता है? कितने सुबह सूरज निकलता है बताओ?
3: सुबह 5 बजे।
0: बिल्कुल, तो बच्चों को भी 5 बजे अगर सूरज चाचू उठ जाते हैं 5 बजे, तो हमको उठने में क्या है, हमें भी सुबह 5 बजे उठना चाहिए। और 5 बजे उठने का मतलब क्या है कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, है ना? और सुबह का जो समय होता है वो लर्निंग टाइम होता है, हमें जो अपने जो भी लेसन्स हैं उनको सुबह उठ के अगर हम याद करते हैं तो वो बहुत अच्छे से लर्न भी हो जाते हैं। चंदा मामा क्या सिखाता है? रात में चंदा मामा देखो रात में भी उजाला देता है, और कितने अच्छे अच्छे उसके गीत हैं, चंदा मामा आओ ना, है ना? और तारों के भी गीत हैं, पेड़ कहते हैं कि देखो पेड़ पूरे दिन धूप में खड़े रहते हैं, है ना, और फिर भी क्या देते हैं हमको?
3: छाया
0: और
3: फल,
0: और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां हमको किससे मिलती हैं? पेड़ों से, है ना? तो वही है कि पेड़ भी हमको कुछ ना कुछ सिखाते हैं, साथ में नदियाँ वो भी हमारे लिए हमेशा पानी से भरी रहती हैं, और उनका जो शब्द होता है, जो निनाद होता है, वो कल कल कल, यानी हमको भी हमेशा अच्छा अच्छा बोलते रहना चाहिए। तो कितनी अच्छी पोएम थी, जरा तो तालियां हो जानी चाहिए। चलो भाई अब चलते हैं हम, किसकी ओर चलें, किसकी ओर चलते हैं? सानिध्या की ओर। सानिध्या ने तो सुना दिया, अभी आराध्या की ओर। आराध्या आज क्या सुनाने वाली हो?
1: दीदी कहानी है।
0: कहानी?
1: जी दीदी।
0: चलो सुना दो फिर कहानी भाई।
1: राम और श्याम दो दोस्त गहरे थे, वे हमेशा साथ रहते थे, खेलते और एक दूसरे की मदद करते। एक दिन जंगल से गुजर रहे थे, अचानक एक भालू सामने आ गया। राम डर के मारे पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि उसे चढ़ना आता था, लेकिन श्याम को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। श्याम ने समझदारी से जमीन पर लेट गया और भालू उसके पास आया, उसको देखा, वो सोचा कि ये मर चुका है, हम चले जाएं, तो वो वहाँ से चला गया।
0: अरे वाह भाई, देखिए जुगत लगाने पर ही प्राण बच सकते हैं, है ना?
1: जी दीदी।
0: तो भालू या कोई भी मरे हुए व्यक्ति का मांस नहीं खाता, इसलिए उसने जुगत लगाई और उसने मरने का नाटक किया, सांस रोक कर जमीन पर लेट गया। भालू ने सोचा ये तो पहले से मरा है, इसको खा के क्या मिलेगा, सो वो वहां से चला गया। तो और एक दोस्त को देखो, वो तो पेड़ पे झट से चढ़ गया। ऐसा करना चाहिए क्या बच्चों?
1: नहीं,
0: दोस्ती में ऐसा
1: नहीं करना चाहिए।
0: तो क्या करना चाहिए दोस्ती में?
3: हमेशा अपने दोस्तों का साथ देना चाहिए,
0: साथ देना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, है ना? तभी तो सच्ची दोस्ती निभा पाएंगे हम।
3: जी दीदी।
0: बिल्कुल, तो बहुत प्यारी कहानी सुनाई इसने। तो चलिए चलते हैं अब हम, किसकी ओर चलें भाई, किसकी ओर चलें? हम चलते हैं देशराज मिश्रा की ओर, और आज वो क्या सुनाने वाले हैं?
3: नोबल प्राइज के बारे में।
0: नोबल प्राइज, हाँ नोबल प्राइज के बारे में तो मैं भी जानना चाहती हूँ, और हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे और बाहर जितने आपके दोस्त बैठे हुए हैं जो आपको सुन रहे हैं, वो भी सुनना चाहेंगे कि नोबल प्राइज क्या होता है। तो जल्दी से सुना दीजिए नोबल प्राइज की कहानी।
3: नोबल प्राइज की शुरुआत ईयर 1901 में डायनामाइट के आविष्कारक और उद्योगपति अल्फ्रेड नोबल की वसीयत के रूप में की गई। ये पुरस्कार हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। इसमें 11 मिलियन स्वीडिश

0: पाल जी, जिनको लिटरेचर के फील्ड में दिया गया है। फिजिक्स के फील्ड में डॉक्टर सी वी रमन को और डॉक्टर सुब्रमण्यन चंद्रशेखर को दिया गया है। और पीस के फील्ड में मदर टेरेसा और कैलाश सत्यार्थी को ये अवार्ड दिया गया है। मेडिसिन के क्षेत्र में सिर्फ डॉक्टर हरविंद खुराना को ये अवार्ड दिया गया है।
1: वाह, बहुत अच्छी जानकारी दी है। और आप लोग भी खूब मेहनत करिए, और ऐसे में चाहती हूँ कि ये पुरस्कार आपकी झोली में भी आए। तो परिश्रम से सब कुछ हासिल होता है, इसलिए हमको क्या है, निरंतर परिश्रम करना है। और ये जो इंटरनेशनल प्राइज है, हमें अचीव करना ही करना है। तो ऐसा गोल बना के चलना है
0: जी। तो दीदी,
1: अब चलते हैं हम किसकी तरफ चलें, किसकी तरफ हम चलते हैं, बलराज की तरफ। और बलराज जी, आज आप क्या सुनाने वाले हैं?
2: आज कारगिल विजय दिवस है।
1: कारगिल विजय दिवस है, तो एक बार जितने भी हमारे बलिदानी हैं, उनको हम सच सच नमन करते हैं आज के दिन। और आज के ये खुशी का दिन भी है, क्योंकि हमको कारगिल पर विजय प्राप्त हुई थी। तो चलिए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी कारगिल की, जो हमारे बलराज जी सुनाने वाले हैं।
2: कारगिल युद्ध भारत के सैन्य इतिहास का सबसे कठिन और गौरवपूर्ण युद्ध रहा है
1: जी।
2: कारगिल का युद्ध 3 मई 1999 में शुरू हुआ था
1: जी, बिल्कुल।
2: पर भारत के सैनिक, भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और पराक्रम के और बलिदान के बदौलत भारत ने 26 जुलाई 1999 को कारगिल पर विजय प्राप्त की। पाकिस्तानी सेना और घुसपैठियों ने नियंत्रण रेखा LOC को पार कर भारत की कुछ ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया, जिनमें प्रमुख थी टाइगर हिल, तोलोलिंग, पॉइंट 5140 और पॉइंट 4875। कारगिल का युद्ध लद्दाख के द्रास, बटाले, काक्सर और मस्को जैसी
1: दुर्गम जगह पर लड़ा गया था।
2: और भारतीय सेना ने अपनी ताकत और अपने ताकत का परिचय देते हुए इन सभी महत्वपूर्ण चोटियों को दुश्मनों से मुक्त करवाया।
1: तो एक बार भाई तालियां बज जाए हमारे जो वीर सैनिक थे, जो बलिदानी थे, उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और एक छोटा सा उनके लिए ट्रिब्यूट है जो हम देना चाहेंगे, और हमारे साथ सारे लोग उसको गाएंगे।

ये मेरे मन में आया और आप लोगों ने भी मेरा साथ बखूबी दिया। तो चलिए भाई, ये तो छोटी सी हमारी श्रद्धांजलि थी जो हमने अपने देशवासी यानी कि बलिदानी जो हमारे वीर सैनिक थे उनके लिए दी, और हम हमेशा जो है उनको याद करते रहे, उनको अपने हृदय में रखे। हमारी तो सबसे अच्छी मतलब जो ट्रिब्यूट होगा यही होगा कि उनको हमेशा हम याद करें, उनके बारे में विचार करें, सोचें और उनके जैसा बनने का प्रयास करें। तो चलिए भाई, तो बहुत अच्छा आपने विषय उठाया, मुझे भी नहीं आता कि आज

0: कारगिल दिवस है, तो एक बार फिर से जो है आनंद सानिध्या ने कुछ खोज करके रखा हुआ है और दिखा रही कि दीदी मैं फिर से कुछ लेके, क्या लेके आई हो
1: दीदी? कहानी।
0: कहानी लेके आई है, तो बच्चों सुनोगे कहानी सानिध्या की?
2: जी दीदी।
0: तो चलो सुनते हैं सानिध्या की प्यारी सी स्टोरी।
1: एक हरे भरे जंगल में एक छोटी सी चींटी रहती थी। वह रोज सुबह उठकर भोजन इकट्ठा करती और अपने साथियों की भी मदद करती। कुछ जंगल थे, कुछ बड़े जानवर उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी जोरदार थी कि कई जानवरों का भोजन बह गया। सब परेशान हो गए। तभी छोटी चींटी अपने साथियों के साथ आई। उन्होंने पहले से जमा किया हुआ भोजन सबके साथ बांट दिया। हाथी ने आश्चर्य से पूछा, इतनी छोटी होकर भी तुमने सबकी मदद कैसे कर दी? चींटी मुस्कुराई और बोली, बड़ा बनने के लिए शरीर नहीं, सोच और मेहनत बड़ी होनी चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: उस दिन से जंगल में सभी जानवर ने छोटी चींटी का सम्मान करना शुरू कर दिया। वह समझ रहती किसी तो आकार से नहीं उसके अच्छे कामों से
0: पहचाना जाता है। ये नहीं छोटी सी चींटी है तो उसको बस उसका मजाक उड़ा दिया। छोटी चींटी जो है बड़े बड़े काम कर सकती है ना?
1: जी दीदी।
0: तो छोटी चींटी हाथी के भी प्राण ले सकती है। कितना बड़ा हाथी विशाल होता है, और उसके भी प्राण वो ले सकती है। तो चलो भाई, कहानी तो बहुत अच्छी थी, और अब चलते हैं हम शानवी की ओर। और शानवी भी आज कुछ सुनाने वाली है। क्या सुनाने वाली है शानवी?
3: जिंदगी एक सफर है सुहाना।
0: ओ अरे वाह, जिंदगी एक सफर है सुहाना। यहाँ कल क्या हो, किसने जाना?
3: जी हाँ।
0: तो चलो एक प्यारा सा गीत सुनते हैं जो हमारी प्यारी सी शानवी सुनाने वाली है।
3: ये गीत मैंने मेरी बहन ने मिलकर तैयार किया है।
0: दोनों गाने वाले हो?
3: जी।
0: वेरी गुड। आपकी सिस्टर का नाम क्या है?
3: बोलो।
1: शानवी तिवारी।
0: दोनों शानवी?
3: ये मेरा नाम बता रही है।
0: अच्छा, अपना बताइए बेटे।
1: निमिषा तिवारी।
0: अच्छा चलिए, हमने कहा दोनों का नाम शानवी कैसे हो सकता है। चलिए शुरू करिए।
4: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।

जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तो परवाह न कर। अरे हंसते गाते जहाँ से गुजर,

0: वाह भाई, तालियां हो जाए। वेरी नाइस, बहुत अच्छा गीत था आपका, बहुत अच्छा। ये गाना मुझे बचपन से ही बहुत पसंद है।
1: मुझे भी।
0: तो चलो चलते हैं, अब हम हमारे साथ है हमारे छोटे से

0: का नाम है देशराज जी। देशराज जी, कुछ और है आपके पास?
1: अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है।
0: चलिए तो हम चलते हमारे छोटे से प्यारे से शेषकर के साथ। और शेषकर, क्या सुनाने वाले हो आज?
2: दीदी, आज मैं आप सभी को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में सुनाने वाला
0: हूं। लोकमान्य बाल गंगा जी तिलक, लोकमान्य धर बाल गंगा जी तिलक।
2: इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र की रत्नागिरी में हुआ था। इनके पिता गंगाधर रामचंद्र तिलक संस्कृत के विद्वान और शिक्षक थे, जबकि उनकी माता पार्वती बाई तिलक धार्मिक एवं संस्कारी थे। तिलक बचपन से ही तेज बुद्धि, निडर और सत्यवादी थे। उन्होंने पुणे के डेक्कन कॉलेज से गणित में स्नातक की शिक्षा प्राप्त की और बाद में कानून की पढ़ाई भी की। उनका मानना था कि देश की उन्नति का सबसे बड़ा आधार शिक्षा है। उन्होंने शिक्षा के प्रसार के लिए डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही उन्होंने केसरी और द मराठा नामक समाचार पत्र शुरू किए, जिनके माध्यम से उन्होंने ब्रिटिश शासन की नीतियों का विरोध किया। बाल गंगाधर तिलक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। वे गरम दल के भी प्रमुख नेता थे। उनका प्रसिद्ध नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। उन्होंने गणेश उत्सव और शिवाजी की जयंती को सार्वजनिक रूप से मनाने की परंपरा शुरू की, ताकि लोग एकजुट हो और उनमें देशभक्त की भावना विकसित हो।
0: जी।
2: ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कई बार जेल भेजा। म्यांमार तत्कालीन बर्मा के मांडले कारागार में रहते हुए उन्होंने एक पुस्तक की रचना की, जिसका नाम गीता रहस्य था। ये एक प्रसिद्ध ग्रंथ है और इस महान स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को मुंबई में 64 साल की उम्र में हो गया।
0: यानी कि बहुत जल्दी ही इनकी मृत्यु हो गई। और देखो बच्चों, त्योहार का क्या मतलब होता है, कितना अच्छा उन्होंने बताया है कि त्योहार होता है ना, तो हम सब एक साथ होते हैं। तो एक साथ होने का मतलब क्या, एक दूसरे की भावनाओं को समझना है ना। और जब साथ होंगे तभी तो देश के लिए कहीं किसी भी चीज़ की किसी भी क्षेत्र में जो प्लानिंग कर सकते हैं, योजनाएं बना सकते हैं। इसलिए उन्होंने इतने बड़े बड़े त्यौहार जो आज भी मनाए जाते हैं, गणेश चतुर्थी वगैरह धूमधाम से मनाया जाता है और दुर्गा पूजा वगैरह जो, तो ये बहुत अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि हम जब एकजुट होते हैं तो हमारी सारी प्लानिंग बहुत अच्छे से होती है। तो हम लेते हैं इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद, और खूब ढेर सारी अभी तो हमें बातें करनी है, इसलिए आप थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए। सुनते रहिए 89.6 FM।

0: इनको इनका नाम बहुत बलराज जैसे साहिनी फिल्मी हीरो नहीं होते थे, लेकिन ये हमारे लिए बलराज मिश्रा हैं, बलराज। तो बलराज आज अभी और क्या सुनाने वाले हो?
1: मैं जब कृष्ण भगवान पांडवों का संदेशा लाए थे दुर्योधन के पास, जब उनको अज्ञातवास हो गया था और वनवास, तो उसी के बारे में रामधारी सिंह दिनकर की।
0: ओ, समझ गए हम। तो जल्दी से सुना दीजिए आप।
1: वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, साधु गाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है, मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए, दो न्याय अगर दो आधा दो, यदि इसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, दुर्योधन हम वही खुशी से खाएंगे परिजन पर अस न उठाएंगे, दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला जोते असाध साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, हर ने भीषण ओंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले भगवान को पिथो कर बोले, जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, या देख गगन मुझमें लय है, या देख पवन मुझमें लय है, मुझमें विलीन झंकार सकल, मुझमें लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझमें संघार झूलता है, मुझमें दिया चल मेरा दूप बार, भूमंडलवत स्थल विशाल भुजपरित बंधु को घेरे हैं, मैनाग मेरे पग मेरे हैं, दीप्ते जोगरा नक्षत्र निखर सब है मेरे मुख के अंदर।
0: वाह वाह भाई, ताली बजा दो। इतनी लंबी पोयम मैं तो कभी नहीं याद कर सकती, इतनी लंबी पोयम। देखो हमारे बलराज जी कितने अच्छी तरीके से इतनी लंबी पोयम याद करे हुए हैं। तो चलते हैं एक बार फिर से, शानवी और उनकी सिस्टर कुछ अच्छा सा सुनाने वाली हैं, तो देखते हैं क्या क्या सुनाने वाली हो शानवी।
2: आज हम लोग सुनाएंगे एक पोयम जो कि हम सबको मतलब बहुत अच्छी लगती थी उन्हें बच्चों ने। क्या बच्चों को सो तो सकती है
0: पोयम? हाँ, सोच तो नहीं सकते, हमको बतानी पड़ेगी, मैं कैसे बता सकती हूँ।
2: ठीक है, हाँ हम लोग आज सुनाएंगे नानी तेरी मोरनी को।
0: नानी तेरी मोरनी को, ये तो मुझे बहुत पसंद है।
2: और मैं चाहती हूँ ये बच्चों वाला वो पोयम है, तो आप सब मेरे साथ गाइए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, सारे लोग गाएंगे। ओके,
2: और लिसनर्स आप लोग भी गाइए।
0: बाहर बैठे उनको भी लाइन पे लगा दिया कि वो भी गाएंगे। तो चलो सुनते हैं हम शानवी की प्यारी सी पोयम, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए।
2: नानी

खूब नचाया जंगल की सरकार ने, उन चोरों की खूब खबर ली मोटे थानेदार ने, मोरों को भी खूब नचाया।

0: वाह वाह वाह, तालियां बजा दो भाई सानिध्या, तेज से तालियां बजा दो दीदी के लिए। तो चलिए भाई अब चलते हैं, नहीं तो सानिध्या नाराज हो जाएगी। समस्या तो यहाँ पे आके अटक जाती है ना, क्योंकि सानिध्या को ढेर सारी बातें करना पसंद है और मुझे मौका नहीं मिलता, सो मुझसे नाराज हो जाती है। सानिध्या प्लीज नाराज मत हो, ठीक है? ओके बोलो। अच्छा बोलो, ओके दीदी। मैं कहला लेती हूँ उससे। तो चलो सानिध्या फिर से कुछ बताने वाली है। क्या बताने वाली है वो सानिध्या आज?
1: दीदी कहानी।
0: कहानी किसके बारे में?
2: अच्छा, इसकी कहानी सुनने में मुझे बड़ा मजा आता है।
0: बड़ा मजा आता है, हमको भी बहुत मजा आता है।
1: स्वामी विवेकानंद।
0: स्वामी विवेकानंद के बारे में बताने वाली है, तो चलो सुनते हैं स्वामी विवेकानंद की कहानी।
1: स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम नरेंद्र था। बचपन से ही वह बहुत साहसी और निडर थे। एक दिन नरेंद्र अपने मित्रों के साथ एक बड़े पेड़ के नीचे खेल रहे थे, तभी किसी ने डरते हुए कहा,
0: क्या कहा?
1: इस पेड़ पे भूत रहता है, जो भी इस पेड़ पर चढ़ेगा उसे भूत पकड़ लेना। यह सुनकर सभी बच्चे डर गए, लेकिन नरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि सचमुच इस पेड़ पे भूत होता तो वह अब तक मुझे पकड़ चुका होता।
0: इतना कहकर
1: वह तुरंत पेड़ पे चढ़ गए और आराम से नीचे उतर आए। उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। तब सभी बच्चों का डर दूर हो गया। नरेंद्र ने अपने मित्रों से कहा, बिना सोचे समझे किसी की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए।
0: और भूत भी मालूम है बच्चों किसका होता है? भय का। जो डर गया सो मर गया। तो कभी डरना नहीं है, क्योंकि भय का भूत होता है, बाकी भूत प्रेत कुछ भी नहीं होते हैं दुनिया में।
2: अच्छा, कई कई जगह ये स्वामी विवेकानंद की जो दोस्ती थी उसकी मतलब किस्से सुनाए जाते हैं।
0: बिल्कुल।
2: तो उसमें से किस्सा ये है कि एक बार मतलब ये जो स्वामी विवेकानंद थे वो बहुत ही अच्छी कहानियां सुना रहे थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे, अपने दोस्तों को बताते थे। तो एक बार ये और इनके सारे मित्र बात कर रहे थे बैठ के, और तभी इनके जो अध्यापक हैं वो क्लास में आ जाते हैं। उसके बाद वो इन लोगों को पकड़ लेते हैं और फिर उन्होंने कहा कि तुम सब बातें क्यों कर रहे हो, फिर सबको खड़ा कर दिया। लेकिन उन्होंने फिर पढ़ाते पढ़ाते ये पूछा कि अच्छा बताओ, अगर तुम लोग बातें नहीं कर रहे थे तो इस प्रश्न का उत्तर बताओ। कोई नहीं बता पाया, लेकिन स्वामी विवेकानंद बता लिए। और उसके बाद जो अध्यापक थे उन्होंने स्वामी विवेकानंद को बैठा दिया। उसके बाद लेकिन आपको ये पता है कि उनको इसका जवाब किसे पता था?
0: कैसे?
2: क्योंकि वो लाइब्रेरी बहुत जाते थे, उनको किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता था।
0: हाँ, पढ़ने की हैबिट अच्छी बात है।
2: लेकिन उसके बाद मजे की बात ये है कि उसके बाद स्वामी विवेकानंद खुद खड़े हो गए अपने मित्रों के साथ। तो फिर उन्होंने पूछा कि तुम क्यों खड़े हो गए, तुम्हें तो मैंने बैठाया था। तो कहे कि इन सबको कहानियां मैं ही सुना रहा था और मैं भी इनके साथ ही बात कर रहा था, तो मैं भी खड़ा रहूंगा। तो उनके जो अध्यापक थे उनको मजबूरी में सबको बैठाना पड़ा।
0: अरे वाह भाई, बहुत अच्छी।
2: तो ऐसी दोस्ती ही रहना चाहिए सबका।
0: बिल्कुल, और क्या, ऐसी दोस्ती होनी चाहिए। तो चलिए भाई, ये हमारे साथ और बड़े बच्चे यानी कि सीनियर बच्चे हमारे साथ हाजिर हो गए हैं। उसमें से है अथर्व है हमारे साथ, यश राज सोनी यानी छोटे साइंटिस्ट है हमारे साथ, समर यानी ठंडी हवा का झोंका है हमारे साथ, ठंडी हवा का झोंका। तो चलिए,
3: जरूरी नहीं समर का मतलब युद्ध भी होता
0: नहीं,
3: है।
0: मेरे लिए तो वो ठंडी हवा का झोंका, देखिए कितनी शांत प्रिय मुद्रा में वो मेरे पास हमेशा बैठा रहता है, कभी भी कोई शैतानी नहीं कोई, इसलिए मैं इसको कहती हूँ ठंडी हवा का झोंका। तो चलिए भाई, अरे और सत्यम जी भी आए हुए हैं, काफी बच्चे हैं, मैं तो भूल जाती हूँ कि किसका किसका परिचय कराना है। नेक्स्ट टाइम से मैं एक साथ सबका परिचय कराऊंगी, क्योंकि मुझे खुद नहीं याद रहता कि कौन कौन आया हुआ है। तो चलिए हमारे साथ ठंडी हवा का झोंका यानी कि समर आ चुके हैं। और समर, आज किस विषय पे आप बात करना चाहते हैं?
3: वो तो यश बताएगा।
0: यश बताएगा, तो यश आज एक दूसरे की पोल खोलने वाले हो तुम लोग। ये क्या
4: बताएगा? नहीं, लेकिन गेस जरूर कर सकता है।
0: तो क्या क्या गेस किया, किस पे ये बात करने वाला? आप लोग तो अच्छे
5: यस मेरा गेस कर देगा, मैं यस का गेस कर दूंगा।
0: तो यस बता दो भाई, देखिए ये सब
6: मेरे हिसाब से तो वैसे शायद फिजिक्स या मैथमेटिक्स से कुछ रिलेटेड।
5: हाँ, दोनों से रिलेटेड।
6: अच्छा, अगर कुछ और हिंट मिल जाती तो शायद एग्जैक्ट तक भी पहुंच सकता हूँ।
5: हाँ, तो मिल गई ना, फिजिक्स और मैथमेटिक्स से रिलेटेड
6: और कुछ हिंट, क्योंकि फिजिक्स बहुत बड़ी एक समुद्र है।
0: बिल्कुल,
5: चलो मैग्नेटिज्म से रिलेटेड।
6: अच्छा, मैग्नेटिज्म, और ये किड्स शो है तो कुछ ईजी ही होगा।
0: जी जी,
6: शायद मैग्नेट से रिलेटेड है।
0: तो यानी कुल मिला के आज जो है इंटरेस्टिंग है हमारा सब्जेक्ट, और
6: मैग्नेट में इंटरेस्टिंग ऐसा क्या हो सकता है, वो भी छोटे बच्चों के लिए शायद ऐसा कुछ कि मैग्नेट से सारी
0: चीजें। ये तो गलत है भाई, छोटे बच्चे ही क्यों, हमारे बाहर तो आपके जैसे दोस्त बैठे हुए हैं जो आपकी बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं, और उनके लिए भी तो कुछ ना कुछ बातें।
4: क्या पता मैग्नेट के बारे में कुछ डिटेल में बताने वाले।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और हमारे मुझे तो पूरा विश्वास है कि डिटेल ही बताने वाला है।
6: कहीं ऐसा तो नहीं कि आयरन, कोबाल्ट, निकल मैग्नेट से आके क्यों चिपकते हैं।
0: तो सब लोग गेस ही कर रहे हैं भाई, अब तो जो है आप
7: रिवील कर दो।
5: हाँ, तो जब हम लोग छोटे थे, सारे लोग जब यहाँ पे जो बैठे हैं वो छोटे थे, तो मैग्नेट एक बहुत इंटरेस्टिंग विषय होता है, जिज्ञासा का विषय होता है कि चिपकता
0: मेरे पास है? हमेशा रखती थी मैं, जैसे किसी रेडियो वेडियो में पुराना होता था वो निकल आता था ना, उसका माइक जो होता था इतना बड़ा सा, और उसमें वो पीछे लगा होता था, उसको मैं संभाल के रखती थी और फिर उसको देखती थी पैसे चिपका के असली है कि नकली है। और सारी लोहे की चीजें उसमें क्या होती थी,
5: चिपक
0: जाती थी, और बहुत ये एक फनी गेम बन जाता था हम सब के लिए।
5: हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो आपको पता नहीं होगा कि मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों करते हैं, चिपकते क्यों हैं, तो वही आज आपको पता चल जाएगा कि मैग्नेट अट्रैक्ट क्यों करते हैं एक दूसरे को। देखिए, मैग्नेट सब चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं करता, कुछ विशेष जो स्पेशल एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट, इन सबको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ये अट्रैक्शन आता कैसे, जबकि मैग्नेट में ना तो कुछ इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है ना ही कोई और चार्ज होता है। इसका आंसर होता है कि इलेक्ट्रॉन से।
0: जी,
5: मैग्नेट के इलेक्ट्रॉन्स के दो मेन गुण हैं, एक है इलेक्ट्रिक चार्ज और एक है स्पिन। इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो होता है, मैग्नेट के इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो होता है, वो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा करता है, और उससे मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और उसके बाद मैग्नेट चिपक जाते हैं। अब बात करते हैं कि मैग्नेट इम्पॉर्टेंट क्यों है ह्यूमन लाइफ में। मैग्नेट के बिना हम बिजली नहीं बना सकते,
0: बिल्कुल नहीं।
5: मैग्नेट के बिना हम आवाज़ें नहीं रिकॉर्ड कर सकते, मैग्नेट के बिना हम कंप्यूटर नहीं बना सकते, मैग्नेट के बिना हम आवाज़ें सुन नहीं सकते। तो मैग्नेट के बिना ये दुनिया अधूरी है। और पहली बार मैग्नेट की खोज जानती है कैसे हुई थी, मैग्नेट नेचर ने हमको दिया है।
0: अच्छा।
5: हाँ, कुछ साइबेरियन रीजन्स में या फिर कुछ पहाड़ी रीजन्स में मैग्नेटिक रॉक्स पाई जाती हैं। एक सीप हर्डर था, उसने पहली बार मैग्नेट को खोजा था जब वो अपनी लोहे की छड़ लेके चल रहा था, और अचानक उसकी छड़ी एक पत्थर से जाके चिपक गई, तब मैग्नेट की खोज हुई, और वो सीप हर्डर एक बहुत बड़े साइंटिस्ट में बदला।
0: बहुत अच्छी जानकारी दी है, और मैग्नेट हमारी लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये भी बताया है। चलिए चलते हैं हम, अक्कड़ बक्कड़ कर लेंगे अभी हम, तुम लोग एक दूसरे को इशारा कर रहे हो, अभी अक्कड़ बक्कड़ करते फिर हम। तो हम चलते हैं सत्यम की ओर, और सत्यम हमें मालूम है कोई करेंट अफेयर्स ही होगा जिस पे आप बोलने वाले हैं।
7: नहीं दीदी।
0: अच्छा अच्छा, चलिए। मेरा गेस जो था फेल हो गया। हाँ, किस पे बात करना चाहते हैं?
7: नहीं दीदी, वो करंट अफेयर की ही तरह है थोड़ा सा। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ यूरोप की बढ़ती गर्मी, क्या धरती हमें चेतावनी दे रही है।
0: ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने चैप्टर उठाया है।
7: जी दीदी, जरा सोचिए, जिन देशों में लोग कभी गर्मियों में भी हल्के स्वेटर पहनते थे, आज वही लोग तेज धूप और भीषण गर्मी से परेशान है। जी हाँ, इन दिनों स्पेन, इटली, फ्रांस और ग्रीस जैसे यूरोपीय देशों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर गया है,
0: और इसमें मालूम है बहुत सी मतलब लोगों की जान भी चली गई है।
7: जी दीदी,
0: 1000 से ऊपर लोग जो है, जो ये गर्मी है इसकी वजह से
7: मारे गए,
0: मर गए हैं, क्योंकि उनको वो हविचल नहीं, जैसे हम लोग गर्म देशों में
5: वो अडाप्ट नहीं।
0: हाँ, तो उनकी बॉडी जो है वो सेट नहीं हो पा रही है इतनी गर्मी में, इसलिए उन्होंने नुकसान सहा।
7: जी दीदी, कई जगह जंगलों में आग लग गई है।
0: अभी भी कल भी हम देख रहे थे न्यूज में कि काफी बड़े क्षेत्र में जो है
7: आग लगी,
0: जंगल में आग लगी हुई है।
6: नदी माउंटेन्स जो है वहाँ के, वहाँ पर भी बहुत ही ज्यादा गर्मी अब की बार देखने को मिली है।
7: नदियों का जल स्तर घट रहा है, लोगों को दोपहर में घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी जा रही है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कुछ सालों पहले तक यूरोप में कई घरों में एसी की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन आज वहाँ एसी की मांग लगातार बढ़ रही है।
0: बिल्कुल, यानी कि इनकी भी इकोनॉमी थोड़ी सी बढ़ गई।
5: और वहाँ ऐसा है कि आप एसी लगवा भी नहीं सकते इतनी आसानी से जैसे हम लोग लगा लेते हैं।
7: हाँ।
5: क्योंकि हम लोग की जो छतें होती हैं टॉप रूफ होती हैं, फ्लैट रूफ,
7: लेकिन वहाँ की
5: छतें लकड़ी की बनी होती हैं।
0: यही है कि उनको जरूरत नहीं पड़ी तो उस हिसाब से उनका स्ट्रक्चर बन नहीं पाया।
6: वहाँ पर ज्यादातर बर्फ गिरती है, तो जब वो उनका जो ये ऐसे वाला छत रहता है ना, तो वो बर्फ को गिराते जाता
5: है। और हाँ, वहाँ पे बहुत सारी ठंडी रहती है, तो वो अपने घर लकड़ी से इस तरह डिजाइन करते हैं कि उनके घर की गर्मी बाहर ना जाए।
0: लॉक करके रखते हैं,
5: तो उनके घर की गर्मी बाहर ना जाए।
7: यह बदलते मौसम का बड़ा संकेत है दोस्तों। इसका असर केवल यूरोप तक ही नहीं, भारत भी इससे अछूता नहीं है। हमारे देश के कई शहरों में हर साल गर्मी के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। कभी भीषण लू चल रही है, तो कहीं अचानक तेज बारिश और बाढ़ जैसे घटनाएं देखने को मिल रही है। वैज्ञानिक बताते हैं कि इसका सबसे बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज है। पेड़ों की कटाई, बढ़ता प्रदूषण और ईंधन का अधिक उपयोग हमारी धरती को लगातार गर्म बना रहा है। तो आइए आज एक छोटा सा संकल्प लेते हैं, एक पेड़ जरूर लगाएंगे, पानी और बिजली बचाएंगे और अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखेंगे।
0: बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा संदेश आपने दिया है कि कब से कहा जाता है कि हमको खुद, हम अपने जो हमारी पर्यावरण है उसको प्रदूषित करने में खुद हमारा अपना हाथ है।
7: जी दीदी,
0: क्योंकि हम बहुत सी चीजों के प्रति सजग ही नहीं हो पा रहे हैं, जैसे पेड़ कटते हैं और फिर दोबारा पेड़ नहीं लग पाते हैं।
8: जैसे कि आपने देखा होगा भाई, इंडिया में जो मई जून के महीने में आपने देखा होगा बांदा जिले में बहुत ही तेज गर्मी थी, आप देख सकती थी 50 डिग्री सेल्सियस, 49 डिग्री सेल्सियस वहां तक पहुंच गया था।
0: और एक बार राजस्थान में भी ऐसे टेम्परेचर हो गया था, लोगों ने मीम्स बनाने शुरू कर दिए।
6: राजस्थान में
0: पापड़ तलते दिखाए गए, रेतों में रोटियां सिकती थी।
8: बहुत से लोग बोलेंगे कि ये AI है, लेकिन वो AI नहीं था।
0: नहीं, AI नहीं था, वो तो अभी AI तो अभी डेवलप हुआ, लेकिन उस समय सच में वो अपनी छतों पर बैठ करके और रोटियां सेक करके दिखा रहे थे, पुड़ियां तल के भी दिखा रहे थे।
5: हम ह्यूमंस चाहे जितने अडॉप्ट हो जाएं, लेकिन हम 60 डिग्री के बाद का टेम्परेचर नहीं झेल सकते हैं।
0: 50 तक तो चलिए चल जाता है,
5: 60 की बात कर नहीं झेल सकते, और 55 पे एसी भी काम करना बंद कर देंगे।
0: चलिए, हमारे साथ एक हमारे बहुत प्यारे से दोस्त जुड़े हैं। बेटा, अपना नाम आप खुद बताइए। मैं तो परिचय करते करते मेरा ये जबड़ा दर्द करने लगता है, अब आप अपना परिचय स्वयं दीजिए।
9: मेरा नाम है साहिल कनौजिया।
0: साहिल कनौजिया,
9: मैं
0: क्या सुनाने वाले हैं?
9: मैं आपको एक कविता सुनाऊंगा।
0: ओके, चलिए फिर से कविता
9: कहानी सुनाऊंगा।
0: कहानी सुनाएंगे? मैं तो खुश हो गई थी कि कविता सुनने वाले मुझे। चलिए, अच्छा कोई बात नहीं, आप सुना दीजिए कहानी।
9: आचार्य का दीप, चाणक्य का दीपक,
0: चाणक्य का दीपक
9: कहानी का नाम।
0: अच्छा।
9: आचार्य चाणक्य भारत के महान शिक्षक, अर्थशास्त्री और कुशल राजनीतिज्ञ थे। उनकी नीतियाँ आज भी हमें ईमानदारी, बुद्धिमानी और कर्तव्य निभाने की प्रेरणा देती है।
0: जी।
9: एक दिन आचार्य चाणक्य राज्य का काम कर रहे थे, तभी उनका एक मित्र उनसे मिलने आया। मित्र ने पूछा, आचार्य आपने दीपक क्यों बदल दिया? चाणक्य ने मुस्कुराकर कहा, पहला दीपक राजकोष के तेल से जल रहा था, वह राज्य के काम के लिए था। अब हम निजी बातें करेंगे, इसलिए मैं अपना दीपक जला रहा हूँ। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए राज्य के धन का उपयोग नहीं करता है, वही सच्चा ईमानदार होता है। बच्चों, ईमानदारी की पहचान छोटी छोटी बातों से होती है। जो सार्वजनिक धन और वस्तुओं का सम्मान करता है, वही सच्चा और जिम्मेदार नागरिक बनता है।
0: बिल्कुल सही बात चाणक्य ने कही, और हम सभी एग्री हैं इस बात से। चाणक्य की जो नीतियाँ थी वो आज हमारे देश में इस समय वर्तमान परिस्थितियों में बहुत काम आ रही हैं। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ। हम हमारे अथर्व जी हैं, और अथर्व आज क्या बताने वाले हैं?
8: वैसे तो दीदी, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डे और प्राउड करने वाला डे है।

0: मैं समझ गई, कारगिल दिवस है आज।
1: आज मैं आपको कारगिल विजय दिवस के बारे में बस मैं आपको वही बताने वाला हूँ जो आपको पता होनी चाहिए, या फिर कह सकते हैं हमारे देश के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आज आपको कारगिल विजय दिवस के बारे में, वो एक घटना जैसे हम लोग के भारत में जो घटी थी, सबसे दुखद घटना थी, लेकिन हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड करने वाली वो इंसिडेंट था
0: जी।
1: तो हम सभी को पता है कि कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई 1999 को ये इंसिडेंट हुआ था, और आप जानती होंगी कितने वीर सैनिकों ने अपना बलिदान दिया था, तब जाके हमारा जो कारगिल, द्रास और बटालिक जैसी ऊंची ऊंची चोटियां थी, वहां पर हम लोग फिर से अपना झंडा लहरा पाए थे।
0: मुझे याद आ रहा है कि कम से कम 4 लोग अपने ही क्षेत्र के थे, यानी आसपास के क्षेत्र, लखनऊ के, कठौत के, गोंडा के, तो अपने ही क्षेत्र के थे
1: जी।
0: तो ये हमें और भी प्राउड फील कराता है।
1: जैसे क्या था कि जब शुरुआत हुई थी इस युद्ध की, क्या था कि जब सर्दी आ जाती है, उस टाइम पर क्या था कि जब 1999 में जब सर्दियां स्टार्ट हुई थी, तो दोनों बॉर्डर की तरफ से जो उनकी जो पुलिस चौकियां थी वो खाली हो गई, वो लोग अपने बॉर्डर से थोड़ा सा पीछे चले गए। हम दोनों मतलब दोनों देशों के जो पुलिस फोर्स थी वो पीछे चली गई थी, लेकिन जो पाकिस्तानी फोर्स थी वो, उन्होंने इसी बात का फायदा उठाया और फिर हमारे बॉर्डर के अंदर घुस करके जो हमारी कारगिल, द्रास, बटालिक जैसी ऊंची ऊंची चोटियां थी, वहां पर अपने बंकर बना लिया, और इसी बंकर में वो लोग सुरक्षित रहते थे। और जब इस मतलब कुछ महीने बीते, फिर उसके बाद वहाँ हमारे देश के कुछ स्थानीय चरवाहे थे, जो ग्रेजर्स होते हैं, जो भेड़ बकरियां गाय ये सब चराते हैं, उन लोगों ने कुछ बंकरों पर मतलब कुछ शक किया कि वहां पर कोई रहता तो है, तो इसी बात को उन्होंने भारतीय सेना को बताया। तब क्या हुआ, कैप्टन सौरभ और उनकी जो कुछ टीम्स थी, उन्होंने पहाड़ों पर चढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उनको जब पता चला पाकिस्तानी फोर्स को कि कोई इंडियन फोर्स हमारी तरफ आ रही है, तो उन्होंने धोखे से उन सभी को बंदी बनाया, उनको टॉर्चर किया, और फिर बाद में वो लोग शहीद हो गए थे। फिर उसके बाद में ऑपरेशन विजय स्टार्ट हुआ, और आपको तो पता ही है कि ऑपरेशन विजय हम लोग के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। सबसे पहला युद्ध हुआ था तोलोलिंग की जो लड़ाई हुई थी, जो 13 जून को लड़ी गई थी, उसमें हम लोगों ने अपनी शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल करी थी, और इससे क्या हुआ कि हम लोग का जो कह सकते पलड़ा था वो भारी हो गया था।
0: हमारा झंडा भी वहां लहराया गया।
1: और फिर दूसरी थी टाइगर हिल, ये लड़ी गई थी 4 जुलाई को, मतलब उसके जस्ट 27 दिन बाद, और ये सबसे कठिन चोटी थी, मतलब कि यहाँ पर चढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन फिर भी हमारी इंडियन फोर्सेस ने बहुत ही ताकतों अपनी ताकत से उस पर अपना तिरंगा लहराया।
2: देखिए, जो ट्रांसकाराकोरम रेंज है वहाँ की, हिमालय से थोड़ी सी अलग ट्रांसकाराकोरम रेंज, वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, जैसे जो पहाड़ हैं वहाँ के, जैसे कि K2 माउंटेन जो कि दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट माउंटेन है, फिर टाइगर हिल, तो ये सब जितने भी हिल और माउंटेन्स हैं ये खड़ी चढ़ाई वाले हैं,
0: खड़ी चढ़ाई। और दूसरे यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा माइनस में चला जाता है।
2: ये देखिए, जो द्रास की हम बात कर रहे हैं, ये द्रास के आगे कारगिल है, और जो द्रास है ये दुनिया का सबसे ज्यादा ठंडा इनहैबिटेड प्लेस है, सबसे ज्यादा ठंडा अंटार्कटिका में है, लेकिन इनहैबिटेंट्स अगर हम बात करें तो वहाँ पर द्रास है,
0: तो ये
3: और इसी वजह से यहाँ पे एवलांचेस और तूफान बहुत कॉमन है। एक बहुत बड़े कवि हैं गुरु सक्सेना, उन्होंने लिखा है, रूपवती नैन बिना, चांद जैसे रैन बिना, घर सुख चैन बिना, नदी बिना नीर के, मार्केट सिंधी बिना, सुहागन बिंदी बिना, बोल चाल हिंदी बिना, धनु बिना तीर के, पंछी जैसे पंख बिना, नोट जैसे अंक बिना, पूजा जैसे शंख बिना, शस्त्र बिना वीर बिना, सिर के शरीर वैसे भारत लगेगा हमें बिना कश्मीर के।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह कि आज वो पवित्र दिन, वो पुनीत दिन है, और जिसके लिए हमारे शहीदों ने अपना बलिदान।
1: और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कारगिल का युद्ध था वो करीब 2 महीने तक चला था, 60 दिनों कह सकते हैं आप, ये चला था, और हम लोगों ने अपनी तरफ से जो सेनाएं थी, हम लोगों ने 527 वीर सैनिक खोए थे, और उसमें से 1300 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। लेकिन भाई एक अच्छी खबर ये भी थी कि पाकिस्तान की जो सेना थी वहाँ से 3000 लोग घायल हुए थे।
0: चलिए,
1: तो ये सोच सकते हैं आप,
0: तो
1: कितने
0: एक बार हमारा एक छोटा सा ट्रिब्यूट है उसके लिए, जो आप लोग अगर साथ दें तो बहुत अच्छा है। मैं तो यही कहूंगी कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। तो एक बार फिर से नमन है।

0: हमारे उन शहीदों को, और इसी के साथ चलते हैं यशराज की ओर। और यशराज आपके लिए समय मेरे पास बहुत कम बचा है, आप जल्दी से अपनी बात कह दीजिए वरना टाइम अप हो जाएगा।
1: देखिए अभी ये जो हमारे भारत में एक बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशन चला है मेरे हिसाब से, तो ये स्टूडेंट्स का एक बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशन है, नीट प्रोटेस्ट 2026। ये एक ऐसी चीज़ थी ना जहाँ से हमारे भारत के युवा को पता चल गया, जो कि हमारे देश के मतलब फ्यूचर हैं, उसको ये पता चल गया कि अब भारत में अगर मतलब कोई भी गलत चीज़ होगी तो उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे, और अगर हम यूनाइट होंगे तो सरकार तो क्या किसी कोई भी आ जाए
0: किसी को
1: तो
0: भी झुकाने की सामर्थ्य रखते हैं
1: ना, झुकने वाले तो हैं, झुकाने वाले होने चाहिए। और इसके बाद ये जो अभी कल ये जो प्रोटेस्ट है वो ख़त्म हुआ, उसके बाद एक लाइन बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई, मतलब मुझे तो वो बहुत ही अच्छी लगी। ये थोड़ी सी ये आज मैं यही के बारे में बताने वाला हूँ, इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे इस पूरे प्रोटेस्ट के। ये केवल एक प्रोटेस्ट की कहानी नहीं है, ये उन लाखों एस्पायरिंग मेडिकल स्टूडेंट्स की आवाज़ है जिन्होंने वर्षों तक मेहनत की, स्लीपलेस नाइट्स बिताई, अपने सपनों को सींचा और एक बेहतर भविष्य की उम्मीद में नीट जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षा पर भरोसा किया। नीट केवल एक एग्जामिनेशन नहीं है, ये लाखों विद्यार्थियों के लिए डॉक्टर बनने का एक सपना है, जो कि सपना कभी न कभी पूरा जरूर होता है, उनके परिवारों की आशा और उनके भविष्य का एक महत्वपूर्ण रास्ता भी है। इसलिए जब एग्जामिनेशन सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस और क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठते हैं तो विद्यार्थियों के मन में चिंता और असुरक्षा पैदा होना स्वाभाविक चीज है,
0: टूट जाते हैं उनके सपने।
1: और वैसा ही कुछ हमारे भारत में इस वर्ष हुआ। 2026 में नीट से जुड़े कथित पेपर लीक और एग्जामिनेशन इरेगुलरिटीज के मुद्दे ने स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के बीच गंभीर चिंता पैदा की। यही नहीं, सिर्फ उस नीट पेपर लीक की वजह से, भले मैं जानता हूँ कि इस
0: बहुत
1: साल
0: सारे बच्चों ने अपनी जान भी,
1: बिल्कुल वही मैं कहने जा रहा हूँ, नीट री एग्जाम भले हुआ लेकिन वो जो जाने थी क्या वो नीट री एग्जाम से हमें मिल पाई वापस, उन माता पिता को वापस मिल पाई।
2: और एक सबसे फेमस नाम सोनम वांगचुक, जो कि एक इंडियन एक्टिविस्ट थे, उन्होंने 28 जून से लेकर के मतलब कह सकती हैं एक महीना लगभग उन्होंने भूख हड़ताल पर बैठे थे, अनशन पर बैठे थे वो, और सोच सकते हैं आप उनका करीब 7 से 8 किलो वजन भी कम हो गया था। और मतलब इतना बड़ा बलिदान हम लोगों के लिए,
1: और वो कोई ऐसे वैसे नहीं। देखिए हमारी जो मीडिया है वो बहुत चीज़ें उनके बारे में उनके खिलाफ बोल रही थी, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ वो लद्दाख से हैं, वो हमारे भारत से हैं और भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इंडियन आर्मी के लिए अनगिनत कॉन्ट्रीब्यूशन दिए हैं, उन्होंने
3: थ्री इडियट्स
1: ये उन्हीं पे मतलब बेस्ड है। और मैं आपको बताऊंगा, सोनम वांगचुक ने एक ऐसी चीज़ बनाई थी इंडियन आर्मी के लिए, अगर मान लीजिए कोई ऐसी जगह है जैसे अभी हम बात कर रहे थे कारगिल वॉर की, वहाँ ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है द्रास में कारगिल में, तो उन जगहों पर जब -20 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर पहुँच जाए तो उन्होंने ऐसे कैंप्स बनाए थे जिसमें अंदर का सेल्सियस जो था वो डिग्री जो टेम्परेचर था वो 15 डिग्री सेल्सियस था, मतलब एक 35 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस उस कैंप के अंदर और बाहर था। ऐसी चीज़ें सोनम वांगचुक ने बनाई है, और वो खुद भी ऐसी चीज़ों से मतलब लड़ चुके हैं क्योंकि लद्दाख बहुत ही ज़्यादा ठंडी जगह है।
3: और उन्होंने एक बहुत फेमस स्कूल, जो थ्री इडियट्स मूवी अगर आपने देखी होगी तो उसके लास्ट में देखता है ना, वो स्कूल वास्तविकता में एग्जिस्ट करता है, SCMEMOL, और वो स्कूल में एडमिशन लेने के लिए किसी को भी फेल होना पड़ता है पहले।
0: तो चलिए भाई, हमारा जाने का वक्त हो चुका है और हम अब चलते हैं अपने अपने घरों की ओर, और ये मंच हम देते हैं ओपन माइक के लोगों को, और इसलिए लेते हैं आपसे विदा और वादा करते हैं कि हम अगले संडे आपसे फिर मिलेंगे, तब तक आप सुनते रहिए
2: रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।

0: जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार जी, आदाब आप सभी को। आप सुन रहे हैं रेडियो गणस्थली 9.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन और कार्यक्रम चल चुका है ओपन माइक अपना टैलेंट अपना एफएम। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु, आप सभी के साथ, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं आपके फेवरेट वाले आरजे यानी आरजे
1: अदनान। जी हाँ, सो संडे का वक्त है, ओपन माइक वाला प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम में हम अपना टैलेंट दिखाते हैं
0: जी।
1: हम मतलब आरजेज तो दिखाते ही रहते हैं 6 दिन पूरा, 7वां दिन तो हमारे श्रोताओं के लिए होता
0: श्रोताओं का होता है
1: बेशक। सो क्या लगता है, गोंडा वाले अगर आएंगे तो कौन कौन सा टैलेंट होगा उनमें?
0: गोंडा के अंदर तो मैंने देखा गाने का टैलेंट है
1: काफी ज्यादा है।
0: हाँ, और लिखते भी बहुत अच्छा लोग हैं।
1: हाँ बिल्कुल,
0: मतलब वाद्य यंत्र भी अच्छे बजाते हैं।
1: हाँ।
0: मिमिक्री भी ठीक ठाक कर लेते हैं।
1: जैसे
0: जैसे मतलब मिमिक्री हो जाती है,
1: जैसे कोई करके दिखाने वाले हैं आप?
0: नहीं, हम नहीं करके दिखाने वाले, हम तो आपसे उम्मीद कर रहे थे कि आप कुछ अच्छा कर देगा तो मजा आता
1: है। मिमिक्री बहुत घटिया होती है मुझसे।
0: अच्छा, होती तो है,
1: घटिया होती है।
0: नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, मतलब होनी चाहिए।
1: तो बात सही है कि ये सारा टैलेंट है। मुझे लगता है लिखने का टैलेंट तो यहाँ की धरती में हमेशा से रहा है, चाहे वो आदम गोंडवी साहब हो
0: जी,
1: तुलसीदास साहब का नाम आता है,
0: जिगर मुरादाबादी
1: साहब का अपना आखिरी वक्त भी यही गुजरा और यही के इसी सरजमी के होकर रह गए। तो लिखने का टैलेंट तो बहुत है। आपने कहा वाद्य यंत्र का, मुझे लगता है कि अब काफी कल्चर बढ़ा है। वजह पता है क्या है? क्योंकि लोग अब थेरेपी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, गिटार प्ले करना, हारमोनियम प्ले करना और फ्लूट प्ले करना, ये सब जो है वो एक थेरेपी की तरह हो रहा है, इसीलिए लोग ज्यादा पसंद करते हैं।
0: और जो ये जनरेशन है, ये जनरेशन जो है वो थोड़ा सा कल्चर से अलग हटकर कुछ करना चाहती है। पहले के लोग जो मिलेनियल वाले थे, वो जरा देखिए उनका कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, यूपीएससी क्रैक करना है, लेकिन अब जो है वो हम देख रहे हैं लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं चीज़ों को कि यहाँ भी करियर ऑप्शन है, एक ये भी ऑप्शन है जिसके जीते जाते। एक एग्जाम्पल भाई, हमारे साथ कई जो हमारे जेंजीज हैं वो आरजेज हैं, एडिटर्स हैं, तो उन लोगों ने एक नया नया ऑप्शन चुना। अब तो बच्चे जो हैं

0: बन भी गया तो बहुत ख़राब बनूंगा, लेकिन मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बना तो मेरे पास पैसे कम होंगे लेकिन मैं खुश रहूंगा पापा। तो मतलब वहाँ पर जो दिखाया गया वो फिल्म बहुत शानदार, आमिर खान की मूवी जो है वो कुछ ना कुछ मैसेजिंग हमेशा होती ही होती है।
1: करेक्ट।
0: तो उसने कहा कि नहीं, इंजीनियर बनने से अच्छा है, ख़राब इंजीनियर बनने से अच्छा है एक अच्छे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन जाओ।
1: बिल्कुल।
0: तो मतलब लोग भिन्न भिन्न दिशाओं में सोच रहे हैं, और ये देखिए ये बच्ची भी सोच रही है कि हमको भी सिंगर बनना है, आगे चल के म्यूजिक की क्लास ले रही है। अच्छा, हम लोग अगर सोचते अगर लेते सारे गा तो वो जो पापा कहते हैं अच्छा भी रह गया, यही बचा है।
1: नहीं पापा ये ना कहते, बेटा तुम तो ठीक है लेकिन ये लोगों का जीना हराम क्यों करो गा करके।
0: हाँ, तानसेन की औलाद पैदा हो गई।
1: हाँ, मतलब बेसुरी सी आवाज में। ठीक है, चलिए, खैर टैलेंट तो हमारा गोंडा दिखाता है, और हम हमेशा इनवाइट करते हैं कि अगर हमारे गोंडा वालों में कोई भी ऐसा शख्स जो सुन रहा हो जिनको गाने का टैलेंट हो, कॉमेडी करने का हो, स्टोरी टेलिंग करने का हो, या कोई भी वाद्य यंत्र बजाने का हो, तो वो सीधे स्टूडियो संडे को हमारे साथ में एंजॉय करने आ सकते हैं। और आज तो मुझे लगता है कि हम एक मौका और देते हैं कॉल पे जुड़ने का भी।
0: जी जी, ये बहुत बेहतर रहेगा।
1: बिल्कुल। सो भाई, आपको स्टूडियो का नंबर तो याद है, 6393 3164 29, लेकिन उससे पहले अब चूंकि हमारे बीच में हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो आ चुके हैं, बड़े प्यारे मासूम चेहरे के साथ आए, ये मुखौटा है या सच में ऐसा? हाँ बच्चे। सो बहुत ही प्यारी सी छोटी सी मासूम सी बच्ची हमारे साथ में मौजूद है, और देखते हैं भाई इनका नाम ये खुद बताने वाली हैं और क्या हमारे लिसनर्स के लिए लेकर आई हैं वो भी बताने वाली। बेटा क्या नाम है आपका?
2: मिश्रा तिवारी।
1: ओके, सो चलिए भाई आप क्या लेके आई हमारे लिसनर्स के लिए?
2: यशोमती मैया से बोलने
1: वाला। अरे वाह, क्या बात है। तो शुरुआत तो आज इतनी क्यूट तरीके से होने वाली है। सो आप अकेले इसको गाने वाली हैं या हमारे साथ जो हमारी दूसरी कैंडिडेट मौजूद हैं वो भी, शानवी भी इसको गाएंगी?
2: शानवी से गाएंगे।
1: दोनों लोग, आप लोग डुएट करेंगे? ठीक है, ओके।

0: क्या बात है भाई, वाह क्या बात है। अच्छा ये बताइए, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, मतलब वास्तव में क्यों राधा जी गोरी थी?
1: राधा जी गोरी थी क्योंकि गोरी पैदा हुई थी इसलिए।
0: और कृष्ण जी काले थे कि सांवले थे?
1: सांवले थे।
0: सांवले थे ना। अच्छा आपको कौन सा रंग सबसे अच्छा लगता है, गोरा सांवला गेहूं?
1: सांवला और गोरा दोनों।
0: मतलब ज्यादा क्या पसंद है?
1: अब क्या होता है, गोरा
2: हो सकता है, दोनों ही हो बराबर ऐसा।
0: अच्छा से सांवले और गोरे की जोड़ी बहुत अच्छी रहती है।
2: अच्छा आपकी भी वही है क्या?
0: हाँ हमारी तो वही है।
2: अच्छा इसीलिए शायद आप बेहतर बता पा रहे हैं।
0: नहीं आप बेहतर बता पा रहे हैं अपना व्यक्तिगत अनुभव। मतलब मैंने देखा कि जहाँ पर सांवले और गोरे होते हैं उनकी जोड़ियाँ बहुत शानदार होती हैं।
2: ओके
1: जैसे हाँ। राधा कृष्ण जी।
0: हाँ जैसे सीताराम जी वो सांवले वो गोरी तो अच्छा लगता है।
2: रियल लाइफ में क्या

0: आपने कभी किसी को देखा है कोई दोस्त यारी में या रिश्तेदारी में?
1: हाँ,
0: किसी को देखा है आपने ऐसा?
1: हाँ बिल्कुल देखा है, मेरे कई सारे रिश्तेदारों में बच्चे हैं ऐसे। और
0: अच्छा।
1: जी हाँ, आपने ऐलान किया था, हमको लगता है कि
0: कॉल आ गई।
1: जी जी जी,
0: अरे
1: जी, जी।
0: क्या बात है, तो देखते हैं कौन है कॉल पर और क्या है उनको कहना। हाँ जी, हेलो।
2: हेलो
0: जी, क्या नाम है आपका?
2: सर मैं प्रशांत तिवारी बात कर रहा हूँ।
0: जी
1: प्रशांत जी, नमस्कार।
2: नमस्कार सर, नमस्कार, कैसे हैं सर?
1: आशीर्वाद आशीर्वाद आपका, आप कैसे हैं?
2: बस बढ़िया सर।
1: और बिटिया रानी हमारी कहाँ है?
2: हेलो
1: जी, हमारी बेटी बिटिया रानी कहाँ है?
2: हाँ, बिटिया रानी को हम बुला रहे हैं
1: जी।
2: और आज शुरुआत, आज हमारे घर में तीन सिंगर मौजूद हैं, एक तो बिटिया है, हमारी माता जी भी।
0: अरे
1: क्या बात हो रही है,
0: जनरेशन एक साथ गाने वाली है।
2: थोड़ा बहुत बड़ी बात है, सबके साथ शेयरिंग।
0: अरे वाह क्या बात है, ये पहली बार हो रहा है इस एफएम के इतिहास में, तीन जनरेशन घर की और तीनों परफॉर्म करने वाले हैं। क्या बात है।
2: तो दे सर
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज शुरुआत हम करते हैं,
2: पहले माता जी हमारी शुरुआत करेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
3: हेलो
1: जी, माता जी प्रणाम।
3: खुश रहो भैया।
1: कैसी हैं आप? कैसी हैं आप, ठीक हैं?
3: ठीक है, ठीक भैया
1: जी। हाँ। तो क्या बात है, बहुत अच्छा आज संयोग मिला है।
3: हाँ संयोग मिला, लड़कन से मिला, चली
1: आए। नहीं नहीं, सही है सही है,
3: ठीक है भैया। और
1: तो आपकी मधुर सी आवाज में हम क्या सुनने वाले हैं आज?
3: एक गीत छोटा सा
1: जी। जी शुरू करें आप।

जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला।

0: क्या बात है भाई,
1: माशाल्लाह। मतलब क्या अंदाज है, क्या सुर है, क्या आवाज है,
0: मतलब संगीत विरासत में मिला है। अब मुझे माता जी से पुत्र में आया है, पुत्र से बेटी में तक पहुंचा है। तो अब समझ में आया माता जी कि ये जो प्रशांत जी इतना बढ़िया गाते हैं, इसका सारा जो है श्रेय आपको जाता है।
2: पता नहीं भैया।
0: हाँ भाई, अब यहाँ पर तो लाइक मदर लाइक सन हो रहा है, इसके बाद लाइक फादर लाइक डॉटर होगा। बहुत अच्छा गाया भाई, बहुत उम्दा। और इसमें भी ये आवाज़ और ये ठहराव, ये बताती है कि मतलब बिना किसी संगीत की शिक्षा लिए हुए और खाली सुनते सुनते इतना बढ़िया गा लेना, ये वास्तव में एक साधना है।
1: बिल्कुल,
0: क्या कहेंगे आप?
1: बिल्कुल बिल्कुल। और फिलहाल अब हमारे साथ में पंकज जी जुड़ गए हैं,
0: प्रशांत जी।
1: प्रशांत जी, और अब हम आपसे भी सुनना चाहते हैं।
3: बिल्कुल सर, ये हमारी बिटिया कुछ गाएगी, पहले हम इससे सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल
3: थोड़ा सा।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ये थर्ड जनरेशन।
4: हेलो
1: जी बच्चे, क्या नाम है आपका?
4: सर तन्वी तिवारी।
1: अच्छा, सो तन्वी क्या सुनाने वाली हैं आप हमारे श्रोताओं को?
4: सर आज तुम ही आना सुना दे।
1: अरे वाह, देखिए जनरेशन का वो भी देखिए ट्रांजिशन, कि तन्वी कौन सा सॉन्ग चूज कर रही है
0: नहीं,
1: और दादी ने कौन सा किया।
0: तन्वी लता जी के गीत भी बहुत अच्छा गाती
1: है। मतलब हाँ, अच्छा हाँ, ये कि हाँ, हर दौर मिल रहा है।
0: हाँ,
1: प्लीज सुनाइए तन्वी, हम सभी सुन रहे हैं आपको।

0: ओह माय गॉड,
1: क्या बात है भाई, क्या मतलब, क्या कहा जाए तन्वी जी आपको, मतलब ये सिंगर ही बनना चाहती हैं इनका,
2: ये बन गई है
1: और वास्तव में बन गई हैं, और या तो ये जानना चाहती हैं पॉलिटिक्स में, दो फील्ड उन्होंने बताई, और वास्तव में बहुत ही प्यारा गाती हैं। आपने सुना तो आपको कैसा लगा?
2: पॉलिटिक्स में जाने के बाद, गाना गाने के बाद सारे मुद्दे सॉल्व हो जाएंगे।
1: तन्वी बिटिया कैसी हो आप, और पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी?
3: सर अच्छे हैं, पढ़ाई भी अच्छी चल रही
1: है। अब एग्जाम होने वाले हैं आपके ना, हाफ ईयरली वाले।
2: एंड तन्वी बहुत
1: बहुत प्यारी
2: आवाज़ है, और प्लीज़ आप ट्राई करते रहना, और मंच तो आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आप अपने लिए गाते रहना, उसको कभी मत छोड़ना। और ये देखिए हमारे साथ में शानवी बैठी हैं जो क्लासेस भी लेती हैं, इनको कैसा लगा ये जरा बता दें शानवी।
4: मुझे बहुत प्यारा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे।
2: सच में आवाज में मिठास कितनी थी?
4: बहुत ज्यादा।
2: और फील कितना था?
4: मतलब क्या कहने।
2: अच्छा, ज्यादा टेक्निकलिटी हम लोग तो नहीं जानते हैं, नहीं सीखते, लेकिन सुर में जो ठहराव कहते हैं वो कैसा
4: था? पूरा जो सॉन्ग था वो सब बिल्कुल परफेक्ट था।
2: क्या बात है।
4: और मैं तो कहूँगी कि इनको और गाना चाहिए, तो इनको आगे फील्ड बहुत अच्छी मिलने वाली है।
2: चलिए भाई, ये एक ऐसे बच्चे का कहना है जो खुद इस फील्ड का प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले रहा है, और बिल्कुल सही कहा।
1: और ये हमारे प्रशांत जी गोंडा के उदित नारायण हैं।
2: अरे वाह, क्या
1: हाँ, मतलब उदित नारायण के गाने हूबहू गाते हैं ये।
2: बहुत बढ़िया, तो अब तो हम प्रशांत जी को ही सुनने वाले
1: हैं। हाँ, मतलब हमने तीसरी जनरेशन और पहली जनरेशन देख ली, अभी ये मध्य वाली जनरेशन है।
2: बिल्कुल।
1: तो प्रशांत जी क्या सुनने वाले हैं आपसे हम?
5: आज आपको सर हम महेंद्र कपूर जी का गाना जो है एक सुनाते हैं आपको।
1: क्या बात है, मतलब आज उसी नारायण जी महेंद्र कपूर बनने वाले हैं
5: जी। एक गाना कम गजल है वो।
1: अच्छा
5: जी, तो स्टार्ट करते हैं सर
2: जी, प्लीज़।

जिनसे एक अधूरी सी मुलाकात हुई, जिनसे

एक अधूरी सी मुलाकात हुई थी जिनसे कुछ

0: थैंक यू सर।
1: क्या बात है भाई, क्या बात है। मैं कपूर को एकदम कॉपी किया, लेकिन भाई हम चाहेंगे कि उदित नारायण जी का कोई गीत आपसे जरूर सुने।
0: उदित नारायण जी का भी सर आपको सुना ही देते हैं सर।
1: जी, उदित नारायण जी को सुनते हैं आपसे।

0: थैंक यू सर।
1: क्या बात है भाई, क्या बात है, मतलब पूरा खानदान गायक कलाकार है। मतलब माता जी से आपको मिला, आपसे जो है वो तन्वी को मिला, और क्या बात है ये। मतलब हमको लगता है कि एफएम की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ओपन माइक अपना टैलेंट अपना एफएम है, और हम चाहते हैं कि आप सपरिवार किसी दिन स्टूडियो में बधा दिए और आपको और आपको और बच्ची को लाइव सुना जाए। हाँ, मतलब बड़ी इच्छा है हमसे, हमको मिलने की माता जी से भी, आपसे भी, और अपनी प्यारी बिटिया से भी।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर,
1: बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम आपको।
0: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
1: भाई तो ये एक ही खानदान के इतने सारे लोगों ने गाया, बताइए कैसा लगा आपको शानवी जी?
2: बहुत अच्छा लगा।
1: अब देखिए फिर हमारे साथ कुछ जुड़ चुके हैं, देखते हैं कौन हमारे साथ। हेलो हेलो जी, नमस्कार
3: जी, मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
1: जी शिमला से बात कर रहे हैं आप, नमस्कार, कैसे हैं आप?
3: जी बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं, और इस वक्त आपके प्रोग्राम चल रहा है तो मैंने सोचा कि मैं भी लगा दूँ कॉल।
1: जी जी बहुत अच्छा किया आपने। तो क्या नाम है आपका?
3: मेरा नाम है राकेश
1: जी। राकेश जी, तो आज हम आपसे क्या सुनने वाले हैं?
3: जी जी जी जी, तो मैं तो आप कुछ भी, मैं जो अपना जो मेरा जो टैलेंट है तो मैं आपको शेयर करता हूँ।
1: जी
3: जी, तो मेरा बचपन से टैलेंट था ढोलक बजाना, तो मैं ढोलक बजाता हूँ और अभी भी बजाता हूँ। जब कहीं मैं किसी भी महफिल में जाता तो मैं ढोलक को बजाता हूँ। ढोलक मेरी है इतनी खूबी, तो मैं उसको मैं बिल्कुल नहीं छोड़ता बजाना।
1: जी,
3: और तो जब कहीं भी जब मैं बचपन से जब ढोलक बजाता था तो मेरी मम्मी कहती थी, जब छोटा था क्या बोलते 7-8 साल का, तो मैं पैरों में उठा के ढोलक बजाता था। मतलब ये नहीं सोचता था कि ढोलक फट जाएगी ना, बस हाथ पैरों पे उठाना है फिर हाथ पे बजाना है।
1: ठीक है, तो आज आपको ढोलक बजाना सिखाएंगे।
3: ढोलक बजाना तो सुनाऊंगा, पर अभी मेरे पास आस पास ढोलक नहीं है, तो मैं आपको जरूर बताता हूँ बजा के, जरूर बताता।
1: जी
3: जी जी जी जी जी,
1: तो मतलब आपसे आज कुछ हमको मिलने वाला नहीं है
3: जी? तो नया तो ऐसा कुछ नहीं, हाँ तो दो लाइन है उसके बाद में आपको गाना सुना दूंगा।
1: जी जी गाए
3: आप। जी जी जी, मैं कुछ गाना सुनाता हूँ।

0: थोड़ी खुशी थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
0: जी धन्यवाद।
1: जी जी हेलो हेलो जी नमस्कार।
2: नमस्कार जी, आप बताओ, आप इतनी बार फोन लगा रही, बैठने जा रही, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे हो?
1: जी फोन वेटिंग जा रहा था क्योंकि किसी दूसरे का फोन आया हुआ था।
2: क्या इतनी देर बात कर रहे हो? बहुत देर कम से कम आधा घंटा में लगाते लगाते परेशान हो गए।
1: जी जी तो आज क्या सुनने वाले हैं आपसे हम?
2: आज मुझे गाना सुनना है, नवाज सुल्तान।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। जी जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। हेलो
3: हेलो
1: हेलो
3: नमस्कार आरजे मनोज सर।
1: जी जी नमस्कार।
3: मैं सबलू सावंत बोल रहा हूँ।
1: जी सबलू जी कैसे हैं आप?
3: मैं फर्स्ट क्लास हूँ। और आप लोग बताइए कि दोनों आदमी कैसे हैं?
1: जी दोनों ठीक है। आप बताइए आप कैसे हैं और आपसे क्या सुनने वाले हैं?
3: मैं तो फर्स्ट क्लास हूँ सर। और आपके बीच में एक सॉन्ग है।
1: जी जी
3: जो कि कसूर मूवी से ली गई है।
1: जी
3: जी उदित नारायण सर ने गाए थे।
1: चुमिरी रूह को चैन दे प्यार दे।
3: जी नहीं बड़ी उदास है जिंदगी।
1: हाँ बड़ी उदास है जिंदगी।
3: जी स्टार्ट कर देते हैं।
1: जी
3: बड़ी उदास है जिंदगी, कोई दुख साथी चाहिए, एक तलाश है जिंदगी, कोई तो साथी चाहिए, आएगा मुझे भी प्यार किसी को, मुझको तो है एतबार, होगा मेरा भी इंतजार किसी को, सच कह रहा हूँ मेरी यार, ऐसे ना पागल मचल, दिल दीवाना समझ, बद हवा से है जिंदगी, कोई तो साथी चाहिए, एक तलाश है जिंदगी, कोई तो साथी चाहिए, यादों में कोई दिन रात सताए, तन्हा न कटे।

0: एक प्यास है जिंदगी, कोई तो साथी चाहिए। एक तलाश है जिंदगी, कोई तो साथी चाहिए। बड़ी उदास है जिंदगी, कोई न कोई साथी चाहिए।
1: क्या बात है, क्या बात है भाई, बहुत शानदार गाया आपने सबलू जी भाई। बड़ी उदास है जिंदगी, कोई तो साथी चाहिए। हाँ शानवी जी बताइए, अब आपको कैसा लगा?
2: मुझे तो बहुत अच्छा लगा सबका गाना
1: जी,
2: और सबके तरीके भी बहुत प्यारे लगे।
1: देखिए अब किसी और का भी फोन आ चुका है। हेलो,
3: हाँ मनु सर नमस्कार।
1: जी नमस्कार
3: अदनान सर, सलाम अलैकुम।
1: जी वालेकुम सलाम,
3: मुमताज अंसारी बात कर रहा हूँ।
1: अरे मुमताज जी कैसे हैं आप?
3: बस ऊपर वाले हुआ है आप लोगों
1: को। जी तो आज क्या सुनने वाले हैं आपसे?
3: अरे आप इजाजत दें तो थोड़ा बहुत सुना देते हैं।
1: जी जी
3: इजाजत है सर?
1: जी जी बिल्कुल, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं।
3: लीजिए फिल्म का नाम आशिकी।
1: हाँ
3: गाने के बोल हैं
1: तुम मेरी जिंदगी है।

hey,

0: क्या बात है भाई, बहुत ही शानदार गीत गाया आपने। तू मेरी आशिकी है, तू मेरी हर खुशी है। जी हाँ, एक इंसान इस दुनिया के लिए किसी के लिए पूरा जहान बन जाए तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती।
1: ये सब आप लोगों की मोहब्बत ने सुना दिया।
0: जी जी जी जी, खुदा हाफिज। हाँ तो भाई, अब शानवी जी आपके पास क्या है अब बचा हुआ?
2: मेरे पास अभी दो चीजें हैं।
0: जी बताइए बताइए।
2: मेरे पास एक तो गाना है और एक है कुछ लाइनें जो मेरे पापा मुझे हमेशा गा करते हैं।
0: जी
2: तो पहले मैं कुछ लाइनें बताना चाहूँगी, सुनाना चाहूँगी।
0: जी
2: कि मेरे पापा कहते हैं कि किसी ने सही ही कहा है, जिंदगी में ऐसा करें कि काम दोनों का चलता रहे। जिंदगी में ऐसा करें कि काम दोनों का चलता रहे, हवा भी चलती रहे और दिया भी चलता रहे।
0: क्या बात।
2: इसका जो मेन उसका मेन मकसद है वो ये कहना चाहता है कि हमें अपनी लाइफ में हमेशा बैलेंस्ड माइंडसेट रखना चाहिए और बैलेंस लाइफस्टाइल हमें जीनी चाहिए ताकि हमारा जो पूरा लाइफस्टाइल है वो अच्छे से चलती रहे।
0: संतुलित होना बहुत, मतलब बैलेंस्ड। और जिंदगी में हमको लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज़ है कि कम से कम हाँ संतुलित अवस्था में है चीज़ हो। संतुलन बिगड़ेगा
2: मतलब बैलेंस करना है कि आप उधर आप रेडियो में भी जा रहे हो।
0: हाँ।
2: आप अपना खुद का पर्सनल काम भी कर रहे हो जो आपको कहे। हाँ। और इसके बाद अपनी जो आपका
0: टीचिंग है,
2: हॉबी है। हाँ। हॉबी आप हॉबी अपना कर रहे हो, मतलब हर चीज को बैलेंस करना।
0: हाँ। ये बात है क्या
2: तो
0: बात?
2: इसका एक मेन मोटो है बैलेंस माइंडसेट और बैलेंस लाइफस्टाइल।
0: क्या बात है, बहुत ही शानदार बात कही आपने। और अब गीत कौन सा है?
2: जगन्नाथ।
0: क्या बात है भाई, तो शुरू कर दीजिए।

0: जगन्नाथ चकानयन जगन्नाथ चकानयन नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले ए तू न संभाले तो हमें कौन संभाले जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ।
1: क्या बात है भाई, जगत के नाथ है और जो जगतनाथ होते हैं उनके होते हुए कोई अनाथ नहीं हो सकता। और वास्तव में जब और सहारे छिन जाते कोई ना सहारा होता है, तूफान में टूटी कश्ती का भगवान किनारा होता है। तो ईश्वर पर आपको आस्था है?
0: बहुत
1: बहुत। और मतलब ये लगता है कि हर मुश्किल का हल उनके पास है, कभी भी मुश्किल में आप पुकारेंगी तो चले आएंगे। क्या बात है। और इतना ही भरोसा इनको भी है, छोटी वाली को?
0: हाँ।
1: अच्छा
0: तो इवन मतलब मैं तो जब भी मुझे टाइम मिलता है स्कूल मतलब स्कूल जब जाना होता है तब भी, या फिर संडे को भी जब भी मतलब मुझे टाइम मिलता है तो पूजा के समय मैं मतलब मैंने भगवान जी को नहलाया सब किया, उसके बाद मैं सुंदरकांड पढ़ूंगी, चाहे एक ही पेज पढ़ूंगी।
1: अच्छा
0: मतलब मुझे अच्छा लगता है अपने
1: मतलब जामवंत के वचन सुहाए से शुरू करती हैं कि
0: सुंदरकांड की मेरे पास एक बुक रखी हुई है ना
1: जी,
0: तो उसी को अभी तक मतलब 15-16 पेज हो गए होंगे और उससे आगे ही हो गए होंगे, मुझे भी याद नहीं है एग्जैक्ट, तो उतने हो गए होंगे अभी मैं और मतलब पढ़ ही रही हूँ।
1: अच्छा भी
0: और मेरे पास भगवत गीता भी रखी है, तो मैंने कहा कि अभी दोनों पढ़ना तो पॉसिबल है नहीं टाइम पे। हाँ। तो मैंने सोचा है कि पहले वो खत्म करूंगी।
1: हाँ, तो उसमें कुल 60 दोहे हैं, हनुमान जी प्रवेश करते हैं, तो मतलब कुछ पंक्तियां उसकी याद भी हैं आपको?
0: इस टाइम पे तो अभी मुझे कुछ याद नहीं, कि मैं रेगुलर नहीं कर पाती ना।
1: अच्छा।
0: क्योंकि अभी स्कूल है तो अभी मम्मी और मुझे और इसको सबको मतलब रेडी होना होता है, तो मुझे पापा की हेल्प भी करानी होती है मतलब मम्मी की, तो इसीलिए अभी रेगुलर हो नहीं पाता, लेकिन जब भी संडे को सैटरडे को टाइम मिला तो मैंने किया।
1: हाँ तो मतलब लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप जो है वो
0: रेगुलर
1: एक दोहा मतलब रोज जो है नियम बना लीजिए कि स्कूल जाते हैं। हाँ। तो अच्छा
0: मैं चाहती हूँ बट हो नहीं पाता, लेकिन मैंने सोचा कि मतलब ट्राई करेंगे।
1: करने से होता है, आप करेंगे तो जगह ही। बहुत अच्छी शुरुआत की आपने। और हमारे साथ अब भाई सृष्टि भी आए, तो पहले सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं।
2: थैंक यू सर।
1: कैसी हैं आप?
2: मैं अच्छी, आप बताइए।
1: मैं बहुत स्मार्ट हूँ, आप बताइए।
2: मैं भी अच्छी हूँ।
1: अच्छा तो आज आपके पास क्या है मेरे लिए?
2: कुछ लाइंस,
1: कुछ पंक्तियाँ जी।
2: जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, बुरे वक्त इसलिए आते हैं ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनकी असली चेहरा पहचान सकें, क्यों वहाँ क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे।
1: क्या बात है, मतलब बुरा वक्त आना भी जरूरी है ताकि अच्छे वक्त की पहचान हो सके। तो शानवी बेटा, आपके जो आराध्य जैसे पूजा करती हैं, सबसे ज्यादा पूजा आप किसकी करती हैं?
0: मैं दो लोगों की करती हूँ। दो नहीं तीन।
1: तीन?
0: हाँ।
1: किसकी?
0: एक तो कृष्ण जी हैं
1: जी।
0: तो ऑल टाइम हैं, और उसके बाद कभी अगर मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिल गया मान लो पूजा करने के लिए संडे वनडे को या फिर किसी हॉलीडे को, तो मेन जो मैं करती हूँ जिनको मैं अपना बिल्कुल वो मानती हूँ आराध्य, वह हैं एक कृष्ण जी हैं, एक दुर्गा मैया हैं और एक हैं सरस्वती मैया। और इन तीन का रीज़न भी है मेरे पास।
1: हाँ, क्या रीज़न है?
0: कि कृष्ण जी जो हैं वो हमें हर परिस्थिति में काम रहना मतलब शांत रहना सिखाते हैं।
1: हाँ।
0: तो एक मैं उनके लिए मतलब वो करती हूँ। और दुर्गा मैया ये कहती हैं कि अपने आप अपने पावर को मतलब दिखाओ, अपने पावर को दिखाओ, सामने वाले को कभी हावी मत होने दो अपने ऊपर। और सरस्वती माता तो ऑलवेज की वो मतलब ज्ञान है, ज्ञान की देवी हैं, तो उनकी तो ज़रूरत है ही सबको है।
1: हाँ, मतलब अच्छा ज्ञान की देवी में और शक्ति की देवी में अगर एक को चुनना पड़े तो आप किसे चुनेंगी?
0: ज्ञान।
1: क्या बात है, और आप किसे चुनेंगी?
3: नहीं
1: नहीं एक ही को चुनना हो तो
0: अगर ज्ञान की देवी को, यानी कि जिससे तुम्हें ज्ञान मिलेगा, जैसे तुम्हारा दिमाग तेज होगा, वो उसको तुम्हें चुनना है। और अगर तुम्हें एक उसको चुनना है जो तुम्हें शक्ति देगी, तुम बहुत बलवान बन जाओगी, किसी को उठा के पटक दोगी सिवाय मेरे।
1: तो किसे चुनोगी?
3: ज्ञान।
1: ज्ञान को? आप किसे चुनोगी?
2: सर ज्ञान।
1: अच्छा, शक्ति को कोई नहीं चुनेगा?
0: ज्ञान है तो शक्ति अपने आप आएगी।
2: अपने आप आएगी।
1: मतलब कहा जाता है इंग्लिश में कि पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, कलम में तलवार से ज्यादा ताकत होती है। तो घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि भाई अब आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। जी हाँ, और हमारे साथ बहुत सारे श्रोता जुड़े रहे, और भाई आप देखते हैं चलते हैं कि आपके क्या संदेश हैं, संदेशों को पढ़ते हैं। भाई बहुत कालीनकारी प्रोग्राम रहा जिसको बहुत ही कायदे से निभाया आप सभी ने जी। तो हमारे साथ भाई धर्मेंद्र मोहन जी हमारे साथ उनको दिखाई पड़ रहे हैं, और क्या बात है, शुरुआत से ही अगर हम एकदम से शुरू की बात करें तो अनोखी शर्मा जी हैं, गुड आफ्टरनून एवरीवन जी। सोनिया तिवारी जी हैं, अनोखी शर्मा जी हैं, क्या बात है। कैलाश नाथ मोतिहारी बिहार से हैं, सर गुड आफ्टरनून भाई। सुनील यादव जी हैं, गुड आफ्टरनून बोथ ऑफ यू सर जी। जी हाँ, बोथ ऑफ यू दिल्ली से लाइव सुन रहे हैं भाई सुनील यादव जी, क्या बात है। सविता दुबे जी हैं, शुभ दोपहर या सभी को। और वाह बच्चों भाई, बहुत आपकी तारीफ हुई है, बहुत सुंदर पंक्तियाँ।
0: थैंक यू, थैंक यू।
1: पहले तो रेडियो का नाम सुनकर डरते थे, अब काम सुनकर भी और हुनर सुनकर भी डर लगने लगा है। बहुत आगे है आपका सुपर स्टार गोंडा, ये मतलब FM की तारीफ की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, शुक्रिया। अनोखी शर्मा जी हैं, और धर्मेंद्र जी लिखते हैं, मनु सर जी, अदनान सर जी, शुभ दोपहरिया। जी हाँ, आपको भी शुभ दोपहरिया। और क्या बात है भाई, बहुत सारे लोग, सबलू सावन जी मुंबई से हमको सुन रहे हैं। और जी, और वक्त को हम रोक नहीं सकते, तो वक्त हमको बता रहा है कि अब आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा, और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। आसमान वाले ने चाहा अगले रविवार को पुनः ठीक 1 बजे आपसे मिलेंगे आपके ही इसी कार्यक्रम ओपन माइक अपना टैलेंट अपना FM में। तब तक सुनते रहिए रेडियो 89.6 FM, क्योंकि ये है गोंडा शहर की धड़कन।
4: जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप है आईफोन यूजर तो आपको जाना है एप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गोंडा सुनेगा अपना FM।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
4: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
5: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
6: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
7: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
6: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
8: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: हे हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। नमस्कार आदाब, कैसे हैं आप? सुन रहे हैं 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी आरजे उन्नति। और क्या हाल चाल है आप सभी के, चैट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। आप सुन रहे हैं इंडिया टॉप 20, जहां हर हफ्ते हम बात करते हैं इंडिया के वो बेहतरीन गानों की, वो चार्टबस्टर सॉन्ग्स को हम लेकर आते हैं। और आज का माहौल जो है वो थोड़ा अलग होने वाला है, थोड़ा बदला सा है आज का माहौल, क्योंकि आज हम सिर्फ गुनगुनाएं नहीं, आज हमारे रोंगटे भी खड़े होने वाले हैं। रीजन क्या है? क्योंकि आज की प्लेलिस्ट में इंडिया टॉप 20 यानी कि टॉप 20 चार्ट्स के साथ एंटर हो चुकी है हमारी अल्टीमेट हॉरर मूवीज की प्लेलिस्ट। आपको भी पता होगा भैया, हॉरर मूवी के गाने बड़े अच्छे होते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ, जितने गजब के गाने हॉरर मूवी के होते हैं ना, इतने अच्छे तो रोमांटिक फिल्मों के भी नहीं होते। वैसे एक बात तो है, हमारे इंडिया में भूत का भी ना अलग ही म्यूजिकल थॉट चल रहा होता है। आपने भी देखा होगा कि हॉलीवुड में कोई फिल्म स्टार्ट होती है, स्पेशली अगर वो हॉरर फिल्में होती है, तो कहीं ना कहीं भूत आता है, आईने में दिखता है, चिल्लाता है, दूसरों को भी चिल्लवाता है, ऐसे ही चील पुकार होती रहती है। लेकिन हमारे इंडिया में जब भूतों की एंट्री होती है ना, तो पीछे से मस्त एकदम म्यूजिकल वाला थॉट चल रहा था, म्यूजिकल बीजीएम चल रहा है, चोटी घुमाते हुए वो आती है और कितना टेंस म्यूजिक चलता है कि ओहो। इवन हमारे भूत गाना गा रहे होते हैं और बुला रहे होते हैं कि साथी ओ मेरे साथी, गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, चलिए मतलब ऐसे कौन कौन से वो गाने गाया करते हैं। और हमको लगता है यार, हमारे बॉलीवुड के जो भूत है ना, वो थोड़े ज्यादा म्यूजिकल टाइप है, दे लव म्यूजिक, म्यूजिक लव देम। और हम उनके इतने बड़े वाले फैन होते हैं कि जब एक भूतनी के ऊपर, मतलब एक लड़की के ऊपर अच्छी खासी आत्मा चढ़ी होती, तो हमारा हीरो फिर रोमांटिक गाने गा रहा होता है। उसको इस सीरियस सिचुएशन में रोमांटिक गाने याद कहां से आते हैं, मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई। कि एक तरफ हमारी जो एक्ट्रेस है, हमारी जो हीरोइन है, वो छत पर उल्टा लटक रही है और वो बीच में गाना गा रहा है, तुझे मैं प्यार करूं, तुझे इकरार करूं। हाउ, क्या आपको ऐसे टेंस माहौल में, जहां पर एकदम डर का माहौल बना हुआ है, कोई आपके सामने छत पर उल्टा लटका हुआ है, स्माइल कर रहा है, अजीब सी स्माइल कर रहा है, क्रीपी स्माइल जिसको बोलते हैं वो कर रहा है, और उस वक्त आप गाने गा रहे हो तुझे मैं प्यार करूं और इतना इकरार करूं, आ मेरे पास आ, तुझे मैं सब कुछ बताऊं, मेरे अंदर से तो ऐसी चीज़ें निकल गई। बट हमारे बॉलीवुड में क्योंकि ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं और हमें मिल चुकी हैं, तो क्यों ना आज उनकी प्लेलिस्ट को एंजॉय कर ले। वैसे पार्टी प्लेलिस्ट से लेकर के रोमांटिक सॉन्ग्स, बॉलीवुड के हॉरर मूवीज़ ने सब कुछ दिया है। और आपकी पसंदीदा हॉरर मूवी कौन सी है, वो चैट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हम स्टार्ट करेंगे अमिका बाजू की आवाज़ में हमारा पहला सुपर डुपर हिट सॉन्ग एज आ रस्म व रिवाज। हमारा पहला गाना बहुत ज़्यादा हिट जाता है, प्लस बहुत ज़्यादा हाई बीट होता है। तो स्त्री से हम लेकर आए हैं ओ स्त्री डरना नहीं, ओ स्त्री तू कल आना। वैसे हमारे यहाँ की एक बहुत फेमस अर्बन लेजेंड भी हैं, जिनको नालेबा कहा जाता था। ये रियल स्टोरी पर बेस्ड है। स्टेट में लोग मानते थे कि एक फीमेल है जो स्पिरिट है, एंटिटी है, वो लोगों के घर पे आती है और लड़कों को उठा के ले जाती है। और उन लोगों ने लिखना शुरू कर दिया था दीवारों पर, ओ स्त्री तू कल आना, ओ स्त्री तू कल आना, और उसको पढ़ के वो चली भी जाती है। हमारे यहाँ के भूत भी पढ़े लिखे हैं, और हॉलीवुड के भूत तो जंतर मंतर तंत्र वंतर से भी नहीं मानते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन वो बाइबल उल्टा सुना देते हैं उस प्रीस्ट को जो उन्हें बाइबल से भगाने आता है। ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता है। फिलहाल आप एंजॉय करें स्त्री, हम मिलेंगे इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो 89.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 20।

0: हां जी, तो पहले गाने से स्वागत करते हैं वापस से आप सभी का हम इंडिया टॉप 20 में। और भाई, आपने पहला गाना सुना मिका पाजी की आवाज में स्त्री फिल्म से। ये गाना एक हॉरर फिल्म का है, लेकिन बजता हॉरर फिल्म में कहीं भी नहीं है। जब भी आप इसको देखेंगे, या तो ये डिस्को में बज रहा होगा, या तो क्लब में बज रहा होगा, तो पार्टीज में, या तो कहीं और। मतलब इस गाने को लोग डरने के लिए नहीं, एंजॉय करने के लिए सुनते हैं। और इस गाने के जो बोल लिखे थे, वो लिखे थे वायु साहब ने, वायु नाम है उनका, एंड सचिन जिगर ने इस गाने के संगीत को रचा था। इतना खूबसूरत बेहतरीन सा सॉन्ग आपने एंजॉय कर लिया। हालांकि ये बिल्कुल रियल स्टोरी पर बेस्ड है। कर्नाटक की अर्बन लेजेंड है नालेबाज, जिनके ये बनाई गई थी। नाले में का मतलब होता है कि कम टुमारो, यानी कि कल आना। और वो स्त्री पढ़ के, यानी दीवालों पर लिखा हुआ नालेवा पढ़ के सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, इन्होंने मुझसे कहा ना कल आना, तो हम कल आएंगे। ऐसे भी होता है क्या? मतलब आप सोच सकते हैं क्या, कोई है जो आपको मारने की कोशिश कर रहा है, कोई है जो लोगों पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, और उसे दीवार पे पढ़ लिया कि इस पे लिखा है कल आना, तो वो कल ही आएगी। और इस पे नहीं लिखा है कल आना, मतलब आज ही इन्विटेशन हमारा पक्का है। पता नहीं, वेरोनिका ने तो कभी ऐसा माना नहीं। यानी कि हमारी जितनी भी हॉलीवुड की चुड़ैलें हैं, भूतनियां हैं, पिसाच हैं एंड ऑल दैट हैं, उन्होंने तो कभी ऐसा माना नहीं कि लाओ उसने कहा है कि कल आना तो मैं कल आऊं। हमारे यहाँ के थोड़े सलीके वाले भूत हैं, और ऐसा हमको लगने लगा है फिलहाल इस मूवी को देखने के बाद। और जब पता चला मुझे कि ये थोड़ा हकीकत पर है, रियलिटी पर है, आई वॉज लाइक ओ माई गुडनेस, कितने अच्छे भूत हैं हमारे देश में। फिलहाल आइए चलते हैं हमारे चैट बॉक्स में। इससे पहले मैं भूतों की तारीफ में चार चांद और लगाऊं, मैं आपकी मैसेजेस को देख लेती हूँ कि आपने क्या कुछ लिख के भेज दिया है। तो नायल अंसारी जी हमारे साथ जुड़ी हैं और आपका स्वागत करते हैं इंडिया टॉप 20 में। गणपत लाल हमारे साथ जुड़े हैं, जो लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून ऑल फ्रेंड्स। गुड आफ्टरनून गोपाल जी, ओके, कैसे हैं आप? आपका भी स्वागत करते हैं। गुड आफ्टरनून मैम लिखा है नायला जी ने, गुड आफ्टरनून टू यू। सोनिया तिवारी हमारे साथ जुड़ी, लिख रही हाय एवरीवन, हाय कैसे हैं आप? आपका भी इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं इंडिया टॉप 20 में। पंडित भोलेनाथ मिश्र हमारे साथ जुड़े हैं, जो लिख रहे हैं उन्नति बिटिया को शुभ दोपहर में सहृदय हार्दिक शुभकामनाएं। क्या बात है, थैंक यू सो मच। और आपने इतनी भारी भरकम हिंदी से हमारा स्वागत किया ना कि हमारा दिल प्रफुल्लित हो उठता है। वैसे हिंदी मैं भी बोल लेती हूँ अच्छी खासी। एंड थैंक यू सो मच, आपका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं। और बताओ कैसे हैं आप सब? मैं बढ़िया, आप बताइए आपके क्या हाल चाल चल रहे हैं। एंड नायरा जी ने लिखा है कि हम सब तो बहुत अच्छे हैं, आपके हाल चाल बताएं आप। भैया मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा कि हम बहुत मस्त बिंदास झकास एकदम क्या बोलते हैं उसको, टन टना टन टन टन बैठे हुए हैं यहाँ पर आप सभी के साथ। हम सब मिलके प्रकृति में मौजूद, हाथ में पंखे लेकर बिना लाइट के हवा के आनंद ले रहे हैं। क्या बात है, और आपने मुझे मेरे बचपन की याद दिला दी, जब पंखे को हम हाथ से बेना कहते थे और उसको हिला हिला के अपना हाथ तोड़वा डालते थे, और गुस्सा होने पर और तेज हिलाते थे कि हवा लग कैसे नहीं रही है यार। इसके बाद उन्नति बिटिया आज स्टूडियो में कौन कौन सा आरजे है? फिलहाल अब मेरी बारी है, और स्टूडियो में सिर्फ एक ही आरजे है, वो है आरजे उन्नति। इसके अलावा जी हाँ, अभी कुछ देर पहले तक हमारे साथ आरजे मनु और आरजे अदनान, हमारी गीता मैम एंड बाकी आरजेस भी शामिल थे। और इसी के अलावा धर्मेश त्रिपाठी जी लिख रहे हैं आई एम कमिंग, बिल्कुल बिल्कुल बेशक आइए, इंतजार किस बात का, आइए आइए, स्वागत करते हैं आपका भी हम आपके अपने वाले प्रोग्राम में। तो आइए चलते हमारे अगले गाने की तरफ, और हम आपको लेके चलेंगे, ये गाना मैं उनको डेडिकेट कर रही हूँ जो अभी अभी आए हैं और आना चाह रहे हैं। तो हम आपको बुलाते हैं सीधा, हम नहीं बुलाते हैं एक्चुअली, कृति सनन आपको बुला रही हैं, बादशाह बुला रहे हैं, कहाँ बुला रहे हैं ये आप इस गाने से ज़रूर बताइएगा। क्या आप वहाँ जाना पसंद करेंगे? क्योंकि एक्चुअली भूत ही मिलेंगे। फिलहाल सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे हैं आपका अपना इंटर टॉप 20 अपनी आज। फिलहाल सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे हैं आपका अपना इंटर टॉप 20 अपनी आज ज्योति के साथ 89.6 FM ये गोंडा शहर की धड़कन पर।
1: रेडियो 89.6 FM प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 19।

0: एवरीवन जी, तो आपने एंजॉय किया निकिता गांधी बादशाह की आवाज में आओ कभी हवेली पे। सचिन जिगर का म्यूजिक था और लिरिक्स थे ऑफ कोर्स बादशाह के और जिगर सरैया के। आपने बहुत ही खूबसूरत से गाने को एंजॉय करने के बाद आई थिंक आपको फील हो गया होगा कि आपको हवेली पे जाना है कि नहीं जाना है। यूं तो हवेली पे बुलाने के लिए बरेली का झुमका दिया जा रहा है, बट मैं कहूँगी बरेली के झुमके पे बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि बरेली में सिर्फ झुमका ही नहीं, बरेली का सुरमा भी पॉपुलर है, बरेली की बर्फी भी पॉपुलर है, प्लस प्लस प्लस अगर आप खाने पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन इंसान हैं, आपको खाना पीना बहुत पसंद है, तो आई एम डेफिनेटली श्योर आपको बरेली या फिर कहें तो बेस्ट यूपी यानी कि हमारी पश्चिम की जो उत्तर प्रदेश है वो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। खाने पीने के बड़े शौकीन इंसान रहा करते हैं और अलग अलग डिशेज़ का इन्वेंशन होता रहता है। सुबह की शुरुआत दही जलेबी से होती है और जो यूपी से बाहर है भले ही वो ये कहते हो कि दही जलेबी कौन खाता है, लेकिन अगर आप एक बार उसको ट्राई करेंगे ना आप डाई हार्ट फैन हो जाएंगे। ये मैं आपको लिख के दे रही हूँ। यहाँ पर आने के बाद बहुत सारी चीज़ें हम मिस करते हैं अपनी बरेली से, लेकिन उतना ही मज़ा आता है गोंडा में भी, क्योंकि हमारे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से लिसनर भी तो यहीं पर रहते हैं। फिलहाल आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। और हम अगला गाना आपके लिए लेकर आए हैं शापित फिल्म से। जी हाँ, वही फिल्म जिसमें आपको उदित नारायण का बेटा नजर आया था, उनका नाम क्या है जरा आप चैट बॉक्स में बताइए। और हम आपको सुनाते हैं थोड़ा सा अरेबिक टच वाला गाना, ये सॉन्ग नंबर 18। सुनते रहिए इंटर टॉप 20, मिलते हैं इस गाने के उस पार, इस बीच के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: Radio Gala 79.6 FM presents India Top 20 songs. Song number 18.

0: हां जी, तो आप सुन रहे थे शापित फिल्म से एक बढ़िया सा अरबिक टच वाला गाना, चिरंतन भट्ट और हमजा फारूकी की आवाज में आपने इस गाने को एंजॉय किया। और इस फिल्म से जुड़ी हुई कुछ कहानियां मेरे पास है, कहो तो आपको बता दूं ना। हाँ बिल्कुल, आप सुनने के लिए तैयार रहिएगा। बस आपको पता होगा इसमें काम किया था उदित नारायण के बेटे आदित्य नारायण ने, और इसमें एक हीरोइन थी जो बहुत खूबसूरत नज़र आई थी इस हीरोइन इस फिल्म के अंदर, उनका नाम था श्वेता अग्रवाल। जी हाँ, ये वो हीरोइन थी जिसके लिए ये उनकी आखिरी फिल्म साबित हुई थी। बट इस फिल्म के दौरान ही आदित्य नारायण और श्वेता अग्रवाल के बीच में नज़दीकियाँ कुछ ज़्यादा बढ़ गई थी, और सुनने में खबर ये भी है भाई उन्होंने 10 साल लगातार एक दूसरे को डेट किया था। दोनों ने दिसंबर 2020 में शादी भी कर ली थी, आपको ये बात याद होगी। लेकिन इनकी लव स्टोरी स्टार्ट कहाँ से हुई? इनकी लव स्टोरी ऑफ कोर्स स्टार्ट हुई थी इस फिल्म से, जो कि एक रोमांटिक हॉरर फिल्म था। इसमें रोमांस भी दिखाया गया है, एक दूसरे से प्रॉमिस भी दिखाया गया है, और किस तरह से एक इंसान जिसे प्यार करता है उसको बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है, किस लेवल तक जा सकता है, ये फिल्में आपको ज़रूर सिखाती है। एक रोमांटिक हॉरर फिल्म जो कि स्टार्ट हुई थी रोमांस से, ऑफ कोर्स वो ख़त्म भी एक बढ़िया सी रोमांस पे ही ख़त्म हुई आकर के। एक अच्छी सी कहानी जिसने वादा निभाना सिखाया, और आगे जाकर यानी कि 10 साल बाद वो वादा सच में निभाएगा। उन्होंने सच में शादी भी कर ली। आई थिंक आदित्य नारायण ने जिसमें डायलॉग्स मारे थे ना कि शादी तो तुमसे ही करूंगा, आई थिंक वो सच मारा था। और कहीं ना कहीं उन्होंने जो कहा था कि कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं तो मिलोगे मुझे ये यकीन है, और उन्होंने इस चीज़ को साबित करके भी दिखा दिया। फिलहाल फिल्मों से ऐसी बहुत सारी नज़दीकियाँ होती हैं जो बढ़ जाती हैं, फिर चाहे वो हमारे अभी की फिल्में देख लो या फिर कुछ पुरानी फिल्में देख लो, चाहे धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की कहानी देख लीजिए या फिर दो और फिल्में हैं उनमें देख लीजिए। हर कोई रोमांटिक फिल्मों के दौरान कभी ना कभी किसी ना किसी से अट्रैक्टेड ज़रूर होता है, लेकिन ये अट्रैक्शन हर बार शादी पर आके ख़त्म हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट हाँ उनका डेटिंग पैटर्न ज़रूर नज़र आता है। फिलहाल आइए चलते हमारे अगले गाने की तरफ, और अगला गाना भूल भुलैया से हम आपके लिए लेकर आए हैं, ओजी भूल भुलैया से लेकर आए हैं अक्षय कुमार पर फिल्माया गया सॉन्ग अल्लाह हाफिज़। क्योंकि हर लम्हा आपसे गुजरता हुआ यही कहता है कि अल्लाह हाफिज़, और हर लम्हा कहता है कि भैया यादें बटोरो, जिंदगी में सैड रहकर कुछ नहीं मिलने वाला है, अपनी मेन कैरेक्टर एनर्जी को फील करो, बिकॉज यू आर द हीरो एंड हीरोइन ऑफ योर ओन लाइफ। आप खुद राइटर हो, खुद डायरेक्टर हो, खुद कंपोजर हो, खुद सिंगर हो, सब कुछ खुद ही हो, तो दूसरों के हाथ में अपनी जिंदगी की कलम बिल्कुल भी ना दो। और आइए इस गाने को एंजॉय करिए, हम मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। आप सुन रहे हैं इंडिया टॉप 20 विद योर आरजे उन्नति।
1: Radio Gala 79.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number 17.

0: और मंजिया से आप सुन रहे थे तरस तरस नहीं आया तुझको। ये गाना कम ताना ज़्यादा लगता है, वो उन लोगों के लिए जिन्होंने आपके साथ कभी कुछ ना कुछ किया हो या धोखा दिया हो, तो लगता नहीं है कि गाना नहीं ताना है, ताना ताना ताना, और ये ताना उनको चिपका भी दिया गया। फिलहाल हमारे साथ चैट बॉक्स में सायरा बानो जुड़ गई हैं। चलो लिख रही हैं, सभी को नमस्ते, नमस्ते टू यू, कैसी हैं आप, आपका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं इंडिया टॉप 20 में, गज़ब सॉन्ग, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आप लोग हमारे साथ लगातार बने हुए हैं इंडिया टॉप 20 की इस आफ्टरनून वाली प्लेलिस्ट में, एंजॉय कर रहे थे सॉन्ग नंबर 15 बैक टू बैक, आपने तीन गाने एंजॉय कर लिए। और आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, रुख करते हैं और हम आपको लेके चलेंगे हमारे इंडियन ड्रैकुला पर फिल्माया गया गाना तुम मेरे ना हुए तो ना सही। ऑलराइट, फिलहाल एंजॉय करते रहिए, आप सुन रहे हैं इंडिया टॉप 20 की सुपर डुपर हिट हॉरर वाली प्लेलिस्ट अपनी आरजीवती के साथ, आपके अपने एफएम रेडियो 89.6 एफएम पर पेश करते हैं आपके लिए सॉन्ग नंबर 14, स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो 89.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 14।

0: खामा से आप सुन रहे थे तुम मेरे ना हुए ना सही, और इस गाने में भी ताने ही पड़े हैं। पता नहीं क्यों लेकिन बॉलीवुड अब गाने कम ताने ज्यादा मारने लगा है कि नहीं, आपको भी फील होता है ना। फिलहाल ये गाना उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जो किसी ना किसी से मूव ऑन कर रहे हैं, किसी सिचुएशन से, किसी इंसान से, किसी रिलेशन से, किसी भी पड़ाव से अगर आप आगे बढ़ रहे हैं और किसी चीज से परेशान हैं, सोच रहे हैं यार ये क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, इतना सब कुछ करने के बाद भी। सो दिस सॉन्ग इज फॉर यू। हमेशा इस गाने को सुनिए और आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगा कि कोई बात नहीं, आदत थी, किस्मत थोड़ी, बदल सकते हैं, बदला जाएगा और कुछ बेहतर किया जाएगा, क्योंकि कभी कभार बदलाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बदलाव के बाद ही कुछ बेहतरीन आपकी ज़िंदगी में अंदर आता है, यानी कि एंटर करता है। जब तक आप उस बदलाव को देखते नहीं हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तब तक सिर्फ आपको फील होता है, सैडनेस फील होती है, डिप्रेशन फील होता है, एंग्जाइटी फील होती है, हार्ट ब्रोकन सा फील होता है। लेकिन जिस दिन आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ बदलाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये तो प्रकृति का नियम भी है, तब आप जाकर कहीं खुश होते हैं और उसके बाद आप अपनी जिंदगी में वो बेहतरीन मुकाम हासिल करते हैं जिसकी शायद आपने उम्मीद कई सालों पहले ही छोड़ दी थी। फिलहाल धर्मेश जी लिख रहे हैं अमेजिंग सॉन्ग मैम, क्या सॉन्ग बजाया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। अनोखी शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं, गुड आफ्टरनून मैम जी, गुड आफ्टरनून टू यू। धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं आवाज़ विकास से, आपका भी स्वागत करते हैं एंटर टॉप 20 में। और इसके बाद ओके, उन्होंने लिखा था गुड आफ्टरनून टू यू शुभ दोपहरिया। एंड अगेन पुजारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लिख रहे हैं हाय हाय कैसे हैं आप, आपका भी इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं एंड टॉप 20 में। इसी के साथ आइए चलते हैं अब हमारे रोमांटिक गानों की तरफ, क्योंकि भैया हॉरर फिल्में हैं और रोमांटिक गाने ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। हॉरर फिल्में अपने रोमांस के लिए ही जानी जाती हैं, अपने रोमांटिक गानों के लिए जानी जाती हैं, स्पेशली अगर उस पर सोनू निगम के और इतनी सारे खूबसूरत सिंगर्स की आवाज़ हो तो वो गाने कितने प्यारे होते हैं, वो एल्बम्स कितनी खूबसूरत होती हैं। इवन एक एल्बम ऐसी भी है, एक ऐसी फिल्म है जिसके सारे गाने हिट हैं, इतने हिट हैं और उन गानों में जो आवाज़ है वो सोनू निगम साहब की है, के की है, अरिजीत सिंह की है, और इसी वजह से वो और ज़्यादा हिट हो गए। वो गाने कौन से हम आपको बताएंगे, लेकिन आइए चलते हैं हमारे गाने की तरफ और आप सुनते हैं हॉन्टेड फिल्म से तुम हो मेरा प्यार। और इस गाने में आवाज किसकी है ये आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए। एंजॉय करते रहिए मतलब इस गाने के उस बार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो 99.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 13।

0: केके की आवाज में आप एंजॉय कर रहे थे तुम हो मेरा प्यार, हॉन्टेड फिल्म से आपने इस गाने को एंजॉय किया। एक बेहतरीन रोमांटिक गाना आपके लिए पेश कर रहे थे हम, और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आइए चलते हैं और जुबिन नौटियाल की आवाज़ में सुनते हैं रूही फिल्म से। जी हाँ, रूही फिल्म जिसके अंदर आपको जानवी कपूर नज़र आई हैं, राजकुमार नज़र आए हैं, और उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत गाना बनाया है। स्पेशली इसके लिरिक्स बड़े प्यारे हैं और वो है किस्तों। आइए एंजॉय करते रहिए सॉन्ग नंबर 12, मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: Radio Garasari 9.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number 12.

0: आप सुन रहे थे जुबिन नौटियाल की आवाज़ में किस्तों, और इसी के साथ आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। और अगला सॉन्ग आपके लिए पेश करते हैं खामोशी फिल्म से, यानी कि खामोशी फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज़ में बातें ये कभी ना तू भूलना। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे हैं टॉप 20 आपकी अपनी आजमती के साथ, आपके अपने एफएम रेडियो 89.6 एफएम की सुपर डुपर हिट प्लेलिस्ट, यानी कि आपकी संडे स्पेशल अल्टीमेट हॉरर प्लेलिस्ट के सॉन्ग्स। स्टे ट्यून्ड।
1: Radio Gana 89.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number 11.

0: हाँ जी, तो आप अरिजीत सिंह की आवाज़ में एंजॉय कर रहे थे बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। एंड धर्मेंद्र जी लिख रहे हैं, उन्नति जी, यह संगीत किसी की याद दिला रही है। जी हाँ, बेशक ऐसा होता है, हमें कोई ना कोई गाना, कोई ना कोई लिरिक्स किसी ना किसी की याद ज़रूर दिलाता है। और ठीक है, आप जिसको भी याद कर रहे हैं, आई विश आप उनसे कभी ना कभी ज़रूर बात कर पाएँ। एंड ओके, तो उन्नति मैम का नमस्ते, नमस्ते टू यू, कैसी हैं आप? आपका भी स्वागत करते हैं इन द टॉप 20 में। एंड लगातार आपके मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग बने हुए मेरे साथ। और चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। शाफ़ेत फ़ोन से आपके लिए पेश करते हैं बेहद ही रोमांटिक सॉन्ग, कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो मिलोगे, हमको यकीन है। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं इस गाने के उस पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो 99.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स। Song number 10.

0: हाँ जी, तो आप सुन रहे थे कभी ना कभी तो मिलोगे, कहीं ना कहीं तो मिलोगे, हमको यकीन है। और इसी के साथ आइए पेश करते हैं आपके लिए अगला गाना, जो आपके दिल के बेहद करीब है। और जब इस गाने को रिलीज़ किया गया था ना, तभी से ये काफ़ी लोगों को पसंद आया था। अरिजीत सिंह की आवाज़ में राज रिबूट से लो मान लिया हमने, और क्या मान लिया है वो भी आपको बताएंगे इस गाने के जरिए। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमारे साथ महेंद्र दीपन फ्रॉम राजस्थान जुड़ गए हैं, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून, नमस्ते मदी मैम जी, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, कैसे हैं आप। धर्मेश जी लिख रहे हैं क्या सॉन्ग है जियो, थैंक यू सो मच। वैसे जियो नहीं है, ये हमारा बॉलीवुड गाना है ये मजाक कर दिया आपके साथ, डोंट वरी। हालांकि हमारे मजाक कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस वाले हो जाते हैं। चलिए आइए एंजॉय करते हैं सॉन्ग नंबर 9, मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: Radio Garasari 9.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number 9.

0: कभी किसी से मुलाकात करके आपको ये महसूस हुआ है कि भले ही मुलाकात आज हुई हो लेकिन इससे मेरा रिश्ता बरसों पुराना है? अगर हाँ तो बेशक बॉलीवुड ने ऐसे बहुत सारे गाने दिए हैं जो आपके इस एहसास को, इस जज्बात को बयां करते हैं। और एक ऐसा ही गाना सोनू निगम ने अपनी एक फिल्म 1920 ईविल रिटर्न्स में दिया था। हम आपको बता दें ये वो एल्बम है जिसके सारे के सारे गाने सुपर डुपर हिट हैं और उसी से मैं आपके लिए पेश कर रही हूँ अपना मुझे तू लगा। महेंद्र जी लिख रहे होते हैं मैम आज क्वालिट्यून गोंडा नहीं है। जी नहीं, आज क्वालिट्यून गोंडा नहीं होता है। संडे के लिए हम इंडिया टॉप 20 की सुपर डुपर हिट वाली प्लेलिस्ट लेकर आते हैं। लेकिन लेकिन लेकिन इस गाने की उस तरफ चलने से पहले आप एंजॉय कीजिए छोटा सा ब्रेक, और इस ब्रेक के दौरान जाइए और जनाब पानी पीकर आइए, क्योंकि मुझे पता है आप पिछले 2 घंटों से हमारे साथ मौजूद हैं और आपने पानी का एक सिप भी नहीं लिया है। हम भी एक छोटा सा वाटर ब्रेक लेकर आते हैं, तब तक के लिए आप भी वाटर ब्रेक लेकर आएं। उसके बाद हम मिलेंगे सोनू निगम की आवाज़ के साथ अपना मुझे तू लगा एंजॉय करने के लिए। स्टे ट्यून्ड।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 500 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे 1 हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88-40-33-95-84। अब बारी है आपकी।
4: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
5: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
6: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
7: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
8: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
7: विजिट करें अल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।

0: हां जी, सोनू निगम की आवाज में आपने एंजॉय किया अपना मुझे तू लगा। 1920 विल रिटर्न का सबसे बेहतरीन सॉन्ग। और किसी से पहली मुलाकात में अगर आपको ऐसा फील हुआ है कि यार इससे पहले क्यों नहीं मिले, या किसी से मिलने के बाद आपकी ज़िंदगी बेहतर हो गई है, या किसी से मिलने के बाद आपको महसूस हुआ है कि इससे तो कुछ पहले का रिश्ता है अपना, क्योंकि हमारी सारी बातें मैच हो रही हैं, हमारी सारी हैबिट्स मैच हो रहे हैं, हम जो करते हैं वो सब मैच हो रहा है और एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स ये गाना आपके लिए डेडिकेटेड था। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मिल जाएगा जनाब। आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ और आप इन्जॉय करने जा रहे हैं कैलाश खेर की आवाज़ में 1920 फिल्म से तुझे मैं प्यार करूँ। वो मैंने कहा था ना कि पता नहीं कैसे बॉलीवुड वालों के अंदर ये अंदर से चीज़ें आ जाती हैं कि एक तरफ लड़की परेशान है, उसके अंदर भूत है और वो परेशान चल रही है, वो अजीब से स्माइल कर रही है, वो अपनी हड्डियां तोड़ रही है, उसमें भी एक रोमांटिक गाना निकाल देते हैं। हाउ? वो क्रिएटिविटी एक्चुअली मुझे भी चाहिए कि ऐसे सीरियस सिचुएशन में मेरी बस हंसी निकलती है और इसके अलावा कुछ नहीं निकलता। और इसीलिए कभी कभार लगता है कि सीरियस सिचुएशन की वजह से जो मैं दांत दिखाती रहती हूँ ना, किसी दिन कोई मेरे दांत तोड़ भी देगा। स्पेशली मेरी मम्मी जो बात बात पे नाराज़ हो जाती हैं कि तुम्हें जब मैं डांटती हूँ तभी तुम्हें हंसी क्यों आती है इतनी, और मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि उनकी डांट में ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे इतना हंसा देती है। फिलहाल आइए आप इन्जॉय कीजिए सॉन्ग नंबर 7 तुझे मैं प्यार करूँ। आप सुन रहे हैं टॉप 20 आपके अपने FM रेडियो 11.6 FM पर।
1: रेडियो 11.6 FM प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 7।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं आपकी अपनी आरजी आकांक्षा और आज हमारे बीच में आई हुई हैं आप सभी के स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखने वाली हम सभी की प्यारी आशा बहन जी। और सबसे पहले मैं इनका स्वागत करना चाहूंगी। नमस्ते दी, कैसी हैं आप?
1: जी नमस्ते, मैं बहुत अच्छी हूँ और धन्यवाद आपको, आपने हमें यहाँ बुलाया।
0: अब हम जानेंगे कि आज ये हमसे कौन सी जानकारी साझा करना चाह रही हैं, लेकिन उससे पहले हम इनका परिचय जानना चाहेंगे ताकि हमारे श्रोता जो हमें सुन रहे हैं वो ये जान पाएं कि आप हैं कौन।
1: जी हमारा नाम रेनू सिंह है, मैं गोंडा नगर से हूँ
0: जी,
1: और आज हम बात करेंगे टीबी और कुष्ठ रोग बीमारी के बारे में।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया दी। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में टीबी मरीजों में कमजोरी या वजन कम होने की समस्या कितनी आम है और आप इसे पहचानने के लिए क्या संकेत देखती हैं?
1: जी हमारे क्षेत्र में ये समस्या आम तो नहीं कह सकते क्योंकि धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं
0: जी,
1: और इसका इलाज भी पूरी तरीके से संभव है अब। लेकिन क्षेत्र भ्रमण के दौरान कभी कभी देखने को मिलता है टीबी के मरीज में अक्सर शरीर में कमजोरी, थकान, धीरे धीरे वजन कम होना, लगातार बुखार या रात में पसीना आना, भूख का कम लगना और रोजमर्रा के कामों में मन ना लगना।
0: जी तो जैसा दीदी अभी आपने बताया कि भूख ना लगना, तो जब आप कोई टीबी मरीज का इलाज शुरू करती हैं तो उस वक्त उसके खाने पीने को लेकर क्या सलाह देती हैं, खासकर ताकत और वजन बढ़ाने के लिए?
1: जी जब कोई मरीज इलाज शुरू करता है
0: जी,
1: तो मैं उसे तुरंत संतुलित पौष्टिक आहार लेने की सलाह देती हूँ। रोज भोजन में दाल, दलिया, दूध, दही, अंडा, सोयाबीन जैसे प्रोटीन युक्त पदार्थ शामिल करने को कहती हूँ। साथ ही हरी साग सब्जियाँ, मौसमी फल लेने को बोलती हूँ और साबुत अनाज लेना जरूरी है। थोड़ी थोड़ी सही, वर्ष दिन में कई बार खाएं, पानी भरपूर मात्रा में पीना, तला भुना या बहुत मसालेदार भोजन कम करना या ना करने की सलाह देती हूँ और मरीज को समझाती हूँ कि डॉक्टर द्वारा दी गई दवाएं सही समय और नियमित रूप से खाना बहुत जरूरी है।
0: मतलब आप सभी के स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखती हैं।
1: जी आज दीदी
0: है? क्या बात है। अभी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी दीदी कि क्या टीबी मरीजों और उनके परिवारों को सरकारी पोषण सहायता जैसे राशन, निश्चय पोषण योजना आदि मिल पाती है? इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है आपके क्षेत्र में, जब आप जाते हैं तो दिक्कत कहाँ देखने को पाते हैं?
1: हाँ, टीबी मरीज और उनके परिवार को सरकारी पोषण सहायता जैसे राशन और निश्चय पोषण योजना मिलती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जानकारी की कमी की होती है। कई मरीजों को यह पता ही नहीं होता कि यह सुविधा मिल सकती है। कुछ जगहों पर कागजी प्रक्रिया जटिल होती है, बहुत कठिन होती है
0: जी।
1: कई बार आधार या बैंक खाते की समस्या के कारण पैसा समय पर नहीं पहुंच पाता है। जिससे मैं अपने क्षेत्र में जाती हूं तो लोगों को सही जानकारी देकर सरकार द्वारा जो उनको राशि मिलती है और राशन है, निश्चय रोग के जो पोषण तत्व हैं, जो सहायता मिलती है उसकी उनको जानकारी देती हूँ
0: जी,
1: और ये सुविधा उन तक पहुँचाने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ।
0: क्या बात है भाई, आप कहीं ना कहीं वो कड़ी हैं जो हमारे सरकार और हमारी जनता के बीच में एक संपर्क स्थापित करती हैं।
1: जी दीदी
0: जी, इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं। अब आपसे एक और सवाल है मेरा कि आपके अनुभव में बेहतर खाना या सही पोषण मिलने से टीबी मरीज के इलाज और ठीक होने में क्या फर्क पड़ता है?
1: मेरे अनुभव में सही पौष्टिक भोजन मिलने से टीबी मरीज के इलाज में साफ फर्क पड़ता है। इससे शरीर की ताकत बढ़ती है, दवाएं बेहतर असर करती हैं और मरीज जल्दी ठीक होने लगता है, वजन बढ़ता है और कमजोरी कम होने लगती है और बीमारी से लड़ने की क्षमता मजबूत होती है।
0: तो दोस्तों, टीबी सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक सामाजिक जिम्मेदारी है। डॉक्टर आशादी और आप तीनों मिलकर ही इसे हरा सकते हैं। सुनते रहिए अपना सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ जो होगी आपके लिए बहुत लाभकारी। धन्यवाद।

0: प्रीतम का म्यूजिक, केके की आवाज, भूल भुलैया का वो गाना जिसके कई क्लिप्स इंटरनेट पे वायरल हैं, जो रूह को शरीर से अलग कर दे। इस तरह की न जाने कितनी ही क्लिप्स आपको देखने को मिल जाती हैं जब भी आप इंस्टाग्राम खोलते हो, स्पेशली इस गाने को लेकर के, कि जब केके की आवाज़ सुनाई पड़ती है तो क्या जादू होता है। और इस जादू को आपने अभी अभी इंजॉय किया मेरे साथ, और इसी के साथ आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगले सॉन्ग के बाद मैं आपको लेकर जाऊंगी बॉलीवुड न्यूज़ की तरफ, यानी कि बॉलीवुड की कुछ खबरें हैं मेरे पास जो मुझे आपको बतानी है, लेकिन वो क्या है बताएंगे इस गाने के उस पर। और ये सॉन्ग है उन लोगों के लिए जो है हमारे 90s किड्स, या फिर जिन्हें 90 के दशक के गाने बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको याद होगा 90 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था राज, और उस राज ने ऐसे ऐसे राज खोले थे कि भैया मज़ा आ गया था। वो जंगल, वो आवाज़, और उसमें आपके फेवरेट विलन का किरदार निभाने वाले एक ऐसे भी एक्टर थे जिन्होंने जब जब उस फिल्म के अंदर अपना किरदार निभाया, स्पेशली जब उनकी आंखें वाइट हो चुकी थी एंड ऑफ कोर्स कई लोग डर चुके थे, उस आवाज़ की वजह से 90s के बहुत सारे किड्स की रातों की नींद उड़ गई थी। उन्हें जहाँ भी वो आवाज़ सुनाई पड़ती थी बस वो खौफ में आ जाते थे कि राज की जो वो डरावनी सी हीरोइन है, या फिर कहीं डरावना सा भूत है, वो सच में उनके घर के बाहर ही खड़ा है। चिड़ियों से डर लगने लगा था लोगों को। फिलहाल आइए आप एंजॉय कीजिए जो भी कस्में खाई थी हमने अलका जी और ऑफ कोर्स हमारे मेल सिंगर जिनका नाम आप बताने वाले हैं चैट बॉक्स में।
1: रेडियो 99.6 FM presents इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स। सॉन्ग नंबर 5।

0: भाई 90s किड को तो याद आ गया होगा उनका ये बेहतरीन गाना जो वो एंजॉय कर रहे थे, और उसकी उससे गाने से जुड़ी कई सारी यादें भी आपको तुरंत तुरंत हिट कर चुकी होंगी। फिलहाल जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि भैया मेरे पास बॉलीवुड से रिलेटेड कुछ न्यूज़ है आपके पास, तो OTT में मैड डॉग फिल्म्स 2 फिल्में रिलीज़ करने जा रहे हैं। काफ़ी वक्त से वो उस ख्याल को सोच रहे थे और अब सुनने में आ रहा है ये स्ट्रीम करेंगे Z5 पर, जिसमें पहली फिल्म है सर्वगुण संपन्न जिसमें वाणी कपूर आपको नजर आने वाली हैं, एंड दूसरी फिल्म पूजा मेरी जान जिसमें मृणाल ठाकुर और हुमा कुरैशी नजर आने वाली है। ये दोनों आपको Z5 पर नजर आएंगे, यानी कि Z5 अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है OTT प्लेटफॉर्म का तो आपको बहुत जल्द मैड डॉग की 2 फिल्में देखने को मिल सकती हैं। फिलहाल आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ और एंजॉय करते हैं कृष्णा कॉटेज। ये वो फिल्म है जिसके लिए कुछ शहरों में पैसों का चैलेंज रखा गया था कि अगर कोई इंसान रात के अंधेरे में कृष्णा कॉटेज थिएटर के अंदर बैठ के देख ले तो उसे कुछ रुपए दिए जा रहे थे, और वो रुपए 1-2 हज़ार नहीं प्लस कुछ लाख की संख्या में थे। इसके बाद भी किसी ने भी इसकी हिम्मत नहीं की। हालांकि जब मैंने देखा था तो मैंने सोचा था क्यों मेरे टाइम पर ऐसा क्यों नहीं है, मैं जाऊंगी, मैं देख कर आऊंगी और मुझे डर किसी से नहीं लगता, बट जब तक मेरी बारी आई थी तब तक वो चैलेंज ही खत्म हो चुका था। फिलहाल अगर आपके टाइम पर ऐसा कोई चैलेंज आपके पास आया है हॉरर मूवी देखने पर पैसे मिलते हैं तो भैया हॉरर मूवी देखे थोड़ा डर लीजिए, लेकिन ऑफकोर्स फायदे का चीज़ होती है। फिलहाल आप इंजॉय कीजिए कृष्णा कॉटेज से श्रेया की आवाज़ में सूना सूना लम्हा लम्हा। मुझे याद है इसे मेरी क्लासरूम की यादें काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हुई है। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहे, टॉप 20 आप सुन रहे हैं रेडियो कैनवस 89.6 FM, यह गोना शहर की धड़कन पर अपनी आरजू नदी को आपके अपने वाले शो में और ऑफ कोर्स आपके अपने क्लासिक हॉरर प्लेलिस्ट के साथ। जॉय
1: रेडियो 89.6 FM प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 4।

0: श्रेया जी की आवाज में आप सुन रहे हैं कृष्णा कॉटेज से सुना सुना। और इस गाने को लेकर के भैया काफी सारे कमेंट्स आ चुके हैं। नाइस सॉन्ग लिखा है नायला जी ने, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड वाओ नाइस सॉन्ग लिखा है अनोखी जी ने, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड हमारे महेंद्र जी कह रहे हैं ऐसे ही गाने बजाओ नति मैम जी। जी हाँ बेशक, और बेपनाह प्यार है आजा तेरा इंतजार है आजा, क्या बात है। एंड इसके बाद ये सॉन्ग हम आकांक्षा मैम को देते हैं। जी बेशक, मैं आपका ये गाना, ये मैसेज, ये पैगाम उन तक पहुंचा दूंगी। फिलहाल आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, और आप एंजॉय करने जा रहे हैं 9020 लंदन से आज रो लेने दे। स्टे ट्यून्ड
1: रेडियो 99.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स। सॉन्ग नंबर 3।

0: बस चाहता थोड़ी राहत है। एंड हमारे साथ जुड़ गए हैं विकास तिवारी जी, जो हमें सुनते हैं उन्नाव से लिख रहे हैं, कैसे हो बरेली वाली मैम जी? मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? एंड गाने मस्त मस्त आ रहे हैं, इसीलिए चैट बॉक्स में देर देर से आता हूँ। आज के सारे गाने अति उत्तम है, धर्मेंद्र मोहन जी का मैसेज, बहुत बहुत शुक्रिया। सायरा बानो हमारे साथ दोबारा जुड़ गई हैं, आपका भी स्वागत करते हैं, जिन्होंने लिखा है नमस्ते मैम, नमस्ते टू यू। आइए चलते हैं अब अपने आखिरी के दो गानों की तरफ। सॉन्ग नंबर 2 एंड सॉन्ग नंबर 1 पेश करते हैं आपको सेम एल्बम से, 1920 ईविल रिटर्न से, उसका ही बनाना अरिजीत सिंह की आवाज में, और दूसरा गाना है जावेदा है। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और आज का कार्यक्रम बस इतना ही, इंडिया टॉप 20 की सुपर डुपर हिट प्लेलिस्ट आपको कैसी लगी है? मुझे जरूर से बताइएगा अपने फीडबैक पे। फिलहाल घड़ी ने कर दिया इशारा कि वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन फिक्र नॉट, क्योंकि अगली ही पल यानी कि अगले ही शो में कुछ लम्हे बाद वापस से मुलाकात हो रही है आपसे, लेकर के आपके हेल्थ से जुड़ी बहुत सारी बातें, तो सुनना मत भूलिएगा। फिलहाल एंजॉय करते रहिए सॉन्ग नंबर 2 सॉन्ग नंबर 1, बाय बाय, टेक केयर।
1: Radio Gala 79.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number 2.

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
3: फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
4: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
3: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी के लिए।
4: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर ले और दूसरों को भी दिलवाएं।
3: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं आपकी अपनी आरजी आकांक्षा और आज हमारे बीच में आई हुई हैं आप सभी के स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखने वाली हम सभी की प्यारी आशा बहन जी। और सबसे पहले मैं इनका स्वागत करना चाहूंगी। नमस्ते दी, कैसी हैं आप?
1: जी नमस्ते, मैं बहुत अच्छी हूँ और धन्यवाद आपको, आपने हमें यहाँ बुलाया।
0: अब हम जानेंगे कि आज ये हमसे कौन सी जानकारी साझा करना चाह रही हैं, लेकिन उससे पहले हम इनका परिचय जानना चाहेंगे ताकि हमारे श्रोता जो हमें सुन रहे हैं वो ये जान पाएं कि आप हैं कौन।
1: जी, हमारा नाम रेनू सिंह है, मैं गोंडा नगर से हूँ
0: जी।
1: और आज हम बात करेंगे टीबी और कुष्ठ रोग बीमारी के बारे में।
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया दी। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में टीवी मरीजों में कमजोरी।
2: हाँ जी, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। हेलो, हाय, गुड इवनिंग। मैं हूं आपकी अपनी आरजी उन्नति, हर संडे लेकर आती हूं आपके लिए एक सेहत का कार्यक्रम जिसका नाम है क्लिनिक ज्ञानसली। सेहत सही लाभ के बैनर के तले लेकर आए स्मार्ट एनजीओ रेडियो ज्ञानसली की खूबसूरत पहल जिसके अंतर्गत बात होती है आपकी अपने सेहत की। और हम जानते हैं कि हमारे सेहत से जुड़ी वो कौन सी बातें हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नुकसान कर सकती हैं, कौन सी नुकसान नहीं करती हैं, हमें अपनी लाइफस्टाइल को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए। मैं हूं आपकी आरजी उन्नति और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे हेल्थ एक्सपर्ट राहुल विश्वकर्मा जी, जो आपके साथ बैठते हैं, आपके सवालों को सुनते हैं और उनके जवाब देते हैं। सर, कैसे हैं आप?
3: जी, हम बहुत अच्छे हैं और आशा करते हैं कि आप भी अच्छे होंगे और हमारे लिसनर्स भी अच्छे होंगे।
2: जी हाँ, अभी तक तो हम बहुत अच्छे हैं और आई होप हम आगे भी अच्छे रहें।
3: जी ज़रूर, हम आशा करते हैं कि हम भी अच्छे रहेंगे ताकि हम अपने लिसनर्स को भी उनके स्वास्थ्य को भी अच्छा रख सकें और उन सभी के बीच अपना ये और उनका भी ये फेवरेट वाला शो लेकर के आते रहें। हम एक बार फिर आ गए हैं, जल्दी से अपना मोबाइल फ़ोन उठा लीजिए, चैट बॉक्स में या कॉल करके हमें अपनी समस्याओं का समाधान पूछ सकते हैं।
2: हमारा कॉलिंग नंबर है 6393316429। आई रिपीट, 6393316429। इस पे आप हमें डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं अपने सवाल या फिर एप्लीकेशन में मौजूद है चैट बॉक्स जो आपको प्ले स्टोर ऐप स्टोर पे मिलता है रेडियो ज्ञानसली 9.6 एफएम के नाम से, ब्लैक एंड्रॉयड आइकन में आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और डायरेक्ट हमारे साथ जुड़ सकते हैं बाय चैट।
3: जी, तो चाहे चैट करिए या फिर कॉल करिए, ये आपकी मर्जी है, बट अपनी समस्याओं को अपने अंदर दबा के बिल्कुल मत रखिए, वो हम तक साझा करिए और हम उन पर आपकी समस्याओं पर उनका समाधान बताने का पूरा प्रयास करते हैं।
2: और कमाल की बात ये है कि आज जो हमारा टॉपिक है वो कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि पता नहीं क्यों मैंने सेलेक्ट को किया था पहले ही और आपसे जब मुलाकात हुई तो सेम सेम मैच भी हो गया।
3: बहुत ही अच्छा है, तो चलिए अब आप सस्पेंस को ज़्यादा मत क्रिएट करिए और हमारे लिसनर्स को जल्दी से बता दीजिए कि आज आप उनसे किस पर चर्चा करने वाली हैं।
2: आज हम बात करने वाले हैं चिकन पॉक्स के ऊपर, और चिकन पॉक्स जो कि हो भी रहा है।
3: जी बिल्कुल, आजकल हो भी रहा है, देखने को भी मिल रहा है और मुझे लगता है कि इससे बेहतर समय इस पर चर्चा करने के लिए मुझे भी लगता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं उन अनुभवों को भी बता सकता हूं जो एक एक्टिव चिकन पॉक्स का पेशेंट फील करता है।
2: बिल्कुल,
3: तो मुझे लगता है कि आपने मौके पर चौका मारते हुए ये आज का टॉपिक सेलेक्ट किया है, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छी जानकारी भी हम इस पर देने वाले हैं आज।
2: जी हाँ, इसीलिए हमने सेलेक्ट भी किया था क्योंकि हमारे साथ आप मौजूद हैं और क्योंकि आप अभी खुद ही इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं।

0: एक वायरस के द्वारा इसका संक्रमण फैलता है, एक विशेष प्रकार का वायरस होता है। और चूंकि जैसे दूसरे वायरल बीमारियां होती हैं जो कि कंटामिनेबल होती हैं, एक दूसरे से, एक इंसान से दूसरे इंसान में ये स्थानांतरण भी होती रहती हैं, तो बिल्कुल इसमें ऐसा होता है, एक इंसान से कंटामिनेट हो सकता है दूसरा इंसान। तो इसीलिए साफ़ सफाई और सोशल डिस्टेंसिंग और ऐसी चीज़ों का पालन इसमें करने के लिए ऐसी गाइडलाइन भी दी जाती है।
1: बिल्कुल, और ये सवाल मेरा इसलिए था क्योंकि मेरे लिसनर्स अभी थोड़े से परेशान हो जाएंगे कि सर अगर आप अभी एक्टिव हैं, इसे सफ़र कर रहे हैं और मैम भी वहीं पर बैठी है तो कहीं आपको भी तो नहीं हो जाएगा।
0: जी बिल्कुल, इन चीज़ों का मैं देखिए भरपूर ख्याल रखता हूँ। मैं मास्क वगैरह लगा के रखता हूँ और अपने हाथों को भी सैनिटाइज करता हूँ, कपड़ों को भी टाइम टाइम पर उनको मतलब डिसइंफेक्टेंट से सैनिटाइज किया जाता है। तो बिल्कुल इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, और इन सभी चीज़ों का ख्याल रखने के बावजूद भी 1 मीटर की जो एक उचित दूरी है वो भी हम मेंटेन करके रखते हैं।
1: फिलहाल आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की, और हमारा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि चिकन पॉक्स क्या है और ये किसकी वजह से होता है?
0: बिल्कुल, और चूंकि एक ऐसी बीमारी है जिसपे बहुत ही तरह तरह की भ्रांतियां भी हैं, तो उन पे भी आज हम बात करेंगे। तो अब चूंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम लोग ही इनको देखते हैं, समझते हैं या लेकर के चलते हैं, ये एक प्रकार का वायरस से द्वारा जनित रोग है, मतलब एक जिसको विषाणु बोलते हैं हिंदी में, और उसके संक्रमण से ये एक इंसान से दूसरे इंसान में ये फैलता है। और इसके संक्रमण से मतलब जो शरीर पे दाने, छाले, फफोले, ये निकल आना, हाई ग्रेड फीवर आना, ये सारे कॉमन सिम्टम्स तो आप जानते ही होंगे। तो ये एक ऐसी बीमारी जो वायरस के द्वारा होती है, हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करती है, पूरे शरीर पर जो है दाने छोटे छोटे, फिर वो धीरे धीरे ब्लिस्टर्स का रूप ले लेते हैं, छालों का रूप ले लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा पेनफुल भी होते हैं। तो ये एक इस मतलब प्रकार का और इस अपियरेंस का एक बीमारी है।
1: ऑल राइट, और लोग इसको माता जी के नाम से ज़्यादा बुलाते हैं।
0: जी
1: जब भी मैं पूछती हूँ क्या हुआ है एंड दे वो ऐसे बोलते हैं कि हमको माता जी हो गई है। पहले मैं समझ नहीं पाती थी ये क्या चीज़ है, और
0: जी
1: मैं सोचती थी चिकन पॉक्स है या कोई और है, देन वो क्लियर करते थे कि छोटी माता है कि बड़ी माता है, और मैं
0: जी
1: इसमें भी कन्फ्यूज़ होती थी।
0: जी बिल्कुल
1: फिलहाल के लिए चिकन पॉक्स जो कि एक वायरस या बैक्टीरिया से हो रहा है और ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सर मुझे आपसे ये जानना है कि जितने छाले शरीर के ऊपर होते हैं क्या इतने बॉडी के अंदर भी होते हैं?
0: देखिए, वायरस तो चूंकि ये हमारे पूरे बॉडी में स्प्रेड होते हैं,
1: जी
0: और वायरस चूंकि हमारे पूरे बॉडी में स्प्रेड होते हैं तो हमारे पूरे बॉडी की कोशिकाओं को प्रभावित कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि केवल आउटर कोशिकाएं जो होती हैं, बाहरी कोशिकाएं जो होती हैं, उनको ही ये प्रभावित करें, ये अंदरूनी कोशिकाओं को भी प्रभावित करती हैं। पर अब जैसे लोग कहते हैं अंदर भी निकले हैं, अंदर भी फोड़े निकले हैं, ऐसे तमाम तरह की बातें लोग करते हैं, बट इसमें क्या होता है कि जो हमारी मतलब ओपन लाइंस होती हैं, जैसे जो हमारी माउथ कैविटी होती है, हमारा विंड पाइप होता है, हमारा स्टमक होता है, उसके अंदर का जो स्पेस होता है उसमें भी जो कोशिकाएं होती हैं वो प्रभावित होती हैं। और अब उसके अंदर मतलब सेम एग्जैक्ट मिलते जुलते छाले नहीं होते हैं, बट हाँ टाइनी अल्सर्स आपको माउथ में, एसोफेगस में, हमारे स्टमक में, इंटेस्टाइन्स में, इन जगहों पे भी देखने को मिलते हैं।
1: और इसी की वजह से आई थिंक खाना खाने में ज़्यादा दिक्कत होती है, तकलीफ़ महसूस
0: जी
1: होती है।
0: आपको थ्रोट में पेन भी फील होता है, चूंकि अब मैंने शुरुआत में ही ये चीज़ें बताई कि इससे बेहतर समय इस पे चर्चा का मुझे भी नहीं लगता है कि हो सकता था। तो अभी मैं आपको उन सारे एक्सपीरियंसेस को बता सकता हूँ जो पेशेंट्स के द्वारा हमने स्टडी किए हैं और खुद की बॉडी पर भी कहीं ना कहीं स्टडी कर ही लिया आप। जी
1: अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी अगर चिकन पॉक्स होता है तो सबसे पहले दाने कहाँ निकलना शुरू करते हैं जिससे एक सिम्टम का आइडिया लग जाए कि जो हो रहा है ये चिकन पॉक्स है, कोई रैशेज या एलर्जी नहीं?
0: देखिए, इसके दाने कहीं से भी स्टार्ट हो सकते हैं। अभी मैं यदि अपनी बात करूं तो मेरी बाएं हाथ की हथेली पर एक छोटा सा ब्लिस्टर मुझको पहले दिखा, छाला, जो कि मुझको अब जो हथेलियों की बनावट होती है, जो चमड़ी होती है, वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है, नॉर्मल स्किन से टाइट होती है, स्पेशली अगर आप मर्दों की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा टाइट होती है। और इसके बाद भी वो तमाम तरह के फिजिकल वर्क्स करते हैं जिसके वजह से वो स्किन और धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाती है। तो वहाँ पे ऐसा कोई नॉर्मल छाला निकलना ये बहुत आम बात नहीं होती है।
1: जी
0: तो मुझे तो सबसे पहले वहाँ दिखा था जिसको मैं आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाया था कि ये मतलब VZV का वायरस है।

0: मतलब चिकन पॉक्स का वायरस है या फिर माताजी जिसको कहते हैं। फिर जब दूसरे दाने मेरे हाथों पर निकलना स्टार्ट हुए तो वहाँ से मुझे इसका आइडिया लगा और तब मुझे अंदाज़ा लगा कि ये चिकन पॉक्स है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि इसके दाने कहीं से भी स्टार्ट हो सकते हैं, बट यूजुअली जो दूसरे केसेस में देखने को मिलते हैं, चेहरे पर, हाथों पर, पेट पर या पीठ पर, ऐसी जगहों पर अमूमन ये पहले स्टार्ट होते हैं।
1: पीठ पे रेड कलर के दाने अगर बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं तो वो एक सिम्टम होता है कि चिकन पॉक्स हो रहा है।
0: देखिए, दाने बहुत कम समय में निकल रहे हैं, जैसे दाने क्या है कि बैक एक्ने वगैरह तो मतलब यूजुअली बहुत से लोगों को होता है,
1: जी
0: बट क्या है कि इसका अपीयरेंस ऐसा होता है कि मतलब अभी कल तक कुछ भी नहीं था, आज से सडन इतने स्पॉट्स पे ये दाने आने स्टार्ट हो गए। तो
1: ओके
0: बहुत कम टाइम में बहुत बड़े नंबर्स में, मल्टीपल नंबर्स में दाने निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे वो ब्लिस्टर का रूप ले लेते हैं। मतलब इसका जो मेन आइडेंटिफिकेशन होता है वो ब्लिस्टर के तौर पे ही हो पाता है, और ब्लिस्टर जिनके अंदर मतलब एक लिक्विड और फ्लूइड टाइप का भरा रहता है, तो ये कहीं से भी स्टार्ट हो सकते हैं, बट बेसिकली हाथों पे, पेट पे या इन जगहों पे ये पहले अपीयर होते हैं।
1: चिकन पॉक्स में जो दाने निकलते हैं, जो ब्लिस्टर्स होते हैं, क्या इनमें इचिंग भी होती है?
0: जी, इनमें इचिंग होती है और बहुत भारी मात्रा में इचिंग होती है। गर्मी से ये इचिंग और बढ़ जाती है, पसीने से इचिंग बढ़ जाती है, और कई बार वो इचिंग इतनी ज़्यादा होती है कि वो कंट्रोल नहीं होती, और खुजला देने पर वो दाने टच हो जाते हैं या कभी-कभी फूट भी जाते हैं। इनके वजह से बहुत पेन भी होता है।
1: ओह माय गॉड। अच्छा सर, मैंने देखा है लोगों को जब चिकन पॉक्स होता है तो वो आसपास नीम के पत्ते बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देते
0: जी
1: हैं, बेड पे नीम के पत्ते डाल देंगे, इवन इचिंग को भगाने के लिए भी नीम के पत्तों का इस्तेमाल होता है, कमरे की सारी लाइट बंद कर दी जाती है। सर, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट आप मुझे क्लियर कर सकते हैं?
0: जी ज़रूर। देखिए, नीम के पत्तों का जो यूज़ है वो एक साइंटिफिक प्रयोग है। नीम के पत्ते जो होते हैं वो वाइल्डली नोन, और मतलब उसको वर्ल्ड वाइड लोग जानते हैं कि ये एंटीसेप्टिक इसमें एक्टिविटीज़ होती हैं, और बहुत ही पोटेंट एंटीसेप्टिक होता है, पावरफुल होता है। तो
1: आपसे माफी चाहेंगे, हमारे पास एक कॉल है।
0: जी ज़रूर।
2: हेलो
1: हेलो।
2: हाँ
1: हाँ जी
2: महेंद्र भैया।
1: ओके, रॉन्ग नंबर है आई थिंक सर।
0: ठीक है, किसी लिसनर ने रॉन्ग नंबर मिला दिया। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, और उन्नति मैम का प्रश्न ये था कि नीम के पत्ते का यूज़
1: और कमरे में इतना अंधेरा क्यों कर दिया जाता है?
0: कमरे में अंधेरा क्यों कर दिया जाता है? देखिए, जो हमारे नीम के पत्तों का यूज़ है, सबसे पहले तो इस पे बात करते हैं, ये वर्ल्ड वाइड नोन है कि नीम के पत्ते जो होते हैं उनमें औषधीय गुण होते हैं, और वो एंटीसेप्टिक यानी कि जो बैक्टीरिया, वायरस या फंगस से लड़ने की क्षमता रखता है, उनको डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है, वो गुण होते हैं। तो और वो मतलब बहुत ही पोटेंट होते हैं, काफ़ी पावरफुल होते हैं। तो उन पत्तों को वहाँ पर लगाने से फिर क्या होता है कि जो भी हमारी स्किन होती है वो धीरे धीरे उन पत्तों को उनके कांटेक्ट में आकर के वो जो वायरस होते हैं उनकी जो प्रभाव को धीरे धीरे कम करता है। जो ब्लिस्टर्स फूट भी जाते हैं वो नीम के पत्तों पे लगेंगे तो वो और दूसरी जगहों पर जल्दी स्प्रेड नहीं होंगे, अदरवाइज वो दूसरी जगहों पे लगेंगे तो वो स्प्रेड भी होंगे।
1: मतलब कि जो छाले फूट रहे हैं वो अगर उनके अंदर का जो लिक्विड होता
0: लिक्विड
1: है
0: है
1: वो और भी कहीं पर छाले पैदा कर सकता
0: जी,
1: है।
0: अगर वो दूसरी जगहों पर स्प्रेड होता है तो वो वहाँ पे भी छालों को क्रिएट कर सकता है। नीम के जो पत्ते होते हैं वो इस एक्टिविटी को कम करते हैं, एंटीसेप्टिक गुणों की वजह से धीरे धीरे हमारे बॉडी के जो दूसरे छाले हैं उनको भी कम करने का प्रयास करता है, और उनको और बढ़ने से रोकता है। तो ये एक साइंटिफिकली एंगल्ड फेनोमिना है जिसका प्रयोग बहुत ही प्राचीन समय से किया जाता है हमारे पद्धतियों में। और जो दूसरा प्रश्न है कि लाइट बंद कर दी जाती है, जी देखिए, हमारी बॉडी को और हमारे स्किन को बहुत सारे नेचुरल फेनोमिनाज से मतलब इन्फ्लुएंस मिलता है, वो प्रभावित होती हैं। जैसे बहुत तेज़ लाइट से भी हमारी स्किन प्रभावित होती है, टेम्परेचर से स्किन प्रभावित होती है, ठंड या गर्म होता है तो उससे हमारी स्किन प्रभावित होती है, हवाओं से भी हमारी स्किन प्रभावित होती है।
1: ऑलराइट, आपसे माफ़ी चाहेंगे, अगेन एक कॉल है हमारे पास।
0: जी
1: हेलो।
3: हेलो,
1: हाँ जी, आपका नाम?
3: मैं सविता दुबे बात कर रही हूँ।
1: सविता दुबे जी, स्वागत है आपका क्लिनिक ज्ञान असली में। कैसी हैं आप?
3: मैं ठीक हूँ। मेरे से सवाल पूछना था सर से।
1: जी, बेशक पूछिए, सर यही मौजूद है।
3: हाँ, तो मेरा सवाल यही है कि जो माता बोलते हैं जिनको
0: जी,
3: तो सुने हूँ कि जीवन काल में दो बार होता है।
0: हाँ, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न सविता जी ने पूछा है, और काफी अच्छा प्रश्न आपने पूछा है सविता जी। क्या इसके अलावा और भी कोई प्रश्न है?
3: नहीं, मेरे को यही जानना है, ताकि मेरे को बचपन में हुआ था कि अब जीवन काल में दो बार होता है क्या? मैं कहीं सुनी थी
0: ठीक है,
3: ये चोटा जो होता है ना, जीवन काल में दो बार होता है।
0: मैं आपके प्रश्न का जवाब देता हूँ, और आप कृपया अब ऑन एयर आकर के हमारे प्रश्न का प्रश्न का जवाब सुने।
3: शुक्रिया सर
0: जी, शुक्रिया बहुत बहुत आपका।
1: थैंक यू।
0: बहुत ही अच्छा एक प्रश्न बीच में सविता जी ने पूछ लिया है, और इनके माध्यम से हम ये भी क्लियर करना चाहेंगे। इनका कहना यह है कि इन्होंने सुना है चेचक जो है वो जीवन में बस दो बार होता है। बिल्कुल, देखिए वैसे अमूमन देखा जाए तो कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जिनकी एंटीबॉडी जब हमारी बॉडी एक बार बना लेती है तो हमें दोबारा वो बीमारी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि जो चेचक हमको होता है तो इसका जो इंटूबेशन पीरियड है 14 दिनों का, ये इतने दिन में अपना रेप्लिकेट करके और सारी चीज़ें करके आपको अपीयर होता है। उसके बाद जब इसके प्रभाव हमारे बॉडी में बढ़ जाते हैं तो हमारी बॉडी फिर आइडेंटिफाई करती है कि हमारे बॉडी में वायरल लोड बढ़ गया है। फिर उसको आइडेंटिफाई करके फिर हमारी बॉडी अपना इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर करती है, तो फिर हमारी बॉडी के जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, इम्यून सेल्स होते हैं, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी उस वायरस को रीड करके, उस वायरस के डीएनए को, उसके स्ट्रक्चर को रीड करके, और उससे फाइट करने के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाती है
1: जी,
0: जो कि सिर्फ उस वायरस से या उस तरह के वायरस से निपटने के लिए होता है। तो हमारी बॉडी जब उस तरह की एंटीबॉडी बनाती है और फिर वो एंटीबॉडी भारी मात्रा में हमारी बॉडी शरीर के अंदर रिलीज करती है, और फिर वो हमारा बॉडी का जो एंटीबॉडीज हैं वो जा करके उन वायरसेस को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हमारे बॉडी का एक मैकेनिज्म है, और एक बार जब हमारी बॉडी इसकी एंटीबॉडी बना लेती है तो हमारी बॉडी को दोबारा इसकी नीड नहीं लगती है, क्योंकि ये हमको ऑलरेडी पहले से हमारी बॉडी को पता होता है कि इस वायरस से इस तरह से निपटना है और ये वाली एंटीबॉडी रिलीज़ करनी है। तो एक बार अगर चेचक हो गया तो हमारी बॉडी जब एंटीबॉडी बना लेती है तो दोबारा कभी चेचक का वायरस अगर हमारे अंदर आता भी है तो हमारी बॉडी उसके प्रभाव को बढ़ने से पहले ही उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। ये कारण है कि चेचक जो है वो अमूमन, मतलब ये 100% श्योर नहीं है, बट अमूमन मतलब एक 90% अगर आपको हो गया है तो अब दोबारा नहीं होगा। ठीक है, ये इसमें स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स इंक्लूड है, तो दो बार का होने का रीजन भी वही है, एक बार स्मॉल पॉक्स और एक बार चिकन पॉक्स।
1: ओके, हमारी इम्यूनिटी जो इस तरह से काम कर रही है, और मुझे लगता है जैसे ही वायरस अंदर एंटर करता होगा वो भी बॉलीवुड स्टाइल में बोलती होगी, तुझे मिलके लगा है ये, तुझे पहले भी देखा है मैंने कहीं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और जो हमारे बॉडी में जो वैक्सीनेशन होता है वो भी सेम मैकेनिज्म पे काम करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो कोरोना का वैक्सीन लगता है वो, या कोई भी वैक्सीन लगता है, ये उस वायरस से ही रीड करके और उसको मॉडिफाई करके हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है, और हमारी बॉडी उसको पहचान करके उसको एंटीबॉडी उसकी बना लेती है, और फिर भविष्य में जब कभी भी वो वायरस या जो भी हमारे अंदर जीवाणु प्रवेश करता है, विषाणु, हमारी बॉडी तुरंत तो उसको आइडेंटिफाई करके और उसकी एंटीबॉडीज रिलीज करना स्टार्ट कर देती है।
1: क्या बात है, कभी कभी लगता है कि हमारे अंदर पूरा यूनिवर्स चल रहा है और हमें जिंदा रखने के लिए कितनी सारे सेल्स, कितनी सारी चीजें काम कर रही
0: हैं, कितने सारे सिस्टम्स एंड मतलब कितनी सारी चीजें,
1: कितनी फाइटिंग चल रही है, हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स किसी को चेस कर रहे होंगे, अभी भी अंदर कोई ना कोई वायरस होगा, किसी ना किसी को चेस किया जा रहा होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत, प्लस एक बहुत प्यारी कल्पना है, या फिर कहें तो एक बहुत प्यारी सोच है किसी की, और हम तो लगता है ना जब माइक्रोसॉफ्ट के अंदर देखते, माइक्रोसॉफ्ट कह रहे हैं माइक्रोस्कोप के अंदर जब मैं देखती थी सेल्स को, और मुझे लगता था कि कितना फैसिनेटिंग है ये चीज़, हमारे सेल्स हमारे लिए लड़ रहे हैं, वो डिवाइड हो रहे हैं, वो ख़त्म भी हो रहे हैं, उनका दोबारा से जर्नी स्टार्ट हो रही है, और वो अपना अपना काम करते जा रहे हैं बिना किसी लोड के, बिना आपसे कुछ मांगे, सिर्फ मांगते एक अच्छी डाइट और अच्छी लाइफस्टाइल।
0: बिल्कुल, और वो भी हम नहीं दे पाते,
1: वो भी हम नहीं दे पाते, इसके बाद भी वो जी जान लगाकर मेहनत कर रहे हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: क्या बात है, चलिए बात कर लेते हैं इस पर। हमारे लिसनर भी जानना चाहते हैं कि क्या चिकन पॉक्स के लिए कोई वैक्सीन बनी हुई है जो लगवा सकते हैं?
0: देखिए चिकन पॉक्स के लिए वैक्सीन बनी हुई है, इस पे बहुत सारी रिसर्चेस भी हैं, बट क्या है कि चिकन पॉक्स की वैक्सीन इतनी कॉमन नहीं है। यूजुअली आपको देखने को यही मिलता है कि जो हमारी इम्यूनिटी है हम उसी पर डिपेंड होते हैं, कभी न कभी बच्चों को आज भी होता है। तो चिकन पॉक्स की वैक्सीन बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, बहुत ज़्यादा कारगर भी नहीं है, क्योंकि वैक्सीन जो है ये बहुत ही सालों में डेवलप होती है। जैसे अभी शायद पिछली बार या मुझे लगता है अभी हमने इस पर चर्चा नहीं की है, डेंगू की पहली वैक्सीन भारत में उसको मंजूरी मिल चुकी है। ये आज के आपके बीच में इस शो में एक अच्छी बात हम बताने जा रहे हैं कि डेंगू के लिए जो मरीज परेशान रहते हैं, क्योंकि आज भी डेंगू जानलेवा बीमारी है, इसके लिए वैक्सीन बन गई है। क्यू डेंगा नाम की ये वैक्सीन, जिसको मतलब औषधि मंत्रालय द्वारा मंजूरी भी दे दी गई है और कुछ ही दिनों में ये मार्केट में लगने के लिए उपलब्ध भी हो जाएगी। तो क्या है कि ये आज से नहीं, ये क्यू डेंगा इसको मंजूरी आज मिली है, लेकिन पिछले लगभग 7-8 सालों से 10 सालों से ये कॉन्टिन्यू प्रोसीजर में थी, रिसर्च में थी, इस पर काम चल रहा था और अब जा करके इसको मंजूरी मिली है। तो ये वैक्सीनेशंस जो होते हैं ये एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है और चिकन पॉक्स के लिए अभी भी हम अपनी इम्यूनिटी पे ही डिपेंड हैं।
1: ओके, और आपसे मैं हर अपने शो के में ये ज़रूर सुनती हूँ कि आज इसकी वैक्सीन बन चुकी है, आज ये बन चुका है। जैसे पिछली बार आपने हमें कैंसर के बारे में बताया था और आज डेंगू के बारे में, सुन के खुशी हुई कि फिलहाल अब जो लोग डेंगू से परेशान रहते हैं उनके लिए राहत की बात है।
0: बिल्कुल राहत की बात है। टाकेडा बायोफार्मास्यूटिकल्स नाम की एक कंपनी है जिसने इस पे बहुत लंबे समय से रिसर्च कंडक्ट किया हुआ था और अब फाइनली उसकी रिसर्च कंप्लीट भी हो चुकी है, बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स भी हो चुके हैं और अपना थर्ड फेज का ट्रायल उसने कम्प्लीटली और सक्सेसफुली पूरा भी कर लिया है और उसको बहुत ही जल्द आप मार्केट में भी देखेंगे। और
1: मेडिकल साइंस को मेरी तरफ से मुबारकबाद
0: जी, और मेरी तरफ से, मैं एज अ मेडिकल साइंस का एक रिप्रेजेंटर की तरफ से हमारी जो जनता है, हमारे जो लिसनर्स हैं, उनको भी हम बहुत ढेर सारी बधाइयां देते हैं इसके लिए।
1: चलिए अब बात कर लेते हैं कि चिकन पॉक्स कितने दिन के अंदर ठीक हो जाता है।
0: देखिए, चिकन पॉक्स जो बीमारी है, अब ये हमारे शरीर में प्रवेश करने के मतलब कुछ दिनों से लेकर के लगभग 2 हफ्तों के बीच में अपीयर होता है, कुछ दिनों से लेकर के लगभग 14 दिनों तक, और उसके बाद फिर ये अगले 4-5 दिनों तक, 6 दिनों तक कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहती है और लगभग 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर हमारी बॉडी इसको आइडेंटिफाई करके, इसके DNA को रीड करके और इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप कर लेती है। तो लगभग मान के चलिए ऐसे लगभग 15 से 20 दिन ही लगते हैं इसको हमारी बॉडी से कम्प्लीटली एलिमिनेट भी होने में, क्योंकि फिर उतना टाइम लग जाता है हमारी एंटीबॉडीज़ को और ऑटो इम्यून रिस्पॉन्सेज को उसको कम्प्लीटली जो है हमारी बॉडी से एलिमिनेट करने में।
1: ऑल राइट, और एज यूजुअल मुझे फिर से अपने कुछ ऐसी चीज़ें याद आ रही हैं जो मैंने देखी थी और मुझे लग रहा है कि हमारी इम्यूनिट सिस्टम प्लस कुछ ऐसे प्रोटीन सेल्स हैं जो अभी भी भारी भरकम चीज़ें लेके जा रहे होंगे, जस्ट बिकॉज कि मैं खुश रहूं।
0: जी बिल्कुल, एक वीडियो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे देखा,
1: काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है
0: जी, वो प्रोटीन के पार्टिकल्स ऐसा लगता है कि कोई पैर है उसके और
1: वो रैम वॉक कर रहे हैं,
0: रैम वॉक करते करते उसको लेके जा रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यही मैकेनिज्म होता है और ये हमारे बॉडी के अंदर घटने वाली ऐसी बहुत सी माइक्रो एक्टिविटीज, मतलब कॉन्टिन्यू निरंतर आप सो रहे हैं, जग रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, डजेंट मैटर, और ये कंटिन्यूअस होता रहता है। जैसे ब्रह्मांड में तमाम सारी घटनाएं घटती रहती हैं, वैसे ही हमारे शरीर के अंदर, एक्चुअली जो आपने कहा था वो गलत नहीं कहा था कि हमारे शरीर के अंदर भी एक यूनिवर्स है और वो यूनिवर्स कॉन्टिन्यूली मतलब वो फंक्शनिंग में है।
1: बिल्कुल, वो एक भी जगह पे ठहरा नहीं है, भले आप रेस्ट मोड पे चले जाते हो लेकिन वो रेस्ट मोड पे नहीं जाते। अगर वो रेस्ट मोड पे चले जाएंगे तो फिर आप हमेशा के लिए रेस्ट मोड पे हो जाएंगे।
0: जी बिल्कुल।
1: फिलहाल चलिए बात कर लेते हैं, हमारे लिसनर का अगेन एक सवाल है कि अगर डेंगू की बात निकल ही चुकी है तो डेंगू होने पर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये आप बता दीजिए।
0: जी ज़रूर बता देंगे। देखिए, डेंगू होने पे ध्यान रखना चाहिए कि पहली बात तो कि हमें सबसे पहले ये कंफर्मेशन चाहिए होता है कि हम डेंगू के एक्टिव पेशेंट हैं। तो अगर आपको इंस्टेंट फीवर आ रहा है, फीवर के साथ चिल्स भी आ रहे हैं, शिवरिंग हो रही है, कपकपी लग रही है, हाथों पैरों में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वीकनेस लग रही है, बुखार थोड़ी देर के लिए चढ़ के फिर उतर जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने कुछ टेस्ट कराने चाहिए जिससे ये कन्फर्म हो सके कि आप डेंगू के पेशेंट हैं। उसके बाद देखिए, इसको समझना चाहिए कि डेंगू को मारने के लिए अभी भी हमारे पास कोई एकदम सटीक एंटीवायरल अवेलेबल नहीं है, और डेंगू के केसेस में यूजुअली कोई एंटीवायरल थेरेपी देते भी नहीं है।
1: क्यों?
0: क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है उस वायरस को मारने की एंटीवायरल्स। तो हमारी बॉडी का जो नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स है, जो हमारी बॉडी खुद ही उसको डिटेक्ट करके उसकी एंटीबॉडीज़ बनाती है, एंटीबॉडीज़ बना के फिर उसको डिस्ट्रॉय करती है, यही फेनोमेना हमारी बॉडी में उस समय भी घटित हो रहा होता है। बट हमें जिन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, पहली बात तो डेंगू के फीवर में एस्पिरिन यानी जिसको डिस्प्रिन के नाम से हम जानते हैं, डिस्प्रिन जैसी टैबलेट्स नहीं खानी चाहिए, जो ब्लड थिनर्स हैं वो नहीं खानी चाहिए। अगर कोई ऐसे हैं जो हार्ट के पेशेंट हैं जिनको ब्लड थिनर्स चल रही हैं, जिसमें एस्पिरिन या क्लोपीडोग्रल या और भी दूसरे ब्लड थिनर्स चलते हैं, जो और ये स्पेशली हार्ट के पेशेंट्स में चलते हैं, मैं ये भी बता दूँ, तो जो हार्ट के पेशेंट्स हैं जिनमें ब्लड थिनर्स चल रही हैं, खून को पतला करने वाली दवाइयां चल रही हैं, वो दवाइयां कुछ समय के लिए आपको रोक देनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी डेंगू की कंडीशंस को और भी ज़्यादा वर्स्ट कर सकती हैं। क्योंकि डेंगू में मृत्यु बुखार से या वायरस के बहुत ज़्यादा उस स्प्रेड होने से ना होकर के, बल्कि प्लेटलेट बहुत ज़्यादा कम हो जाने के वजह से हमारे बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग जैसी समस्या की वजह से होता है। तो हमें ऐसी दवाइयाँ जो ब्लड थिनर्स हैं जैसे या फिर सरदर्द के लिए जो डिस्प्रिन यूज़ करते हैं, ऐसी दवाइयों का यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें हाइड्रेट रहना चाहिए, हमें अच्छी डाइट लेनी चाहिए ताकि हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम अच्छे से काम कर सके और जल्द से जल्द उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप कर सके। हमें ज़रूरत पड़ने पर पैरासीटामोल या दूसरी दवाइयाँ भी लेनी पड़ सकती हैं। तो कहीं ना कहीं एक बार ऐसी कंडीशन में आपको अपने चिकित्सक के पास ज़रूर विज़िट करना चाहिए, ताकि वो आपकी कंडीशन को, आपकी एज को, आपकी जो अदर ऑनगोइंग मेडिकेशंस है, दूसरी चल रही दवाइयां हैं, उनको देख रेख करके अपने हिसाब से उस पर एक नया प्रेस्क्रिप्शन, एक नया इलाज आपका प्रारंभ कर सकें।
1: जी, और नागेश्वर धाकर जी जो हमारे साथ जुड़े हैं, जिनका ये सवाल था डेंगू को लेकर के, उन्होंने ही सवाल किया है कि सिर्फ इतना पता है डेंगू होने से पहले तेज बुखार आता है, इसके साथ साथ आपको दर्द होता है, कमजोरी होती, थकान होती, उल्टी आती है।
0: जी, और एक और चीज़ें हैं जो जैसे हमारा जो फोरहेड होता है, मत्था होता है, जहाँ पे हमारी भौहें होती हैं
1: और आंखों के पीछे दर्द होता
0: है। जी, ऐसी जगहों पे दर्द और भारीपन होता है, घुटनों के नीचे, जो घुटने होते हैं घुटनों के जस्ट नीचे,
1: वहाँ पे,
0: हाँ, काफ मसल्स में और काफ मसल्स के ऊपर और आगे बोन्स की साइड में, बोन्स की साइड में भी आपको दर्द और रिजिडिटी वगैरह उसमें महसूस होती है। तो ये भी एक माइनर सा सिम्टम्स है जिसको कई बार पेशेंट्स बताते हैं, और इनके वजह से फिर हमारा डाउट जो है वो डेंगू की तरफ भी जाता है।
1: ओके, तो हमारी अनोखी जी पूछ रही हैं, अगर डेंगू हो जाए तो कैसे पता चलता है बिना दवा कराए कि एक डेंगू का लक्षण है? जैसा कि हमने आपको बताया, 3-4 लक्षण जो बहुत कॉमन होते हैं, आंखों के पीछे दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, प्लस उल्टी आना, थकान, कमजोरी, ये वो सारे लक्षण हैं जो इस चीज़ का दावा करते हैं कि आपको कहीं ना कहीं डेंगू हो चुका है।
0: जी बिल्कुल,
1: और मुझे भी लक्षण याद हो चुके हैं अब तक तो।
0: जी, बहुत सी बीमारियों के तमाम लक्षण उन्नति मैम को याद हो चुके हैं, और तमाम बीमारियों पे बहुत ही, मुझे लगता है कि एक अच्छी जानकारी भी अब तक उन्नति मैम को हो चुकी है।
1: बिल्कुल, और इवन मैं तो अब लोगों से कहती भी हूँ, अगर वो मुझे आके बताते कि यार सुबह शाम बुखार बहुत तेज आ रहा है, मैं उनसे कहती हूँ ब्लड टेस्ट कराओ, क्या पता टाइफाइड निकल आए।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: फिलहाल के लिए लेते एक छोटा सा ब्रेक, इस ब्रेक के उस पर आते तो तक बने रहिए, सुनते रहिए क्लिनिक ज्ञान असली, अपनी आरजी उन्नति और अपने हेल्थ एक्सपर्ट राहुल विश्वकर्मा जी के साथ। स्टे ट्यून्ड।
4: क्योंकि धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं
5: जी,
4: और इसका इलाज भी पूरी तरीके से संभव है अब, लेकिन क्षेत्र भ्रमण के दौरान कभी कभी देखने को मिलता है टीबी के मरीज में अक्सर शरीर में कमजोरी, थकान, धीरे धीरे वजन कम होना, लगातार बुखार या रात में पसीना आना, भूख का कम लगना और रोजमर्रा के कामों में मन ना लगना।
5: जी, तो जैसा दीदी अभी आपने बताया कि भूख ना लगना, तो जब आप कोई टीबी मरीज का इलाज शुरू करती हैं तो उस वक्त उसके खाने पीने को लेकर क्या सलाह देती हैं, खासकर ताकत और वजन बढ़ाने के लिए?
4: जी, जब कोई मरीज इलाज शुरू करता है
5: जी,
4: तो मैं उसे तुरंत संतुलित पौष्टिक आहार लेने की सलाह देती हूँ। रोज भोजन में दाल, दलिया, दूध, दही, अंडा, सोयाबीन जैसे प्रोटीन युक्त पदार्थ शामिल करने को कहती हूँ। साथ ही हरी साग सब्जियाँ, मौसमी फल लेने को बोलती हूँ, और साबुत अनाज लेना जरूरी है, थोड़ी थोड़ी सही, वर्ष दिन में कई बार खाएं, पानी भरपूर मात्रा में पीना, तला भुना या बहुत मसालेदार भोजन कम करना या ना करने की सलाह देती हूँ और मरीज को समझाती हूँ कि डॉक्टर द्वारा दी गई दवाएं सही समय और नियमित रूप से खाना बहुत जरूरी है।
5: मतलब आप सभी के स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखती हैं
4: जी आज दीदी।
5: क्या बात है। अभी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी दीदी कि क्या टीबी मरीजों और उनके परिवारों को सरकारी पोषण सहायता जैसे राशन, निश्चय पोषण योजना आदि मिल पाती है? इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है आपके क्षेत्र में, जब आप जाते हैं तो दिक्कत कहाँ देखने को पाते हैं?
4: हाँ, टीबी मरीज और उनके परिवार को सरकारी पोषण सहायता जैसे राशन और निश्चय पोषण योजना मिलती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जानकारी की कमी की होती है। कई मरीजों को यह पता ही नहीं होता कि यह सुविधा मिल सकती है। कुछ जगहों पर कागजी प्रक्रिया जटिल होती है, बहुत कठिन होती है
5: जी।
4: कई बार आधार या बैंक खाते की समस्या के कारण पैसा समय पर नहीं पहुंच पाता है। जिससे मैं अपने क्षेत्र में जाती हूं तो लोगों को सही जानकारी देकर सरकार द्वारा जो उनको राशि मिलती है और राशन है, निश्चय रोग के जो पोषण तत्व हैं, जो सहायता मिलती है उसकी उनको जानकारी देती हूँ
5: जी,
4: और ये सुविधा उन तक पहुँचाने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ।
5: क्या बात है भाई, आप कहीं ना कहीं वो कड़ी हैं जो हमारे सरकार और हमारी जनता के बीच में एक संपर्क स्थापित करती हैं।
4: जी दीदी
5: जी, इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं। अब आपसे एक और सवाल है मेरा कि आपके अनुभव में बेहतर खाना या सही पोषण मिलने से टीबी मरीज के इलाज और ठीक होने में क्या फर्क पड़ता है?
4: मेरे अनुभव में सही पौष्टिक भोजन मिलने से टीबी मरीज के इलाज में साफ फर्क पड़ता है। इससे शरीर की ताकत बढ़ती है, दवाएं बेहतर असर करती हैं और मरीज जल्दी ठीक होने लगता है, वजन बढ़ता है और कमजोरी कम होने लगती है और बीमारी से लड़ने की क्षमता मजबूत होती है।
5: तो दोस्तों, टीबी सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक सामाजिक जिम्मेदारी है। डॉक्टर, आशा दी और आप तीनों मिलकर ही इसे हरा सकते हैं। सुनते रहिए अपना सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ जो होगी आपके लिए बहुत लाभकारी। धन्यवाद। स्वागत है श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना कम्युनिटी रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। सेहत सही लाभ कई श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उन नन्हे मुन्हों की जो दुनिया में आते ही सबसे ज्यादा देखभाल के हकदार होते हैं, हमारे नवजात बच्चे। बहुत बार हम देखते हैं कि बच्चा पैदा होते ही अचानक कमजोर पड़ जाता है, दूध नहीं पी पाता, सांस लेने में दिक्कत, शरीर ठंडा और परिवार घबरा जाते हैं। अब क्या किया जाए, इसलिए आज हमने बुलाया है हमारे गांव-गांव के स्वास्थ्य साथी सबके प्रिय सेहतिया सिंह जी को। सेहतिया भैया, आपका हार्दिक स्वागत है।
6: बहुत बहुत धन्यवाद आरजी आकांक्षा जी कि एक बार फिर आपने मुझे अपने इस मंच पर बुलाया, और धन्यवाद मेरे गांव के सभी भाइयों बहनों को। आपने आज बहुत ही जरूरी विषय उठाया है। नवजात बच्चा तो जैसे कली का फूल होता है, नर्म, नाजुक और छोटी सी बीमारी भी बड़ा रूप ले सकती है, इसलिए जागरूकता बहुत जरूरी है।
5: भैया बिल्कुल सही कहा आपने। आज हम NBSU के बारे में बात करेंगे, कई लोग इसका नाम भी पहली बार सुनते हैं, तो शुरुआत यहीं से करते हैं। NBSU यानी ये क्या है भैया, और इसकी जरूरत आखिर पड़ी क्यों?
6: देखिए, NBSU का पूरा नाम है न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट, जिसे हम सरल भाषा में नवजात स्थिरीकरण कक्ष कह सकते हैं। ये यूनिट खास तौर पर उन नवजात बच्चों के लिए बनाई गई है जो जन्म के बाद सांस नहीं ले पा रहे हैं, जिनका शरीर ठंडा हो जा रहा है, जिनका वजन बहुत कम है, जो दूध भी नहीं पी पा रहे हैं, जिन्हें तेज पीलिया हो या फिर जिनमें संक्रमण के लक्षण दिखे, जिन्हें दौरा या झटका आए या किसी भी तरह की आकस्मिक समस्या हो। NBSU बच्चों को तुरंत सुरक्षित और शुरुआती इलाज दे देती है ताकि उनकी जान बचे और हालत स्थिर हो जाए। यानी आरजे आकांक्षा जी, NBSU नवजात का पहला सुरक्षा कवच है।
5: यानी कि ये जो SNECU होता है, जैसे उसी की जैसा थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, क्यों?
6: हाँ बिल्कुल, SNECU अधिक गंभीर बच्चों के लिए है और NBSU शुरुआती 24 से 48 घंटों का सबसे जरूरी इलाज देता है।
5: अच्छा।
6: या FRU यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या CHC और सब डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में होता है, ताकि इलाज नजदीक मिले, जल्दी मिले।
5: अच्छा भैया, तो अब ये भी बता दीजिए कि NBSU में कौन कौन सी सेवाएं मिलती हैं?
6: बहुत सारी,
5: जैसे?
6: और ये सब सेवाएं बच्चों को स्थिर करने के लिए जरूरी हैं। मैं एक एक करके बताता हूँ।
5: जी।
6: नवजात की त्वरित जांच, जैसे ही बच्चा आता है तुरंत ये जांचें होती हैं कि बच्चा सांस ले रहा है या नहीं, उसका शरीर ठंडा है या गर्म, वजन कितना है, दूध पी पा रहा है या नहीं, कहीं उसे दौरा या झटका तो नहीं आ रहा है, संक्रमण के संकेत दिख रहे हैं या नहीं, क्या उसे पीलिया तो नहीं है, ऑक्सीजन का स्तर भी हम इसमें जांचते हैं। ये त्वरित पहचान ही बच्चे की जान बचाती है।
5: और बाकी?
6: अरे बताता हूँ, दूसरा इमरजेंसी केयर, आपात उपचार। यदि बच्चा कमजोर है तो तुरंत रेडिएंट वार्मर में गर्म रखना, सांस में दिक्कत हो तो ऑक्सीजन की आपूर्ति करना, अगर उसको दौरे आ रहे हो तो उसे दवा देना, अगर उसका शुगर लो हो तो ग्लूकोज की आपूर्ति करना, शॉक हो तो सलाइन की व्यवस्था करना, इन्फेक्शन हो तो तुरंत एंटीबायोटिक से उसका उपचार करना। यानी आरजे आकांक्षा जी, NBSU का काम है पहले एक घंटे में बच्चे को सुरक्षित करना। और तीसरा, फीडिंग सपोर्ट, दूध पिलाने में मदद। यानी कई नवजात माँ का दूध तुरंत नहीं पी पाते, तो NBSU माँ को स्तनपान का सही तरीका सिखाता है, जरूरत पड़े तो कप चम्मच से भी दूध पिलाया जा सकता है। बहुत कमजोर बच्चे को नली से दूध पिलाया जाता है, और सबसे जरूरी, हर स्थिति में माँ का दूध ही प्राथमिकता। और चौथा, कंगारू मदर केयर, यानी माँ की गोद में गर्माहट। यह कम वजन वाले बच्चों के लिए बहुत असरदार होता है, त्वचा से त्वचा का संपर्क, वजन इससे बढ़ता है, बच्चा जल्दी स्थिर होता है।
1: हाँ जी, तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले शो क्लिनिक ज्ञानस्थली। मैं हूँ आपकी अपनी आरजे उन्नति और मेरे साथ मौजूद है हमारे हेल्थ एक्सपर्ट मिस्टर राहुल विश्वकर्मा जी, जिनसे हम बात कर रहे थे चिकन पॉक्स के बारे में। और हमने काफ़ी सारे सवाल कर लिए, हमारे लिसनर्स के काफ़ी सारे सवाल आ गए, लेकिन हमने अपने लिसनर्स का नाम नहीं लिया जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले वो देख लेते हैं कि हमारे साथ आज जुड़ा कौन कौन है। सायरा बानो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सौरभ मिश्रा फ्रॉम गोंडा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सोनिया तिवारी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, नायला अंसारी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, धर्मेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नागेश्वर धाकड़ जी हमारे साथ जुड़े हैं, और आप सभी को गुड इवनिंग। एंड सविता दुबे हमारे साथ जुड़ी हैं। राहुल सावंती मैम नमस्ते, नमस्ते टू यू
0: जी। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सविता जी ने एक बहुत ही अच्छा प्रश्न भी पूछा था और उनके माध्यम से हमने कई लिसनर्स को भी एक अच्छी बात बताई।
1: एंड धर्मेश जी ने लिखा है वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सो मच।
0: बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेश जी का।
1: एंड उस्मान खान हमारे साथ जुड़े हैं, लिख रहे हैं शुभ संध्या आज मैम, शुभ संध्या आपको भी, कैसे हैं आप, आपका भी स्वागत करते हैं। इसके अलावा आपके जो सवाल थे वो हमने पूछ लिए हैं, किसी और का कोई सवाल है तो आप हमें भेज सकते हैं। एंड हमारे महेंद्र दीपन जी जो हमें राजस्थान से सुनते हैं, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा मैसेज किया है और लिखा है नमस्ते आर्जुनति मैम एंड डॉक्टर राहुल सर, मैं गोंडा रेडियो का श्रोता महेंद्र दीपन राजस्थान के नागौर ज़िले से हूँ। डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है, यहाँ की ये है कि चिकन पॉक्स ठीक होने के बाद भी इसका वायरस हमारी नसों में जीवन भर छुपा रहता है, सालों बाद नागिन बनकर लौटता है, कृपया इस छिपे हुए खतरे के बारे में जरूर बताएं।
0: जी बिल्कुल, ये महेंद्र दीपन जी हैं। महेंद्र दीपन जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं, और राजस्थान की धरती से आप हमें सुन रहे हैं तो हम आपको ये भी कहना चाहेंगे कि खंभागणी। और आपका प्रश्न भी उतना ही अच्छा था, और आपने जो ये पूछा है कि बिल्कुल, देखिए कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जो ठीक होने के बाद भी हमारे शरीर में रहते हैं, पर चिकन पॉक्स उनमें से नहीं आता है। चिकन पॉक्स के वायरसेस 14 से लेकर के 20 दिनों के अंदर आपका शरीर खुद ही उनको डिस्ट्रॉय करके ख़त्म कर देता है। बट हाँ, उस वायरस से लड़ने वाली जो हमारी सेना होती है, आर्मी होती है, यानी कि हमारी इम्यूनिटी, वो ज़रूर हमारे बॉडी में रहती है और उसकी पहचान ज़रूर रहती है। तो वैसे तो ये वायरस हमारे शरीर में नहीं रहते हैं, ये 14 से लेकर के 20 दिनों के अंदर हमारा शरीर इनको एलिमिनेट करके बाहर कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है या नष्ट कर देता है। बट इसको इसे लड़ने के लिए या भविष्य में जब ऐसा कभी आता है तो उसे लड़ने के लिए हमारी इम्यूनिटी ज़रूर इसको पहचानती है।
1: और हमारे धर्मेंद्र मोहन जी जो मैं सुन रहे हैं आवाज़ विकास से, और उन्होंने अपनी एक उन्होंने कहा है कि उन्नति मैम अगला कार्यक्रम करना तो कान के बारे में बात करना। बिल्कुल बात करेंगे कान के बारे में। ईयर इन्फेक्शन हमने एक बार पहले भी कवर किया है, लेकिन कान के बारे में और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आपसे बात करनी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत ही अच्छा सजेशन इनका, और इस सजेशन के लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार करते हैं।
1: चलिए सर, अब आपसे क्योंकि वक्त होता जा रहा है तो आखिरी सवाल ये है कि जिनको चिकन पॉक्स हो जाता है उन्हें किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए?
0: बिल्कुल, देखिए हम इस पे बात करते हैं कि जिन लोगों को चिकन पॉक्स हो जाता है, सबसे पहले तो जो आप अमूमन बातें सुनते हैं कि साफ़ सफाई का ध्यान रखें,
1: हाइजीन तो सब जगह,
0: हाइजीन का आप ध्यान रखें, स्पेशली वायरल कंडीशंस में हाइजीन थोड़ा ज़्यादा मैटर कर जाती है। तो हाइजीन का ध्यान रखें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें। खाने पीने में ऐसा बताते हैं लोग, घरों में यूजुअली देखते भी हैं बहुत सारी जो पारंपरिक क्रियाओं के तहत, मतलब सादा खाना बनेगा, उसमें तेल मसाला छौंका बघारा नहीं बनेगा। ठीक है, ये अच्छी प्रैक्टिस है, ये कोई ख़राब चीज़ नहीं है, ये आपके हेल्थ को जल्दी सुधारने में, आपकी समस्याओं को और ज़्यादा ख़राब होने से बचाने में इसमें हेल्प करता है। और कहीं ना कहीं आपको जो इचिंग होती है, पेन होता है, इन सब में थोड़ा सुधार मिलता है, इजीली आप वो खाना खा पाते हैं। बहुत ज़्यादा तीखा मसालेदार आप खा ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने खुद खा के देखा है, गले में दर्द होता है, खाना नीचे जाता है तो वो उसमें सारा लगता है गले में, और जो फूड पाइप होती है, इनका ध्यान रखना चाहिए। और एक चीज़ का देखिए और ध्यान रखना चाहिए, कंटामिनेबल डिसीज़ है, आप इसे स्प्रेड होने से बचाएं, दूसरों से बचाएं, कपड़े वगैरह डिसइंफेक्टेंट में या गर्म पानी करके उसको धुलें ताकि वो और आगे स्प्रेड ना करें। और इसके अलावा एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये एक संक्रामक बीमारी है जिसको हम अपने पारंपरिक तरीकों से भी ठीक करते हैं और उससे भी ठीक हो जाते हैं, 90% केसेस आज भी पारंपरिक तरीकों से ही ठीक होते हैं। बट यदि कोई ऐसी गंभीर कंडीशन बन रही है, बुखार बहुत तेज आ रहा है, कभी कभी हेलुसिनेशन जैसी भी कंडीशन हो जाती है जिसको गांव में देख करके लोग ये कहते हैं माताजी ने रौद्र रूप ले लिया है, ठीक है माताजी ने रौद्र रूप ले लिया है, आप अपनी पारंपरिक चीज़ें कर रहे हैं, बट अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है तो आप चिकित्सा विज्ञान का अवश्य सहारा लें, इससे आपकी समस्याएँ कम रहेंगी, आपकी बीमारी और ज़्यादा भयावह नहीं होगी। और इसके कुछ एंटीवायरल्स भी होते हैं, दवाइयाँ भी होती हैं जिनको दिया जाता है, जैसे कुछ लोगों जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, जैसे कि सविता जी के प्रश्न पे ये बात रह गई थी कि अगर किसी की इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है तो उसको एक से ज़्यादा बार भी ये संक्रमण हो सकता है। बट यदि मान लीजिए कि आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, आपको ये संक्रमण है, नहीं जल्दी ठीक हो रहा है, सिम्टम्स नहीं रिकवर हो रहे हैं, पेनफुल बहुत ज़्यादा है, तो आप दवाइयाँ स्टार्ट करिए। दूसरी चीज़, जैसे ऐसे पेशेंट्स को फोर्स किया जाता है कि आप घर से बाहर नहीं निकलिए और ऐसी चीज़ें हैं, देखिए अगर आपको कोई ऐसा बहुत ज़रूरी काम है जो आपके बिना नहीं हो सकता है तो आप घर से बाहर भी निकल सकते हैं। मैं डे फर्स्ट से, पहले दिन से ही मैं बाहर निकल रहा हूँ, मैं हर जगह आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, हाँ प्रिकॉशंस ले रहा हूँ, दूसरों को बचाने की सारी जो भी प्रिकॉशंस होते हैं, सैनिटाइजेशन, मास्क का प्रयोग, उनसे दूरी बना करके रखना, उनके शरीर को टच ना करना या उन्हें स्वयं को टच ना करने देना, इन सभी चीज़ों का मैं पालन कर रहा हूँ। बट मैं डे वन से ही मैं हर जगह जा रहा हूँ, हर जगह से आ रहा हूँ, अपना काम भी कर रहा हूँ, पेशेंट्स भी देख रहा हूँ, दूसरे पेशेंट्स को भी हमने देखा, तमाम पेशेंट्स को एडवाइस भी किया इस 3-4 दिनों के भीतर। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि मतलब कंडीशन अगर वर्स्ट हो रही है, ख़राब हो रही है, तो भी आप उसको पारंपरिक तरीकों से ही ठीक ना करते हुए चिकित्सा विज्ञान का सहारा लीजिए और इससे आपकी समस्या बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होगी।
1: ऑल राइट, थैंक यू सो मच सर। और एक बात आपने बिल्कुल सही कही, जो बीमार है उसे खास ख्याल रखना चाहिए कि उसकी वजह से कोई और बीमार ना हो। प्लस जो उनके साथ रह रहे हैं, जो उनकी मदद कर रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं, वो भी कोशिश करें कि आप भी सैनिटाइज करें अपने हाथ पैरों को, मास्क का इस्तेमाल करें और उन कपड़ों का इस्तेमाल बाहर ना करें जिन्हें आप अंदर पहन के जा रहे हैं, किसी ऐसे सिचुएशन में है जो बीमारी एक दूसरे से फैल सकती है।
0: जी
1: एंड ओके, आज की जानकारी अच्छी थी और ये बात लिखी हमारे धर्मेंद्र जी ने, बहुत बहुत शुक्रिया। कैलाशनाथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया
0: जी।
1: फिलहाल के लिए घड़ी ने इशारा कर दिया है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे लिसनर्स ने आज बहुत ही अच्छा हमको चैट बॉक्स में हमसे तमाम बातें की, बहुत ही अच्छा लगा। और इसी के साथ साथ राजस्थान की धरती से मेरे एक छोटे से जो अभिवादन था उसका जी बिल्कुल उसका जवाब भी आया है महेंद्र जी की तरफ से, खम्मा गणिसा। तो बड़ा अच्छा लगा ये देख करके, इतनी दूर से भी लोग हमें सुन रहे हैं। ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए और हमें हमारे साथ हमारे अपनी समस्याओं में जो है इस पे हमसे अपना जो तकलीफें हैं उनको डिस्कस करके इस पे समाधान भी आप प्राप्त करते रहिए। एक और प्रश्न आया है कि गांव में फुफकार हो जाता है, इसका उपाय क्या है? देखिए यूजुअली ये जो समस्या मैंने देखी है ये एक तरह की एलर्जिक रिएक्शन होता है, एलर्जिक ट्रिगर होता है। ऐसे कंडीशन में एक एंटी एलर्जिक, जिसको आप सिट्रिजिन, लिवोसिट्रिजिन या मोंटेलुकास्ट, मोंटीना एल वगैरह के नाम से जानते हैं, और एक स्टेरॉयड जिसको आप डेकाडान या बेटनिसॉल जैसे नामों से जानते हैं, ये दवाइयाँ 24 घंटे में एक बार देने से इसके फुफकार के जो सिम्टम्स हैं उसमें थोड़ा सा आराम मिलता है।
1: ऑल राइट, घड़ी ने कर दिया इशारा कि वक्त है अब आपसे विदा लेने का, फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक बढ़िया से टॉपिक के साथ। अब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान 89.6 FM, यही गोंडा शहर की धड़कन पर आपकी आर चुनौती और आपके हेल्थ एक्सपर्ट राहुल विश्वकर्मा जी अभी तक आपके साथ मौजूद थे। कल मेरी मुलाकात आपसे वापस होने वाली है, सुनना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए।
6: अरे और तो सुनते तो जाइए, पांचवा इन्फेक्शन प्रिवेंशन यानी संक्रमण से सुरक्षा NBSU में। साफ सफाई, हाथ धोने के नियम, उपकरणों का स्टेरिलाइजेशन, लाइन नली की सुरक्षित हैंडलिंग, सब सख्ती से पालन किया जाता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण, माता पिता की काउंसलिंग, जिसमें कि परिवार को बताया जाता है कि बच्चे की हालत, कौन सा इलाज हो रहा है, आगे क्या क्या होना है, घर पर क्या सावधानी रखनी है और कौन सा डेंजर साइन दिखे तो तुरंत लौटना है। और सबसे आखिरी, अगर जरूरत हो तो रेफरल, यदि बच्चा गंभीर हो NBSU पहले बच्चे को स्थिर करता है फिर SNCU को रेफर करता है। 108 और 102 एम्बुलेंस बुलाकर सुरक्षित ट्रांसपोर्ट करता है।
7: तो भैया आपने इतना कुछ तो बता दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैसे पहचाने कि बच्चे को तुरंत NBSU ले जाना चाहिए।
6: देखिए आकांक्षा जी,
7: जी
6: नवजात बच्चा अपनी परेशानी बोल नहीं पाता, वो तो बस संकेत देता है।
7: जी
6: देखो, अगर बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है या थोड़ा सा पीकर छोड़ दे, ये खतरे की घंटी है। अगर सांस तेज चल रही है, छाती धस रही है या बच्चा हाँफ रहा है, एक मिनट भी मत रुकिए। शरीर अचानक ठंडा हो जाए या तेज बुखार हो, ये भी गंभीर संकेत है। कुछ बच्चे बिल्कुल सुस्त पड़ जाते हैं, जगाने पर भी ना जागे, तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। अगर झटके आ जाए, पीलिया बहुत बढ़ जाए या शरीर नीला पड़ा दिखे तो सीधा NBSU। और हाँ, नाभि में मवाद, सूजन या बदबू आए तो समझो संक्रमण है। देर मत करो RJ दीदी
7: जी।
6: खास कर कम वजन वाले बच्चे, 2.5 किलो से कम, इन्हें जन्म के 48

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला, होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं, और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड।
1: Now you're listening 11.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन, आपका होस्ट एंड दोस्त आरजी अदनान मौजूद है आपके साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। शो चल रहा है गोधूली और आप सुन रहे हैं रेडियो 11.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। सो हर रोज एक ऐसे मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं जिनके बारे में हमको जानने को मिलता है। यूं तो वे एक पर्सनैलिटी होते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी से जुड़े हुए कई ऐसे पहलू होते हैं जो शायद हमको नहीं पता होता है, लेकिन इस टॉक शो के जरिए हम जानते हैं उनकी जिंदगी से जुड़े हुए कई सारे ऐसे पहलुओं के बारे में जो शायद वो फर्स्ट टाइम यहाँ पे हमारे साथ शेयर करते हैं।

0: अरे राम हो, बहुत गरम है दादा, जान परत है कि परनवा ही निकल जाई। इतना गर्मी इतना गर्मी, एक तो हमार जूनी चटपटो ही ना, ये ठंडवा जलाए के और चुप्पे वल्ली रहा थी दोपहरिया में, और हम दोपहरिया में आई थे। वो चाची चाची हो
1: का है दुलारी, आ जाओ करो, हम दरवाजा कब्बो बंद नाई करी थी। यह
0: कचवाई दी तू हमें चाची, पल्ला बंद कर ले तू।
1: पल्ला कहाँ बंद, कुंडिया नाई दिए रहा।
0: अब ये तू ठंडवा चलाए के आराम से सूती रहा थी।
1: का करे, इतने दोपहरी है, इतना धूप है, घाम है।
0: तब देखो हमने दोपहरी में टाइम मिला था, हम वही टाइम आई।
1: तो चलो तू चाहे जब आओ, तुम्हार घर है। हम कब कही थे कि तू जो संझिया का हो या रतिया का हो।
0: हाँ तभी जो है पल्लवा का है बंद कर रहा है, तू दूजो कुकुर पाले हूँ।
1: तब कुकुर है तो कहाँ जाए, वो तो ठंड पाए के यहाँ बैठे रहा थे, कहाँ जाए बेचारे।
0: अब जैसे हम पल्लवा गुटकाएं थे, कुल भौं भौं भौं भौं शुरू कर दी।
1: हाँ तो भाई देखो, कोई घर में घुसी हो तो जब ये सब पहरेदार हो ना घर के। हाँ तो घुसे ना ही दे थे, यह सब पाला है कि चलो भाई कुड्डी उंडी डाई लगाई थे, सब रखवाली कर रहे थे, ज्यादा ना ही हो तू।
0: हाँ
1: हाँ
0: तो वल्ली रहू का सूती रहू।
1: हाँ तनिक आँख लग गई रहा है, तो थका लगा है ना कल रहा है।
0: अच्छा कल वहाँ पूजा उजा रहा, भंडारा ठाने रही।
1: हाँ तो है भंडारा का, हर बार भंडारा हो रहा, मंगल मंगल भंडारा होता है।
0: हाँ हाँ मंगलवार जो बड़का मंगलवार पड़ा है।
1: हाँ तो तनी थका लाग जाते है, दो दिन हुई गए।
0: हाँ
1: हाँ वह हाँ। तो ले गए तनी का, उनका घर में काम है, काम है का करी।
0: तो पल्लवा हम बंद कर दिया है और हम तनी वल्ली जाई।
1: अब तू काहे उल्ली हो भाई,
0: हम वाली जाई तनी ठंडवा तेज कह दो, और तेज नहीं होता।
1: पीछे तो अबे सब लाइन लगाए कि बिटिया आई हैं।
0: हाँ बिटिया तो आई सकत थी, आई जा।
2: ए चाची ए चाची,
1: देखो हम का कह रहा है।
2: ए चाची जल्दी ला पानी, बहुत तेज प्यास लागे, बहुत तेज धूप है, साइन है।
0: घमावा से आई ही कुल, देखो मरी जाती।
1: देखो अब आई है, अबे पानी दई ना दियो, इन्हें सब बीमार पड़ जाई हैं।
2: बहुत तेज प्यास लागे जाती।
1: ना ही बहनी धूप से आई, तनी ठंडा ही लो। देखो इससे चलत है ना, बैठो एकदम से आई के धूप से पानी ना ही पिया जाते है।
0: हाँ बहनी पूरा ही कही था।
1: हाँ
0: पूरा कही थे। और ये बहनी
2: लागे तब क्या करी।
1: अरे अब देत है भाई, ऐसे ना ही पानी बनिया ना पियो, बैठो बे गुड़ दे थे भेली दे
0: बैठो मुंडा बना हुई।
2: ठीक है तो ठंडवा चलाए तो तनी सा ठंडा आ जाए।
0: हे चाची ठंडवा
1: तनी चलत है
0: भाई, तनी ठंडवा तेज कह दो। और
1: अच्छा अच्छा तो
0: एक बेनवा तेज कह दो, बेनवा।
1: हाँ ठीक है कह दिया,
0: पंखवा तनी तेज कह दो। हाँ देखो बहनी हमारे कपड़वा झुराए ला।
1: अब देखो इनकी सहेली बहेली आवत हुई है।
0: हाँ और ये क्या है, ये चाची वो पतरका आए गई आज।
1: वहा तो कही थे कि तोहरे पीछे तो बस लाइन लगी रही है।
2: तो राम राम चाची।
0: राम राम बहनी, राम राम। कहा हाल बहनी?
2: सब ठीक है चाची, अपन बताओ।
0: हम तो मजे महन।
2: अच्छा वही आए रहे दीदिया के साथ है।
0: हाँ बहनी तू कैसे सन की मटकी करा तू, ये क्या हुई?
2: तब से कही था चाची इनसे राम राम कह लियो तो ये। हाँ। जानी नहीं पावा थी,
1: शर्मा थी।
0: का हो बहनी तुहार का नाम है?
2: हमार दीदी हो चाची।
0: ये तुहार दीदी हो ये?
2: हाँ
0: तो ये जो है क्रिश्चियानी का तू से?
2: ना ना चाची पहली बार आए ही ना, तो तनी संकोचात थी।
0: का है बहनी से कुछ आ थू?
2: कुछ नहीं चाची, बस ऐसे ही मैं आपसे पहली बार मिल रही ना इसलिए।
1: ये कहाँ से आई बहनी?
2: अरे चाची बहरे पढ़े गई रहा।
0: दिल्ली तो आई गई रहा?
2: ना ना चाची।
0: हाँ
2: दिल्ली ना,
0: मैनीताल
2: ना ना, लखनऊ गई रहा।
0: अच्छा नखलऊआ,
1: नखलऊ।
2: दिल्ली दूर पड़ जाते है ना, तो पापा तनी कहीं तनी पास में पढ़ो
1: तो। दिल्ली दिल्ली महिया जो है बड़ी गर्मी पड़ी,
0: बहुत गर्म
1: है कि बड़ा गर्म हो दिल्ली।
0: और ये चाची जानियो एक बतिया।
1: हाँ
0: ना जानियो सब
1: कोरोना फैल गया,
0: कोरोना फिर आएगा कोरोना।
2: बे सही चाची।
0: हाँ हम
2: फैल गया। ये न्यूज कहाँ पायो?
1: ये डरुआ माँ सुनाई दिया रहा है, समाचार में सुना रहा है कि दिल्ली फिर से कोरोना आएगा है। बड़ी चिंता लग गई, अब देखो हमारे गाँव तक पहुँच जाए।
0: बहनी अब फिर से मुहा बांध लो सब।
1: अब मुहा हुआ
2: का, इतनी गर्मी है चाची, वैसे गर्मी सांस फूला करते हैं। चलो मास्क लगाओ।
0: अरे तो कौन चीज बहनी?
2: मास्क लगाओ।
1: मास्क कहा जाता है, मुहा मसक्का लगाए लो, मसक्का
0: मसक्का।
2: अरे जो कहा थे मुहा बांध लियो तो।
0: हाँ।
2: अरे दुपट्टा वट्टा सब बांध देते है।
0: हाँ।
2: लेकिन ये बढ़िया है, इसे दुई और पट्टी लगाते, काने मजा लियो, बस सिंपल।
1: वो है जो पहले
0: मसक्का वा
1: पहले नाई गांव गांव में बटा रहा
0: है। हाँ हाँ
1: अस्पतालिया वाले आए
0: हाँ हाँ हाँ हमारे लगे धरा है दुठो।
1: हाँ तो
0: मुंह बंधना मुंह बंधना
1: भाई तो इतना कुछ नहीं है लेकिन भाई अब अगर ज्यादा फैली
0: हाँ
1: तो एहतियात से हमें रहे पड़ी
0: रहे पड़ी।
1: हाँ
0: पूरे कहूँ चाची पूरे कहूँ। ए पतर का
3: कहा चाची
0: आज कहे चुपान बैठी हूँ तेरे को बरामी उरामी है।
3: अरे चाची हमारा मुड़िया पिरात
0: लियो उनके मुड़िया पिरा इलाक
3: यही कहे बहनी पता नहीं कहा
0: घमावा में जाए जाए आम तुरंत हुई
3: ना चाची दुई चार थोड़ी था लेकिन पता नहीं काहे पिरा
0: बहनी पतर का तू त्योरा क्या गये आम चोरावे
3: नहीं नहीं उनके यहाँ ना दूसरे के यहाँ गए
0: चोराई
1: चोराई है जरूर
2: चाची कत्ती ईमानदार बतावा थी कि गन नहा चोरावे लेकिन चाची ही ना गए
0: यही तवरनिया तुहार
1: करनी
3: बनावत
0: आज ना ही आज वही आज उनके यहाँ कहूँ हम गई ही वही।
2: अच्छा चाची पूछी ना शिवानी अर्चना अर्चना कहे
0: कहे नहीं आई
2: चाची उनके सबके इतना गर्मी में तहारत ही
0: और शिवनिया कहाँ गए
2: वही बताई थे चाची उनका फुर्सत ना है तहारत से और रह गई अब बेड पर।
0: हाँ
1: विराम हो गई है
2: अब उठे एकदम नाई है उनके
0: लाख घाम
2: लू लाग गए चाची
0: लाग गए
1: यहाँ से तो हम सबसे कहे थे कि देखो अगर ज्यादा जरूरी ना हो तो घर से बाहर निकल जाओ
0: लू का होते लू
1: लू लू गरम हवा जो चला था लपट
0: लपटिया घमास घमास
1: गरम हवा।
0: हाँ तो यहाँ तोहरे लाग गए हम
3: ओक लागत है चाची यही लाग
0: तब तू कहे हम सबके चोराउ थू बहनी।
3: अरे वो चटनिया खाते रहो झररवा खाते
1: और सुनो अब जब तो के सारा पिरात है दर्द करत है तो के उपचार कर लो इसे नहीं घूमो है आज जो है घरे जायो।
3: हाँ चाची
1: तो खूब मतलब पना वना बना के पियो
3: चाची पिए दवाइयों
1: पियजिया पियजिया बहुत फायदा करता
0: हाँ यही स्थिति में पियजवा खूब खाओ।
1: हाँ पियजिया खा लो है सिरका विरका हो घर में की
3: हाँ, नहीं है, है, है चाची
1: ना हो तो हम दे
3: नहीं नहीं चाची है
1: सिरकवा प्याज खाए रहो फायदा करत है लूकमा।
0: ये बहनी पियजिया जो होती नहीं लागे देती
2: लेकिन चाची वो हम सिरकवा पिए थे ना तो हमने दतों में लागत है
0: तो हाथ दतवा बेकार है
2: नहीं चाची बेकार नहीं है
0: तब
1: दातुन किया करो नीमे की निबिया की
0: ये बहनी अगर
2: बहुत देर लागत है चाची
1: तो देर लागत
0: ये बहनी देर के लिए चाची चाची सुनी लो।
1: हाँ
0: देखो जेके दांत के पीरा हुए बहुत पीरा थोए दांत ते एक काम करे थोड़े फिटकरी पनिया में घोर लो।
1: हाँ।
0: और वही से कह लो गरारा
1: बस
0: दर्दिया जुड़ता है गायब हो जाए
2: तो हमारे दर्द ना होते खाली पानी और मतलब बहुत ठंडा या बहुत गर्म ही लागत
0: तो ये बहनी हुए का फेम्फोडिटी। हाँ
2: ये बतावा
0: वही हमारे बगलियन कहा रही कि दतवा में यहाँ होएगा है।
3: अरे मतलब सेंसोरिटी सेंसोरिटी प्रॉब्लम होती
0: हाँ है। हाँ भाई यही पूरे कहते
2: बिठी बात
0: वही फेम्फोडिटी होएगा तू है
2: फेम्फोडिटी
3: यही तो हम कहे थे कौन नई बीमारी चाची
0: यहाँ है करो बहनी यहाँ पनिया लेके और मुहा में लिहा रहो तो आरी चिकाय जाई।
1: हाँ तो चलो ये फिट करी तो दतवा के लिए बहुत बढ़िया मुफीद दवा हो।
0: हाँ
1: अभी का करो पीस लो महीन महीन भूख लो सिला पर और उसमें तनिक हल्दी मिलाई लो और तनिक तेल मिलाई लो तनिक नून मिलाई लो और ऐसे ऐसे धीरे धीरे धीरे धीरे दातन पे मला करो और सब ये जो ठंडा गरम लागत है ना ये सब ठिकाए जाये।
2: ठीक चाची अब यही करबे तब ओकरे बाद फिर आइसक्रीम आइसक्रीम खाइबे
1: घरेलू दवा है खर पतवार वाली दवा ही है सब करे
0: जूते डॉक्टर क्या भागे के ना
1: चाहिए कि डॉक्टर
0: हाँ
1: पैसा ले और तो हाथ दूर
0: अब बहनी तुरंत भलवे भोंक दिया था।
1: हाँ सुइया
0: सुइया आसान है
1: सुइया
0: वो है महीनी भोंक दिन अब जाओ तू छटपटाओ
1: नहीं अब ज्यादा डॉक्टर वॉक्टर के चक्कर में ना पड़ो घर
0: तो पत्थर का।
3: हाँ चाची
0: कहूँ झराए ले तू बहनी
3: कोई मिलता ना चाची
0: ये देवरनियों झारत ही
3: बामा झारी ना पता कुछ और लगाए दे
0: लियो
3: उनके डर लागत है
2: जाओ इतना विश्वास ना है चाची इतना ना
3: चाची उनके ऊपर विश्वास हमका ना ही है।
0: सुना तू चाची
1: हाँ
0: का कहा थी कि पतरकवा कहूँ आओ नजरिया ना मार दे
1: पतरकक नजरिया लागी कोई का
0: पतरकक दूसरे नजर मार दे अब ये कहती तेवराइन हमें आओ नजर मार दे तेवराइन झारत ही हो।
1: अरे वैसे झूठे झारत झारत
0: हाँ
1: मुझे पता नहीं कहा पकड़ पकड़ पकड़ पकड़ किया करत फिर फोक देते है हमें तो लागत है वो सबका ऐसे बहलावत है
3: यही लिए डर लागत है उनसे ना करेंगे
1: कोई ना कराओ ये झाड़ फूक कुछ नहीं है और जो दवा होते है गाँव के घर की और वैदगी करो तनिक सब ठिकाए जा।
0: बहनी तुम्हार का नाम है?
2: संजना शर्मा।
0: संजना शर्मा तो कौने कक्षा में पढ़ा तू बहनी?
2: मेरा इस बार एमए प्रीवियस है, एमए फर्स्ट ईयर।
0: ई का बहनी होत है?
2: अरे चाची
1: एमए हाँ जानो 15-16।
0: हे चाची अब देख लो हम मैं ना कहे, अब कहा तू कि पहले ए बी होत है और कहा तू एम और ये
1: अब ऐसे चला
2: ना ना चाची ए बी के मतलब वो अलग होते ए बी सी डी जो याद किन जाते
0: हाँ।
2: और ई एमए के मतलब है मास्टर ऑफ आर्ट।
1: हाँ देखो बहनी बताए कि ना बताए
0: मास्टर पटकी है तू है आज।
2: अरे चाची
0: हाँ
2: कैसे तो सुन लेती चाची महान महान।
1: जानो 14-15 या 15-16 कहा जाता है।
0: बहनी कौन है कक्षा में हूँ 15 में पढ़ा थी।
2: अरे हाँ चाची आपकी समझ में वही समझ लीजिए कि 15 में ही पढ़ रहे हैं।
1: 15-16
0: अच्छा 15 में पढ़ा थी
1: चाहे 15 समझ लो चाहे
0: तो कितना पढ़ी बिटी वा
1: बस 16 तक होता है हम सुना जाते
2: हैं। अरे चाची पढ़ाई कभो अंत नहीं है
0: तो ये अतना पढ़ ले ही
2: जान तो
0: पगलाए जाई।
2: ना ना चाची ज्ञान बढ़ाते पगलाए के जाते पढ़ाई से जे बोर होते ते ही पगलाए हो जाई हम सब ना बोर
0: ही पगला बहनी हम नहीं हमारा जीना ही लागत है।
2: आप भी अपनी इस उम्र में भी पढ़ाई कर सकती हैं अगर
0: चाची
2: जानते हो तो आप पढ़ाई कर सकती हैं।
0: बहनी हमारा जीव ना ही लागत
1: है पढ़ाई दो ये हमारा बहुत खोपड़ी खा लेती है कुछ बोल ना पावत अगर एक अंग्रेजी हम बोल दिया तो ये समझ लो कि टांग खींच डाले थी।
0: तो बहनी जब हमारे समझ में ना आई तब इनके हम टंगिया रखी चाप
2: तो आप समझने की कोशिश तो एक बार करिए।
0: बहनी अब देखो अभी उल्टे बोली नहीं कहती कि तू यम ये माँ हो।
2: अरे वो उनको समझाने का आपका एक तरीका है कि वो आपको समझा रही है कि ये होता क्या
1: है। अंग्रेजी तो आवे चाहिए।

0: अंग्रेजी में हम का बोल दी?
1: अब अंग्रेजी सीख लो, जैसे संजना बहनी
2: जैसे तो कुछ बताना चाहती थे वो हम जवाब बता सके थे। कुछ कहा वो का कहीं ना हमें प्रधान जी
0: कहा रे वो हमें कहीं कि हे दुलारी अपन भैंसिया लेके चली जाओ नहीं तुम्हें बहुत मारब।
1: तो तू कह
2: दे तू
1: काटब
2: और कहीं से कतरे हो जाती
0: पटप
1: सटप सटप
0: सटप
2: माइंड योर लैंग्वेज
0: मांगे लैंग्वेज।
2: सुनिए चाची देखिए मेरी बहन को इतना नॉलेज है,
1: धीरे धीरे आई समझो।
0: हाँ बोलो।
2: हम तो फिलहाल यहाँ रहते नहीं है लेकिन रचना आपको अच्छे से बहुत कुछ समझा देगी और पढ़ा देगी, तो आप उससे पढ़ा करिए। चाची जुआ लागत है
0: आ, तो तू थोड़े थोड़े मैं बता अब कही हुए मांगे
2: नहीं माइंड
0: माइंड
2: योर
0: और
2: लैंग्वेज
1: लैंग्वेज लैंग्वेज
0: लैंग्वेज।
2: हाँ अब इकट्ठे बोलो माइंड योर लैंग्वेज
1: माइंड योर लैंग्वेज
0: माइंड और
1: लैंग्वेज
0: लैंग्वेज।
2: हाँ के मतलब हो जानती हूँ कहा चाची।
0: हाँ हाँ
2: जुआन संभाल के बात करो।
0: अच्छा ये भवा।
2: हाँ वही जो ना सब बोले
1: चलो हमरे
0: साथ। हाँ
1: यहाँ
0: हम उनका कही देवे जोर से
1: बस उनके चक्कर आ जाए।
0: हाँ
1: सुन के उनके चक्कर ना आ जाए तो जो कहे तो हम हार जाए।
0: तो उनके चक्कर आई वो बेहोश जब हुई तो उनका पानी ना डाले उनके ऊपर।
1: हाँ बिल्कुल नहीं
0: उनका परा रह जाए उसे
1: चक्कर आ जाए।
0: हाँ
1: संजना बहनी आई है तो एक ठो गनवा हो चाहिए।
0: हाँ इतना हाँ? दूर से नखलाऊ से पढ़ के आई है।
2: हाँ हाँ
0: अब फिर जाओ
2: मैं हम बहुत कुछ सुने कि आप बहुत अच्छा गाना गाती है हमको भी सुना
1: दीजिए। अरे आपकी गए
0: रहा अब भाई। हाँ
1: सुनो उमा कहते भंडारा।
0: हाँ
1: भंडारा में एक गाना बड़ा नीक बजत रहा है।
0: कौन
1: अब हम याद करें हम ढोलकिया उठा तो बजाओ हम गाय दे।
0: तो ढोलिया कहाँ पर तुहिया से आवे
1: ए पतरका तनी ऊपर चली जाओ ढोलिया ले जाओ। हाँ
0: हे पतरका।
2: हाँ चाची
0: दई ढोलिया ले वो बहनी।
2: हाँ हाँ चाची काहे ना लेबे
0: अब ये चाची तुम्हारे हथवा निकाय गो।
1: अरे हमार हथवा निकाय धका करी करवा हमार कमवा कौन करे। हाँ
0: नहीं अठाई कहूँ काटे वाटे रहू
1: वो तो ठिकाएगा है तनी थोड़ बहुत ठिकाएगा है लेकिन
0: हाँ।
1: चलत है काम का करी भाई
0: चलो गौरे ये ढोलिया ले आए देखो।
1: हाँ तो हम हनुमान जी का एक गाना सुना।
0: हाँ
1: हमें बड़ा नीक लगा तुम गायो।
0: हाँ
1: ऐसा लागत है कि जैसे एकदम पूरे गाना हो।
0: हाँ
1: तो चलो गा लिया जा। हा?

0: भजन बजत रहा है कि हम का बताई, हमका जुड़ते याद हुईगा तरी थोड़ बहुत जो हम याद किया।
1: हाँ।
0: जुड़ते याद हुईगा कि जो जौन चीज अपने मन का अच्छी लगे
2: हाँ
0: तो याद हुई जात है।
3: तो ये बताओ काकी, जहाँ जाई जहाँ देखी हुए का देखी, लेकिन तंबुआ ताने और खैकवा खवावत है।
0: हाँ, तो बड़ा पुण्य होत है।
3: हाँ
4: चाची, नोटिस
3: अब बहुत, हाँ, बहुत गरीब गरीब मने खाते
0: खाए चाहिए। देखो ये गरीबन के लिए होत
3: हाँ,
0: है।
3: हाँ, हाँ।
0: भंडारा, लेकिन भंडारा मतलब ये नहीं है सबे खाओ
3: सबे खाओ।
0: तो जैसे हम लोग खाए थे
3: हाँ।
0: तो चाहे पाँचे रुपया दे दान
3: हाँ।
0: देख चाहे दान
3: हाँ,
0: भंडारा खाएगी।
3: हमारे एक जनी ही वो कहता है कि जब भंडारा खाओ तो चाहे पाँचे रुपया दियो।
0: लेकिन देखा तोरनिया अतनी पन्नी लेके गई, अतनी पन्नी लेके गई। अब कहूँ कहा कि हमका चट्ठो पूरी दे दो कोई, अरे अब सबका खबावत है तो मांगे ना चाहिए।
3: नहीं नहीं,
0: अब जो जे ना दे तो गरियाय देते।
3: हाँ,
0: ये बुरी बात है,
3: ये तो बहुत गलत है।
4: तो चाची मैं जान लो पाप करती,
0: बहुत पाप कमावती।
3: और का ये कुल ना ही करे चाहिए, समय बिल्ली बांट के खाई लो।
0: बट जहाँ हम सुनी है ना, गए हम कहीं किला बुलाए नहीं तो बस चिल्ला चिल्ला उठ बचाए रही।
3: हाँ।
0: अरे पन्निया लाओ रे, अरे पन्निया लाओ रे, खनवा ले आए, आज खनवा ना बनी घर में।
3: अरे मोरी मुगिया,
4: गांव गांव कुल जान जाए चाची की आज इनके यहाँ खाना ना बनी,
0: खाना ना बनी, सब मांग ली है, चार जगह मांगे जाओ, कितना बुरा,
3: बहुत बुरा लागत है।
0: अब ऐसे जाओ भाई, बैठ के खाए लो एक आध पूरी।
3: तो हमारे संघरिया जनी कलिया रही ना काकी,
0: तू ज्यादा खाई ले रहो।
3: अरे ना कहो चाची, जो हमारे
0: बटवाझरे लाग
3: बगदार रहा। तो कलिया हमारे साथ एक जनी बाजारे में रही, एक जगह सुंदरकांड होत रहा, हम हूँ चली गई इनकी बैठ रहा भाई, कुछ सुनी ले कर पर जाए। तब जब निकरन तब देखें का कि हनुमान जी के मंदिरिया पहिया कढ़ी और चावल।
0: हाँ, ये बढ़िया।
3: तो वही कहा कि एक दू जनी तो कढ़ी चावल खा ली, दोनों में ले ली, अब एक जनी डब्बा भर के धई ली। और कहीं रास्ता में हमसे हम कहें की बड़ा सामान धरी डब्बा, कहीं एका लेके जायत है, अब घर का ये गए है गांव के, यहाँ ये खाए के ही है, अपना हम खाई लिया है। अब लड़के उनका यहाँ चावल डाल दे, भी कढ़ी चोरवा खवा दे।
0: अब तो कढ़ी चावल का नाम लियो ना, हमारे भूख जाग गई है।
3: अरे दादा हो,
0: हाँ हमारे मन कर रहा था कि कढ़ी चावल खा।
4: चाची तो नींद आवत
3: हमारे, तो बहनी हम सकरवे उठे ने 4 बजे टहल करे गए, और बाद फिर तमाम बाजी रहे।
0: सुनो एक नई तरीका की हम कढ़ी सीखे हैं।
3: वो कस गए
0: भंडरवा में गए रहा ना।
4: चाची तो चाची चाची हाँ। पहले खवाए दो फिर बताओ।
0: अरे खा लियो पहले, सुन लियो,
3: सुन ले पहले।
0: हाँ
4: ठीक है, सुना रहा चाची।
3: हाँ
0: देखो वो गए भंडारा में
3: हाँ।
0: तो वो कढ़ी चावल रहा है
3: हाँ।
0: और कढ़ी अब तू सोचो काहे की रही हुई, हम लोग तो फुलौरी उलौरी तो फुलौरी ना ही रहा है वो कढ़ी, वो कढ़ी रहा है पापड़ की। हाँ पापड़ जो भुना जाता है।
3: हाँ हाँ मुंगवा का है,
0: उर्दवा वाला मुंगवा वाला पापड़
3: है। वाह के कसके कढ़ी
0: का, इतनी नीक कढ़ी लागे।
3: ये मेरी मैया कसके हो,
4: हमें ना बताए चाची, अकेले चली गई उतना नया चीज।
0: अरे हमें ले गए तोहार लोटन चाचा, कहीं की चलो हमारे दोस्त किया आज भंडारा है और चलो हुआ खाए, तो हम कहा चलो देखा जाए। अरे तो अतनी
3: बताओ की कसके पापड़ बाग बनाए रही।
0: अब ये हम ना जाने थे कि हमें लगा कि पापड़ भून करके और जो है कढ़ी ना दही है, कढ़ी वाय दूध दूध गई थे दही
3: हाँ।
0: और बेसन का घोल रहा था
3: हाँ।
0: गुमा लगा थे भूज भूज के पापड़ डाल देना है,
3: तो पापड़वा खड़ा खड़ा
0: बूंदियों पड़ी रहा है, कहूँ कहूँ बूंदी पड़ी रहा है, पापड़ पड़े रहा है, इतनी नीक कढ़ी की का बताई हम।
4: तो चाची वो जब पापड़वा मन डाले तो पापड़वा तो गील होएगा, तो कैसे
0: तो बहुत नीक लागत रहा है, तो नीक लागत रहा है गील गील
4: जैसे दाल में रोटी ना,
0: बहुत बढ़िया लागत रहा है।
3: अमन फुलौरी उलौरी नहीं रहा है,
0: फुलौरी नहीं रहा है, कहूँ कहूँ बूंदी पड़ी रहा है।
3: अच्छा बूंदिया रहा है,
0: बूंदिया रहा है और पापड़वा रहा है, तनी नीक कढ़ी बनाए रहा है सबे। मन करी के लाओ इनसे पूछ ले दादा कैसे बनाए,
3: कैसे बनाए हो। हाँ पूछ लेती हूँ।
0: अरे लोटन चाचा तो जानती हूँ ना।
3: हाँ
0: कहा तुझसे खाए से मतलब है कि तुम तो हुआ रेसिपी पूछे चली गई हो कि कस बनत है,
3: तो कहे तू कि बनाई तो तू ना खवाई बाय।
0: अरे तब का करी उनके सामने हमारे कहाँ चलत है तुझे जनते।
4: हाँ चाची फिर कहूँ कहूँ चाची चुप्पो रह लेती, नहीं तो घर में तो चाची एक चलत है
0: गलबा तो चला था, लेकिन बाहर जो था फिर हम चुप पे रही थे कि
3: इज्जतिया ना बिलाए जाए, इज्जतिया ना बिलाए जाए,
0: सुना है अब तो। चलो आज हम ट्राई किया है,
3: ये बहनी रचना तो ठंडवा चलाए दो मॉडल बहुत में गर्मियों में बहनी।
4: ठीक है तारी, चलो मदद कर दी परोस के ले आई खाना।
0: तो जाओ आज हम पापड़ वाली कढ़ी बनावा है और चलो बैठ के खावा जाए।
3: हाँ चलो खावा, चलो बीरेक मार दो।
0: हाँ एक ठो ले लो बीरेक।
3: हाँ ठीक है।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
3: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
4: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
5: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
6: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
7: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
8: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
7: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
8: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
7: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज गोंडा।
9: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88404-3395-84-8840-3395-84। 88404-3395-84। अब सपने होंगे साकार।

0: बहनी बहुत नीक रहाई जो ने परसदवा जो खवाई है।
1: ये परसदवा नहीं हम कापी किया है, कापी कापी जाना तो
0: नहीं
1: खाई के आए रहन क्या असर है, मतलब कढ़िया ऐसे बनी हुई है।
0: हाँ
1: मैं सोच के फिर हम बनावा
0: बहुत बढ़िया बहुत नीक बनाये हुए।
1: हाँ पापड़ वाली कढ़ी
0: बहुत चटपट बनाई हुई बहुत चटपटा
1: तो
0: जब हमारी चटपटी चाची है वैसे चटपटा बनाई नहीं बहुत नीक लाग हमें चाची।
1: हाँ तो आज चाचा को बढ़िया लगा कहे
0: हाँ।
1: कि आज कढ़ी तो
2: उनका तो चाची सब चीजें अच्छा लागत हाँ। होई हम लोग स्वाद लेके बताई थे।
0: हाँ अरे अब चाचा हुए वो लोटन चाचा हुए उनका कहे ना नीक लगी कुछ बना के देते हैं चाची तो उन्हें नीक लगी।
1: अब असना ही है कब्बो कब्बो तो इतना बगदा जाते है की
0: हाँ
1: गाते ही ना तो तुहार बस खाली नौटंकी में तुहार मन लागत है।
0: हाँ
1: दुलारी पाई जाओ बस नौटंकी तो हर लोगन की चालू हो जाए वह मन लागत है खनवा मन नहीं लागत है।
0: अब दिए खिलो हम में अब जो है तू है लड़ाई में बाझा रहा था
1: जानी था ना।
0: हाँ
1: तो चलो पक्का दो ना हमें का करे
0: खे तो अदती है बोले वाली। और
1: तो मटरू की यहाँ शादी भाई है दुल्हन आई है ना विदा हुई के
0: मटरू की ब्याहवा हुई गवाना लड़कवा के
1: अरे हुआ नहीं रहा है अब तो दूसरी बार
0: अच्छा गवानवा भाई
1: गवानवाई है
0: गवानवा भाव हुई।
1: अब तू कह नहीं पहुँची रहा उनके यहाँ
0: हम नहीं पहुँचे ना चाची हमारे
2: हम गए ना
0: बहुत
2: चाची।
1: अच्छा पतोहिया कितना बढ़िया गनवा गाइस रहा है।
2: अरे चाची बढ़िया की अरे तनी सा और मतलब ऊपर गई थी तो ससुरा गुस्सा ही जा जन का हाथ रही
0: चाची कान
1: इतना बढ़िया गावत है
0: गवनवा के हमारे गनवा दुई लाइन आई आ दावत है
1: देखो
2: ये रचना हम क्या चाची हमें कुल याद
0: गाँव गाँव गाँव
1: एक
0: याद है।
1: तो
0: हो तुम्हें याद है

0: अगवा हमने ना ही याद कौन गाय सतनी गाय दो तो बहनी
1: अगवा तो ना याद चाची एक याद है जो महीना गाय रही
0: हाँ।
1: नहीं कि उनके जो बहुआ
0: हाँ।
1: आई रही
0: हाँ।
1: वो याद है
0: मटर रूप पतोहिया जो गाय से
1: गाँव गाँव वही काका पतोहिया
0: गाँव गाँव गाँव

0: जाने ना चाची हाँ। एक जनी रही मतलब गऊ एक रही कोई हम नौवा नए जाने थे उन्हें चाची रही वह कहे न पतोहवा से कि अरे नई नई आए हूँ तो तनी कुछ गाय सुनाओ। अब बताओ चाची उन्हें कुछ भाव भजन गाय देख चाहिए और एक का गाय भी ना सब ससुराल वालों के मुंह बनी
1: खूब हंसी लेकिन हम में भाई नीक लगा
2: मजा कर रही है
1: गाना तो गाना हो यार।
0: हाँ चाची अगर ऐसे मन भावन देखा जाए
3: ससुराल वाले को चेतावनी दे रही थी
1: और
3: मेरी कदर करना
2: बहुत बढ़िया भाई
1: तो बहुत नहीं पतोहिया पाए गए हैं और एक और कोनो गाना गाए से याद नहीं आवते रचना तू तो रहा हुआ एक और गाना गाई से रहा है बहुत नीक
0: ये तो नहीं
1: चाची हाँ हमें

0: अतना नीक नीक गावत रही।
1: हाँ। ए कहूं तो पेंसिल वेंसिल ना लिया रहो लिख डारो।
0: पेंसिल लेके कौन घर जावा जाता है?
1: अरे डालिन करो झोरवा में, इतना बड़ा झोरा लिया चली जाती हूँ।
0: तब अब हमें का पता कि वो बढ़िया बढ़िया
1: बड़ा नीक गाइस रहा।
2: एक ठू आओ चाची, हमरे याद है लेकिन ऊ ना गाइस रहा, वो जानते हो कैसे थोड़ा। एक ठू चाची गौनोहर में यहाँ बहनिया ना लेके आवत थी कुंडली, वो अपन एक ठू बड़ी बहन लेके आई रहा, ओके बड़े पापा बिटिया रही तो वो गाइस रहा। एक ठू गाना चाची
0: कनवा उनके बड़े
1: याद है।
2: हाँ चाची
1: याद है,
2: तोहे से तो सब सीखे है, नवेद के चक्कर सुने तो सब याद हो ही जाते है।
1: तो सुना दो गाय दो।

0: भाई बड़ा धूम धड़ाका से
1: और चाची पूरे शादी में हमें सबसे अच्छा फंक्शन यही लागत है जो भात वाला होता है।
0: हाँ
1: कि मनावत ही बहु लोग के सब मुंह देखा थे और बहु लोग का नया नया टास्क दिया जाता है।
2: करो करके दिखाओ।
0: हाँ कौन पूछा थे बहनी खाना बना ली थी तब धीरे से कहती हाँ बना ली। अरे बहनी गनोन आवत है कि नहीं आवत है अब बेचारो नहीं आवत तो फंस जाती। अब ऐसे नहीं कहे चाहे कि हाँ सब कुछ दे दो कि हाँ यहाँ सुनाई दो वहाँ सुनाई दो।
1: कोनो कोनो चाची खुपेचिन होती जान बुझ के ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछी है कि बेचारे घबराए जाए।
0: तो मैं देखो भाई चाहे पतोहिया हो चाहे बिटिया हो समझे चाहिए है ना।
3: हाँ सबके
0: पतोहिया है कि उनके मतलब इज्जत ले लो
3: और का।
0: लेकिन अपने गाँव में सब ज्यादा जैसा बतेराय जैसे लोग पहुंच जाए तो जान लो हुआ।
3: अरे छीछा लेदर हो जाए। हाँ छीछा लेदर हुआ हो जाए कहीं समझ लो। लेकिन अब कहाँ कहाँ जाए भैया कुछ कहाँ नहीं जा सकत है। अब जो हुआ था तो भैया देखा भाई पड़ी
0: तो वहाँ चलन है तब कहा किया जाए समाज हो तो।
3: हाँ हाँ
0: इस समाज का एक अंग हो।
3: हाँ
0: तो कोनो अच्छा है
3: तो कोनो बुरा है।
0: तो भाई बहुत आज मजा आवा
3: बड़ा पूरे सबके साथ है बड़ा मजा आवा।
1: सुन के हम थोड़ा घबराए गए हैं। हमारे सवाल के जवाब दे दो।
3: कौन सा बढ़िया हो
1: अगर कोई हमसे गावे कह दी तो गाना तो आवत है।
3: हाँ
1: अगर कोई कुछ मतलब डेकोरेशन वेकोरेशन वाला कुछ पूछी कि का कह लेती हूँ तो जवाब आवत है। लेकिन अगर कोई कहे कि खाना कैसे बनावे है
3: हाँ?
1: तो हमने बहुत दिक्कत हो जाए चाची हम कहा बताए हमें कुछ ना आवत है।
3: अरे सिखाई दीन जाई इतना ना परेशान हो सब सिखाई दीन जाई
1: पर हमें मन नहीं लगे तो चाची आज आप बताओ
0: खाना वाना बनावे ढंग होता है ना ये एक हिस्सा हो जीवन का और जिका खाना नहीं बनाओ का वो तो कर समझो कुछ नहीं आओ।
3: हाँ तो सीख ले हो। हाँ। मारी जाबो जहाँ जाबो तहाँ
0: कल के दिन दूसरे घरे जाइयो तो खाना तो बनावे पड़ी
3: और का देखो हमारे समय सब बनाई नहीं थे।
1: तो चाची वैसे तो हम रोज कॉलेज जाए थे तो संडे का आई आपके यहाँ खाना बनाए सीखे।
0: अब देखो आज हम तुका कढ़ी सिखाओ की नहीं सिखाओ।
3: हाँ बहु पपड़ा के पापड़ की कढ़ी
0: पापड़ वाली कढ़ी खायो कि नहीं खायो।
1: खाए चाची
0: कैसे बस सीख जाइयो धीरे धीरे परेशान होने जरूरत नहीं है। जब तक तुहार बिहार ठिकाई तब तक तू बहुत कुछ सीख जाइयो।
3: हाँ और का जब तक तुहार बिहार और ठनी तब तक सीख लो।
1: यही चटपटी चाची ने कहा जवाब देवे
3: चटपटी चाची है तुम्हें पारंगत कह दे
1: हमको भी सिखा दीजिएगा हमको भी सीख।
3: ये यहाँ पिटी वक्त सिखा दियो नखलाऊ से आई है।
0: हाँ तो नखलाऊ से आई हम कब कहे थे कि दिल्ली से आई है।
3: हाँ अब दिल्ली जाई हो
1: चाची हम लोग सिखाई दी
0: सदिया दिया है का दिल्ली में।
1: नहीं चाची अभी कहाँ भी हम पढ़ाई कर रहे हैं आप भी ऐसी बात कह देती हैं।
0: तो जाए तो पढ़बे करी बहनी जब लड़की जन्म पाए हो तो कहो न कहो तो जाए पढ़ी आए
3: और का जाए तो पढ़बे करी तब चला जाए घरे हम लोग।
0: हाँ तो
3: है ना बहुत देर होगा। हाँ। बहुत देर से हमारे लोग जो है
0: कह दो अपने श्रोताओं से कि अब भाई अब चले
3: हाँ भैया अब चले टाइम होगा फिर मिलवाए। हाँ तो ये जो है 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
0: तो इसके साथ सबका हम राम राम बोली
3: राम राम
1: राम।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ओ आर एस और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंपेन द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

0: हैं मोहब्बत के इस सफर से और आइए पहला गीत आपको सुनाते हैं मोहब्बत के नाम, ये प्यारा सा गीत, और मिलेंगे संगीत में अंतराल के तत्काल पश्चात। आप सुनते रहिए रेडियो ज्ञान स्लेट 9.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके थोड़ी सी और खास।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो, एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583546।
3: डिलीशियस
4: है ना, लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
3: और क्या क्या है खास?
4: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
3: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतराला रोड गोंडा, कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45।
5: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
6: मतलब
5: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
7: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या, शाम का सलाम कबूल करें आप इस्तकबाल आप सभी को। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है गोंडा मैसेज मसाला। ओल्ड इज गोल्ड के सेगमेंट वाला, जी हाँ, तो गोंडा मैसेज मसाला के इस ओल्ड इज गोल्ड के सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, इस्तकबाल है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे वहाँ प्रसन्न होंगे जी। और आज बात करते हैं मित्रता की, बात करते हैं यादों की, बात करते हैं माजी की। ज़िंदगी के कई सारे पहलुओं को छूते हुए आज हम चलेंगे और ऐसे पहलू जो हम सभी के जीवन का सच हैं, शायद हम सभी इनसे वावस्ता हैं, रूबरू हैं और हम सभी के साथ ज़िंदगी में ये चीज़ें सामने आती हैं। कभी देखिए तो लगता है कि मित्रता होती है किसी व्यक्ति से तो लगता है कि उसके जैसा दोस्त इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन जब कभी भी किन्हीं कारणों से वो संबंध नहीं रह जाते या यूं कहें कि कटुता आ जाती है तो हमको स्वयं पर तरस आता है कि यार किस इंसान से क्या उम्मीद कर बैठे हैं। बीती है उम्र, जख्म भी उतना हरा नहीं, बीती है उम्र जख्म भी उतना हरा नहीं, उतना हरा नहीं मगर अब तक भरा नहीं। यूं जिंदगी में लोग मिले कितने ही मगर, यूं जिंदगी में लोग मिले कितने ही मगर, पर यार तेरे जैसा कोई दूसरा नहीं। जी हाँ, जब हम जिंदगी में आते हैं तो हमको ये लगता है कि उनके जैसा कोई नहीं, और ये कहीं किसी ये बात बहुत हद तक सच भी है कि कोई किसी के जैसा नहीं हो सकता। और इंसान अपनी ज़िंदगी को जीता है साहब, मुस्कुराते हुए जीता है, लोगों को दिखाता है स्माइलिंग फेस, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जीवन में भी दुख होते हैं। आपने कभी जोकर को मुस्कुराते हुए देखा होगा, जोकर को मुस्कुराते हुए देख रहे हो, जोकर को मुस्कुराते हुए देख रहे हो, आंसू को धुन बनाते हुए देख रहे हो, जो चाहता है चीखना रो लेना सिसकना, जो चाहता है चीखना रो लेना सिसकना, महफिल में उसे गाते हुए देख रहे हो। तो जिसे आप महफिल में गाते हुए देख रहे हैं हो सकता है वो अंदर से रोना चाहता हो, लेकिन अपनी थकन को अपने दर्द को बयां करने की शायद हिम्मत नहीं कर पा रहा है। जी हाँ, आप सभी का स्वागत है, मेरे साथ अनोखी शर्मा जी हैं। हे, जी हाँ सबको एवरीवन, जी हाँ आपकी तरफ से हमने बोल दिया। और धर्मेश त्रिपाठी जी हमारे साथ उपस्थित है, हेलो एवरीवन जी, हेलो आपको भी। और ये क्या है, और फिर धर्मेंद्र मोहन जी हैं भाई, मनु सर जी गुड इवनिंग, शुभ संध्या आपको भी भाई, शुभ संध्या आपको भी। और अब चलते हैं, कैलाशनाथ जी मोतिहारी बिहार से हैं, प्रणाम करते हैं आपको। चलिए आपको सुनाते हैं प्यारा सा गीत और मिलते हैं संगीत में अंतराल के उस पार। सुनते रहिए और रेडियो का नस्ल 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारा सा नगमा कर रहा है आपकी प्रतीक्षा।

ऐ दिले नादान। आहा, लता मंगेशकर जी की बहुत ही प्यारी सी आवाज और जो ज़ाइलोफ़ोन बजता है इसके साथ, आहा सोने पे सुहागा। मतलब दिल करता है कि ये गीत बजता ही जाए और हम सुनते ही जाएं। वास्तव में कहा गया कि लता मंगेशकर होना शायद अब मुश्किल होगा, लगता ही है। और सविता शास्त्री जी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। शुभ संध्या सर जी, चरण स्पर्श आपको। स्वास्थ्य कैसा है आपका ये बताइए। सुना था कि कुछ मौसम ने प्रभावित किया है, अब आप कैसी हैं? ऐ दिले नादान, मतलब इंसान अपने माजी से, अपने बीते हुए कल से छुटकारा नहीं पा रहा है। पंक्तियां याद आती हैं मुझको कि आज फिर से वही कैफियत है, आज फिर याद तुम आ रहे हो। आज फिर से वही कैफियत है, आज फिर याद तुम आ रहे हो। मन के सारे जख्म लग रहा यूं, इनमें कोई नमक घुल गया है। मतलब जब याद आ रहे हैं तो वो बीते हुए पल थोड़ा सा रुलाते हैं, जैसे जख्म पर कोई नमक छिड़क दे। मन के सारे जख्म लग रहा यूं, इनमें कोई नमक घुल गया है। एक कल सा सहेजा जो आंसू, आज बारिश के संग घुल गया है। गौर से देखते हैं हथेली, तुम नजर ही नहीं आ रहे हो। आज फिर से वही कैफियत है, आज फिर याद तुम आ रहे हो। अगली पंक्ति है कि प्राप्ति की लालसा प्रेम कब है। तो प्रेम में ये कहा है कि हम पाकर रहेंगे एक दूसरे को। प्राप्ति की लालसा प्रेम कब है, फूल तो टूटकर भी महकता। अब देखिए, अगर हम बात फूल की करें तो वो टूटकर भी महकता है। डाली में लगा हुआ है तो भी महकेगा, और अगर वो डाली से लगा हुआ नहीं है तो भी महकेगा। हम अपने सुख के लिए फूल को तोड़ लेते हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये अनुचित होता है, लेकिन चूंकि उसको बिखर जाना है, खिलेगा, अगर हम नहीं भी तोड़ेंगे तो वो शाम तक मुरझा जाना है। तो इसीलिए पुष्प को हमेशा चुना जाता है, फूल कभी तोड़ा नहीं जाता। मतलब फूल के लिए चुनने शब्द का इस्तेमाल करते हैं। प्राप्ति की लालसा प्रेम कब है, फूल तो टूटकर भी महकता। तन युगन गान को मिल सके ना, हम आपस में शरीर से नहीं मिल सके, मन पखावज की धुन पे थिरकता। लेकिन मन हमारे कभी एक दूसरे से अलग हुए ही नहीं। तार वीणा के झंकृत हुए हैं, क्या कहीं बैठकर गा रहे हो। आज फिर से वही कैफियत है, आज फिर याद तुम आ रहे हो। जी हाँ, आज आप पुनः याद आ रहे हैं। तो आइए आपको सुनाते हैं एक प्यारा सा नगमा। भाई, लता जी की आवाज़ में आपने दो गीत सुने। अब चलते हैं कायनाती गले के मालिक मोहम्मद रफ़ी साहब की तरफ, और आपको सुनाते हैं रफ़ी जी के द्वारा गाया हुआ एक बहुत ही खूबसूरत नगमा जो कर रहा है आपकी प्रतीक्षा।

जी हाँ, ये 70 से लेकर 90 के दशक के जो बहुत पॉपुलर गीत जो लोगों की जुबान पर चढ़कर बोले वो आपने सुने। जिंदगी है, और अगर हम मध्यम वर्ग के लोगों की बात करें तो जिंदगी लगभग लगभग

एक सी होती है। सुबह ही सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना, अगर आपने वो दौर देखा होगा, एक नल होता था, तब सबके घर में हैंडपंप नहीं होते थे, सरकारी नल होता था, लोग वहाँ से पानी भरते थे, कुआं होता था। अब तो खैर वो दौर नहीं रहा। सुबह ही सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना, फिल्मी गीतों को धार के साथ गुनगुनाना। इंसान काम करता रहता था और हंसता रहता था, मुस्कुराता था। दफ्तर में बैठकर यही सोचते रह जाना कि शाम को उस घर में वापस न जाना पड़े। दफ्तर में बैठकर यही सोचते रह जाना कि शाम को उस घर में वापस न जाना पड़े, जहाँ जहाँ माँ खांसती हुई मिलेगी, मैं दवाई नहीं ला पाऊँगा, बच्चों के टूटे खिलौनों को कितनी बार जोड़ पाऊँगा, बीवी की फटी साड़ी में से झांकेंगे सपने, बीवी की फटी साड़ी में से झांकेंगे सपने, आखिर वही तो हैं अपने, अरे भले ही हर दिन बोझ है उधार है, अरे भले ही हर दिन बोझ है उधार है, तू जैसी भी है जिंदगी, मुझे तुझसे प्यार है। जो भी ईश्वर ने आपको जीवन दिया, अगर आप जिंदगी से मोहब्बत करते हैं तो समझिए आपको थैंकफुल होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए उस ऊपर वाले के लिए जिसने आपको मानव का जीवन दिया। 84 लाख प्रकार के जीव इस धरती पर हैं और मनुष्य का शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है। बाबा तुलसी लिखते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। देवताओं को भी दुर्लभ है ये शरीर जो हमें मिला है, इंसान को मिला है। दुनिया का इकलौता प्राणी मनुष्य ऐसा है जो हंस सकता है, बाकी दुनिया में आपने किसी भी प्राणी को हंसते हुए आप नहीं पाएंगे। कुत्ते को, गधे को, हाथी को, शेर को, कहीं भी देखिए आप, मनुष्य के अलावा कोई हंस नहीं सकता। हंसी वह वरदान है जो विधाता ने केवल और केवल इंसान को दिया। और दूसरी जो खास बात दी, मनुष्य ही इकलौता ऐसा प्राणी है 84 लाख प्रकार के जीवों में जो अपने अंगूठे को अपनी तर्जनी से मिला सकता है। वनमानुष से हम मानुष बने, अगर ऐसा हम साइंटिफिकली भी माने, तो वनमानुष हर वो काम करता है जो मनुष्य कर सकता है, एक काम नहीं कर सकता। वो अपनी तर्जनी उंगली को अपने अंगूठे से मिला नहीं सकता। यानी इंसान ने जब पेन पकड़ना सीखा, पेंसिल पकड़ी, जब उसने कूची सी बनानी आई, जब उसने चित्रकारी की, तो वो इंसान बना। तो ऐसी स्थिति में बड़े मुश्किल से इंसान का शरीर मिला, और वहाँ पर तो हमको थैंकफुल होना चाहिए कि ठीक है, राजी हूँ मैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। अगर हम ईश्वर की खुशी में, जो हो रहा है वो उसकी मर्जी है और जो कुछ उसकी मर्जी का होता है वो अच्छा होता है, अगर ये मान लें तो शायद जिंदगी आसान हो सकती है। कोई उस पेड़ से सीखे मुसीबत में खड़े रहना, कोई उस पेड़ से सीखे मुसीबत में खड़े रहना, कि जिसने बाढ़ के पानी में है सीखा अड़े रहना। मैं कितने ही बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ हूँ, मैं कितने ही बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ हूँ, बड़ा मुश्किल है दुनिया में बड़े होकर बड़े होना। जी हाँ, मैं बहुत से ऐसे लोग को जानता हूँ जो बड़े हैं लेकिन नीचता है उनमें। इस दुनिया का सबसे कठिन काम है, अगर आप बड़े हैं तो आपके अंदर बड़प्पन होना चाहिए। और बड़प्पन कैसे आता है? बड़प्पन आता है जब आपके भीतर करुणा होती है, दया होती है, आप संबंधों को महत्व देते हैं। किसी कवि ने कहा कि जो बड़े होते हैं वो बड़े बड़ाई नहीं करें, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मोरे मोल। हीरा कभी नहीं कहता कि मैं लाख टके कहूँ, खाली बर्तन आवाज बहुत करता है साहब। खाली गिलास लीजिए और उस पर चम्मच से मारिए, देखिए आवाज दूर तक जाएगी, आवाज बहुत करेगा। उसी गिलास में आप पानी भर दीजिए और उसके बाद चम्मच से मारिए, आवाज कम हो जाएगी। जो अंदर से गंभीर व्यक्तित्व के लोग होते हैं वो बोलते कम हैं, क्योंकि वो अंदर से भरे हैं,
और जो अंदर से खोखले हैं वो बोलते ज़्यादा हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम क्या है। कभी लिखा किसी कवि ने कि कहां सुदामा बापुदो कृष्ण मिताई जोग, जे गरीब परहित करें ते रहीम बड़ लोग। बड़ा कौन है? जो दूसरे का हित करता है। जे गरीब परहित करें ते रहीम बड़ लोग, कहां सुदामा बापुदो, कहां तो सुदामा कृष्ण मिताई जो, क्या सुदामा और कृष्ण की कोई तुलना है? कहा जाता है कि घर में खाने को नहीं था, बच्चे भी, मतलब एक होता है कि इंसान पेट अगर न भरे तो फिर कुछ नहीं सूझता। तो सुदामा की पत्नी का नाम सुशीला, उन्होंने सुदामा की ओर देखा और कहा कि तुम तो कृष्ण के सखा हो, द्वारिकाधीश हैं, चले जाओ उनसे कुछ मांग लो, भिक्षा भी नहीं मिली है, बच्चे भूख से व्याकुल हैं। मन नहीं था उनका, कहा नहीं मांगेंगे नहीं, नहीं कि नहीं जाओ जाओ। बहुत कहा तो सुदामा जी गए, तुमने कहा बताओ घर में क्या है? तो कहा कि ये चावल है थोड़ा सा। तो कहा ठीक है इसको रख दो, क्योंकि किसी के घर जाया जाता है तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, जा रहे हमारे पास जो है। तो पत्नी ने कहा कि इसमें थोड़ा सा निकाल लेते हैं, बच्चों को के लिए कुछ बना देंगे चावल का। तो नहीं नहीं, उन्होंने कहा नहीं, जितना है उतना मैं पूरा उनको दूंगा। पोटली बांधी चावल की और चल पड़े। रास्ते में नदी है, नदी को पार करना है, तो केवट, केवट के रूप में कहा जाता है कि स्वयं भगवान कृष्ण थे। तो नाव पार कराने के लिए कहा, तो उसने कहा भाई कुछ उतराई हम लेंगे आपसे। सुदामा ने कहा कि उतराई देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। उनका कोई बात नहीं है, गठरी में आप जो रखे हुए हैं इनमें से थोड़ा सा हमको दे दीजिएगा। उन्होंने कहा नहीं, ये इतना ही मेरे पास है और मैं अपने मित्र के पास जा रहा हूं और पूरा उसे दूंगा। अब स्थिति यह है कि कपड़े फटे पुराने हैं। आप सभी को ये कथा पता है। और जब वो पहुंचे तो द्वारपाल ने आकर बताया कि कोई आया है और कह रहा है कि सुदामा है, आपका मित्र है। नरोत्तम दास जी का बहुत बढ़िया वर्णन है, उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण ने सुदामा को गले से लगाया, दौड़ते हुए गए अपने सिंहासन पर उन्हें बिठाया। और नरोत्तम दास जी लिखते हैं कि ऐसे बेहाल बेवाइन सो पुन कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम आए तैन कि तय दिन खोए। भाव देखिएगा कि देखी सुदामा की दीन दशा।

सो पग धोए। परात में पानी रखा था, वो हाथ में नहीं आया। आंसू से सुदामा के पैर धुल दिए। देखा सुदामा का ललाट तो सुदामा के मस्तक पर लिखा हुआ था श्री छय, यानी आपके पास लक्ष्मी कभी टिकेंगी नहीं। लगा कि यार ये तो विधि का लिखा हुआ है, क्या करें, मिटाल नहीं सकते। बस उन्होंने क्या किया, अक्षरों को उलट दिया। श्री छय मतलब आपके पास धन नहीं आएगा। उन्होंने लिख दिया यक्ष श्री। यक्ष का मतलब कुबेर, श्री मतलब लक्ष्मी, आपके नसीब में धन ही धन होगा। कहा भाभी ने क्या दिया है लाए हो, तो चावल उठाया और खाया। एक मुठा चावल खाया, फिर दूसरा उठाया, दो लोग की संपदा दे दी। तीसरी मुट्ठी उठाने चले तो रुक्मिणी ने मना किया, अरे दो लोग आपने दे दिए, कम से कम अपने लिए कुछ रखो। भगवान कृष्ण ने बहुत शानदार उत्तर दिया था। उन्होंने कहा था रुक्मिणी, इसने इसके पास जितना था उतना सब मुझे समर्पित कर दिया, और इसके बदले मेरे पास जितना है मैं सब इसे अगर नहीं समर्पित करता हूं तो ये मित्रता नहीं है। जी हाँ, तो ये मित्रता की परिभाषा है। आइए अब आपको ले चलते हैं, भाई आप सभी लोगों ने ब्रीथलेस सुना होगा, आइए आपको एक गीत सुनाते हैं जहां पर सांस ली ही नहीं गई, और शंकर महादेवन की प्यारी सी आवाज में ये प्यारा सा नगमा आप सभी के लिए।

हैं, उनमें सिर्फ आंसू हैं, उनमें सिर्फ दर्द की रंज की बातें हैं और फरियादें हैं। मेरा अब कोई नहीं, मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें हैं। डूब गया है दिल गम के अंधेरे में, मेरी सारी दुनिया है दर्द के घेरे में, मेरे सारे गीत ढल

जी हाँ, ब्रीथलेस, वास्तव में ब्रीथलेस। धर्मेंद्र मोहन जी हैं भाई, सर जी आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। चलिए भाई, आपका धन्यवाद स्वीकार करते हैं। हमारे साथ आशु मिश्री लखनऊ के साथ जुड़ चुकी हैं। प्रणाम, कैसी हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि अच्छी होंगी, बहुत दिन हो गया आपका दर्शन नहीं हुआ है। कभी बुधवार को कालीन प्रोग्राम में भी आपकी प्रतीक्षा रहेगी। अनिल दादा जी हैं चरण स्पर्श, और कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। अनोखी शर्मा जी हैं, जी हाँ, गुड इवनिंग, शुभ संध्या आपको भी। आशुमचा लिखती हैं, जिंदगी से मुझे कभी ज़्यादा शिकायतें नहीं थी, बस हर बार मैंने लोगों को अपना समझ लिया, जहाँ उम्मीद रखी वहीं से खाली हाथ लौटा, शिकायत करना चाहती थी पर सुनने वाला कोई नहीं था, इसलिए हर दर्द को अंदर ही अंदर दबा लिया। लोग कहते हैं मजबूत बनो, किसी ने ये नहीं पूछा कि टूट टूट कर मजबूत कैसे बनते हैं। वक्त के साथ समझ आ गया, जिंदगी से नहीं लोगों से शिकायत थी, अब शिकायतें कम हैं, खामोशी ज़्यादा है, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब नहीं होते और कुछ दर्द कह नहीं जाते। क्या बात है! और ये वही महसूस कर सकता है जिसने सपने को बिखर कर चकनाचूर होने के पश्चात देखा हो। सलाम है भाई, प्रणाम है आपकी इस योग्यता को। इम्तियाज अहमद जी मेरे साथ हैं, गुड इवनिंग आर्य मनुष्य जी, आपको भी आदाब है इम्तियाज अहमद जी, और उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे आप। और जी हाँ, हमारे साथ महेंद्र दीपेंद्र राजस्थान से हैं, गुड इवनिंग मनुष्य जी, जी शुभ संध्या आपको भी महेंद्र जी। और धर्मेश त्रिपाठी जी भी हैं मेरे साथ, शुभ संध्या आपको भी। क्या बात है भाई, हमारे बहुत ही पहले श्रोता श्री कृष्ण कुमार गुप्ता जी जुड़ चुके हैं तिरंगा कॉम्प्लेक्स से। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी हाँ, आपको भी भाई प्रणाम। और कैसे हैं आप? जी हाँ, आपके आपका आशीर्वाद है, बहुत अच्छा हूँ मैं। और जी हाँ, गीत पसंद आ गया। और आशु जी, मतलब हम तो ये मान लें कि इंसान जिस चीज़ को बहुत डरता है ना, कहीं ये ना हो जाए, उस चीज़ को अपना मान लिया जाए। अगर हम दुख को अपना मान लें तो मुझको लगता है कि काफ़ी सारी मुश्किलें अपने आप हल हो सकती हैं। भागना नहीं है। राज इंदौरी साहब का एक शेर है कि इस दुनिया ने मेरी वफा का कितना ऊंचा मोल दिया, पैरों में जंजीरें डाली, हाथों में कशकोल दिया। कशकोल बोलते हैं भिक्षा पात्र को। इस दुनिया ने मेरी वफा का कितना ऊंचा मोल दिया, पैरों में जंजीरें डाली, हाथों में कशकोल दिया, अब मौत आए, खुशियां आए, गम आए या तू आए, अब मौत आए, खुशियां आए, गम आए या तू आए, मैंने तो बस आहट पाई और दरवाज़ा खोल दिया। तो अगर हम दरवाज़ा खोले हुए हैं और परवाह नहीं करते, तो निसंदेह जिंदगी हमें बहुत ज़्यादा रुला नहीं पाएगी। अरे भाई कृष्ण कुमार जी, ऐसा मत कहिए भाई, शर्मिंदा न करें, आप हमारे बहुत प्यारे, हमारे छोटे भाई सरीखे, हमारे श्रोता हैं, और आपसे वास्तव में हमको लगाव है। आइए अब चलते हैं भाई, और दुख को अपना बना लेते हैं। कैसे? बिल्कुल ऐसे जैसे हम आपको सुनाते हैं।

जी हाँ, वो घड़ी आ गई आ गई। अजीब सी ऊब शामिल हो गई है रोज जीने में, अजीब सी ऊब शामिल हो गई है रोज जीने में। पलों को दिन में, दिन को काट कर जीना महीने में। महज मायूसियां जगती हैं अब कैसी भी आहट पर, हजारों उलझनों के घोंसले लटके हैं चौखट पर। अचानक अचानक सब की सब ये चुप्पियां एक साथ पिघली हैं, उम्मीदें सब सिमट कर हाथ बन जाने को मछली हैं। मेरे कमरे के सन्नाटे ने अंगड़ाई सी तोड़ी है, मेरी खामोशियों ने एक नगमा गुनगुनाया है। तुम्हारा फोन आया है, तुम्हारा फोन आया है। जी हाँ, अब हम इंतज़ार करेंगे आपके फ़ोन का। हमारा दूरभाष क्रमांक वही है 6393313164 29। अब आपकी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम करते हैं प्रारंभ, और पहली फरमाइश मेरे पास धर्मेश त्रिपाठी जी की है, तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलवर है। आइए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम

जी हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत हमने एंजॉय किया भाई। और अब चलते हैं हमारी प्यारी बहन जी आशु मिश्रा जी की तरफ, जो हमको सुनती हैं लखनऊ से, और उनकी फरमाइश है मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। बहुत ही प्यारा सा गीत, बहुत ही प्यारी सी फरमाइश।

जी हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत हमने एंजॉय किया भाई। और अब चलते हैं हमारे बहुत ही प्यारे श्रोता श्री के गुप्ता जी की तरफ। और तेरी नीली नीली आंखों ने क्या बात है, क्या गीत भेजा है भाई। चलिए श्री के गुप्ता जी की फरमाइश पर ये बहुत ही प्यारा सा नगमा आप सभी के लिए।

जी हाँ, ये बहुत ही प्यारा सा गीत हमने एंजॉय किया भाई श्री के गुप्ता जी की फरमाइश पर। अब चलते हैं महेंद्र दीपेन जी की फरमाइश, बहुत ही प्यारी सी फरमाइश है, और आइए क्रांति फिल्म का ये गीत महेंद्र दीपेन जी की तरफ से आप सभी को समर्पित।

क्या बात है भाई, क्या गीत है। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे, बहुत ही प्यारा सा गीत हमने एंजॉय किया। अब चलते हैं भाई हमारे बहुत ही प्यारे से श्रोता सबलू सावंत जी की फरमाइश, और उनकी फरमाइश है भाई, उनकी फरमाइश है जिंदगी मैं तुझी पे लुटाऊंगा। बहुत ही प्यारा सा गीत सबलू सावंत जी की ये प्यारी सी फरमाइश। उदित नारायण और अलका याग्निक की प्यारी सी आवाज़ है, और फिल्म का नाम आप सभी जानते हैं, जानी दुश्मन।

जी हाँ बिल्कुल, इस तरीके से पुकारेंगे आप तो कौन नहीं आएगा। और अब चलते हैं भाई शिवम तिवारी जी की तरफ और उनकी बहुत ही प्यारी सी फरमाइश है काले दिल लिबास। जी हाँ, तो अब चलते हैं शिवम तिवारी जी की तरफ काले दिल लिबास के लिए।

0: जी हाँ, तो ये बहुत ही प्यारा सा गीत हमने एंजॉय किया शिवम तिवारी जी की फरमाइश पर। और आपको ले चलते हैं अब भाई पुरानी दुनिया में, हमारे भाई रोमांटिक कुमार हैं जी श्री अनिल बनर्जी जी, उन्होंने गोरखपुर से गीत भेजा है अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। और जी हाँ, ये गीत हम उन्हीं को डेडिकेट करते हैं, वास्तव में छोड़ कर मत जाइए दिल अभी नहीं भरा है।
1: अभी न जाओ छोड़ कर।

और जी हाँ, कुछ ऐसा ही माहौल बनता है जब आप होते हैं हमारे साथ, तो हम यही कहते हैं अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भला नहीं। अब चलते हैं भाई, धर्मेंद्र मोहन जी की फरमाइश है, साथी मेरे जीना है मुश्किल तेरे बिन। बहुत ही प्यारी सी फरमाइश, बहुत ही प्यारे श्रोता की, धर्मेंद्र मोहन जी।

जी हाँ, इसी आए हाय के साथ अब ले चलते हैं भाई निशा जी को अपने साथ, और गाना चुना है उन्होंने, आंखों में नींद है ना दिल में करार, मोहब्बत भी क्या चीज होती है।

जी हाँ, आंखों में न नींदे न दिल में करार, बहुत ही प्यारा सा गीत। और इसके पश्चात चलते हैं भाई समरीन जी की फरमाइश है, अखियाँ मिलावांगा मैं तुझको यार बनावांगा। जी हाँ, ये पंजाबी तड़का थोड़ा सा इस गीत के माध्यम से।

जी हाँ, और इसके पश्चात अरे भाई फरमाइश पूरी करते हैं कार्तिक कश्यप जी की ये रातें ये मौसम, और इसके बाद फरमाइश पूरी करेंगे मिश्रा आप्टिकल जी की शायराना सी है जिंदगी की फजा। जी हाँ, दो लगातार गीत सुनिए।

0: इसी खूबसूरत गीत के साथ मुझे यानी तरन्नुम जहां को दीजिए इजाज़त। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब समाचार सुनिए।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी इसके अध्यक्ष होंगे। परीक्षाओं में अनियमितताओं से निपटने के लिए कल संसद में नया कानून पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज करगिल विजय दिवस पर अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता और ऋषिकांत सिंह चानंबम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में रजत पदक हासिल किया। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में खेले गए तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
3: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
2: सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक कल के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने आज कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से संसद का उच्च सदन अधिक तेज तथा कागज मुक्त हो गया है और सभी सदस्यों को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने ये बातें राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिवसीय प्रारंभ कार्यशाला के समापन भाषण में कही। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री जोशी ने ये जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे मंत्रालय की कार्यप्रणाली, नीतियों और जारी कार्यक्रमों की व्यापक समझ के लिए बैठक कर रहे हैं।
4: आज सुबह चार्ज लिया हूँ, पूरा डिटेल्स हमको देखना है, निर्णय लेना है, इस सब के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने का और पूरा मिनिस्ट्री समझने का कोशिश मैंने किया हूँ। मुझे विषय नया है और सीनियर ऑफिसर्स पे मैंने डिटेल में बातचीत करने का कोशिश किया हूँ। ये बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है, इसलिए पूरा समझ के मैं आपके साथ बात करूँ।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा, निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
5: आज कारगिल विजय दिवस है, ये दिन हमें गर्व से भर देता है, ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि ये भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कृतज्ञ राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से करगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले वीर सैनिकों को नमन करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि करगिल विजय दिवस पर देश अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन करता है। उन्होंने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प मजबूत करने का आग्रह किया। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला और मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने आज इम्फाल में करगिल विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सशस्त्र बलों के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होलोबॉक्स का उद्घाटन किया गया। ये आगंतुकों को वाजपेयी जी के जीवन, नेतृत्व और विरासत का जीवंत अनुभव प्रदान करेगा। उद्घाटन समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार के सदस्य उपस्थित थे। वर्ष 1999 का करगिल युद्ध तत्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान हुआ था, इसलिए संग्रहालय करगिल विजय दिवस पर एक विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दोहराया कि पाकिस्तान के साथ वार्ता केवल पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पर केंद्रित होगी, इसके अतिरिक्त कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया। रक्षा मंत्री लद्दाख के द्रास में 27वें करगिल विजय दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे।
6: भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है और मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूँ, भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है, क्या पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि युवा केवल विकसित भारत की ताकत ही नहीं बल्कि उसके सबसे बड़े लाभार्थी भी हैं। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब युवाओं की ऊर्जा देश की चुनौतियों के समाधान में लगती है तो देश का भविष्य और उज्ज्वल होता है। आज सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 400 से अधिक युवाओं ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सीमावर्ती गांवों को देखने, समझने और उनसे जुड़ने के लिए प्रेरित करना है।
7: हमारे सीमावर्ती गांवों में विकास की आकांक्षा और देशभक्ति की भावना, ये हम बराबर बराबर और कभी तो लगता है कि उनके लिए खुद से ज्यादा देश होता है। देश पहले, बाकी सारी सुविधाएं बाद में, ये हमको सीमावर्ती गांवों में खास अनुभव आती है। और इसलिए उद्देश्य ये था कि देश के युवा हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख के गांवों की यात्रा करें।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि सामूहिक भागीदारी हमेशा से भारत की सांस्कृतिक परंपरा की ताकत रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार हर युवा, विशेषकर देश की बेटियों को आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यूनेस्को ने आज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के डीडे लैंडिंग बीच, ग्रीस के माउंट ओलंपस, जापान की प्राचीन राजधानियां असुका और फुजीवारा और दक्षिण सूडान के विशाल प्रवासी प्राकृतिक क्षेत्र बोमा बंडीगिलो को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं विशेष शुक्ला।
8: मीराबाई चानू ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले ऋषिकांत सिंह ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीता। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से क्लीन स्वीप करते हुए जीत ली है। हरारे में भारत के 193 रन के लक्ष्य के जवाब में जिम्बाब्वे 20 ओवर में 7 विकेट 157 रन ही बना सकी। अनाहत सिंह ने कनाडा के ओंटारियो में विश्व स्क्वैश जूनियर इंडिविजुअल चैंपियनशिप में महिलाओं का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल मंत्री मनसुख मांडविया समेत कई केंद्रीय मंत्री और बड़े खिलाड़ियों ने अनाहत सिंह को बधाई दी है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतने और अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर भारतीय भारोत्तोलक ऋषिकांत सिंह चानम्बम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री चानम्बम के दृढ़ संकल्प और उत्कृष्ट प्रदर्शन ने देश को अपार प्रसन्नता दी है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उधर बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के कारण कल से उड़ीसा में मॉनसून सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
9: भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के असर से कल से उड़ीसा में बड़े पैमाने पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक और केंदुझर जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। जैसे जैसे ये सिस्टम और मजबूत होगा, भारी बारिश का दायरा मयूरभंज और सुंदरगढ़ तक फैलने की उम्मीद है। एहतियात के तौर पर राज्य सरकार ने मयूरभंज और जगतसिंहपुर जिले में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों, हायर सेकेंडरी संस्थानों और बाड़ी केंद्रों को बंद करने का आदेश दिया है। मछुआरों को अगली सूचना तक समुन्द्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकड़ी इसके अध्यक्ष होंगे। परीक्षाओं में अनियमितताओं से निपटने के लिए कल संसद में नया कानून पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज करगिल विजय दिवस पर अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में खेले गए तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9।

0: जी हाँ, बहुत ही प्यारा सा गीत। और इसके पश्चात चलते हैं भाई अब राजेश सिंह जी मालवीय नगर की तरफ, हसीन जुल्फों का रंग दे दो। बहुत ही प्यारा सा गीत ये राजेश सिंह जी की फरमाइश पर।
1: ए हसीन मैं जबी

लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु, और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।

0: जी हाँ बिल्कुल, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे हम आज, जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। लेकिन जिक्र करेंगे किसका, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और हम हमेशा बात करते हैं और कहते हैं कि जब हम बात करते हैं उन कलमकारों की जिनको नींव की ईंट कहा जाता है, जो दानिश्वर शायर हैं, जिन्होंने गज़लें लिखी, नज़में लिखी और इसके पश्चात वो कहीं फिल्में आई या किसी गज़लकार ने उनको गाया, अपने मधुर कंठ से आवाज़ दी। तो ऐसे ही कवियों पर, शायरों पर, दानिश्वरों पर हम करते हैं चर्चा। आज हमारी चर्चा में कौन सी शख्सियत होगी ये आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन एक गज़ल आपको सुना देते हैं और गज़ल के पश्चात आपको बताते हैं कि कौन सी वो शख्सियत है जिस पर हम आज करने वाले हैं चर्चा। जी हाँ, तो सुनते रहिए रेडियो गणेश 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन। आपसे मुलाकात होगी एक गज़ल के बाद और इसके पश्चात हम बात करेंगे उस शख्सियत की जिसके बारे में हम आज करने वाले हैं आपको बावस्ता।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 500 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं KNVO की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व KNVO द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
4: क्या आप गोंडा

जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या, शाम का सलाम कबूल करें आप इस्तकबाल आप सभी को। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 एफएम, यह है गोंडा शहर की धड़कन और अब कार्यक्रम चल रहा है बहारे गजल, और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। पंडित भोलानाथ मिश्र जी को पहले तो सबसे पहले आपको चरण स्पर्श करते हैं, कैसे हैं आप, और अभी आपका संदेश पढ़ा हमने और क्या बात है, उन्होंने कहा बहुत ही प्यारा गीत बजा पंडित जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं साथ अनोखी शर्मा जी हैं, गुड इवनिंग सर। नायला अंसारी जी हैं, गुड इवनिंग मनु सर, आपको भी शुभ संध्या। और आइए अब बात करते हैं, हम आज किसकी बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं अनाथ देहलवी साहिबा की, एक ऐसी शायरा जिन्होंने जिंदगी के तमाम सारे मौजूआत को छुआ, कई सारे पहलुओं को छूती हुई उनकी गज़ल कभी महबूब से गुफ्तगू करती है तो कभी नारियों को उनका हक दिलाने का प्रयत्न भी करती है। उनमें उनकी गज़लों में कहीं कहीं समंदर की खामोशी सी है तो कहीं मस्त बहारों की अल्हड़पन भी है, सब कुछ मिलता है अन्ना देहलवी की गज़लों में। उन्होंने लिखा कि हर सितम सह के मुस्कुरा देना मैंने सीखा है गम भुला देना, हर सितम सह के मुस्कुरा देना मैंने सीखा है गम भुला देना, उंगलियां जो उठाते हैं सब पर आईना उनको भी दिखा देना, है मोहब्बत की आरज़ू जिनको उनको मेरा पता बता देना, उनको आता है क्या सिवा इसके हाले दिल सुनना मुस्कुरा देना, ऐना यही है मेरी सेवा, सेवा मतलब स्वभाव आदत, ऐना यही है मेरी सेवा अपने दुश्मन को भी दुआ देना। जी हाँ, तो अपने दुश्मन को भी दुआ दी जाए। और आइए बाहर एक गज़ल में आपको पहली गज़ल सुनाते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये पहली गज़ल ही आपके दिल को छू कर जाएगी। बहुत ही प्यारी गज़ल है आपके लिए, विशेष तौर पर इस फिल्म की एक गज़ल और है जो हम आपको सुनाते हैं, जब दीप जले आना, और आइए उसी फिल्म चित्तौर की एक प्यारी सी गज़ल आपको और सुनाते हैं, हो सकता है ये आपके जहन से उतरी हो। सुनते रहिए रेडियो गणेश 89.6 एफएम, यह है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारी सी गज़ल आप सभी के लिए।

क्या पंक्तियां शायर ने कहीं, कलमकार ने कहीं, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पंकज उदास साहब ने गाया। सुख दुख था एक सपन का, अपना हो या बेगाना, एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना। वास्तव में एक पंक्ति आई कि कुछ पाने के लिए बहुत कुछ गंवाना पड़ गया हमको, और शायद वो शायर की सोच सही भी रही। जी हमारे साथ मोहम्मद मुशीफ साहब जी हैं। गुड इवनिंग डियर आर्यमन भाई, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं भाई? और फिर सविता शास्त्री जी, जी प्रणाम आपको। और नैला अंसारी जी हमारे साथ हैं, जी हाँ हेलो आपको। और अब चलते हैं अन्ना देहलवी की तरफ। उन्होंने लिखा कि जब कभी हुस्न की पाकीज़ा कहानी लिखना, पाकीज़ा मतलब पवित्र, जब कभी हुस्न की पाकीज़ा कहानी लिखना, श्याम के इश्क में मीरा को दीवानी लिखना। जब कभी हुस्न की पाकीज़ा कहानी लिखना, श्याम के इश्क में मीरा को दीवानी लिखना, तुम किसी फूल को मुरझाते हुए देखना जब, तुम किसी फूल को मुरझाते हुए देखना जब, उस घड़ी बैठ के अंजामे जवानी लिखना। अगर फूल मुरझाता है तो शरीर भी धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर जाता है, और एक दिन जी वही जिंदगी जिसके तसव्वुर से समझ जाती है, मतलब सोचने मात्र से, जिंदगी जिसके तसव्वुर से समझ जाती है, मेरे हिस्से में वही शाम सुहानी लिखना। अपने मकसद के लिए अहले सियासत ने यहाँ, अब देखिए सियासत पर भी बड़ी बारीकी से व्यंग होता है, वो कलमकार करता है, वो शायर करता है, यहाँ शायरा कर रही है कि अपने मकसद के लिए अहले सियासत ने यहाँ किस तरह खोई बुजुर्गों की निशानी लिखना। बुजुर्गों की निशानी, जो हमारा पास्ट था, हमारा बीता हुआ माजी था, उसको उसमें उलटफेर कर दी गई। इस बहाने से उतर जाएगा ये दिल का बोझ, इस बहाने से उतर जाएगा ये दिल का बोझ, अपना हर किस्सा एगम अपनी जबानी लिखना। जिक्र जब भी छिड़े तहजीब का दुनिया में आना, जिक्र जब भी छिड़े तहजीब का दुनिया में आना, इस कलम से कोई तारीख पुरानी लिखना। उन्होंने कहा कि वास्तव में अभी मैं जब ये गजल सुन रहा था तो वक्त वक्त की बात है, मतलब अभी जो हमारे, मतलब जो हम उम्र हैं 35-40 साल वाले, उनके जो पिताजी हैं और हम लोग और जो आने वाली जनरेशन है, विचारों में बड़ा बड़ा परिवर्तन आ गया है। मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो एक कहानी उन्हें पढ़ी थी मुंशी प्रेमचंद की, मंत, तो उसमें वर्णन आता है कि एक गरीब वृद्ध व्यक्ति रहता है और वो डॉक्टर के पास जाता है, उसका बेटा, तीन बेटे थे, आखिरी बेटा बहुत तेज बुखार था और बड़ी उम्मीद से आया था डॉक्टर साहब के पास, बड़ा नाम सुना था डॉक्टर चड्ढा, अगर आपको कहानी याद होगी तो। डॉक्टर साहब के गोल्फ खेलने का समय था और वो जा रहे थे, तब तक ये पहुंच गया, उसने कहा कि हुजूर एक नज़र देख लीजिए, क्या पता आपकी नज़र से ही मेरे लड़के की तबीयत ठीक हो जाए, मेरा बेटे की, मेरे बेटे की जान बच जाए। डॉक्टर भगवान का दूसरा स्वरूप होता है। डॉक्टर साहब ने झिड़कते हुए कहा, कल सवेरे आना, कल सवेरे, ये हमारे गोल्फ खेलने का समय है। मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है कि धूल उड़ाती हुई मोटर दूर चली गई, दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो अपने मनोरंजन के सामने किसी के जान की परवाह तक न करते थे, इस बात का उसे अब तक विश्वास न आता था।
क्योंकि वह उन लोगों में था जो दूसरों की झोपड़ी को उठाने, आग को बुझाने और लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। बुढ़े भगत ने सोचा कि मैं कहाँ आ गया, गांव से आया शहर की ओर, और जब कोई भी व्यक्ति ना जिसके पास इंसानियत होती है, आप मुझे नहीं कहना चाहिए, मुझे माफ़ करेंगे मेरे बड़े लोग, लेकिन जितने ही बड़े शहरों में आप जाते हुए चले जाएंगे, जितने ही मॉडर्न सोसाइटी में हम जाते हैं, तुमको लगता है कि यहाँ शायद वो एहसास नहीं है। वो एहसास जो अपनेपन का होता है वो कहीं ना कहीं खोया हुआ सा लगता है, और जब एहसास खोया हुआ सा लगता है तो इंसान अपने आप को महफिल में तन्हा पाता है, और जब तन्हा पाता है तो उसे ये लगता है कि इस समाज के लिए, इस महफिल के लिए वो अजनबी सा है। जी हाँ, आइए जब बात इस बात पर जब चल पड़ी है तो क्यों ना आपको एक रफ़ी साहब की बहुत ही प्यारी सी गज़ल सुनाए, और एहसास जो मैंने बात की है वो एहसास वही है। जब आप उनको टटोल कर देखिएगा, और अगर आप टटोल कर देखेंगे तो शायद जो मैंने अब तक कहा और जो अब रफ़ी साहब कहेंगे, उन दोनों में आपको थोड़ी बहुत समानता मिलेगी। अगर मिलती है तो चैट बॉक्स में हमको बताइए कि हाँ आपको ये प्यारी सी गज़ल रफ़ी साहब की आवाज़ में कैसी लगी। सुनते रहिए रेडियो गणस्ट 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारी सी गज़ल आप

जी हाँ, वैसे भी हमारा आपका साथ भी ऐसे बना रहे और ये भी नहीं छूटने वाला है। साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका? बहुत बढ़िया प्रश्न आया है। धर्मेंद्र मोहन लिखते हैं कि सर जी हमें बताइए, कोई अधिक नाराज हो तो कितने दिन के बाद मानेगा? बहुत अच्छी बात पूछी आपने। और मैं आपको अपने जीवन का एक सच बताता हूँ जो मैंने अनुभव किया। हो सकता है ये गलत हो, लेकिन जो आपका अपना होता है वो आपसे खफा नहीं होता है, वो खफा सा हो जाता है। खफा तो क्या, खफा सा हो गया है, ताल्लुक कितना गहरा हो गया है। खफा तो क्या, खफा सा हो गया है, ताल्लुक कितना गहरा हो गया है। मेरा दुश्मन भी अब जिंदा रहेगा, मेरे किस्से का हिस्सा हो गया है। तो अगर कोई आपसे नाराज सा है तो इसका मतलब वो आप पर अपना अधिकार समझता है। वो नाराज है ही नहीं, वो नाराजगी सिर्फ एक नाटक है। खफा होना और खफा सा हो जाना, इन दोनों के बीच बहुत अंतर है। जो लोग खफा होते हैं वे आपके अपने नहीं होते, और जो खफा से होते हैं उनसे बढ़कर आपका अपना कोई नहीं होता। तो अगर वो गैर है तो मनाने की आवश्यकता नहीं, और अपने हैं तो स्वयं चले आएंगे। समय, अनोखी शर्मा जी को भाई गजल पसंद आई, क्या बात है भाई। और अब आइए चलते हैं अन्ना देहलवी साहिबा की तरफ। उन्होंने कहा कि मैं उसूलों से बगावत नहीं करने वाली, मैं उसूलों से बगावत नहीं करने वाली, कभी तौहीन मोहब्बत नहीं करने वाली। मुझको नजराना ए दिल पेश न कीजिए साहब, मुझको नजराना ए दिल पेश न कीजिए साहब, हर किसी से मैं मोहब्बत नहीं करने वाली। जो शराफत की हदों में कभी रहते ही नहीं, जो शराफत की हदों में कभी रहते ही नहीं, ऐसे लोगों की मैं इज्जत नहीं करने वाली। तूने दिल तोड़ दिया, कर दिया महरूम वफा। आपने दिल तोड़ दिया, मेरी वफा को समझ नहीं पाए। तूने दिल तोड़ दिया, कर दिया महरूम वफा, फिर भी मैं तेरी शिकायत नहीं करने वाली। खूने मजलूम से जो प्यास बुझाए अपनी, जो गरीबों के खून से अपनी प्यास बुझाता हो, खूने मजलूम से जो प्यास बुझाए अपनी, मैं कभी उनकी हिमायत नहीं करने वाली। मेरे दिल ने जिसे चाहा वही सब कुछ है मेरा। अभी देखिए, दुनिया में बहुत से लोग आपको मिलते होंगे, लेकिन कुछ लोग आपके दिल में उतरते होंगे। और मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि इंसान का जो कान होता है वो दिल के बीच में होता है, तो लोग कान के रास्ते दिल में उतर जाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कान दिल के बीच में कहाँ रहता है। जी हाँ, HEART, हार्ट मतलब हृदय, और बीच में देखिए तो हार्ट के बीचों बीच में ईयर छुपा हुआ है, यानी जो कान है वो हृदय के बीच में है। तो इंसान कान से रूह में समा जाता है और वही आपको अच्छा लगता है। फिर एहसास आप कभी कीजिएगा कि बहुत लोगों से आप मिलते होंगे लेकिन सबसे दिल नहीं मिलता। मोहब्बत रंग लाती है जब दिल से दिल मिलते हैं, मगर मुश्किल तो ये है कि ये दिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो मेरे दिल ने जिसे चाहा वही सब कुछ है मेरा, मैं मोहब्बत की तिजारत नहीं करने वाली। तिजारत मतलब व्यापार होता है, ये मोहब्बत का व्यापार नहीं करते। ऐना मेरी तबीयत में है शोखी लेकिन, ऐना मेरी तबीयत में है शोखी लेकिन, शोखी मतलब चंचलता, दिल शिकन कोई शरारत नहीं करने वाली। लेकिन मैं ऐसी कोई शरारत नहीं करती हूँ जिससे किसी के दिल को दुख पहुँचे। जी हाँ, आइए अब आपको सुनाते हैं एक प्यारी सी गज़ल और
धर्मेश त्रिपाठी जी निकला, वाह सर क्या शायरी है, लव यू, आई टू लव यू धर्मेश त्रिपाठी जी। और आइए अब आपको सुनाते हैं अनूप जलोटा की आवाज़ में एक प्यारी सी गज़ल। देखिए अभी आपने कई सारे चंदन दास को सुना, पंकज उदास को सुना, आइए रफ़ी साहब को सुना, और अब आइए आपको सुनाते हैं अनूप जलोटा। क्या मतलब क्या गज़ल, और हो सकता है ये गज़ल आप बहुत दिन बाद सुन रहे हो, लेकिन अगर दिल से सुनेंगे तो यकीन मानिए दिल में उतर जाएगी। सुनकर बताइए कैसी लगी ये गज़ल आपको।

जी हाँ, और घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। तो शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। आसमान वाले ने चाहा तो कल फिर मिलेंगे आपसे ठीक 9:30 बजे आप ही के कार्यक्रम बहारे गजल में। तब तक सुनते रहिए रेडियो गणेश 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।

हॉन्टेड नाइट। डर और खौफ से जुड़ी कुछ कहानियां और सच्चे अनुभव।

0: हम रोजाना हमारे आसपास के कई लोगों से होकर गुजरते हैं, पर हमारे आसपास के इन लोगों में कई शख्स ऐसे भी हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। लोग इन्हें आत्माएं या प्रेत कहते हैं। आत्माएं होती हैं या नहीं, ये हमेशा से एक विवादित विषय रहा है, क्योंकि इंसान जब तक अपनी आंखों से कोई चीज देख ना ले वो उस पर विश्वास नहीं करता। पर जब इन्हीं लोगों का इन आत्माओं से सामना होता है तो वो मंजर बेहद भयानक होता है। भूत, प्रेत, आत्माएं, हर किसी का इन्हें लेकर एक अलग ही अनुभव है। कोई कहता है अगर ये एक बार किसी के पीछे पड़ जाएं, तो इनसे पीछा छुड़ाना मौत से पीछा छुड़ाने से भी मुश्किल होता है। पर एक सवाल है, क्या हर आत्माएं बुरी होती हैं? आज की कहानी है आकाश की। आकाश जो दिल्ली में किसी कंपनी में काम करता था, हर नौजवान की तरह ही उसकी सोच प्रैक्टिकल थी। हर बात को बिना जाने मान लेना उसकी फितरत में नहीं था। भूत प्रेत से जुड़ी बातें उसके लिए मनोरंजन के अलावा और कुछ न थी। उसी की कंपनी में उसके साथ राजस्थान के एक छोटे से गांव से आया अमित काम करता था। एक ही कंपनी के एक ही डिपार्टमेंट में काम करने की वजह से अमित और आकाश एक ही फ्लैट शेयर करते थे और दोनों में काफी गहरी दोस्ती हो गई। पर इस दोस्ती ने आकाश की जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया और अब तक अपनी खुद की बनाई मान्यताओं के रास्ते पर चले आ रहे आकाश को एक नए दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया।
1: हाय, आई एम आकाश। कैसे कोई एक हादसा हमारी पूरी सोच बदल कर रख सकता है, ये मुझे उस दिन महसूस हुआ। माफ कीजिएगा, दरअसल उस रात।
0: उस सुनसान रास्ते पर खड़ा आकाश एक अजीब सी असमंजस में था। पर आखिर वो इतनी देर रात घर से इतनी दूर उस सुनसान रास्ते पर कर क्या रहा था? इन सभी सवालों के जवाब उस खत में थे जो आकाश को इस रात से एक हफ्ता पहले मिला। ये खत उसके दोस्त अमित का था। अमित जो एक ही कंपनी में आकाश के साथ काम करने की वजह से उसका सबसे अच्छा या ये कहें उसका इकलौता दोस्त बन गया था। अमित की शादी तय हो गई थी, इसीलिए वो 20 दिन की छुट्टी लेकर राजस्थान में अपने गांव चला गया था। गांव जाते हुए वो आकाश को उसकी शादी में आने के लिए कसम देकर गया था, क्योंकि जब भी अमित उसे उसके गांव चलने के लिए कहता था तो आकाश टाल जाया करता था। वो शहर में ही पला बड़ा था, गांव में कुछ दिन क्या, कुछ पल बिताने का ख्याल ही उसे डरा देता था। पर उस खत में जो आकाश को अमित ने अपनी शादी के कार्ड के साथ भेजा था, उसे कसम के साथ धमकी दी थी कि अगर वो नहीं आया तो वो शादी नहीं करेगा। ये जानते हुए कि ये सिर्फ एक धमकी है, फिर भी आकाश अमित की बात को टाल नहीं सकता था, इसलिए जिस सुबह अमित को यह खत मिला उसी शाम आकाश ऑफिस से 3 दिन की छुट्टी लेकर अमित के गांव के लिए रवाना हो गया। अमित के गांव में रेलवे स्टेशन नहीं था, उसके गांव के सबसे करीब का स्टेशन 80 किलोमीटर की दूरी पर था। वहां से आकाश को 2 बस बदलकर अमित के गांव तक पहुंचना था और इसी वजह से अमित ने रेलवे स्टेशन से एक कार हायर करने की सोची। इसके लिए अमित ने उस शहर के एक ट्रैवल एजेंट को फोन किया और उसे उस गांव तक जाने के लिए एक अच्छी कार की व्यवस्था करने को कहा। पर उस गांव का नाम सुनते ही ट्रैवल एजेंट की आवाज में एक अजीब सी कपकपाहट आ गई। पहले तो उसने बहुत आनाकानी की, पर आकाश ने उसे दुगने पैसों का लालच देकर राजी कर लिया। पर ऐसा क्या था उस गांव में जिसका नाम सुनकर उस एजेंट की आवाज में डर भर गया था। ट्रेन में सारे रास्ते आकाश यही सोचते आ रहा था। आकाश की ट्रेन को वैसे तो शाम तक रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाना चाहिए था, पर किसी कारण आकाश की ट्रेन कुछ घंटे लेट हो गई थी। पर ये कुछ घंटे आकाश के लिए बहुत भारी साबित हुए, क्योंकि शाम के 7 बजे आने वाली ट्रेन स्टेशन पर करीब 10 बजे पहुंची। छोटा स्टेशन और रात होने की वजह से प्लेटफॉर्म खाली था। स्टेशन पर सन्नाटा पसरा हुआ था। आदमी के नाम पर एक बूढ़ा सा स्टेशन मास्टर अपने केबिन में एक चेयर पे कुछ यूं पड़ा हुआ था, मानो अपने आखिरी दिन गिन रहा हो। प्लेटफॉर्म पर शायद बिजली नहीं थी, रोशनी के लिए सिर्फ एक लालटेन टंगी हुई थी जिसके आसपास कुछ कीड़े मकोड़े मंडरा रहे थे। आकाश बाहर निकलने का रास्ता खोज ही रहा था कि अचानक आकाश के कंधे पर एक हाथ आकर टिका, जिसकी वजह से आकाश एकदम से चौंक गया।
2: मैं सच में काफी डर गया था। उस सुनसान प्लेटफॉर्म पर अचानक एक हाथ का यूं पीठ पर आना, सच में ये काफी डरावना अनुभव था। पर मुझे क्या मालूम था कि ये तो बस एक शुरुआत थी।
0: लालटेन की हल्की रोशनी की वजह से आकाश को काफी पास आकर उस आदमी को देखना पड़ा। जब गौर से आकाश ने उसको देखा तो पाया कोई 30-35 साल का व्यक्ति सर पर टोपी पहने खड़ा है, जो आकाश के चौंकने की वजह से शायद खुद भी डर गया था। उसने बिना किसी झिझक के आकाश को बोला, आप आकाश ही है ना? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूं, आपकी ट्रेन काफी लेट हो गई। आकाश को इस बात पर बड़ी हैरानी हुई कि इस रात के अंधेरे में पहली बार में ही उस ड्राइवर ने आखिर आकाश को पहचान कैसे लिया। पर जैसे उस ड्राइवर ने खुद उसके दिल की बात पढ़ ली हो, वो अपने आप ही बोला, क्या साहब, यही सोच रहे हैं ना कि मैंने आपको कैसे पहचाना? अरे इतनी रात इस जगह शायद ही कोई आए। लोग तो इस जगह दिन में भी आने से डरते हैं, और जिस गांव में आप जा रहे हैं वो तो अचानक वो रुक गया, जैसे अगर वो आगे कुछ कहता तो कोई कयामत आ जाती। उसने आकाश का बैग डिग्गी में रखा और गाड़ी में आकर बैठ गया। आकाश ने पीछे बैठे हुए ही ड्राइवर की हरकतों पर गौर किया। वो बहुत सहमा हुआ सा था। उसने जेब से कुछ निकाला और कार के डैशबोर्ड पर रख दिया। कार की लाइट्स जलने पर आकाश ने देखा कि वो हनुमान जी की एक फोटो थी, जिसको वो कुछ इस तरह प्रणाम कर रहा था मानो किसी जंग पे जा रहा हो।
1: वो ड्राइवर बहुत अजीब तरह से बिहेव कर रहा था। पता नहीं क्या हुआ जो उसे इतना डरा रहा था। पहले वो ट्रेवल एजेंट और अब ये ड्राइवर। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था ये सब कुछ देखकर। सच कहूं अब तो मैं भी थोड़ा डरने लगा था।

0: गाड़ी शुरू हुई और चंद ही मिनटों में उसकी गाड़ी स्टेशन से निकलकर हाईवे पर आ गई और बाहर थोड़ी बहुत रोशनी भी जैसे कहीं अंधेरों में ही गुम हो गई। अंधेरे और सन्नाटे को चीरती हुई गाड़ी काफी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। जैसा सन्नाटे का आलम बाहर था उससे कहीं गहरा उनकी गाड़ी में था। ड्राइवर को तो जैसे सांप सूंघ गया था, उसकी जबान को जैसे लकवा मार गया था, बस माथे से पसीना बहे जा रहा था। अब आकाश ने चुप्पी तोड़ी और ड्राइवर से बात करना शुरू की। यहां वहां की बात करने के बाद आकाश ने ड्राइवर से पूछा, इस जगह ऐसा क्या है जिसकी वजह से एजेंट उसे पहले गाड़ी देने से मना कर रहा था, और वो क्या रहस्य है जो वो प्लेटफॉर्म पर कहता कहता रुक गया था। ड्राइवर ने डरते हुए बताया कि इन सारी जगहों पर आत्माओं और चुड़ैलों का कब्जा है, खासकर वो जिस गांव जा रहा है वहां तो इंसानों से ज्यादा आत्माएं बसती हैं। पुराने समय में हुई लड़ाइयां, सती हुई औरतों, हाईवे पर आए दिन होते हादसों से मरे हुए लोगों की आत्माएं इस जंगल और आसपास के गांव में सालों से डेरा जमाए हुई हैं। इन्हें कई बार यहां के लोगों और हाईवे से गुजरते यात्रियों ने अपनी आंखों से देखा है। कई बार तो ये बहुत ही खतरनाक रूप इख्तियार कर लेती हैं, और एक बार किसी के पीछे पड़ जाएं तो उसके मरने तक उसका पीछा नहीं छोड़ती। आकाश उस ड्राइवर की बातें किसी डरावनी कहानी की तरह सुनकर बस मजे ले रहा था। वो इन बातों को तब भी नहीं मानता था और अब भी नहीं। उसका मानना था कि ये बातें सिर्फ लोगों का वहम होती हैं और कुछ नहीं। ड्राइवर की बातें सुनते सुनते पता नहीं कब आकाश की आंख लग गई और वो गहरी नींद में चला गया। पर अचानक ही रात 2 बजे एक झटके ने उसकी नींद तोड़ दी। ड्राइवर ने बताया कि शायद गाड़ी में कुछ खराबी आ गई है। अंदर इंतजार करने के बाद आकाश बाहर निकला। ड्राइवर अभी भी गाड़ी सुधार रहा था। पूछने पर उसने बताया कि गाड़ी में कुछ बड़ी गड़बड़ी आ गई है जिसकी वजह से शायद 2 घंटे से भी ऊपर लग जाए। गांव अभी भी 10 किलोमीटर की दूरी पर था। चारों ओर जंगल ही जंगल था। रास्ता सुनसान था। रोशनी की एक किरण भी ना थी। चांद की हल्की रोशनी की वजह से सिर्फ सड़क ही दिखाई पड़ रही थी। अब आकाश को थोड़ी प्यास लगी, पर जितना पानी था वो रास्ते में पी चुका था। ड्राइवर से पूछने पर पता चला कि यहां से करीब 1.5 किलोमीटर पर एक ढाबा है। आकाश ने ड्राइवर को कहा कि वो पैदल ही उस ढाबे तक जा रहा है, गाड़ी ठीक हो जाए तो उस गाड़ी को वो ढाबे पे ही ले आए। ड्राइवर ने आकाश को बहुत मना किया कि यूं इतनी देर रात इस जगह अकेले रास्ते पर जाने का अंजाम काफी भयानक हो सकता है। आसपास के जंगलों में कई आत्माएं रहती हैं, पर आकाश कहां मानने वाला था। वो ढाबे की ओर बढ़ चला। सुनसान रास्ते पर आकाश बढ़े जा रहा था। आसपास झाड़ियों के अलावा और कुछ न था, जिनमें से जंगली जानवरों और सियारों की रोने की आवाज आ रही थी। वो जहां तक नजर डालता उसे सिर्फ अंधेरा और जंगल दिखाई पड़ता। तभी अचानक उसे बीच सड़क पर सफेद कपड़ों में कोई नजर आया। उसे ये काफी अजीब लगा। पास जाने पर उसने देखा कि एक लड़की सफेद कपड़ों में खड़ी हुई है। शायद उसका एक हाथ भी नहीं था। आकाश ने पास जाकर उस लड़की से पूछा कि वो इतनी रात इस सुनसान जंगल में अकेली क्या कर रही है। लड़की ने कहा कि वो यहीं रहती है और अक्सर भटके हुए लोगों को देखकर उनकी मदद के लिए आ जाया करती है। आकाश को ये बात बड़ी अजीब लगी। अब वो सफेद कपड़े पहने लड़की आकाश के साथ साथ उस सुनसान अंधेरी सड़क पर चलने लगी। रास्ते में आकाश ने उससे पूछा कि उसके एक हाथ को क्या हुआ, पर उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस किसी लाश की तरह चुपचाप आकाश के साथ चलती चली जा रही थी। आकाश ने फिर उससे पूछा कि उसका नाम क्या है और वो कहां रहती है, पर इस बार भी उसकी तरफ से कोई जवाब ना आया। वो बस खामोशी से उसके साथ कदम से कदम मिलाए चली जा रही थी। आकाश ने अपने बैग में हाथ डालकर झाड़ियों की फोटो खींचने के लिए कैमरा बाहर निकाला, पर उस लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा,
1: नहीं।
0: आकाश ने उसकी बात नहीं मानी और वो उसके मना करने पर भी कैमरे से फोटो निकालने की कोशिश करने लगा, पर इस बार उस लड़की ने उसका हाथ जोर से जकड़ लिया और बोली,
1: मैंने तुम्हें मना किया ना, कोई फोटो नहीं।
0: उस खौफनाक रात में नाजुक सी लड़की का यूं इतनी ताकत से उसके हाथ को जकड़ लेना, अब सच में आकाश के अंदर भी दहशत पनपने लगी थी। इस बार आकाश ने कैमरा बैग के अंदर डाला और खामोशी से उस लड़की के साथ साथ आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक रात के उस सन्नाटे को चीरती कुछ आवाज आकाश को सुनाई दी। से आ रही थी। वो आवाज सुनकर आकाश का दिल दहल उठा, पर उसे कुछ नजर ना आया और वो लड़की बिना किसी हलचल के बस आगे बढ़ती जा रही थी। समझ गया था कि कुछ गड़बड़ तो जरूर है। धीरे धीरे वो आवाज और तेज हो गई।
2: आ जाओ हमारे पास, आ जाओ, आओ, आओ, आ जाओ हमारे पास, आ जाओ।
0: ये आवाजें सुनकर आकाश सच में डर गया और अचानक ही उन झाड़ियों में उसे तीन औरतों के चेहरे नजर आए। वो बेहद डरावने थे। वो औरतें अपने हाथों से आकाश को अपने पास बुला रही थी और हंस रही थी।
3: आ जाओ, आओ हमारे पास आओ।
0: अब आकाश समझ चुका था कि ट्रैवलिंग एजेंट और ड्राइवर का डरने और इस गांव में ना आने के लिए कहने का क्या कारण था। उसने गौर किया कि इन सभी बातों का उस लड़की पर जरा भी असर नहीं हो रहा था। वो बस बढ़ती चली जा रही थी। वो आवाजें लगातार आ रही थी जिन्हें सुनकर अब आकाश बेहोश सा होने लगा था। वो जमीन पर गिरने ही वाला था कि उस लड़की ने उसका हाथ थाम लिया। और जैसे पल भर में आकाश के होश अपने आप वापस आ गए। वो आवाजें भी अब बंद हो गई। अब आकाश को दूर हल्की सी रोशनी दिखाई दी। शायद ढाबा आ चुका था। वो लड़की अचानक रुक गई और वापस जाने लगी, पर न जाने क्यों वो लौटी और आकाश के पास आई। पास आकर अपने होंठ आकाश के कान के पास ले गई और बोली,
1: आकाश, हर आत्मा पूरी नहीं होती।
0: आकाश ये सुनकर बुरी तरह कांप गया। उसने देखा वो लड़की वापस उसी रास्ते पर लौट रही है। आकाश की नजर जब सड़क की ओर गई, उसने देखा कि उस लड़की का धड़ तो दूसरी ओर था पर पैर उसकी तरफ। उस लड़की के उल्टे पैर देखकर आकाश बीच सड़क पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा।
4: The Haunted Place कार्यक्रम के इस भाग में हम आपको ऐसी जगहों के बारे में बताते हैं जहां मौत भी शायद जाने से पहले एक बार सोचे। ऐसी ही एक जगह है हॉन्टेड वास विला। बैंगलोर का ये घर पिछले 14 सालों से यहां किसी के आने का इंतजार कर रहा है, पर किसी का आना तो दूर, लोग इसकी परछाई से भी दूर रहना पसंद करते हैं। इसलिए 14 सालों से ना तो ये घर बिका है और ना ही इस घर में आज तक कोई रह सका है। क्या है इस घर का राज जिसने बना दिया है इस घर को एक हॉन्टेड प्लेस? करीब 100 साल पुराना है। लोग कहते हैं यहां वास नाम का एक वकील रहा करता था जिसकी दो बेटियां थी। वास के मरने के बाद ये दोनों बेटियां इसी घर में रहती थी, जिनमें से एक बेटी की किसी ने चाकू मारकर हत्या कर दी और उसकी लाश को उसी घर में कहीं दफन कर दिया। उस समय उसकी उम्र करीब 75 साल की थी। उसके कातिल का आज तक कोई पता नहीं चल सका। उसकी मौत की कहानी जैसे उसकी लाश के साथ ही इस घर की चार दीवारी में कैद हो गई। तब से अब तक इस घर में कोई नहीं रह सका, या यूं कहें कि उस भटकती आत्मा ने किसी को इस घर में रहने नहीं दिया। जब भी इस घर का सौदा होने की बात चलती है तो या तो खरीदार के घर कोई भारी विपत्ति आ जाती है या उसका अपना कोई बुरी तरह बीमार हो जाता है। कई लोगों का तो ये तक कहना है कि इस घर को देखने आए लोगों का जिंदगी तक ने साथ छोड़ दिया। टूटा फूटा सा ये घर अब लगभग खंडहर बन चुका है। टूटे शीशे, टूटे फूटे बर्तन, सोफे और फर्नीचर, बस यही इस घर में सदियों से पड़े हुए हैं। पर कोई इंसान यहां की तरफ कदम भी नहीं रखना चाहता। सुनने में ऐसा आता है कि रात होने पर इस घर के आसपास रहने वाले लोग अपना रास्ता तक बदल लेते हैं, क्योंकि जो रास्ता नहीं बदलते, मौत उनके रास्ते में आकर खड़ी हो जाती है।
1: The Haunted Night।
5: ज्ञानस्थली 89.6 FM। गोंडा शहर की धड़कन।

0: यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास शो भूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: चेहरे पर मासूमियत, आंखों में अनगिनत ख्वाब थे, हर मुस्कान में जैसे हजारों जवाब थे। पर्दे पर आई तो चांद भी शर्मा गया, मधुबाला नाम ही सिनेमा का खूबसूरत गुलाब थी। संघर्ष की राह पर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, हर किरदार में अपनी आत्मा पूरी उतारी। दर्द दिल में था मगर चेहरे पर मुस्कान रहती थी, यही उनकी सबसे बड़ी और सच्ची अदाकारी थी।
2: प्रेम मिला, बिछड़ना भी मिला, फिर भी कभी शिकायत न की। जिंदगी ने जितनी परीक्षाएं ली उतनी ही शिद्दत से जी। कम उम्र में दुनिया छोड़ गई पर अमर हो गई, हर पीढ़ी के दिल में अपनी जगह हमेशा के लिए बना गई। मधुबाला हमें सिखाती है कि सुंदरता केवल चेहरे में नहीं होती, सच्ची पहचान इंसान के कर्मों और मुस्कान में होती है। वो आज भी हर दिल में एक चमकता सितारा है, भारतीय सिनेमा की सबसे खूबसूरत और अमर धरोवर है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपकी आरजे ख्वाहिश
1: और मैं हूँ आरजे गुमसुम।
2: आज लेकर के आ रहे हैं उस सिनेमा की खूबसूरत धरोहर के बारे में, जो कि आज भी हमारे दिलों में सिर्फ एक प्यार भरा जब नाम आता है तो प्यारी सी गुदगुदाहट सी होने लगती है। वो प्यारा सा नाम मधुबाला। मधुबाला के नाम से ही हमारे सामने हमारी एक बहुत ही प्यारी सी प्रकृति सामने आती है। एक खूबसूरत सी प्रकृति, एक खूबसूरत सा चेहरा, एक खूबसूरत सी आवाज़, एक खूबसूरत सी अदाकारा। तो आइए चलते हैं आज के सफ़र में, हम इसी खूबसूरत सफ़र को लेकर के साथ में उनकी कई चीज़ों को, उनके कई बातों को आपके साथ आज हम शेयर करेंगे, उनके जीवन के बारे में, उनकी महकती यादों के बारे में। तो आज का सफ़र होने वाला है भूले बिसरे गीत में मधुबाला को लेकर के। तो आइए पहला गाना सुनते हैं एक प्यारे से गीत को।

0: मधुबाला भारतीय सिनेमा की सबसे सुंदर, प्रतिभाशाली और लोकप्रिय अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। उनका असली नाम मुमताज जहां बेगम देहलवी था। उनका जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने लगभग 22 वर्षों के फिल्मी करियर में 70 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और आज भी उन्हें भारतीय सिनेमा की अमर अभिनेत्री माना जाता है।
1: मधुबाला का बचपन आर्थिक कठिनाइयों में बीता। उनके पिता की नौकरी छूटने के बाद पूरा परिवार मुंबई आ गया। परिवार की मदद करने के लिए उन्होंने बहुत छोटी उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। बाल कलाकार के रूप में उनकी पहली उल्लेखनीय फिल्म बसंत, जो कि 1942 में थी। बाद में निर्देशक किरदास शर्मा ने उन्हें नीलकमल 1947 में पहली बार मुख्य अभिनेत्री में अवसर दिया। तो आइए उन्हीं की फिल्म बसंत से एक प्यारा सा गीत सुनते हैं।

0: 1954 में आई फिल्म महल ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। इस फिल्म का गीत आएगा आने वाला भी बहुत प्रसिद्ध हुआ और मधुबाला की लोकप्रियता पूरे देश में फैल गई। इसके बाद उन्होंने लगातार कई सफल फिल्में दी। इन फिल्मों में उन्होंने रोमांस, कॉमेडी, ऐतिहासिक और गंभीर हर प्रकार की भूमिका निभाई।
1: मधुबाला केवल अपनी अद्भुत सुंदरता के लिए ही नहीं जानी जाती थी, असल में उनका व्यक्तित्व भी बहुत सुंदर था। बल्कि अपने विनम्र स्वभाव, मधुर मुस्कान और सरल व्यवहार के लिए भी प्रसिद्ध थीं। उन्हें अक्सर भारतीय सिनेमा की वीनस कहा जाता था। वे समय की पाबंद, मेहनती और अपने काम के प्रति समर्पित थीं। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियां निभाई। वो कहा जाता है ना कि सूरत से सुंदर सीरत होनी चाहिए, और मधुबाला की सीरत उनके व्यक्तित्व का दर्पण थी। तो आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत जो कि मधुबाला के दर्पण में उनकी प्यारी सी छवि को दिखाता है।

हमारे भारतीय सिनेमा में प्रेम कहानियों का भी अपना ही दौर है। ऐसी एक प्रेम कहानी थी मधुबाला और दिलीप कुमार जी की, बहुत ही चर्चित। दोनों एक दूसरे से विवाह करना चाहते थे, लेकिन पारिवारिक मतभेदों और परिस्थितियों के कारण उनका रिश्ता टूट गया। बाद में उन्होंने 1960 से 61 के आसपास किशोर कुमार से विवाह कर लिया। तो आइए चलिए सुनते हैं मधुबाला जी का एक प्यारा संगीत।

मधुबाला का नाम आज भी भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग की सबसे चमकदार अभिनेत्रियों में लिया जाता है। उनकी फिल्म मुगले आजम में अनारकली का किरदार आज भी अभिनय की महान मिसाल माना जाता है। उनकी मुस्कान, मासूमियत और अभिनय ने उन्हें अमर बना दिया। अगर हम संक्षेप में यूं कहें कि मधुबाला का जीवन एक ऐसी कहानी है जिसमें संघर्ष, सफलता, प्रेम, पीड़ा और अमर विरासत सब कुछ समाहित है। उन्होंने बहुत छोटा जीवन जिया, लेकिन अपने अभिनय और व्यक्तित्व से भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा के लिए एक अमिट छाप छोड़ी। आइए सुनते हैं एक बहुत प्यारा सा गीत उनकी ऐसी अमर फिल्मों में से जो एक है।

0: प्यार किया तो डरना क्या। मुगले आजम फिल्म का ये गाना सिर्फ गाना नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक मील का पत्थर है। इसके पीछे दो सबसे बड़े किस्से बहुत ही मशहूर हैं। नौशाद और गीतकार शकील इस गाने की धुन को और बोल को तैयार कर रहे थे। दोनों पूरी रात जागते रहे लेकिन सही बोल नहीं मिल रहे थे। सुबह तड़के नौशाद को एक लोकगीत की पंक्ति याद आई, प्रेम किया क्या चोरी की। इसी को आधार बनाकर शकील ने तुरंत लिखा, प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की।
1: आइए अब मैं आपको बताऊंगी इस गाने में जो कि मधुबाला ने बहुत सारी चीज़ों को अपने ऊपर झेला, भारी जंजीरों का असली दर्द उन्होंने अपने ऊपर इस कदर से झेला था कि इस गाने और पूरी फिल्म में जब अनारकली यानी मधुबाला को जेल में दिखाया गया था तो उन पर असली और बेहद भारी लोहे की जंजीरें बांधी गई थीं। मधुबाला उस समय दिल की गंभीर बीमारी से भी जूझ रही थीं, लेकिन उनके चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं थी और उसके बावजूद इतनी प्यारी अदाकारा होने के साथ साथ इस गाने को आज भी जब भी हम लोग देखते हैं और सुनते हैं तो जरा सा भी फील नहीं कर पाते हैं, जरा सा महसूस नहीं कर पाते हैं कि इतनी भारी जंजीरों का दर्द उन्होंने कैसे झेला होगा। भारी जंजीरों के कारण उनकी त्वचा भी छिल गई थी और वे दर्द से तड़प रही थीं, लेकिन कैमरे के सामने उन्होंने अपने चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं आने दी। आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को एक नए अंदाज में।

एक लड़की भीगी भागी सी, ये बॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित और रोमांटिक बारिश के गानों में से एक है। इसके पीछे की कहानी काफ़ी मज़ेदार है। किशोर कुमार हॉलीवुड और वेस्टर्न म्यूज़िक के बहुत बड़े दीवाने थे। वे इस गाने के लिए कुछ अनोखा संगीत चाहते थे। उन्होंने संगीतकार SD वर्मन से जिद की कि गाने की शुरुआत किसी वाद्य यंत्र से नहीं बल्कि गैराज के औजारों की आवाज़ से होनी चाहिए, और फिर वैसा ही हुआ। और जब ये गाना बना और सभी ने सुना तो बहुत ही लोकप्रिय हुआ।

आइए मेहरबान बैठिए जाने जा, ये सॉन्ग ये गाना तो आप सभी लोगों ने सुना होगा। और मेरे हिसाब से जब कभी कोई भी रोमांटिक कपल कहीं भी अगर घूमने जाते हैं और ये गाना ना सुने ऐसा हो ही नहीं सकता है। हावड़ा ब्रिज फिल्म का ये गाना आज भी सभी के दिलों को गुदगुदा जाता है। इस गाने ने मधुबाला को उस दौर की सबसे बोल्ड अभिनेत्री के रूप में स्थापित कर दिया था। एक ही दिन में दो बिल्कुल अलग रूप उनके देखे गए थे। फिल्म के निर्देशक शक्ति सावंत ने बताया था कि जब इस गाने की शूटिंग चल रही थी तब मधुबाला एक ही दिन में दो विपरीत दुनिया की जी रही थी। वे दिन के एक हिस्से में वेस्टर्न शॉर्ट ड्रेस पहनकर क्लब डांसर

0: मुस्कानों की वो रानी हर दिल की धड़कन थी। रूप पहले पर्दे पर उतारी जो जैसे चांद की किरण थी। हर अदा में जादू था, हर नज़र में प्यार था। मधुबाला का नाम ही सिनेमा का त्यौहार था। दर्द छुपाकर भी उन्होंने हंसना सीखा। हर किरदार में जीवन का रंग सजाया। वक्त ने बहुत कुछ छीना, फिर भी वो मुस्कुराती रहीं। अपनी कला से हर दिल में अपनी जगह बनाती रही।
1: मोहब्बत की कहानी थी, उसके संग अमर हो गई। हर गीत हर तस्वीर जैसे सुनहरी सहर हो गई। कम उम्र में चली गई पर यादों में बस गई। पीढ़ियों के दिलों में एक रोशनी बन गई। तो आइए दोस्तों, आज इस सफ़र को यही विराम देते हैं, लेकिन मधुबाला की मुस्कान के संग हम संग मधुबाला की मुस्कान के संग हम सभी उनको सलाम करते हैं, क्योंकि ये वो शख्सियत थी जिनके बहुत सारी ऐसे किरदारों को हमने अलग अलग रूप में देखा। जब वो सेट पे होती थी तब भी मुस्कुराते हुए काम करती थी, जब वो एक गंभीर बड़ी बीमारी के साथ जूझ रही थी तब भी उनके चेहरे पर हमेशा से मुस्कान हुआ करती थी। तो आइए दोस्तों, आज भूले बिसरे गीत को, इस महफिल को यही विराम देते हैं। मैं हूँ आपकी आज ख्वाहिश,
0: और मैं हूँ आज गुमसुम।
1: भूले बिसरे गीतों की ये शाम यही थम जाए, फिर मिलेंगे अगली महफिल में। तब तक आप सभी को शुभरात्रि।
0: शुभरात्रि।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
3: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
4: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
3: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
4: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 72 34 020 202।
3: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ

0: स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं। त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
1: जहां लेडीज के लिए मिलती है लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियाँ, सूट, कुर्तियाँ और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
0: और जेंट्स के लिए,
1: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
0: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
1: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
1: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
4: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840 3395 84। अब सपने होंगे साकार।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838 288 386।
3: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
5: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
6: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
7: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
6: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
7: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
6: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
7: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरौला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
8: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।